0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे अमरापाली का गाया हुआ राग ललित। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। सुबह के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में अब आप पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा और संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। एक महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा। इस दौरान उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग, मौसम से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देने, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाने पर बल दिया जाएगा। इससे पहले श्री चौहान ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत में इस अभियान में भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा

उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। आज से 8 जून तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान और मतगणना 18 तारीख को होगी। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति ने विधान परिषद चुनाव के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस 8, शिवसेना UBT 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मंगोलिया के उलान बटार स्थित गंदतेग चेगलिंग मठ में अरहत सारिपुत्र और अरहत महामोगलन के पवित्र अवशेषों को पूरे विधि विधान के साथ स्थापित किया गया। ये दोनों भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। इन अवशेषों को भारत से 10 दिन की प्रदर्शनी के लिए लाया गया है, जो 10 जून तक चलेगी। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मंगोलिया में भारत के राजदूत अतुल मल्हारी गोत्सुर्वे की उपस्थिति में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल अक्टूबर में मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुख की भारत यात्रा के दौरान इस प्रदर्शनी की घोषणा की थी। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थीं। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सुमन कल्याणपुर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार IPL खिताब जीत लिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली की नाबाद 75 रन की पारी की बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जी हाँ दोस्तों, भोलेनाथ अपने भक्तों की पुकार शीघ्र सुनते हैं। सच्चे मन से की गई उनकी आराधना जीवन के सभी कष्टों को दूर करने की शक्ति रखती है।

दोस्तों, महादेव हमें सिखाते हैं कि परिस्थितियाँ कैसी भी हो, मन को शांत और स्थिर रखना चाहिए। उनका ध्यान आत्मबल और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है।

भोलेनाथ की जटाओं से बहती माँ गंगा, मस्तक पर सुशोभित चंद्रमा और कंठ में विराजमान नाग हमें जीवन में संतुलन, धैर्य और निडरता का संदेश देते हैं।

जी हाँ श्रोताओं, परिस्थितियाँ कैसी भी हो, कैसी भी, हमें हमेशा ही भगवान को याद करना चाहिए और भोलेनाथ की कृपा हम सब पर बनी रहे। इसी के साथ सुनते हैं अगला भजन।

0: इसी के साथ वंदना कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं लाला लाजपत राय जी के विचार पर आज का चिंतन।
1: पंजाब के मोगा जिले में जन्मे लाला लाजपत राय जी के पिता शिक्षक थे। लाला जी ने वकालत करने के बाद समाज की दशा बदलने के लिए चिंतन आरंभ किया और इसी क्रम में वो देश को आजाद कराने के लिए प्रयासरत रहने लगे। निडर सत्यनिष्ठ लाला जी स्वतंत्रता संग्राम के महानायकों में से एक थे। बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद पाल के साथ लाला जी की त्रिमूर्ति को बाल लाल पाल के नाम से जाना जाता था। इसी त्रिमूर्ति ने ही सबसे पहले भारत के पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई। लाला लाजपत राय जी बहुत सक्रिय थे, इसीलिए 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए। लाला जी को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष भी चुना गया। अंग्रेज सरकार बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद पाल जी के विचारों और उनके द्वारा आरंभ किए गए आंदोलन से विचलित थी, इसलिए उसने भारतीयों को आंशिक रूप से संतुष्ट करने के लिए साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय दल भारत भेजा ताकि मामले को ठंडा किया जा सके। उस समय चर्चा यह थी कि साइमन कमीशन ये तय करके आया है कि अपनी रिपोर्ट में भारतीयों को देश संभालने में असक्षम बताना है। इस दल में एक भी भारतीय को शामिल ना करना अपमानजनक था, इसलिए देश भर में साइमन कमीशन का जबरदस्त विरोध हुआ। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में एक विशाल प्रदर्शन हुआ, जहां साइमन गो बैक के नारों लगाती भीड़ का नेतृत्व करते लाला लाजपत राय जी पर बुरी तरह से लाठी चार्ज किया गया, जिससे लाला जी और बहुत बड़ी संख्या के अंदर आंदोलनकारी घायल हुए। घायल अवस्था में उसी शाम एक सभा में लाला जी ने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में कील का काम करेगी। उन गंभीर चोटों की वजह से 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय जी का देहावसान हो गया, लेकिन

उनकी वह भविष्यवाणी सत्य साबित हुई और 15 अगस्त 1947 को भारत से ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य अस्त हो गया। लाला लाजपत राय जी को देश में बहुत अधिक सम्मान प्राप्त था, इसलिए उनके बलिदान ने देश के जन सामान्य को आक्रोशित किया। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तथा अन्य क्रांतिकारियों ने लाला लाजपत राय जी पर किए गए जानलेवा लाठीचार्ज का बदला

0: अधिकारी सार्डन को गोली से उड़ा दिया गया। यह ज्ञातव है कि सार्डन हत्या के मामले में ही शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव आदि को फांसी की सजा सुनाई गई। असाधारण प्रतिभा के धनी लाला लाजपत राय जी ने अनेक संस्थाओं की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अमेरिका में भारतीय होम रूल लीग, सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी ही नहीं, उन्होंने भारत के प्रथम बैंक पंजाब नेशनल बैंक की भी स्थापना की। यह ज्ञातव है कि पंजाब नेशनल बैंक लाहौर में स्थापित किया गया। लाला जी ने अंग्रेजों की मेकाले शिक्षा के समानांतर आर्य समाज के सहयोग से डीएवी स्कूलों की स्थापना भी की। यह उनका दूरदर्शी निर्णय, उनकी राष्ट्रवादी और राष्ट्रभक्ति की सोच का परिणाम था। लाला जी एक प्रतिष्ठित लेखक और पत्रकार भी थे। उन्होंने द पीपल पत्रिका आरंभ की और द ट्रिब्यून अखबार में भी योगदान दिया। उन्होंने देश और विशेष रूप से पंजाब में हिंदी के प्रचार प्रसार में बहुत योगदान दिया। 1928 में उनकी पुस्तक दुखी भारत छपी, जो बाद में अनहैप्पी इंडिया के नाम से अंग्रेजी में भी प्रकाशित हुई। इसके अतिरिक्त आर्य समाज का इतिहास, इंग्लैंड्स डेप्ट टू इंडिया के साथ साथ मेजिनी, गैरिबाल्डी और स्वामी दयानंद जी पर भी उनकी जीवनियां भी प्रकाशित की। भारत को दास्तां की बेड़ियों से मुक्त कराने में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी के पुण्य स्मरण से इस देश के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में राष्ट्रभक्ति और प्रेरणा का संचार होता है। देश की स्वतंत्रता और संस्कृति के प्रति उनका स्नेह समर्पण सदैव श्रद्धा से स्मरण किया जाता है।
1: लाला लाजपत राय जी के जीवन पर अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुनते हैं रामचरितमानस से बालकांड का भाग 73।

अवध नरेश दशरथ के घर जब चार पुत्रों का जन्म हुआ तो अयोध्या नगरी का स्वरूप इस प्रकार निखर आया जिसका वर्णन करना कठिन है। कुल गुरु ने राजा के ज्येष्ठ पुत्र को आनंद और सुख का भंडार बताते हुए उनका नाम राम घोषित किया। संसार का भरण पोषण करने वाले गुणों से युक्त द्वितीय पुत्र का नाम भरत हुआ। वो जिनके स्मरण मात्र से शत्रुओं का नाश होता है उनका नाम शत्रुघ्न रखा और शुभ लक्षणों से युक्त श्री राम के अति प्रिय कनिष्ठ भ्राता लक्ष्मण कहलाए।

0: आइए अब सुनते हैं समाचार।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिना यू मिन आंग लाइंग इत्यनेन सह चर्चां करिष्यति। उभयोः देशयोः मध्ये ऐतिहासिकानां सभ्यतानां च संबंधान इतोपि सुदृढीकरणाय वार्तालापः भविष्यति। वार्तालापावधौ म्यांमार भारतयोः मध्ये सुरक्षा संपर्कौ च समेत्य संपूर्णेषु विभिन्नेषु विषयेषु चर्चाः भविष्यन्ति। राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शदः अजीत डोभालः गतरात्रौ दिल्ल्याम् अतिथिगणमान्यैः सह मेलनं विहितवान्। अवधेयं यत् म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिः शनिवासरे भारतस्य पञ्चदिवसीय यात्रायां बिहारस्य गयानगरं सम्प्राप्तवान् आसीत्। म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतेः भारतस्य आधिकारिकयात्रायाः कारणात् उभयोः देशयोः मध्ये बहुपक्षीय सम्बन्धः इतोपि सुदृढः भविष्यति इत्यपेक्षास्ति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना प्रकृतिसंरक्षणे स्थानीयसमाह्वानानां निराकरणे अन्यसामाजिककार्येषु च तेषां प्रेरक उपक्रमाणाम् उपलब्धीनां च विषये अनेकेषां नागरिकाणाम् उत्कृष्टयोगदानाय प्रशंसा कृता। आकाशवाण्याः स्वकीये मासिक कार्यक्रमे मन की बात इत्यनेन कार्यक्रमेण राष्ट्रम् अभिसंबोधयन् श्रीमोदी झारखंड राज्यस्य रांचीनगरे आयोजिते राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धायां उदयोन्मुख क्रीडकानां उत्कृष्ट प्रदर्शनस्य प्रशंसाम् अकरोत्। प्रवर्तमानायाः उष्णतरङ्गस्य स्थितिं प्रति चिन्तां प्रकटयन् प्रधानमन्त्रिणा जनान् अधिकृतान् उपदेशान् अनुसृत्य सुरक्षितं स्थातुं पूर्वसूचनानुसारं कार्यं च कर्तुम् उद्बुद्धवान्।
2: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
1: पश्चिम बंगाल राज्यस्य मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी अद्य स्वमंत्रिमंडलस्य विस्तारं करिष्यति। पञ्चत्रिंशत् नूतनाः मन्त्रिणः मन्त्रिमंडले समाविष्टाः भविष्यन्ति। शपथग्रहणं प्रातः एकादशवादने लोकभवने भविष्यति। नूतनेन समावेशेन शुभेंदु प्रशासने महत्वपूर्णरूपेण संवर्धनं भविष्यति, येन मई

0: मासस्य नवमे दिनांके पंचमन्त्रिभिः कार्यभारं स्वीकृतमासीत्। अनेन विस्तारेण राज्यमन्त्रिमण्डलस्य मन्त्रिणां कुलसंख्या एकचत्वारिंशत् यावत् वर्धिता भविष्यति। निर्वाचनायोगेन दशराज्याणां चतुर्विंशतिः राज्यसभासदस्यानां द्विवार्षिकनिर्वाचनस्य कार्यक्रमस्य घोषणा अद्य क्रियते। भूतपूर्वः प्रधानमन्त्री एच.डी. देवगौड़ा, केन्द्रीयमन्त्रिणौ जॉर्ज कुरियन तथा रवनीतसिंहश्च तेषु सदस्येषु अन्तर्भवन्ति। आन्ध्रप्रदेशे, गुजराते तथा कर्णाटके प्रत्येकस्मिन् राज्ये चत्वारि चत्वारि आसनानि सन्ति। राजस्थाने तथा मध्यप्रदेशे प्रत्येकस्मिन् राज्ये त्रीणि त्रीणि आसनानि सन्ति। झारखण्डे द्वे आसने स्तः, मणिपुरे, मेघालये, अरुणाचलप्रदेशे च, मिजोरमे च प्रत्येकस्मिन् राज्ये एकैकम् आसनं रिक्तमस्ति। आयोगस्यानुसारं जूनमासस्य अष्टादशदिनाङ्के मतदानं भविष्यति। मतगणना अपि तस्मिन्नेव दिने भविष्यति। महाराष्ट्रस्य, तमिलनाडुराज्यस्य, ओडिशाराज्यस्य च प्रत्येकस्य एकस्य आसनस्य कृते राज्यसभायाः उपनिर्वाचनस्य कार्यक्रमस्य अपि आयोगेन घोषणा क्रियते। एतत् निर्वाचनमपि अग्रिममासस्य अष्टादशदिनाङ्के भविष्यति। एकोननवतिवर्षीया प्रख्यातगायिकायाः सुमनकल्याणपुरस्य मुम्बईनगरे स्वनिवासस्थाने मृत्युः अभवत्। 50-अधिक-ऊनविंशतिशततमात् वर्षात् 70-अधिक-ऊनविंशतिशततमं वर्षं यावत् चलचित्रसङ्गीतस्य स्वर्णयुगे नैकासु भारतीयभाषासु कृतकार्याणां कृते एषा वयोवृद्धगायिका प्रसिद्धा आसीत्। अपि च आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गतरात्रौ अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे अंतिमस्पर्धायां गुजरात टाइटन्स दलं पञ्चस्तोभैः पराजित्य गतविजेतृदलेन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इत्यनेन अस्य वर्षस्य श्रृंखलापि विजिता इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ओ मिन ऑनलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा, संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमा के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति से मुलाकात की। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। एक महीने का ये अभियान 30 जून तक चलेगा। इस दौरान उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग, मौसम से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देने, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाने पर बल दिया जाएगा। इससे पहले श्री चौहान ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत में इस अभियान में भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। आज से 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 18 जून को होगा, उसी दिन मतगणना भी होगी। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थी। सुमन 1950 से 1970 के दशक के फिल्मी संगीत में हिंदी, मराठी और कई अन्य भारतीय भाषाओं में मधुर गायकी के लिए लोकप्रिय रहीं। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनीत्रा पवार तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सुमन कल्याणपुर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मंगोलिया के उलान बटार स्थित गंदन तेगचिनलिंग मठ में अहर्त सारिपुत्र और अहर्त महामोगलन के पवित्र अवशेषों को पूरे विधि विधान

0: के साथ स्थापित किया गया। ये दोनों भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। इन अवशेषों को भारत से 10 दिन की प्रदर्शनी के लिए लाया गया है, जो 10 जून तक चलेगी। प्रदर्शनी का उद्घाटन असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मंगोलिया में भारत के राजदूत अतुल मल्हारी गोदसुर्वे की उपस्थिति में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष अक्टूबर में मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुख की भारत यात्रा के दौरान इस प्रदर्शनी की घोषणा की थी। हांगकांग में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के मोगली वेंकटरामन ने पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। ये इस वर्ष की प्रतियोगिता में भारत का पहला स्वर्ण पदक है। रिले स्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। भूमिका, ताहुरा, सेहनूर और नीरू की महिला टीम ने 4x400 मीटर में स्वर्ण पदक जीता। भारतीय टीम ने 3:38.07 के समय के साथ चैंपियनशिप का रिकॉर्ड भी बनाया। काजल, भावना, आरती और निपम ने 4x100 मीटर में 45.05 के समय के साथ रजत पदक जीता। पीयूष राज, सैयद सबीर, रंजीत कुमार और मोहम्मद अशफाक की पुरुष टीम ने 4x400 मीटर में कांस्य पदक हासिल किया। ये चैंपियनशिप विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाइंग इवेंट है। विश्व चैंपियनशिप 5 से 9 अगस्त तक अमरीका के ओरेगन में यूजीन में आयोजित होगी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरा आईपीएल खिताब जीता। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली ने नाबाद 75 रन की पारी के बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi will hold discussions with Myanmar President U Min Aung Hlaing in New Delhi today. The talks will be held on further strengthening the historical and civilizational ties between the two countries. The entire gamut of relations between Myanmar and India, including security and connectivity, will come up for discussions during the talks. National Security Advisor Ajit Doval called on the visiting dignitary in New Delhi last evening. The Myanmar president will also travel to Mumbai tomorrow for business and industry interactions and side visits. Union Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan will launch the Khet Bachao Abhiyan from Raisen district in Madhya Pradesh today. The month-long campaign will continue till the 30th of June. The focus of the campaign will be on balanced and judicious use of fertilizers, timely advice to farmers in the view of weather-related challenges, active participation at panchayat level, and delivering the benefits of the schemes directly to the villages. West Bengal Chief Minister Subhendu Adhikari will expand his cabinet today. 35 new ministers will be inducted into the Council of Ministers. The swearing-in ceremony will take place at Lok Bhavan at 11 a.m. The fresh inductions will significantly scale up the Adhikari administration, which took charge the 9th of May with a core team of 5 cabinet ministers. With this expansion, the total strength of the state cabinet will rise to 41, strictly keeping with the constitutionally mandated 15% limit for the 294-member West Bengal Assembly. The notification for the biennial elections to 24 seats of the Rajya Sabha from 10 states will be issued today. 4 seats each in Andhra Pradesh, Gujarat and Karnataka, 3 seats each in Rajasthan and Madhya Pradesh, 2 seats in Jharkhand and 1 seat each in Manipur, Meghalaya, Arunachal Pradesh and Mizoram will go to polls. Former Prime Minister and JDS leader H.D. Devagowda, Union Ministers and BJP leaders George Kurian and Ravneet Singh, leader of the opposition in the Rajya Sabha and Congress President Mallikarjun Kharge, among the members who are completing the terms this month. In Maharashtra, ruling Mahayuti Alliance has finalized the seat-sharing formula for the upcoming legislative council elections to 17 seats. Under the agreement, BJP will contest 11 seats, Shiv Sena 4 seats and Nationalist Congress Party NCP 2 seats. The opposition Mahavikas Aghari had earlier announced its allocation for 15 of the 17 seats, with Congress contesting 8 seats. Shiv Sena UBT 4 seats and Sharad Pawar led NCP 3 seats. Discussions on the remaining Nashik and Nander seats are still underway. Today is the last day for filing nominations for the Legislative Council polls.

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। संगीतिका कार्यक्रम में आइए सुनते हैं परिणीति नरोला से कुछ भजन। सबसे पहले सुनिए कबीरदास जी की ये रचना। चलिए सुनते हैं ये रचना परिणीता नरोला की आवाज में।

कार्यक्रम संगीतिका में अभी आप सुन रहे थे परिणीता नरोला की आवाज में ये भजन। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गीतों भरे गुड मॉर्निंग।

दोस्तों, सुबह सिर्फ दिन की शुरुआत नहीं होती, ये वो मौका है जब हम कल की थकान को अलविदा कहकर आज के सपनों को नई उड़ान दे सकते हैं। और वही हम सुबह सुबह उठकर अपने अपने कामों पे और नई उम्मीद के साथ नया कुछ करने की ठान के हम दिन की शुरुआत कर सकते हैं।

यीशुदास की आवाज में भी आप सुन रहे थे फिल्म अय्याश का ये गीत। दोस्तों, सूरज को उगने के लिए किसी की इजाजत नहीं चाहिए और आपको चमकने के लिए किसी की मंजूरी नहीं चाहिए। जी हाँ, अपने पर विश्वास रखें और खूब मेहनत करें।

दोस्तों, ज़िंदगी में हर किसी के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन फ़र्क इस बात से पड़ता है कि हम इन घंटों में क्या सोचते हैं, क्या करते हैं अपने आप को, और प्रगति करने के लिए हम क्या क्या करते हैं।

तो दोस्तों आइए इन दिल की उलझनों को संगीत में घोल देते हैं और इस नए दिन की शुरुआत करते हैं।

0: दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और भाई बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर। और इसी के साथ ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 810 किलोहर्ट्स, TRM 810 किलोहर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं समाचार प्रभात।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो। और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन से वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटन्स को 5 विकेट से हराकर IPL खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा, संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी।
5: म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
4: 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 18 जून को होगा, उसी दिन मतगणना भी होगी। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास आघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना UBT 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीट पर चुनाव

0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का ये अभियान 30 जून तक चलेगा।
1: यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए की दिशा में एक बड़ी पहल है। इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जन प्रतिनिधि सभी मिलकर भाग लेंगे। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोयल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। साथ ही नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की पहचान करने के बारे में भी किसानों को सजग किया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए कई प्रमुख पहल की। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
2: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के रहने वाले किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
2: वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रूपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रूपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
4: किसान मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही है वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रूपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से।
2: वही न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार के द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का कल मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थी। एक श्रद्धांजलि।

0: कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को ढाका में हुआ था। सुमन कल्याणपुर ने 1950 के दशक के मध्य में हिंदी फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत की और आगे चलकर उन्होंने महान संगीतकारों और गायकों विशेष रूप से मोहम्मद रफी के साथ सैकड़ों गीत रिकॉर्ड किए। उनके सबसे लोकप्रिय गीतों में आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, नाना करते प्यार शामिल है।
1: नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे, करना था इनकार मगर इकरार तुम्हीं से कर बैठे।
0: सुमन कल्याणपुर के करियर की एक विशेषता ये थी कि उनकी आवाज महान गायिका लता मंगेशकर से काफी मिलती जुलती थी। इस तुलना के बावजूद सुमन कल्याणपुर ने अपनी एक अलग पहचान बनाई और अपनी मधुर तथा सधी हुई गायकी के लिए वो हमेशा याद की जाएंगी। उनके निधन से भारतीय फिल्म संगीत का एक और स्वर्णिम अध्याय समाप्त हो गया है।

0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में लू के दौरान सुरक्षा, सावधानियां और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस चर्चा में सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग के डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जिलों में आंधी, बारिश और खराब मौसम की घटनाओं के मद्देनजर जिला प्रशासन, राहत आयुक्त कार्यालय और संबंधित विभागों को निरंतर निगरानी बनाए रखने और किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब जीता। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली के नाबाद 75 रन की पारी के बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। राजस्थान के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। उन्होंने सर्वाधिक 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीती। वो 15 साल 65 दिन की उम्र में ऑरेंज कैप जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी गए। कागिसुर अबाडा ने सत्र में सबसे ज्यादा 29 विकेट लेकर पर्पल कैप हासिल की। मनीष पांडे को बैकवर्ड पॉइंट पर टिम डेविड का शानदार कैच लेने के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला। मोहम्मद सिराज को सबसे ज्यादा डॉट बॉल फेंकने का पुरस्कार मिला। उन्होंने 172 डॉट बॉल फेंकी। साई सुदर्शन को सबसे ज्यादा चौके लगाने का पुरस्कार मिला। उन्होंने 75 चौके लगाए। वैभव सूर्यवंशी को सर्वश्रेष्ठ उभरता खिलाड़ी, 237.3 के स्ट्राइक रेट के साथ सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर और 72 छक्कों के साथ सर्वाधिक छक्के लगाने का पुरस्कार भी मिला। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुनीश शर्मा।
1: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अपील की कि गर्मी और लू से बचने के लिए खूब पिए देसी पेय। ये खबर जनसत्ता समेत सभी अखबारों में है। पत्र आगे लिखता है कि प्रधानमंत्री ने एथलेटिक्स में बने कीर्तिमानों की सराहना की है। भारत ओमान व्यापार समझौता आज से लागू, भारतीय उत्पादों को शुल्क मुक्त बाजार। अमर उजाला ने इसे प्रमुखता से देते हुए लिखा है, मोदी सरकार के कार्यकाल में 5वां FTA, पश्चिम एशिया संकट के बीच 2 गुना होगा द्विपक्षीय कारोबार। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा 30 जरूरी दवाओं के दाम निर्धारित करने पर हिंदुस्तान लिखता है कि इससे हड्डी, हृदय रोग और मधुमेह के रोगियों को राहत मिलेगी। सुरक्षित सोशल मीडिया शीर्षक से हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है कि भारत ने 9 से 17 वर्ष के करीब 76% बच्चे सोशल मीडिया मंच का इस्तेमाल समय बिताने के लिए करने लगे हैं, जिससे उनकी सोचने समझने की क्षमता प्रभावित हो रही है और ध्यान केंद्रित करने की उनकी क्षमता भी काफी घटती जा रही है। रोहतांग में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश से उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी से राहत मिलने और हवा में सुधार पर अमर उजाला ने सचित्र देते हुए लिखा है कि उत्तर पश्चिम में भारत में आंधी तूफान और बारिश के आसार, जबकि नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, दिल्ली वालों के लिए राहत वाली हवा, 2018 के बाद तीसरी बार सबसे साफ हवा दर्ज की गई। प्रसिद्ध

0: पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर के निधन पर स्मृति शेष विशेष में राजस्थान पत्रिका लिखता है, 3000 से ज्यादा फिल्मी और गैर फिल्मी गीत उन्होंने गाए। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, रहे ना रहे हम महका करेंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लगातार दूसरी बार आईपीएल चैंपियन बनने को सभी अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के सदर ऊ मिंट लांग से बातचीत करेंगे। राज्यसभा के दो साल में एक बार होने वाले इंतखाबात के तहत 10 रियासतों की 24 सीटों के इंतखाबात का नोटिफिकेशन आज सुबह जारी किया जाएगा। मरकज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का आगाज करेगा। एक माह तवील इस मुहिम का मकसद कीमियावी खादों के सही इस्तेमाल को फरोग देना है। मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी 35 वजीरों को अपनी काबीना में शामिल करेंगे। मारूफ गुलुकारा सुमन कल्याणपुर का मुंबई में इंतकाल हो गया। और क्रिकेट में अहमदाबाद में आईपीएल के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार खिताब जीता है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के सदर ऊ मिंट आउलोंग से बातचीत करेंगे। ये बातचीत दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी और तहजीबी रिश्तों को मजीद मुस्तकम बनाने और ताल्लुकात के पूरे मंजरनामे पर की जाएगी, जिसमें हिफाजत और राबते भी शामिल हैं। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने कल शाम नई दिल्ली में मेहमान शख्सियत से मुलाकात की थी। सदर ऊ मिंट आउलोंग ने म्यांमार भारत तजारत फोरम से भी खिताब किया। म्यांमार के सदर भारत के 5 रोज़ा दौरे पर हफ्ते के रोज़ बिहार के शहर गया पहुंचे थे। उनके हमरा एक आला सतह का वफ़ भी है, जिसमें बहुत से काबीना वज़रा, सीनियर अफसरान और सरकर्दा ताजिर शामिल हैं। जनाब ऊ मिंट का सदर की हैसियत से भारत का ये पहला दौरा है। वो तिजारत और सनत की सरकर्दा शख्सियतों से बातचीत करेंगे और बहुत सी जगहों का दौरा करने के लिए कल मुंबई जाएंगे। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: म्यांमार के सदर आज शाम राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। वो कौमी राजधानी में राय पिथौरा सकाफती मरकज में लाइट एंड लोटस एक जागे हुए शख्स की बाकियात की नुमाइश से भी महजूज होंगे। इस नुमाइश में गौतम बुद्ध से वाबस्ता मुकदस पिपरावा बाकियात और नादिर अशिया को नुमाया किया जा रहा है। म्यांमार भारत की पड़ोसी मुकदम एक्ट ईस्ट और महासागर पॉलिसियों में शामिल है। उम्मीद है कि सदर ऊ मिंट के भारत के इस दौरे से दोनों मुल्कों के दरमियान कसीर जहती ताल्लुकात में मजीद इस्तेहकाम और गहराई पैदा होगी। न्यूज़ डेस्क से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: राज्यसभा के दो साल में एक बार होने वाले इंतखाबात के तहत 10 रियासतों की 24 सीटों के इंतखाबात का नोटिफिकेशन आज सुबह जारी किया जाएगा। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में 1-1 सीट के लिए चुनाव होंगे। साबिक वजीर आजम और जेडीएस के रहनुमा एचडी देवेगौड़ा, मरकजी वुजरा और बीजेपी रहनुमा जॉर्ज कुरियन नीज रवनीत सिंह राज्यसभा में अपोजिशन रहनुमा और कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे उन अरकान में शामिल हैं जिनके ओहदे की मुद्दत इस माह खत्म हो रही है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में राज्यसभा की 1-1 सीट के लिए भी नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा। ये सीटें महाराष्ट्र के नायब वजीर आला

0: मित्र अजीत पवार और तमिलनाडु से एआईएडीएमके मेंबर पार्लियामेंट सीवी शनमुगम के हाल ही में रियासती असेंबली में मंतखब हो जाने की वजह से खाली हो गई थी। ओडिशा के बीजेडी मेंबर पार्लियामेंट देवाशीष सामंतरे ने भी इस्तीफा दिया था। इन इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी आज से 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। पोलिंग इस माह की 18 तारीख को होगी और वोटों की गिनती उसी रोज की जाएगी। ज़िरात और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश में रायसेन ज़िले से खेत बचाओ अभियान का आगाज करेंगे। एक महीना तवील ये मुहिम 30 जून तक जारी रहेगी। तफसील हमारे नमानिगार से।
1: इस मुहिम का मकसद ज़रई ज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ और किसानों में साइंसी तर्ज की ज़िरात के बारे में बेदारी पैदा करना है। इस मुहिम में ज़िरात से मुतालिक यूनिवर्सिटीज़, ज़रई तहकीक की भारतीय काउंसिल, कृषि विज्ञान केंद्र और अवामी नुमाइंदे हिस्सा लेंगे। किसानों को मिट्टी की जाँच, कुदरती ज़िरात, कीमियावी खादों के सही इस्तेमाल और पानी की बचत के बारे में जानकारी दी जाएगी। उन्हें नकली कीमियावी खादों, बीजों और जरासीम कुश दवाओं की शिनाख्त भी बताई जाएगी। मुहिम के दौरान पीएम किसान सम्मान निधि, फसल बीमा स्कीम, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सरकारी स्कीमों, नीज, खेतों में मशीनों से कामकाज किए जाने के फायदे से भी किसानों को वाकिफ कराया जाएगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए नीतिका त्यागी।
0: मगरबी बंगाल के वजीरा शुभेंदु अधिकारी आज अपनी काबीना में तौसी करेंगे। वजीरों की इस काउंसिल में 35 नए वजीर शामिल किए जाएंगे। हलफबरदारी की तकरीब लोक भवन में दिन के 11 बजे मुनाकद होगी। शुभेंदु अधिकारी ने बुनियादी तौर पर 5 काबीना वजीरों के साथ 9 मई को हलफ लिया था। इस तौसी के बाद रियासती काबीना के वजीरों की तादाद 41 हो जाएगी, जो 294 रुकनी मगरबी बंगाल असेंबली का आईनी उसूल के तहत 15% है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के नायब वजीर आजम और वजीर दिफा रिचर्ड मार्लिस आज नई दिल्ली में दूसरे भारत ऑस्ट्रेलिया दिफाई वज़राय डायलॉग की मुश्तरका तौर पर सदारत करेंगे। वजारत दिफा ने बताया कि इस डायलॉग के दौरान बातचीत में दिफा और सिक्योरिटी से मुतालिक तआवुन को मुस्तहकम बनाने, फौजी इंटर ऑपरेबिलिटी और मुश्तरका तरक्की और मौक़ों की मुश्तरका पैदावार समेत सनती इश्तराक पर खास तवज्जो दी जाएगी। तवक्को है कि इस मीटिंग से दोतरफा दिफाई ताल्लुकात मजीद मुस्तकम होंगे, स्ट्रेटेजिक एतमाद और बाहमी तआवुन में इजाफा होगा, भारत बहरुल काहिल खित्ते में इस्तेकाम और सिक्योरिटी को फरोग हासिल होगा और दिफा और सिक्योरिटी मामलात में इश्तराक के नए मौक़ों को उजागर किया जाएगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मिसाली क़यादत में गुज़श्ता 12 साल में भारत में नुमाया तब्दीली रुनुमा हुई है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का उसूल इस तब्दीली का मुहर्रिक रहा है। इस दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, ख़वातीन और नौजवानों पर मरकूज मुतअद्दिद पहलुओं का आगाज और नफाज किया है। आकाशवाणी न्यूज़ गुज़श्ता 12 साल में कलीदी शोबों में किए गए हुकूमत के इक़दामात पर एक खसूसी सीरीज पेश कर रहा है। आज हम किसानों की फलाह व बहबूद के लिए किए गए इकदामात पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं।
2: नरेंद्र मोदी हुकूमत ने गुज़श्ता 12 साल में किसानों की बहबूद और उनकी आमदनी में इजाफा करने के लिए मुतअद्दिद पहल कदमियों का आगाज किया है। इन इकदामात में सबसे नुमाया पीएम किसान स्कीम का आगाज रहा है, जो मुल्क में फलाह व बहबूद से मुतालिक सबसे बड़ी पहलों में से एक है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए अयोध्या के किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने कहा कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बेहद सूदमंद है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
2: फसल बीमा योजना से तकरीबन 23 करोड़ किसानों 1,92,000 करोड़ रुपए मालियत के बीमा दावों से मुस्तफीद हुए हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के छोटे और हाशिर बरादर किसानों को 3,000 रुपए की यकीनी माहाना पेंशन मिल रही है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के एक रिहायशी ने कहा कि मजकूरा स्कीम से किसानों को रोजगार में मदद मिलेगी।
4: मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं, वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रुपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से।
2: कम से कम इमदादी कीमत MSP किसानों के लिए लाइफलाइन बन गई है।

0: महाराष्ट्र के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा, वजीर आला देवेंद्र फडणवीस, नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे और सुनेत्र पवार, नीज मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने सुमन कल्याणपुर के इंतकाल पर गहरे रंजोगम का इजहार किया है और अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में मौसीकी के मैदान में उनके तआवुन को उजागर किया है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने ज़िला इंतजामिया, रिलीफ कमिश्नर दफ्तर और मुतालिका महकमों को हिदायत दी है कि वो रियासत के कई अजला में तूफान, बारिश और इंतहाई ख़राब मौसमी हालात पर मुसलसल नज़र रखे, किसी भी हादसे की सूरत में फौरी इकदाम को यकीनी बनाए। कल राजधानी लखनऊ समेत कई अजला में मौसम में तब्दीली आई, जिससे लोगों को शदीद गर्मी से कुछ राहत मिली। मौसमियात महकमे ने रियासत के कई ज़िलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसराइली फौज ने जुनूबी लबनान में दिफाई एतबार से अहम ब्यू फोर्ट कासल इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है। इसराइल की दिफाई फौजों ने बताया कि ब्यू फोर्ट रिज और वादी अल सलूकी में फौजी दाखिल हुए और इन इलाकों पर कब्जा कर लिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उन मीडिया रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया है जिनमें यह कहा गया है कि ईरान के साथ उनके मुजवजा माहदे में न्यूक्लियाई मामलात का जिक्र नहीं है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर ट्रंप ने बताया कि इस माहदे में वाजे किया गया है कि ईरान को न्यूक्लियाई हथियार हासिल करना नहीं दिया जाएगा और इस माहदे में न्यूक्लियाई सरगर्मियों से मुतालिक तफसीली कवानीन शामिल हैं। क्रिकेट में कल रात अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल खिताब जीत लिया। बीसीसीआई सदर मिथुन मन्हास और सेक्रेटरी देवजीत साइकिया ने आईपीएल 2026 की बाबका ट्रॉफी आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार को पेश की। तफसील हमारे नमनिगार से।
1: For a second time running, Royal Challengers Bengaluru back-to-back winners of the Tata IPL.
2: कल रात उस वक्त आरसीबी के हर फैन का ख्वाब पूरा हो गया जब विराट कोहली ने गेंद को हिट करके बाउंड्री से बाहर पहुंचाकर टीम को जीत दिलाई। गुजरात टाइटंस की तरफ से दिए गए 156 रन के निशाने को आरसीबी ने विराट कोहली के 42 गेंद पर 75 रन की मदद से बआसानी हासिल कर लिया। उन्हें मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। इससे पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात टाइटंस ने 8 विकेट के नुकसान पर महज 155 रन बनाए। गुजरात टाइटंस की तरफ से वॉशिंगटन सुंदर सबसे ज्यादा 50 रन बनाकर नॉट आउट रहे। दिल्ली से चिराग झा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कोनेन हैदर।
0: आकाशवाणी का खबरों का शोभा हिंदी और अंग्रेजी में बराह रास्त नशर होने वाले अपने फ़ोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे शदीद गर्मी के दौरान महफूज रहना, एहतियात, तैयारी और हिफाजत के मौजू पर एक तफसीली मुजाकरा नशर करेगा। यह मुजाकरा नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन से वाबस्ता डॉक्टर रूपाली मलिक के साथ किया जाएगा। ये थी खबरें। अब अखबार के आईने के साथ हैं नीतिका त्यागी।
3: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के सभी उर्दू अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के कल अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात की 134वीं किस्त से खिताब करने से मुतालिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब ने सुर्खी लगाई है, वजीर आजम ने मन की बात में समाजी खिदमत, तालीम और माहौलियात के मैदान में नुमाया काम करने वालों की सताइश की, साथ ही अवाम से अच्छे कामों से जुड़ने की अपील की। एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन बने बहरिया के 27वें सरबराह, इस खबर को सभी अखबारों ने अहमियत के साथ पहले सफ़े पर शाई किया है। एडमिरल स्वामीनाथन ने एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की जगह ली है। पीएम स्वनिधि स्कीम के 6 साल मुकम्मल, ये खबर भी तमाम उर्दू खबरों में नुमाया है। और अखबारात में शाये होने वाली अहम बैनुल अक्वामी खबर है कि अमरीका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया का मुश्तरका दिफाई प्लान, साल 2027 तक ज़ेर-आब ड्रोन्स तैयार करने का ऐलान।
0: और आखिर में खास खास खबरों का खुलासा एक बार फिर।

0: 24 सीटों के इंतखाबात का नोटिफिकेशन आज सुबह जारी किया जाएगा। मरकज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का आगाज करेगा। एक माह तवील इस मुहिम का मकसद कीमियावी खादों के सही इस्तेमाल को फरोग देना है। मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी 35 वजीरों को अपनी काबीना में शामिल करेंगे। मारूफ गुलूकारा सुमन कल्याणपुर का मुंबई में इंतकाल हो गया। और क्रिकेट में अहमदाबाद में आईपीएल के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार खिताब जीता है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। स्वर गंगा कार्यक्रम के अंतर्गत आइए सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में पंडित गोस्वामी गोकुलोत्सव जी महाराज से राग गुजरी तोड़ी। तबले पर संगत कर रहे हैं अख्तर हसन।

स्वर गंगा कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में पंडित गोस्वामी गोकुलोत्सव जी महाराज से राग गुजरे तोड़ी। तबले पर संगत कर रहे थे अख्तर हसन। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 809 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर।

मीडियम वेव 300 श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आर गेस्ट। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मिट्टी दी महक। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स पर, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। इस समय 10:10 होने को हैं। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे समाचार। समाचार पहले हिंदी में प्रसारित किए जाएंगे, उसके बाद आप इंग्लिश में समाचार सुन सकेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा और संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति का काफी व्यस्त कार्यक्रम है।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 18 जून को होगा और मतगणना भी उसी दिन की जाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। उर्वरकों के संतुलित और सही इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि सभी मिलकर भाग लेंगे। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोयल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। साथ ही नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की पहचान करने के बारे में भी किसानों को सजग किया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोक भवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था और इस विस्तार के साथ ही राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थी। सुमन 1950 से 1970 के दशक के फिल्म संगीत में हिंदी, मराठी और कई अन्य भारतीय भाषाओं में अपनी मधुर गायकी के लिए लोकप्रिय रहीं। उनके कुछ सबसे प्रसिद्ध गीतों में आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, नाना करते प्यार तथा तुमने पुकारा और हम चले आए शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जिलों में आंधी, बारिश और खराब मौसम की घटनाओं के मद्देनजर जिला प्रशासन, राहत आयुक्त कार्यालय और संबंधित विभागों को निरंतर निगरानी बनाए रखने और किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब जीत लिया है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली की नाबाद 75 रन की पारी की बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर 10:10 हुए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपकी पसंद।

नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के इस प्रिय और आत्मीय कार्यक्रम आपकी पसंद में मैं दुर्गेश सारस्वत आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद है कि आपका दिन सुखद और उत्साह से भरा हुआ बीत रहा होगा। जीवन की भागदौड़ में कभी कभी कुछ पल ऐसे भी होने चाहिए जो मन को सुकून दें, चेहरे पर मुस्कान लाएं और यादों के किसी खूबसूरत कोने तक हमें पहुँचा दें। ऐसे ही कुछ मधुर और सुरीले पलों को लेकर हम एक बार फिर आपके बीच उपस्थित हैं। दोस्तों, संगीत केवल सुरों का मेल नहीं होता या भावनाओं की भी भाषा होती है। कभी ये हमें बीते दिनों की याद दिला देते हैं, कभी आने वाले कल के सपने दिखाते हैं और कभी कभी तो जो वर्तमान क्षण होते हैं उनको भी खूबसूरत बना देते हैं। तो आइए आज के सफ़र की शुरुआत करते हैं आपके भेजे हुए संदेशों के साथ, क्योंकि कार्यक्रम है आपकी पसंद। आप हमें अपने संदेश भेज सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है ipradiodelhi@gmail.com। तो जल्दी जल्दी अपने संदेशों की बौछार कीजिए, तब तक हम आपको सुनवाते हैं ये एक बहुत प्यारा सा गीत।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए RBI कहता है
2: जानकार बनिए सतर्क रहिए
3: गीत सुनने के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है श्रोताओं। कहते हैं कि खुशियां बड़ी चीज़ों में नहीं बल्कि छोटी छोटी बातों में छिपी होती हैं। सुबह की ताज़ी हवा, किसी अपने का हाल चाल पूछ लेना, किसी पुराने दोस्त का अचानक याद आ जाना और फिर कोई पसंदीदा गीत सुन लेना, ये सब हमारे दिन को बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि कार्यक्रम आपकी पसंद है तो आइए आपके संदेश पढ़ लेते हैं। ये संदेश हमें भेजा है लौरमी चचेरी छत्तीसगढ़ से कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी और ऋषभ मरावी जी ने। इसके अलावा हमारे पास संदेश आया है जवाहर नगर दुर्ग से RC कामड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कामड़े जी का। अगला संदेश हमें भेजा है सप्तरंग श्रोता परिवार कुंभार गली श्रीरामपुर से, अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, ऋषिकेत दले, जीविका दले जी ने। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर शिंदा, जसवीर चसी और सीता गीता जी भी हमें अपनी पसंद का कोई भी गीत सुनाने की फरमाइश कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास वंडीखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा भी किसी भी गीत में शामिल करने की फरमाइश कर रहे हैं। आपकी पसंद आदरणीय मैडम जी नमस्कार, बहुत ही बढ़िया शानदार प्रोग्राम आप पेश कर रहे हैं, बेहतरीन नगमे आप सुनवा रहे हैं। आज हमको पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर की याद में एक नगमा सुनवा दीजिए, फिल्म ममता, गीत है रहे ना रहे हम। ये संदेश हमें भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र शिपा, कपिल शिपा, ईशान शिपा और पूजा परिहार जी ने भेजा है। चलिए आपकी ख्वाहिश को पूरी करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें संदेश भेजने के लिए। ऐसे ही हमें संदेश भेजते रहिए और कार्यक्रम का आनंद लेते रहिए।

बिल्कुल दोस्तों, गीतों का ये जो सिलसिला है जारी है और साथ ही जारी है आपका साथ। श्रोताओं, कभी कभी हमें लगता है कि जीवन में सब कुछ बहुत जल्दी बदल रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमेशा हमारे साथ रहती हैं। अच्छी यादें, अपने लोगों का प्यार और संगीत। और ये जो वजह है कि वर्षों पुराने गीत भी आज उतने ही प्रिय लगते हैं जितने अपने समय में थे। चलते हैं, लेते हैं अब अपना अगला संदेश। आज सुमन कल्याणपुर जी को याद करते हुए उनकी फिल्म बात एक रात की में गाया फीमेल वर्जन गीत ना तुम हमें जानो ना हम तुम्हें जाने, आज की पसंद। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा जी ने हमें ये मैसेज भेजा है। इसके अलावा अगला संदेश हमारे पास आया है। आरजी बहन जी, आदाब व नमस्कार। आपके आने से प्रोग्राम में रौनक आ गई है, हमें निराश और नज़रअंदाज मत कीजिए। ये हमें भेजा है अहमद भाई फुलवाले, छोटी बलिया, करजत, मुंबई से हमें इन्होंने ये संदेश भेजा है। इसके अलावा सतीश अनेजा और बिमला अनेजा जी ने भी हमें संदेश भेजा है। गंज टुंडवारा से शमसुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान और अनु खान जी ने भी हमें मैसेज भेजा है। इसके अलावा हमें संदेश भेजा है रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा जी ने। जी, आपका संदेश भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा हमारे पास संदेश आया है भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव, देवेंदु भूषण, संस्कृति पौरुष और इन्होंने हमें यह संदेश भेजा है वाइट फील्ड बेंगलुरु से। चलिए हम आपकी पसंद के अनुसार अपना अगला गीत पेश करते हैं। तो लीजिए, आपकी पसंद के अकॉर्डिंग ये अगला गीत।

दोस्तों, संगीत की दुनिया में हर गीत की अपनी एक कहानी होती है। कोई गीत प्रेम की बात करता है तो कोई उम्मीद की और कोई संघर्ष की। शायद यही कारण है कि हर श्रोता अपने मन के अनुसार किसी न किसी गीत से जुड़ा होता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले संदेश की ओर। ये संदेश हमें भेजा है जिला फिरोजाबाद शिकोहाबाद उत्तर प्रदेश से पुष्पेंद्र यादव जी ने। नमस्कार तुर्केश जी, आपकी सादगी भरी आवाज़ सुबह को खुशनुमा बना देती है। कृपया तमाशा फिल्म से अगर तुम साथ हो गीत सुनवा दीजिए जी। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और अब पेश करते हैं आपका पसंदीदा गीत।

श्रोताओं, देखते ही देखते एक कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव आ चुका है, लेकिन संगीत का ये जो साथ है समाप्त नहीं होगा। आपके संदेश, आपकी शुभकामनाएं और आपकी पसंद के गीत हम लगातार जोड़ते रहेंगे। आप अपने संदेशों को हमें भेजते रहिए, लेकिन अभी के लिए अनुमति दीजिए। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें और जीवन में संगीत की मधुरता हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ अपने दोस्त दुर्गेश को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपके पसंद। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। इस समय 10:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं भारत में ऑल इंडिया रेडियो के प्रसारण के 90 वर्ष श्रृंखला के अंतर्गत व्रत रूपक श्रृंखला प्रसारण की प्रतिध्वनिया भाग एक।
1: ये आकाशवाणी है। भारत में व्यवस्थित रेडियो प्रसारण 8 जून 1936 को ऑल इंडिया रेडियो नाम से शुरू हुआ था। इस प्रसारण को शुरू हुए 90 वर्ष हो रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में प्रस्तुत है वृत्त रूपक प्रसारण की प्रतिध्वनिया श्रृंखला की पहली कड़ी। लेखक और प्रस्तुतकर्ता हैं पार्थ सारथी थपलियाल और अशोक अग्रोही। संपादन और प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का। परिकल्पना मनीषा जैन और प्रमोद कुमार।
2: जब शब्दों के पंख नहीं थे, कैद थी आवाजें सीमाओं में, भाव शून्य थी कल्पनाएं जब, तब उतरा वह स्वर आंगन में। उसने तोड़ा सीमाओं को, शब्दों को दी नई उड़ान, जन जन को दे अपनापन, वह बन गया जीवन का वरदान।
3: यह जोग था, संयोग था, नए युग का प्रयोग था। कुछ सुनने वाले, कुछ सुनाने वाले, कुछ ज्ञान की, कुछ विज्ञान की, कुछ जीवन की, कुछ दुनिया की। रची थी दुनिया भारत में, पुरुषार्थ

0: बचपन में सबसे पहले महाभारत में ही हमने आकाशवाणी शब्द सुना था, जब कंस अपनी बहन देवकी को वासुदेव के साथ विदा करने जा रहा था तो उसे एक दैवीय वाणी सुनाई दी जिसे आकाशवाणी कहा गया।
1: देखो देवकी, अब तुम अपने ससुराल जा रही हो, वहां जाकर अपने सास ससुर और वासुदेव जी की खूब सेवा करना।
2: है कंस, तुम अपनी जिस बहन देवकी को इतने प्यार दुलार से विदा करने जा रहे हो उसका आठवां गर्भ तुम्हारे अंत का कारण होगा।
1: कौन कौन है ये? किसकी आवाज है ये?
3: ये आकाशवाणी है युवराज।
4: महाभारत के बाद जब वैसी ही आवाज चुंबकीय तरंगों से निकलकर एक रेडियो रिसीवर के माध्यम से सुनाई दी तो उसे कहा गया रेडियो प्रसारण।
0: इतिहास के आईने में देखने पर पता चलता है कि सन 1920 से 1926 के बीच कुछ शौकिया लोगों ने स्वयं के रेडियो क्लब खोलकर उनसे प्रसारण किए। भारत में रेडियो प्रसारण के पूर्व पक्ष पर संकलित जानकारी को स्वर दे रही है आकांक्षा सिंह।
5: अगस्त 1921 में टाइम्स ऑफ इंडिया और पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट के सहयोग से बॉम्बे स्थित कार्यालय से पूना में बैठे गवर्नर जनरल ने प्रसारित संगीत सुना। ये भारत में रेडियो प्रसारण का पहला प्रयोग था। नवंबर 1922 में कलकत्ता में रेडियो क्लब ऑफ बंगाल, 1924 में बॉम्बे में और 1924 में ही मद्रास प्रेसिडेंसी क्लब बने। ये सभी प्रयास शौकिया लोगों ने किए थे।
4: इतिहास में जिक्र है कि भारत में प्रसारण 23 जुलाई 1927 से शुरू हुआ। इससे पहले 13 सितंबर 1926 को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी और अंग्रेज सरकार के बीच एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे।
0: लंदन से भारत आए अधिकारी लियोनेल फील्डन ने 1 जनवरी 1936 को प्रसारण नियंत्रक का दायित्व

0: संभाला।
1: उसी दिन दिल्ली स्थित 18 अलीपुर रोड के 5 कमरों के मकान से इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस यानी ISBS का प्रसारण शुरू हुआ।
0: श्रोताओं की जानकारी के लिए बता दें, ये वही जगह है जहां अब परमानंद अस्पताल है।
2: This is the Indian State Broadcasting Service. Time by our studio clock is a 12:15. Welcome to our lunchtime broadcast of film music. For your listening pleasure, we commence the program with a song from the 1933 film Yahudi Ki Larki, rendered by none other than K.L. Saigal. Stay tuned.

0: प्रसारण नियंत्रक लियोनेल फिल्डन ने अपनी पुस्तक नेचुरल बेंट में लिखा कि वे इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस नाम से संतुष्ट नहीं थे। संयोग से उन्हीं दिनों वॉइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो के आवास पर एक मिलन समारोह हुआ। अवसर मिलते ही फिल्डन ने वॉइसरॉय से अकेले में अपने मन की बात कह डाली।
1: Sir, I find myself in a bit of a predicament, and I was hoping for your guidance.
2: Go on, Mr. Fielden.
1: The name, sir, Indian State Broadcasting Service, it doesn't quite sit right. I believe you would agree.
2: Mr. Fielden, this Indian State Broadcasting Service, rather a mouthful. You're quite right.
1: Yes, sir. It feels administrative, distant, not something people can truly connect with. What we need is a name that belongs to the people of this land, something that feels inclusive.
3: एक लंबी चुप्पी के बाद वॉइसरॉय ने बड़ी चतुराई से अपनी गर्दन हिलाई।
1: Perhaps something like all India
2: Radio.
1: Exactly, sir. Perfectly put. All India Radio. What a name. It carries both reach and identity.
2: All India Radio. All India Radio. It does have a certain resonance.
1: It speaks to the future, sir. To a time when voices from every corner of this country can be heard as one.
2: Very well. Let us give it a future then.
1: Of course, sir.
2: All India Radio, it shall be.
1: Thank you, sir.
0: इस तरह 8 जून 1936 को पहली बार इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के स्थान पर ऑल इंडिया रेडियो की उद्घोषणा की गई।
4: दिस इज ऑल इंडिया रेडियो।
0: अपनी किताब नेचुरल बेंट में लियोनेल

0: फिल्डन ने लिखा है,
1: मैंने ऑल इंडिया रेडियो के मोनोग्राम पर भी काम किया। भारत के मानचित्र के ऊपर लिखा है ऑल इंडिया रेडियो का सार, यानी AIR। बस मेरी अब यही एक निशानी बाकी है।

0: आकाशवाणी संकेत धुन की रचना का प्रसंग भी रोचक है।
1: उन दिनों ऑल इंडिया रेडियो के बॉम्बे स्टेशन में पाश्चात्य संगीत के निदेशक थे वाल्टर कॉफमैन। वाल्टर कॉफमैन चेकोस्लोवाकिया से शरणार्थी के रूप में भारत आए थे। दिल्ली केंद्र पर पाश्चात्य संगीत का दायित्व जॉन फोल्ड्स के पास था। इन दोनों ने ऑल इंडिया रेडियो के लिए जिस सिग्नेचर ट्यून का सृजन किया वो भारतीय शास्त्रीय संगीत के राग शिवरंजनी पर आधारित थी। इसमें प्रयास था कि भारतीय संगीत की भी झलक दिखे। इस धुन में 8-8 सेकंड की आवृत्तियां हैं। सामान्यतः ऑल इंडिया रेडियो की प्रसारण सभा शुरू होने से 2 मिनट पहले से आपको ये धुन सुनाई देती है।

0: ये वो समय था जब ऑल इंडिया रेडियो अपने प्रसारण केंद्रों और कार्यक्रमों को विस्तार दे रहा था। उसी समय पेशावर, लाहौर, लखनऊ जैसे केंद्र अस्तित्व में आए।
1: 19 जनवरी 1936 को पहला समाचार बुलेटिन दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। 1 अक्टूबर 1939 को पश्तो भाषा में पहला प्रसारण हुआ।
0: दुर्भाग्य से उसी समय 3 सितंबर 1939 को दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ।
1: द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत में रेडियो प्रसारण के संदर्भ को बता रही हैं आकांक्षा सिंह।
2: द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला। ये युद्ध मित्र राष्ट्रों और धुरी शक्तियों के मध्य लड़ा गया। मित्र राष्ट्रों में ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ, अमेरिका और चीन शामिल थे। धुरी शक्तियों में जर्मनी, इटली और जापान शामिल थे। भारत उस समय अंग्रेजी साम्राज्य का उपनिवेश था। ऑल इंडिया रेडियो ब्रिटिश सरकार कहें या अंग्रेज सरकार, उसके नियंत्रण में था। इसलिए ऑल इंडिया रेडियो उस समय वही प्रसारित कर रहा था जो मित्र राष्ट्रों के पक्ष में था। उस काल में ऑल इंडिया रेडियो के प्रसारणों के ऊपर एक सेंसर अधिकारी नियुक्त कर दिया गया था।
0: देश के लोक गीतों में भी इस युद्ध के प्रति जनभावनाएं सुनाई देने लगी थी।

0: है। प्रसारण भवन जिस शैली में बना हुआ है वो अद्वितीय है, इसीलिए इसे 1 अक्टूबर 2009 को हेरिटेज बिल्डिंग घोषित कर दिया गया।
1: प्रसारण भवन के मुख्य प्रवेश द्वार के ठीक ऊपर महात्मा गांधी का वो कथन सुनहरे रंग से अंकित है जो संस्कृति और विचारों के खुलेपन की महत्ता व्यक्त करता है।
2: मैं नहीं चाहता कि मेरा घर चारों ओर दीवारों से घिरा रहे, न मैं अपनी खिड़कियों को ही कसकर बंद रखना चाहता हूं। मैं तो सभी देशों की संस्कृति का अपने घर में बेरोक टोक संचार चाहता हूं, पर ऐसी संस्कृति के किसी एक झकोरे से मेरे पांव उखड़ जाएं, ये मुझे मंजूर नहीं। मेरा धर्म बंदी गृह का धर्म नहीं, ईश्वर के रचे नन्हे से नन्हे जीव के लिए उसमें जगह है, लेकिन जाति धर्म या वर्ण का दंभ उसे छू नहीं सकता।

0: आकाशवाणी दिल्ली में लंबे समय तक उप महानिदेशक रहे श्री लक्ष्मण शंकर वाजपेयी बताते हैं,
1: ये जो बिल्डिंग है ये हम लोग चूंकि रोज उसमें आते जाते हैं तो शायद महसूस न कर पाए, लेकिन ये दुनिया की अनूठी इमारतों में इसलिए है कि ये जो स्पूल टेप होता है जिसमें टेप पे सब रिकॉर्डिंग हम करते थे, ये उस स्पूल टेप के आकार में बनाई गई उसकी सारी। अब स्पूल टेप को आप देखिए और कभी बाहर फोटो मिल जाएंगी उस तरह की, तो आप देखेंगे कि उसको उसी तरह से जैसे बीचों बीच में वो मुख्य बिल्डिंग हो गई, फिर इधर उधर जाके जैसे स्पूल टेप में होता है वो उसी तरह से बनाई गई है। और इसी वजह से मतलब हर महीने शायद जो हमारे ये इंस्टीट्यूट होते हैं आर्किटेक्चर वाले, इनके विद्यार्थी आया करते थे अध्ययन करने के लिए और देखने के लिए, तो ये खास बात है। ये दूसरी बात ये भी जोड़ना बहुत अच्छा लगेगा कि एक जमाने में जो चार पहिए वाले आते थे, उनका नाम मुझे नहीं ध्यान आ रहा है, तो रेलवे स्टेशन पे जैसे ही लोग उतरते थे दिल्ली घूमने आते थे तो उनके पास एक कार्ड रहता था जो दर्शनीय स्थल है दिल्ली के, तो आप समझिए कि लाल किला कुतुब मीनार वगैरह कर लें तो शायद ये पांचवें नंबर पे इस इमारत को रखा जाता था लोग इतना, क्योंकि उस जमाने में रेडियो के लिए जिस तरह का वो थी क्रेज थी, तो ये वहां पर ये इमारत उस तरह से रहती थी। तो और इसमें भी कोई शक नहीं है कि इतने लोग आए हैं पूरे विश्व के विश्वविख्यात, तो उस नाते भी उस इमारत का एक अलग एक महत्व हो जाता है और अपने आप में पूरा इतिहास भारत का संजोए है। यही वो ब्रॉडकास्टिंग हाउस है जहां से इस देश के बंटवारे की घोषणा की गई लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा, इसी के स्टूडियो से हमारे महात्मा गांधी जी का जब वो हत्या हुई तो पंडित नेहरू भी आए, सरदार पटेल भी आए और एक से एक सारे मतलब दिग्गज दुनिया भर के लोग आए, तो ये इमारत हर तरह से एक बहुत अनूठा स्थान अपना रखती है।
0: रेडियो के शुरुआती दिनों में अधिकतर वही लोग रेडियो में आते थे जो महफिलों में गाना बजाना करते थे और इनका पसंदीदा साज था हारमोनियम।
2: हारमोनियम भारतीय साज नहीं है, ये अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में आया था, लेकिन बाद में ये लोगों के दिलों पर छा गया। उस समय लोग इसे पेटी बाजा कहते थे।

1936 में लियोनेल फिल्डन ने भारत में जिस प्रसारण तंत्र को स्थापित किया, उनके जाने के बाद उसे सुदृढ़ किया महानिदेशक एएस बुखारी ने। ये वो समय था जब पूरे देश में स्वतंत्रता का आंदोलन शिखर पर था।

0: एक ओर भारत में प्रसारण की कलियां फूट रही थी तो दूसरी ओर स्वाधीनता का स्वर तीव्र हो रहा था।
1: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो दूर हटो।

ब्रिटिश सरकार भारत को आजाद करने का मन बना चुकी थी। ऑल इंडिया रेडियो की भूमिका भी बढ़ चुकी थी। इस प्रसंग के साथ हम फिर मिलेंगे प्रसारण की प्रतिध्वनि श्रृंखला की दूसरी कड़ी में।

अभी आप सुन रहे थे वृत्त रूपक प्रसारण की प्रतिध्वनिया श्रृंखला की पहली कड़ी। वाचन स्वर देवेंद्र त्रिपाठी और निशा भारद्वाज। नाट्यांश स्वर अशोक अग्रोही, सुधीर राजौरिया, पार्थ सारथी थपलियाल, आकांक्षा सिंह, नीतीश अरोड़ा और मनोज पाइनकर। आलेख और प्रस्तुति पार्थ सारथी थपलियाल और अशोक अग्रोही। संपादन और प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह। परिकल्पना मनीषा जैन और प्रमोद कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भारत में ऑल इंडिया रेडियो के प्रसारण के 90 वर्ष श्रृंखला के अंतर्गत प्रतिरूपक श्रृंखला प्रसारण की प्रतिध्वनियां भाग एक। श्रोताओं, इस कार्यक्रम का प्रसारण आज रात 10:30 पर FM गोल्ड चैनल पर किया जाएगा। प्रसारण की प्रतिध्वनियां प्रतिरूपक की दूसरी कड़ी 2 जून मंगलवार को प्रातः 10:30 पर इसी चैनल पर आप सुन सकते हैं। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर।
1: एक आवाज जो बचपन में सुनी थी,
2: एक आवाज जो हर समय आपके साथ थी,
1: एक आवाज जो आज भी दिलों को जोड़ती है।
2: हम सबकी अपनी आकाशवाणी 90 साल की हो रही है।
1: 90 साल की सेवा, संवाद और संस्कार की यात्रा।
2: आइए इस गौरवमय अवसर पर हम सब मिलकर कहें,
1: आकाशवाणी
2: विश्वास की आवाज।

0: एक आवाज जो बचपन में सुनी थी,
1: एक आवाज जो हर समय आपके साथ थी,
0: एक आवाज जो आज भी दिलों को जोड़ती है।
1: हम सबकी अपनी आकाशवाणी 90 साल की हो रही है।
0: 90 साल की सेवा, संवाद और संस्कार की यात्रा।
1: आइए इस गौरवमय अवसर पर हम सब मिलकर कहें,
0: आकाशवाणी
1: विश्वास की आवाज। और श्रोताओं, आपसे कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा और संपर्क सुविधा सहित भारत

0: भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति का काफी व्यस्त कार्यक्रम है।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का ये अभियान 30 जून तक चलेगा। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह लोकभवन में आयोजित हो रहा है। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स आज नई दिल्ली में भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के दूसरे संवाद की संयुक्त अध्यक्षता करेंगे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार बैठक में रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत बनाने, सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाने, रक्षा उद्योग में साझेदारी, सह विकास और सह उत्पादन के अवसरों पर चर्चा होगी। सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन आज से 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। इस महीने की 18 तारीख को मतदान होगा। वोटों की गिनती भी उसी दिन होगी। होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 4 प्रमुख शहरों में 42 रुपए से लेकर 53 रुपए 50 पैसे तक की वृद्धि की गई है। घरेलू उपयोग में आने वाली गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी रुड़की ने जेईई एडवांस्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। कुल 56,880 उम्मीदवार परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, इनमें से 10,107 छात्राएं हैं। नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री लामिछाने भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। उनका नई दिल्ली में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व सहित कई उच्च स्तरीय राजनीतिक और राजनयिक बैठकों में शामिल होने का कार्यक्रम है। अफ्रीकी संघ ने इबोला से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आपातकालीन निदान, उपचार और चिकित्सा सामग्री का स्वागत किया है। संघ की स्वास्थ्य एजेंसी अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने बताया कि ये सामान युगांडा में पूर्वी क्षेत्रीय समन्वय केंद्र के माध्यम से भेजे गए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi will hold discussions with Myanmar President U Min Aung Hlaing in New Delhi today. The talks will be held on further strengthening the historical and civilizational ties between the two countries. the entire gamut of relations between Myanmar and India.

0: 2744995। जी हाँ श्रोताओ, नंबर एक बार दोबारा नोट कर लीजिए, 8527449955।
1: श्रोतो, आज हम सुनने वाले हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक लड़की की नहीं बल्कि हर गांव की, हर घर की कहानी है। कहानी उस बदलाव की है जो हर बच्चे के जीवन में एक दिन आता है। कभी कभी समय से पहले आता है तो कभी कभी समय के बाद, जिसे हम कहते हैं अर्ली पुबर्टी, यानी जब बच्चे का शरीर जल्दी बड़ा होना शुरू कर देता है। 8-9 साल की उम्र में ही शारीरिक या हार्मोनल बदलाव आने लगते हैं। क्यों होता है ऐसा? गलत खानपान से, मोबाइल व टीवी की आदतों से, या तनाव व सामाजिक डर से? पर सच यह है, ये कोई बीमारी नहीं बल्कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसे समझने और सही दिशा देने की जरूरत है। आज की कहानी हमें सिखाती है कि अगर माता पिता, शिक्षक व समाज मिलकर समझ दिखाएं, तो हर बच्चा ये बदलाव बिना डर और लज्जा के स्वीकार कर सकता है। ये कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव की, जहां मिट्टी में सौंधी खुशबू है पर सोच अब भी पुरानी है।
2: राधा बेटा, सुबह से फिर वही कार्टून लगा लिया, थोड़ा बाहर भी खेल लिया कर, धूप भी जरूरी होती है।
3: माँ बाहर बहुत गर्मी है, मैं बाद में जाऊंगी, अभी मैं वीन देख रही हूँ, फिर चिप्स खाकर स्कूल जाऊंगी।
2: हर रोज वही टीवी, मोबाइल और बाहर खेलने से परहेज। फिर कहती है सिर दर्द करता है, ना फल खाना है ना दूध पीना है, बस बिस्किट, चिप्स, नमकीन और कुरकुरे और नूडल्स, यही खिलाओ।
3: अरे माँ, स्कूल में भी ना सब यही खाते हैं और मुझे भी ना यही अच्छा लगता है। माँ जल्दी आओ।
2: क्या हुआ राधा बेटा, गिर गई क्या? ये खून कहाँ से आया?
3: माँ मुझे नहीं पता, मैं तो बस बाथरूम गई थी, पर कपड़ों पे ही ये लाल निशान, मुझे बहुत डर लग रहा है माँ।
2: हे ईश्वर, ये तो मुझे वो बात लगती है, पर इतनी छोटी उम्र में, बस 9 साल में ही।
3: कौन सी बात माँ, मैं क्या बीमार हूँ?
2: नहीं, बीमार नहीं, बस अब ना तू बड़ी हो गई है, अब बाहर खेलने मत जाना और किसी को बताना मत।
3: पर माँ, मैं गंदी क्यों हो गई हूँ? कल तक तो सब ठीक था, आज ऐसा क्या हो गया?
2: अरे गंदी नहीं हुई बेटा, पर अब कुछ बातें बदल गई हैं। तू स्कूल मत जाना कुछ दिन, मैं सविता दीदी से पूछती हूँ कि क्या करना है। कौन है?
4: मैं हूँ सविता।
2: आओ सविता दीदी, अंदर आओ। बस राधा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, स्कूल भी नहीं भेजा मैंने।
4: अरे क्या हुआ राधा को, बुखार तो नहीं है?
2: वो असल में राधा को ना, वो बस हो गई है, मतलब पीरियड। पर दीदी ये तो बहुत जल्दी है ना, अभी तो वो 9 साल की है।
4: हाँ मैं समझ सकती हूँ आपकी चिंता, इसे कहते हैं अर्ली प्यूबर्टी, समय से पहले यौवन आना, आजकल बालिकाओं में ये देखने को मिल रहा है।
2: पर इतनी जल्दी कैसे, हमारे समय में तो 14-15 साल में होते थे।
4: बिल्कुल सही, पर वक्त बदल गया है दीदी, हमारे बच्चों का खान पान, जीवन शैली, माहौल, सब कुछ बदल गया है। बच्चे अब बाहर कम खेलते हैं, मोबाइल टीवी ज्यादा देखते हैं, जंक फूड, चिप्स, बर्गर, नूडल्स, बस यही इनकी जिंदगी है। बस इसी वजह से जो उनमें केमिकल होते हैं वो शरीर को जल्दी बड़ा कर देते हैं, मतलब ग्रोथ हार्मोन को ज्यादा बढ़ा देते हैं।
2: तो इनके खाने से बदलाव जल्दी आता है?
4: हाँ, सिर्फ खाना ही नहीं, कई बार शारीरिक गतिविधि की कमी, तनाव, नींद की कमी, ये सब भी असर डालती हैं। टीवी या मोबाइल की रोशनी से भी शरीर के हॉर्मोन्स प्रभावित होते हैं, और परिवार में अगर किसी को जल्दी पीरियड्स हुए हैं तो ये आनुवांशिक कारण भी हो सकता है।
2: हे ईश्वर, मैंने तो कभी

0: सोचा था कि ये सब इतनी बड़ी बात है। राधा तो हमेशा घर पर ही रहती है, बाहर खेलने भी नहीं जाती है, बस मोबाइल, कार्टून, चिप्स यही सब पसंद है उसे।
1: कोई बात नहीं सीमा जी, आप अब समझ गई ना, जो सुधार करना है वो अब हो सकता है। जब समझ जाते हैं तो सुधार करना भी आसान होता है। राधा को डराने की नहीं, समझाने की जरूरत है। उसे बताइए ये बीमारी नहीं है, बल्कि उसके शरीर में प्राकृतिक बदलाव हो रहे हैं।
0: और दीदी, मैंने तो उसे कह दिया कि मंदिर मत जाना, गलत कहा क्या मैंने?
1: सीमा जी, ये सब पुरानी बातें हैं। लड़कियां गंदी नहीं होती, उस समय बस उन्हें साफ सफाई, सैनिटरी पैड का सही इस्तेमाल और संतुलित आहार की जरूरत होती है। और हाँ, राधा को दूध, हरी सब्जियां, फल, सुबह शाम थोड़ा खेल कूद, ये सब करना बहुत जरूरी है। आप समझाएं उसे।
0: सही कहा दीदी, मैं खुद डरी हुई थी।
1: माँ अगर समझेगी तो बेटी डरेगी नहीं, गर्व से बढ़ेगी।
2: क्या बात है सीमा, आजकल राधा दिखाई नहीं दे रही है, कहीं स्कूल से भागने की आदत तो नहीं पड़ गई इसको?
0: नहीं नहीं काका, वो थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है उसकी।
2: छोटी सी उम्र में बीमारी, अब राधा बड़ी हो गई है।
1: गोपाल काका, ऐसी बातों का मजाक नहीं उड़ाया करते, ये कोई हंसी की बात नहीं है, समझ की बात है।
2: अरे सविता बेटी, मैं तो यूं ही मजाक में बोल देता हूँ, मुझे क्या पता कि बात इतनी गंभीर है।
1: गांव में जब भी किसी लड़की के साथ ऐसा बदलाव होता है तो लोग चुप रहते हैं या मजाक उड़ाते हैं। क्या कभी किसी ने सोचा उस बच्ची पर क्या बीतती होगी?
2: ये बात तो आप सही कह रही है, हम तो हंसी में कह देते हैं, पर बच्ची को तो डर लगा रहता होगा।
1: बिल्कुल, राधा सिर्फ 9 साल की तो है, ये बदलाव प्राकृतिक है, पर उम्र से पहले आए तो हर किसी को डर लगता है। इसकी वजह कोई किस्मत नहीं, हमारी जीवन शैली है।
2: जीवन शैली मतलब?
1: मतलब आजकल के बच्चे जो बाहर खेलते नहीं हैं, बस दिन भर घर पे रहते हैं, मोबाइल, टीवी, यही इनकी जिंदगी बन गई है। पूरे समय बाहर का खाना खाते हैं, फैक्ट्री वाला खाना खाते हैं जिनमें रसायन होते हैं, और वो हमारे हॉर्मोन्स को जल्दी बढ़ा देते हैं, जिससे हमारा शरीर जल्दी बड़ा दिखने लगता है।
2: अरे ये तो हमें कभी बताया ही नहीं गया, हम तो सोचते थे ये ईश्वर का खेल है।
1: ईश्वर ने शरीर बनाया है, पर हमें दिमाग तो दिया है ना काका, समझने के लिए। अगर समय से पहले ये बदलाव दिखें तो डरना नहीं चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत है।
0: मैं भी डर गई थी पहले, मुझे लगा कुछ अपशगुन हो गया, पर दीदी ने समझाया तो अब मन शांत हुआ है।
2: बेटा, तुम दोनों ने मेरी आंखें खोल दी, अब मैं किसी भी लड़की के साथ ऐसा मजाक नहीं करूंगा, बल्कि गांव की और लोगों को भी बताऊंगा। यह शर्म की बात नहीं, ज्ञान की बात है।
1: यही तो चाहिए था काका, अगर गांव में बड़े लोग समझ जाएं, तो लड़कियां भी बिना डर के जी पाएंगी। नमस्ते भाई और बहनों, आज हम सब यहाँ एक बहुत जरूरी विषय पर बात करने आए हैं, समय से पहले यौवन, जिसको हम अर्ली प्यूबर्टी भी कहते हैं। आप सबने देखा होगा कई बच्चियां जो 8-9 साल की उम्र की है, उनमें ऐसे बदलाव आने लगते हैं, शरीर का बढ़ना, स्तनों का विकास, मासिक धर्म शुरू हो जाना। पहले ये 13 से 14 साल की उम्र में होता था, पर अब जल्दी हो रहा है। आप जानते हैं क्यों?
2: क्यों
0: क्यों
2: क्यों
0: क्यों?
1: क्योंकि हमारे बच्चों की जीवन शैली, खान पान, दिनचर्या पहले से बहुत बदल गई है।
3: दीदी, इसका इलाज क्या है?
1: देखिए, इलाज से ज्यादा जरूरी है सही जानकारी और समय पर सलाह। अगर आपकी बच्ची जल्दी बड़ी होने लगे या उसके शरीर में जल्दी बदलाव दिखे, तो सबसे पहले डरिए नहीं, शर्माइए भी नहीं, बल्कि डॉक्टर या आशा से बात करिए। साफ सफाई रखिए, पौष्टिक खाना दीजिए और भावनात्मक सहारा दीजिए।
2: अगर दीदी कोई मजाक करे तो?

0: उसे समझाइएगा का ये बीमारी नहीं है, शरीर की प्राकृतिक प्रक्रिया है। लड़कियों को शर्म से नहीं आत्मविश्वास से जीना सिखाइए। अगर हर घर में माँ बाप खुलकर बात करेंगे तो कोई राधा फिर ना डरेगी और ना रोएगी।
1: दीदी मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ।
0: हाँ बेटा जरूर बोलो।
1: जब मुझे वो पहले हुआ था तो मुझे बहुत डर लगा था। माँ ने कहा बाहर नहीं जाना, बाहर मत खेलना, पर मैं अब जाती हूँ। मैं गंदी नहीं हूँ, मैं बस बड़ी हो रही हूँ और बड़ी होकर मैं डॉक्टर बनूंगी ताकि दूसरी लड़कियों को भी डरना ना पड़े।
2: राधा मेरी बेटी है और मुझे तुम पर गर्व है। मैं भी हर माँ को यही बताऊंगी कि बेटी को डराए नहीं समझाए।
3: अरे भाई अब तो मैं भी गांव में सबको बताऊंगा कि वो कोई शर्म की बात नहीं बल्कि जीवन का नियम है।
0: यही तो असली बदलाव है। जब एक माँ, एक बच्ची और एक काका तीनों मिलकर सोच बदल दें, तो पूरा गांव बदल जाता है। हर माँ बाप, हर काका, हर बहन, हर भाई से मेरी यह गुजारिश है, अगर आपके पास कोई बच्ची या बच्चा उम्र से पहले बदलाव से गुजर रहा है तो उन्हें डराए नहीं, उन्हें छुपाए भी नहीं, पर समझाए और अपनाए। बच्चों को ये खुलकर बताइए कि यह बदलाव प्राकृतिक है और उनका शरीर सुंदर व सामान्य है।
2: अब मैं राधा को हर बात खुले दिल से बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हर माँ अपनी बेटी से ऐसे ही बात करे, प्यार से, विश्वास से।
1: मुझे अब शर्म नहीं आती है क्योंकि अब मुझे पता है बड़ी होना कोई गलती नहीं है, ये तो एक नई शुरुआत है।
3: और हाँ अब मैं गांव में किसी भी बच्चे पर हंसूंगा नहीं।
4: दोस्तों राधा की कहानी सिर्फ एक बच्ची की नहीं उन हजारों की है जो अचानक हुए बदलाव से घबरा जाते हैं क्योंकि हमने उन्हें पहले से तैयार ही नहीं किया। अर्ली पुबर्टी यानी शरीर का जल्दी बदलना कोई डर की बात नहीं बल्कि समझ की मांग है। जब किसी बच्चे में 8-9 साल की उम्र में ही शारीरिक या मानसिक परिणाम आने लगते हैं तो सबसे पहले जरूरी है कि हम डरे नहीं बल्कि समझे और संभाले। हमारे खान पान में रसायन, हमारी भाग दौड़ की दिनचर्या में बदलाव, बच्चों का टीवी व मोबाइल पर रहना और तनाव भरा माहौल, ये सब मिलकर इस बदलाव को जल्दी ला सकते हैं। पर अगर माता पिता ध्यान दे तो यही बदलाव स्वस्थ और सामान्य बन सकता है। याद रखिए बच्चे तब नहीं डरते जब शरीर बदलता है, वे तब डरते हैं जब बड़ों की चुप्पी उन्हें अकेला कर देती है। अगर हम अपने बच्चों से प्यार से खुलकर बात करेंगे तो वो हर सवाल, हर डर हमसे साझा करेंगे और यही है असली शिक्षा। तो आइए आज से ही एक नया प्रण लें कि हर घर में समझ की बात होगी, शर्म की नहीं। हर बच्चा अपने शरीर को डर से नहीं सम्मान से देखेगा क्योंकि जब हम अपने बच्चों को समझ देंगे तो उनका बचपन नहीं छिनेगा बल्कि मजबूत और आत्मविश्वास से भरा भविष्य बनेगा। बदलाव रुक नहीं सकता पर समझ उसे सुंदर बना सकती है। श्रोताओं मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी ने आपको जरूर प्रोत्साहित किया होगा। आप हमसे फोन व पत्र के माध्यम से जुड़े रह सकते हैं, उसके लिए आप हमारा पता व नंबर नोट कीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। श्रोताओं इसी के साथ हमारा नंबर भी लिखिए, नंबर है
5: 8527449955। जी हाँ श्रोताओ नंबर एक बार दोबारा नोट कर लीजिए, 8527449955।
4: इसी के साथ आप सभी से फिर से मुलाकात होगी इसी समय इसी दिन। तब तक के लिए आप सभी को मुझ राखी की तरफ से प्यार भरा नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सबरस। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज पर। 11:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सुरमंजरी में चंद्रनाथ भट्टाचार्य का सितार वादन। राग है भीम पलासी, आपके साथ तबले पर संगत दे रहे हैं अनूप घोष जी।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सुरमंजरी में चंद्रनाथ भट्टाचार्य का सितार वादन राग भीम पलासी में। और अब समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हो रही है। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए ये चर्चा हो रही है। म्यांमार और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर बातचीत की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति का काफी व्यस्त कार्यक्रम है।
2: म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है।

0: म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने मंत्रिपरिषद के 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह का आयोजन कोलकाता के लोक भवन में हुआ। समारोह में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभागों का आवंटन बाद में घोषित किए जाने की संभावना है। सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन आज से 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। इस महीने की 18 तारीख को मतदान होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। होटल, रेस्तरों और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के व्यवसायिक LPG सिलेंडर की कीमतों में 4 प्रमुख शहरों में 42 रुपए से लेकर 53 रुपए 50 पैसे तक की वृद्धि की गई है। घरेलू उपयोग में आने वाली गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की ने JEE एडवांस्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। कुल 56,880 उम्मीदवार परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। इनमें से 10,107 छात्राएं हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। पिछले 6 वर्षों में इस योजना से लाखों रेहड़ी पटरी वालों को आसान ऋण मिला है। इसके माध्यम से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण वितरित किए गए। शहरों और कस्बों में इस पहल के माध्यम से 75,00,000 से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं। योजना के अंतर्गत अब तक 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण प्रदान किए जा चुके हैं। अफ्रीकी संघ ने इबोला से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आपातकालीन निदान, उपचार और चिकित्सा सामग्री का स्वागत किया है। संघ की स्वास्थ्य एजेंसी अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने बताया कि ये सामान युगांडा में पूर्वी क्षेत्रीय समन्वय केंद्र के माध्यम से भेजा गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज कोई बदलाव दर्ज नहीं किया गया। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 41 अंक बढ़कर 74,816 पर था, जबकि निफ्टी में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अब से थोड़ी देर पहले ये 23,551 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi and Myanmar President U Myint Aung are holding bilateral talks in New Delhi. The talks aim to further strengthen the historical and civilizational ties between the two countries. The entire gamut of relations between Myanmar and India, including security and connectivity, is likely to come up for discussions during their talks. The Myanmar president arrived in Gaya in Bihar on Saturday on a 5-day visit to India. He will also travel to Mumbai tomorrow for business and industry interactions and site visits. Our correspondent has the details.
0: The president of Myanmar will meet President Draupadi Murmu today evening at Rashtrapati Bhavan. He is also scheduled to visit to the Light and the Lotus, relics of the Awakened One exhibition at Rai Pithora Cultural Complex in the national capital. The exhibition is showcasing the sacred Piprahwar relics associated with Lord Buddha along with significant associated

आंगन। कार्यक्रम घर आंगन सुनने वाले सभी श्रोताओं को प्रतिभा का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़े हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और हमारे इंद्रप्रस्थ चैनल के लिसनर्स हमें सुन रहे हैं मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, कार्यक्रम घर आंगन हमारे और आपके बीच की एक ऐसी कड़ी है जो मजबूती से हमें आपसे बांधे हुए है, जहां हमें इंतजार रहता है आपका, आपकी प्रतिक्रियाओं का, आपके सुझावों का। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए कार्यक्रम के जरिए और अपने संदेशों के जरिए। आप हमें मेल कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी है fmgoldga@gmail.com। तो आगाज करते हैं आज के इस कार्यक्रम का इस प्यारे से सुंदर से गीत के साथ।

लता मंगेशकर की आवाज़ में भी आपने ये गीत सुना, फिल्म थी अनुपमा। और श्रोताओं, सबसे पहले बात दिन विशेष की। आज नीलम संजीवा रेड्डी जी की पुण्यतिथि है और आप भारत के जो थे छठे राष्ट्रपति थे। विदेश के पहले ऐसे राष्ट्रपति बने जिन्हें निर्विरोध चुना गया। उनका जीवन सादगी, ईमानदारी और जनसेवा का प्रतीक माना जाता है। वे आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भी रहे और लंबे समय तक भारतीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते रहे। उनका व्यक्तित्व शांत, विनम्र और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति समर्पित था। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उनके योगदान को आदरपूर्ण स्मरण करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी आपने ये गीत सुना। फिल्म थी जब प्यार किसी से होता है। श्रोताओं, विश्व भर में सभी माता पिता को सम्मानित और उनकी सराहना करने के लिए प्रतिवर्ष 1 जून को वैश्विक माता पिता दिवस मनाया जाता है, जो कि आज मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2012 में स्थापित यह दिवस बच्चों के पालन पोषण संरक्षण और सामंजस्यपूर्ण विकास में परिवारों द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देता है। यह दिन

बात पर भी प्रकाश डालता है कि बच्चों के पालन पोषण की प्राथमिक जिम्मेदारी माता पिता और देखभाल करने वालों की होती है और बच्चे के पालन पोषण के लिए एक पोषणकारी स्थिर वातावरण प्रदान करने के महत्व पर ये दिन बल देता है। और श्रोताओं, जिस तरह अभिभावक परिवार की नींव होते हैं, उसी तरह बच्चे भी परिवार की नींव को सुदृढ़ बनाने में भागीदारी निभाते हैं और उसमें भागीदार होते हैं। उनकी रक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा का ध्यान रखना भी बेहद अहम हो जाता है। और आज बच्चों के हित और उनकी रक्षा के लिए मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस। इस दिवस की शुरुआत 1949 में मॉस्को में अंतर्राष्ट्रीय महिला लोकतांत्रिक संघ की बैठक में की गई थी और इसे पहली बार 1 जून को ही मनाया गया था। ये दिन बच्चों के अधिकारों की रक्षा, बाल श्रम और शोषण को रोकने और उनके सुरक्षित व उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करने का जो संकल्प लेने का अवसर वो प्रदान करता है। बच्चे देश के भविष्य हैं, सशक्त बच्चे सुदृढ़ समाज की बुनियाद रखते हैं। तो आइए हम सभी बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और उनके अधिकारों की रक्षा हेतु संकल्प लें और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए समाज को उनके अधिकारों, स्वास्थ्य, सुरक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिशा में जागरूक करें।

बूट पॉलिश। अभी आपने इस फिल्म से गीत सुना, आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी, आशा भोंसले और साथियों की। श्रोताओं, प्रतिष्ठित पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर अब हमारे बीच नहीं रही। उन्होंने हिंदी के साथ साथ मराठी, गुजराती, असमिया, बंगाली सहित विभिन्न भाषाओं में कई गीत गाए। और दोस्तों, ख़ास तौर से 60 और 70 के दशक में उन्होंने अपनी सुरीली आवाज़ से संगीत जगत में अपनी अमिट छाप छोड़ी। सुमन कल्याणपुर

उनका जाना निश्चित तौर पर समस्त संगीत प्रेमियों के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। भारतीय फिल्म संगीत में उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। घर आंगन परिवार सुमन कल्याणपुर को नमन करता है, और आइए उनको स्मरण करते हुए सुनते हैं उन्हीं का ही ये गीत।

बात एक रात की, इस फिल्म से ये गीत सुना, आवाज़ थी सुमन कल्याणपुर की। और श्रोताओं, एक और बात करेंगे दिन विशेष की ही। आज विश्व भर में मनाया जा रहा है दुग्ध दिवस। इसका उद्देश्य वैश्विक खाद्य पदार्थ के रूप में दूध दूध के महत्व को पहचानना और पोषण, आजीविका, कृषि और सतत विकास में दुग्ध उत्पादन क्षेत्र के योगदान को उजागर करना है। प्रत्येक वर्ष 1 जून को मनाया जाने वाला विश्व दुग्ध दिवस दूध के पोषण मूल्य के बारे में जागरूकता फैलाता है और विश्व भर में खाद्य प्रणालियों को सहयोग देने वाले दुग्ध उत्पादकों के प्रयासों को सम्मानित करता है। विश्व दुग्ध दिवस 2026 का विषय महिला किसानों का सम्मान है। यह विषय दुग्ध उत्पादन में महिलाओं द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका पर केंद्रित है और कृषि, ग्रामीण आजीविका और खाद्य सुरक्षा में महिलाओं के योगदान को मान्यता देने के वैश्विक प्रयास के अनुरूप है। यह एक वैश्विक आयोजन है जिसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने 2001 में की थी। इसका उद्देश्य दैनिक पोषण, खाद्य सुरक्षा और आर्थिक विकास में दुग्ध के महत्व को पहचानने के लिए एक साझा मंच प्रदान करना है। तो श्रोताओं, आज हम उन सभी लोगों का सम्मान करते हैं जो डेयरी

प्रीति सागर की आवाज़ में अभी आपने गीत सुना, फिल्म थी मंथन। श्रोताओं, आकाशवाणी अपने 90 वर्षों का सफ़र पूरा करने जा रहा है। एक ऐसा सफ़र जो अथक रहा, जो निरंतर चलता रहा और चलता रहेगा। निरंतर विस्तार और विकास की इस यात्रा में 1990 के दशक तक आकाशवाणी ने देश के कोने कोने में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा दी थी। 2 मार्च 1990 को आकाशवाणी ने अपनी सफलता का एक ऐतिहासिक शतक पूरा किया और आंध्र प्रदेश के वारंगल में इसका 100वां स्टेशन स्थापित किया गया। महज 3 वर्षों के भीतर 1993 में आकाशवाणी ने उड़ीसा के बहरामपुर में अपना 150वां स्टेशन भी स्थापित कर लिया। ये उपलब्धि देश में रेडियो प्रसारण के तेजी से फैलते नेटवर्क का प्रतीक थी, जिसने आकाशवाणी को हर कोने तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई, जिसने आकाशवाणी को हर कोने तक पहुंचाया। और आज आकाशवाणी हम सभी के दिलों में धड़कता है। आवाज़ों को विस्तार देता आकाशवाणी आज देश के हर दिल की धड़कन है, धड़कन बन चुका है।

0: भाई भाई, अभी आपने इस फिल्म से ये गीत सुना, आवाज थी गीता दत्त की।
1: आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
2: कभी सुनहरी यादें, कभी रेडियो के वो अनमोल किस्से,
1: और कभी आवाजों के पीछे छुपे संघर्ष की कहानी। सुनिए आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रसारण कर्मियों से खास बातचीत,
2: जहां वे साझा करेंगे अपने अनुभव, यादगार पल और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के अनसुने किस्से।
1: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, हर दिन दोपहर 3:30 से 4 बजे तक, सिर्फ FM गोल्ड पर।

श्रोताओं, अब बात एक ऐसी शख्सियत की जिन्होंने साज और सुरों को जीवन में शामिल कर खुद को दी एक नई पहचान और साबित कर दिया कि जीवन चुनौतियों का पर्याय है, पर एक सकारात्मक दृष्टिकोण और रवैया आपको दे सकता है वो ताकत और हिम्मत जो आपको सफलता के शिखर पर पहुंचा सकता है। जी हाँ, बात करेंगे प्रोफेसर मंगला कपूर जी की। अब ग्वालियर घराने की एक प्रतिष्ठित हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायिका और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की पूर्व प्रोफेसर हैं। श्रोताओं, मंगला कपूर जी का जीवन इतना सहज नहीं रहा। मात्र 12 साल की उम्र में पारिवारिक विवाद के चलते उन पर एसिड अटैक कर दिया गया और यहाँ से शुरुआत हुई उस संघर्ष की जो कठिन था, जिसका दर्द असहनीय था। उन्होंने 6 साल अस्पतालों में बिताए और 37 सर्जरी करवाई। आघात शारीरिक और मानसिक दोनों ही था। समाज की अवहेलना भी कहीं ना कहीं मानसिक कुठाराघात कर रही थी, पर मंगला जी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपनी शिक्षा और संगीत के प्रति अपने जुनून को नहीं छोड़ा और सुरों को साधना शुरू किया। पीएचडी की उपाधि प्राप्त की और बीएचयू में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हो गई। अब जीवन संगीत, सुर साधना, राग आलाप के साथ चलने लगा। उन्होंने दुर्लभ भारतीय रागों का संरक्षण करना शुरू किया और उनके इस काम को सराहना मिली और सम्मान भी। इस उपलब्धि ने उन्हें काशी की लता की उपाधि दिलाई। उन्होंने संगीत को केवल आत्मसंतुष्टि और प्रस्तुति का माध्यम नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन का साधन भी बनाया। मंगला कपूर जी बच्चों को मुफ्त संगीत शिक्षा प्रदान करती हैं और सुनिश्चित करती हैं कि बच्चों की संगीत सीखने के मार्ग में कोई रुकावट ना आए। उनकी असाधारण दृढ़ता, साहित्यिक उपलब्धियां और संगीत क्षेत्र में योगदान को सराहाया गया और उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। मंगला जी का जीवन श्रोताओं एक मिसाल है और हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है कि जीवन में चुनौतियां आएंगी, पर उन चुनौतियों का सामना करने वाला व्यक्ति ही आसमान की बुलंदियों को छूता है, जैसा कि मंगला जी ने किया। आप वाकई हमारे लिए एक प्रेरणा हैं।

मन्ना डे और आशा भोसले की आवाज़ में अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म थी लाल पत्थर। श्रोताओं, हमारी संस्कृति और परंपराओं में भगवान की पूजा, उनके विग्रह की पूजा की जाती है। हम अपने ईष्ट की प्रतिमा को घर में, अपने मंदिर में प्रतिष्ठित करते हैं, उन्हें एक निश्चित स्थान देते हैं। पर इन प्रतिमाओं के खंडित होने पर हम इन्हें जल प्रवाहित या किसी पेड़ के नीचे या फिर मंदिर में अपने ईष्ट को छोड़कर आ जाते हैं, जो कहीं ना कहीं ठीक बात नहीं है। लेकिन दिल्ली सरकार ने अब एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है कि अब खंडित मूर्तियों को आपको इधर उधर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, और मूर्तियों को जो है, अब इन मूर्तियों को रिसाइकिल किया जाएगा, और जिसके लिए विशेष सेंटर बनाने की घोषणा की है। श्रोताओं, इन सेंटर्स को मुख्य रूप से मंदिरों, नदियों और नहरों के पास खोलने की योजना बनाई जा रही है, ताकि हम आसानी से अपनी मूर्तियों को वहाँ पर जमा कर सकें। अब भविष्य में आपको अपने घर की जो मूर्तियां हैं, जो विग्रह टूट गए हैं, वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उनको इधर उधर छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये बता दें कि इस योजना के अंतर्गत क्या क्या होने वाला है। जैसा कि बताया कि दिल्ली में अलग अलग जगहों पर विशेष कलेक्शन सेंटर बनाए जाएंगे, और लोग अपनी मूर्तियों को वहाँ पर जमा कर सकेंगे। इन मूर्तियों को अब आप इधर उधर फेंकेंगे नहीं, तो जहाँ पर आप इन्हें जमा करेंगे, जिस संग्रह सेंटर में आप इनको जमा करेंगे, वहाँ पर वैज्ञानिक तरीके से रिसाइकिल करके इन मूर्तियों को उपयोगी चीज़ों में बदला जाएगा। सरकार आम जनता से कलेक्शन सेंटर के लिए जगह और बेहतर सुझावों पर भी राय ले रही है, तो अगर आपके पास भी कोई सुझाव है तो आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने सुझाव वहाँ पर दे सकते हैं, दर्ज करा सकते हैं।

आशा भोंसले की आवाज़ में अभी आपने गीत सुना, फिल्म थी काजल। और श्रोताओं, कार्यक्रम घर आंगन है। हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आप पहुँचे हैं और हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर देंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके सुझाव, आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और आपको हमारा ईमेल आईडी मालूम है, एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ, हमारा ईमेल आईडी जो कि है fmgoldga@gmail.com। जी हाँ, fmgoldga@gmail.com। और श्रोताओं, अब बात कुछ मौसम की, गर्मी के मौसम से जुड़ी हुई और हमारे खान पान से जुड़ी हुई, क्योंकि गर्मी के मौसम में जो खान पान होता है उसका बहुत हमें ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि गर्मी के मौसम में हम गरिष्ठ भोजन यानी कि जो भारी खाना होता है उसको खाने से बचते हैं और हमें ज़रूरत होती है हल्के पौष्टिक भोजन की। स्प्राउट्स यानी अंकुरित अनाज एक बेहतर विकल्प होता है इस मौसम के लिए, क्योंकि सुबह सुबह अगर आपको नाश्ते में स्प्राउट्स का एक बॉल मिल जाए तो वो एक कंप्लीट मील भी होता है और जो आपको पूरा दिन एनर्जी से, एक ऊर्जा से भर के रखता है। और साथ ही साथ ये पोषण से भरपूर तो होते ही हैं जो अंकुरित अनाज होते हैं। तो इनकी इस खासियत को देखते हुए अंकुरित अनाज को अगर सुपर फूड कहा जाए तो वो कोई दोराहे वाली बात नहीं होगी। और कहा भी जाता है कि स्प्राउट्स खाना जो है वो सेहत के लिए काफ़ी अच्छा है। सबसे खास बात ये कि इनमें जो प्रोटीन होता है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, साथ ही साथ मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और फाइबर भी होते हैं इन अंकुरित अनाजों में, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। और एक उम्र के साथ हमें अपने डाइट में, अपने भोजन में प्रोटीन की बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि प्रोटीन जो है वो जो हमारा वियर टीयर होता है कोशिकाओं का, यानी कि जो हमारी कोशिकाएँ बनती बिगड़ती हैं उनको रीजनरेट करने में, उनके पुनर्निर्माण में बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं। अंकुरित अनाज में आप मूंग दाल को अंकुरित करके खा सकते हैं, मोठ दाल को खा सकते हैं, चना, काला चना भी बहुत अच्छा प्रोटीन का स्रोत होता है, क्योंकि इनमें हाई लेवल का फाइबर होता है जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। और साथ ही साथ स्प्राउट्स में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं, यानी कि हमारी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता जो है वो बढ़ती है। और सबसे खास बात यह है श्रोताओं कि वेट लॉस की इच्छा रखने वाले लोग इसे अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कैलोरीज कम होती है। जैसा हम बार बार बता रहे हैं कि फाइबर से भरे हुए होते हैं, तो वेट लॉस जर्नी में आपके लिए बहुत ज़्यादा सहायता करने में ये काम आ सकते हैं। और क्योंकि फाइबर आप जितना खाएंगे तो आपको भूख कम लगेगी और आपका वजन कम होता जाएगा। और ज़रूरी बात यह कि अंकुरित अनाज ब्लड शुगर लेवल को सही रखने में भी मदद करते हैं। अंकुरित अनाज में प्रोटीन तो है ही है, साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट भी है जो दिन भर शरीर में एनर्जी बनाए रखते हैं। तो देखा है ना कमाल कि ये अंकुरित अनाज, तो आज से ही अपनी डाइट में अंकुरित अनाज को जगह दें और पाएं एक बेहतर सेहत।

ये रांझा फिल्म से आप ये गीत सुन रहे हैं। आवाज़ है लता मंगेशकर की। और श्रोताओं, वक्त हो गया है मेरे चलने का, तो मुझे दीजिए इजाज़त और इस वादे के साथ फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हो रही है। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए ये चर्चा हो रही है। म्यांमार और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर बातचीत की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति का काफी व्यस्त कार्यक्रम है।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में आयोजित समारोह में 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीय

0: गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभाग बाद में आवंटित किए जाएंगे। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 सीट और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। 18 जून को मतदान होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। पिछले 6 वर्षों में इस योजना से लाखों रेहड़ी पटरी वालों को आसान ऋण मिला है। इसके माध्यम से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण वितरित किए गए हैं। शहरों और कस्बों में इस पहल के माध्यम से 75,00,000 से अधिक लोग लाभान्वित हुए। योजना के अंतर्गत अब तक 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण प्रदान किए गए हैं। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के व्यावसायिक LPG सिलेंडर की कीमतों में 4 प्रमुख शहरों में 42 रुपए से लेकर 53.50 रुपए तक की वृद्धि की गई है। घरेलू उपयोग में आने वाली गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की ने JEE एडवांस्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। कुल 56,880 उम्मीदवार परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। इनमें से 10,107 छात्राएं हैं। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगाने वाले नियमों को आज से लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत कम से कम 80 लाख उपयोगकर्ताओं वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आयु सत्यापन प्रणाली लागू करनी होगी। बॉम्बे एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक दोपहर तक 84 अंक गिरकर 74,692 पर और निफ्टी 32 अंक गिरकर 23,516 पर आ गया। बिजली, पूंजीगत वस्तुएं, उपयोगिता और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के शेयरों में भी भारी गिरावट देखी गई। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार IPL का खिताब जीता। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi and Myanmar President Aung San Suu Kyi are holding bilateral talks in New Delhi. The talks aim to further strengthen the historical and civilizational ties between the two countries. The entire gamut of relations between Myanmar and India, including security and connectivity, is likely to come up for discussions during their talks. The Myanmar President arrived in Gaya in Bihar on Saturday on a 5-day visit to India. He will also travel to Mumbai tomorrow for business and industry interactions and site visits. Our correspondent has the details.
2: The President of Myanmar will meet President Draupadi Murmu today evening at Rashtrapati Bhavan. He is also scheduled to visit to the Light and the Lotus, relics of the Awakened One exhibition at Rai Pithora Cultural Complex in the National Capital. The exhibition is showcasing the sacred Piprahava relics associated with Lord Buddha along with significant associated antiquities. The official visit of the President of Myanmar to India is expected to further strengthen and deepen the multifaceted relations between the two countries. With Suparna, Anupam Mishra, Akashwani News, Delhi.
1: The India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA, has come into force today. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said the CEPA will deepen the economic and strategic ties between the two nations.

जी हाँ श्रोताओं, ये फिल्म थी 1991 में विशेष फिल्म के बैनर तले बनी रोमांटिक एक्शन थ्रिलर फिल्म सड़क। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था मुकेश भट्ट ने, निर्देशित किया था महेश भट्ट ने और

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रेस चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। और आज की जो हमारी फिल्म है वो फिल्म का नाम है सड़क, और मैं आपके साथ हूँ आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। श्रोताओं, पूजा भट्ट, संजय दत्त और सदाशिव अमरापुरकर इस फिल्म में लीड रोल में नजर आए थे। साथ ही कलाकारों में थे दीपक तिजोरी, नीलिमा अजीम, अवतार गिल, सोनी राजदान, पंकज धीर और मुश्ताक खान। वैसे कम ही लोग जानते हैं कि महेश भट्ट फिल्म सड़क के लिए जैकी श्रॉफ के साथ बनाना चाहते थे, लेकिन बात नहीं बन पाई और संजय ने लीड रोल प्ले किया। सड़क फिल्म के समय पूजा भट्ट महज 18 साल की थी और संजय दत्त के साथ पर्दे पर उनकी जो केमिस्ट्री थी खूब लोगों ने पसंद किया और उसे आज भी याद किया जाता है।

श्रोताओं, ये सॉन्ग तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। ये सॉन्ग की जो धुन है वो मुसरत नज़ीर की गज़ल चले तो कट ही जाएगा सफ़र आहिस्ता आहिस्ता से प्रेरित थी। तो श्रोताओं, अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फिल्म के खलनायक की। पहले खलनायक महारानी की भूमिका के लिए निर्देशक शरद सक्सेना को कास्ट करने वाले थे, लेकिन बाद में वो रोल सदाशिव अमरापुरकर को मिली। सदाशिव ने फिल्म में ट्रांसजेंडर का नेगेटिव किरदार प्ले किया था। इस रोल में उन्होंने ऐसी जान फूकी थी कि एक नया ट्रेंड ही सेट कर दिया था। सड़क की रिलीज के बाद सबसे ज़्यादा जिस किरदार की चर्चा हुई थी वो था महारानी का रोल, और उन्हें अपने रोल के लिए बेस्ट विलेन का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। तो चलिए चलते हैं।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। और आज की जो फिल्म है वो है सड़क, और मैं आपके साथ हूँ आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। तो श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं सड़क फिल्म की कहानी की ओर। सड़क एक टैक्सी ड्राइवर रवि की कहानी है, जो अपनी बहन के खोने के दर्द से उबर नहीं पाया है। दरअसल उसकी प्यारी बहन को धोखे से वैश्यालय में धकेल दिया गया था, जहां उनकी दर्दनाक मौत रवि के आंखों के सामने होती है। ये सदमा उसे भीतर तक तोड़ देता है, जिस वजह से उसे इंसोमिया की प्रॉब्लम हो जाती है। एक दिन रवि की मुलाकात पूजा से होती है, जिसे जबरदस्ती एक वैश्यालय में लाया गया है, जिसे महारानी नाम की निर्दयी ट्रांसजेंडर चलाती है। रवि को पूजा में एक उम्मीद की किरण दिखती है और उसे उससे सच्चा प्यार हो जाता है। रवि पूजा को इस नरक से आज़ाद करा

की ठान लेता है। अपने दोस्तों की मदद से वो पूजा को बचाने की कोशिश करता है और कई मुश्किलों का सामना भी करता है, यहाँ तक कि अपनी जान भी दांव पर लगा देता है। ये फिल्म प्यार, हिम्मत और इंसानियत की लड़ाई की कहानी है, जिसमें एक आम इंसान अंधेरे समाज के खिलाफ खड़ा होता है। और इस फिल्म को अगर आपने नहीं देखी अभी तक, तो इस फिल्म को आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस फिल्म को देखने के बाद आपको महसूस होगा कि हर फिल्म ख़त्म होने के बाद उसके जो एक्टर हैं या एक्ट्रेस की बातें होती हैं, लेकिन ये फिल्म ख़त्म होने के बाद, इस फिल्म को देखने के बाद आप बातें करेंगे इसके खलनायक की। तो चलिए सुनते हैं इस फिल्म का एक और गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और इस फिल्म का नाम है सड़क। और हमारे पास आपके बहुत सारे मेल आ गए हैं, उसे हम फटाफट पढ़ लेते हैं। ये मेल आया है नीतीश कुमार, तनुजा, ईशांत, लखन लाल और सावित्री बाई का, छत्तीसगढ़ से। और ये हैं पिपरिया जिला कबीरधाम से कमलकांत, दीपा गुप्ता, रिमझिम गुप्ता, नवापारा से दीपक गुप्ता, अंकु गुप्ता और राघव गुप्ता। और ये है डॉली बलोच छत्तीसगढ़ से, डोडी लाहौरा बलोच छत्तीसगढ़ से, देवशंकर तामोरिया, अजय तामोरिया और मास्टर अल कबीर का। और ये है हीरामणि वर्मा धंतरे की भाटापारा से, और ये लिखते हैं कि फिल्म से जुड़ी रोचक बातें हम आपको बता रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बेहतरीन गीत सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आकाशवाणी के साथ जुड़ने के लिए। वीरमगांव गुजरात से अजीत भावसागर, प्रमिला बहन भावसागर और प्रवीण बानो। और ये हैं हमारे साथ जुड़े, ये हैं सुनील पाठक जी, और इन्होंने भी लिखा है कि कार्यक्रम ये सुन रहे हैं, इन्हें पसंद आ रहा है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, फलीजिकाबाद खेड़ा परिवार, भूषण खेड़ा, विष्णु और लाडी खेड़ा, ये हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ये हैं वडिंगा पंजाब से पिंटू, पिंकी और आरती, और इनके साथ ये हैं हमारे ताज मोहम्मद अंसारी, आज़ाद लक्सर हरिद्वार से महराज जहां और गुलाम साबिर राही, और गांव नथाना पंजाब से हरिजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता, गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन शालीमार बाग से, अशोक कुमार सहगल नाहरकोरा जिला राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से, बबलू साहू, जमुना देवी, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, बेबी आराध्या साहू। और ये है सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से। और ये है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा और पूजा परिहार। और ये भी लिखते हैं, बड़ा अच्छा सा इन्होंने मेल लिखा है, लेकिन समय की कमी होने के कारण बस मैं इतना बता दूँ, इन्होंने भी कार्यक्रम सुन रहे हैं और इनको भी कार्यक्रम बहुत पसंद आ रहा है। और ये है ग्राम पंचायत कालेगांव जफराबाद से सुधाकर, प्रशांत, संचित, परमेश, प्रणाली और सर्वत। और छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इस्ताक, मोहम्मद अस्फाक, अफरीन, खतीजा, नीलोफर और मोहम्मद। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का आखिरी पड़ाव हम आगे बढ़ाते हैं और हम आपको बताते हैं, इस फिल्म को सुपरहिट बनाने में स्टार कास्ट की शानदार एक्टिंग के साथ साथ फिल्म के गानों का भी बड़ा हाथ था। नदीम श्रवण की फेमस जोड़ी ने इस फिल्म में संगीत दिया था और गीत के बोल लिखे थे समीर और रानी मलिक और सुरेंद्र साठी ने, और इस इन गीतों को अपनी आवाज़ दिया था कुमार शानू, अनुराधा पौडवाल, अभिजीत भट्टाचार्य, मनहर उदास, बाबा मेहता, देवाशीष दासगुप्ता और जुनैद अख्तर ने। सड़क की बम्पर सफलता को देखते हुए इसे तमिल में अपू नाम से बनाई गई और फिल्म का सीक्वल सड़क 2 2020 में रिलीज हुआ था, लेकिन ये फ्लॉप रही। सड़क फिल्म को लगभग 2.70 करोड़ के बजट में बनाया गया था और इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 10 करोड़ से भी ज़्यादा बिजनेस किया और इस अपनी सफलता का शानदार इतिहास रचा। तो चलिए चलते हैं और सुनते हैं इस प्रोग्राम का आखिरी गीत।

हमारे साथ कुछ और कलाकार भी जुड़े हैं, उनका नाम भी हम फटाफट ले लेते हैं। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश, पूनम गगनेजा और मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा एक ही फिल्म सड़क सुन रहे हैं, और श्रीगंगानगर राजस्थान से। और ये हैं सुरेश यादव, अनिता यादव, सोनल प्रसाद यादव, और इनके साथ है चिरमरी कुरासिया कलारी से इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह और राम सहो।

श्रोताओं हमारे साथ जुड़े हुए हैं पोटली कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक, और यह है राजू मेघलानी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देवनारायण साहू, योगिता, गीतिका, चंचल, रानी साहू, उमाबाई, गंगाराम साहू, ये सब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ से। तो श्रोताओं इसी सड़क फिल्म के इसी गीत के साथ ही अपनी दोस्त राखी बैनर्जी को अनुमति दीजिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिएगा गीत, गुनगुनाते रहिएगा संगीत सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी के साथ।

0: हिफाजत की है तुम्हारे।
1: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे एक ही फिल्म से कार्यक्रम। आज की फिल्म थी सड़क। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। दिन के 1:40 होने वाले हैं। आइए सुनते हैं समाचार।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे नाल मैं सरबजीत कौर। पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते म्यांमार दे राष्ट्रपति ओ मिन ऑनलाइन दरमियान नवी दिल्ली विच दवली गलबात। 10 राज्यां तों राज्यसभा दियां 24 सीटां लई 2 साल च होण वालियां चोणां वास्ते नोटिफिकेशन अज जारी कर दित्ता गया है। पश्चिम बंगाल कैबिनेट दा पसार 35 नवे मंत्रियां ने सौ चुकी। सुप्रीम कोर्ट विच 5 नवे जजां दी नियुक्ति। चीफ जस्टिस समेत जजां दी कुल गिणती सहमती हुई। भारत ओमान व्यापक आर्थिक भाईवाली समझौता अज तो लागू हो गया है। ते फुटबॉल विच भारत औरतां दी सैफ चैंपियनशिप 2026 दे सेमीफाइनल विच पहुंच गया है। हुण खबरां विस्थार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अते म्यांमार दे राष्ट्रपति ओ मिन ऑनलाइन दरमियान नवी दिल्ली विच दवली मीटिंग जारी है। इन्हां चर्चावां दा उद्देश दोवां नेतावां विचकार इतिहासक ते सभ्यता दे संबंधां नूं होर मजबूत करना है। चर्चावां विच सुरक्षा ते संपर्क समेत म्यांमार ते भारत विचकार संबंधां दे सारे पहलुआं नूं शामिल करन दी उम्मीद है। म्यांमार दे राष्ट्रपति शनिचरवार नूं भारत दे 5 दिना दौरे ते बिहार ते गया पहुंचे। उन्हां दे नाल इक उच्च पदरी वफद भी है, जिस विच कई कैबिनेट मंत्री, सीनियर अधिकारी ते व्यापारक आगू शामिल ने। इह उन्हां दी भारत दी पहली यात्रा है। म्यांमार दे राष्ट्रपति कल मुंबई

लेगा, बरामद वधाएगा ते निवेश विच वादा करेगा। श्री गोयल ने कहा कि इस नाल रोजगार विच भी वादा होएगा ते विद्यार्थियां, कामियां, औरतां, किसानां, मछेरियां ते सूखम, छोटे ते दरमियाने उद्यमां नूं महत्वपूर्ण तौर ते लाभ मिलेगा। भारत ते ओमान विशेष आर्थिक ते सभ्याचारक संबंध सांझे करदे ने। ओमान विच करीब 7 लाख भारती रहिंदे ने। श्री गोयल ने कहा कि ओमान सालाना करीब 2 अरब डॉलर दी

0: ड्यूटी मुक्त बाजार पहुंच हासिल हो गई है। इस समझौते तो पहला भारत दियां बरामदां दा सिर्फ 15.3% ही ओमान ड्यूटी मुक्त पहुंच सकता सी। देश भर विच होटलां रेस्टोरेंटां ते होर कारोबारां वल्लों वरते जाण वाले 19 किलोग्राम व्यापारक एलपीजी सिलेंडर दियां कीमतां विच वाधा कीता गया। हालांकि घरेलू वरतों विच आउण वाली घरेलू रसोई गैस दियां कीमतां विच कोई बदलाव नहीं होया है। दिल्ली विच व्यापारक एलपीजी सिलेंडर की कीमत 42 रूपये वधा दिती गई है ते हुण इसकी कीमत 3,113.50 रूपये होगी। मुंबई विच इसकी कीमत 43.5 रूपये वधा दिती गई है ते हुण व्यापारक सिलेंडर की कीमत 3,067.50 रूपये होगी। कोलकाता विच व्यापारक सिलेंडर की कीमत 53.5 रूपये दे वाधे नाल 3,255.50 रूपये होगी। चेन्नई विच व्यापारक सिलेंडर दी कीमत 42 रूपये का वादा किया गया ते हुण इसकी कीमत 3,283 रूपये होगी। व्यापारक एलपीजी दी कीमत विच ताजा वाधा अमरीका ते ईरान विचकार टकराव दरमियान पश्चिमी एशिया विच तनाव वधण करके ऊर्जा दी आलमी लागतां विच वाधे दे पिछोकड विच होया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT रुड़की ने JEE एडवांस परीक्षा के नतीजे ऐलान दिते ने। कुल 56,880 उम्मीदवार ने परीक्षा पास की थी जिन्हां विच 10,107 विद्यार्थी शामिल ने। फुटबाल विच भारत औरतों की सैफ चैंपियनशिप 2026 दे सेमीफाइनल विच पहुंच गया है। भारतीय टीम ने कल गोवा के मारकाओ के पंडित जवाहर लाल नहरू स्टेडियम विच मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश नूं 3-0 नाल हरा के चैंपियनशिप दे ग्रुप बी विच सिखर ते थां बना ली। प्यारी जाक्षा लिंडा कॉम ते मालविका पी ने एक एक गोल किया। भारत हुण बुधवार नूं सेमीफाइनल विच ग्रुप ए दे रनर अप भूटान खिलाफ मैदान च उतरेगा। दूजे पासे बांग्लादेश दूजे सेमीफाइनल विच ग्रुप ए दे जेतू नेपाल खिलाफ खेडेगा। आखिर च खास खबरां इक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन लाओ लाइन दरमियान नवी दिल्ली विच दवली गलबात। 10 राज्यों तो राज्यसभा दियां 24 सीटां लई 2 साल च होण वालियां चोणां वास्ते नोटिफिकेशन अज जारी कर दिता गया है। पश्चिम बंगाल कैबिनेट दा पसार 35 नवे मंत्रियां ने सौं चुकी। सुप्रीम कोर्ट विच 5 नवे जजां दी नियुक्ति। चीफ जस्टिस समेत जजां दी कुल गिणती 37 हुई। भारत ओमान व्यापक आर्थिक भाईवाली समझौता अज तो लागू। इस नाल ही साडा ए बुलेटिन खत्म हुंदा है। साडा अगला प्रादेशिक बुलेटिन शाम 6:20 होएगा। नमस्कार।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और म्यांमार के सदर ऊ मिन आउं लाइन ने नई दिल्ली में दोतरफा बातचीत की है। भारत और ओमान के दरमियान जामे इक्तसादी साझेदारी समझौता नाफिज हो गया है। मगरबी बंगाल के वजीर आला शोभेंदु अधिकारी ने 35 नए वजीरों को शामिल करके काबीना में तौसी की है। मई के महीने में GST की मजमुई वसूलियाबी बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई, जिसमें बरामदात से होने वाली वसूलियाबी में इजाफे का अहम रोल है। PM स्वनिधि स्कीम को 6 साल मुकम्मल हो गए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मस्कूरा स्कीम से रेहड़ी पटरी वालों के लिए तरक्की के नए मौके दस्तियाब हुए हैं। अमरीका ने ईरान में रडार और ड्रोन कंट्रोल मराकज पर हमले किए हैं, जिससे मगरबी एशिया खत्ते में कशीदगी फिर से बढ़ गई है। और हांगकांग में 20 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों की एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने सोने के 10 तमगों समेत 19 तमगे जीते हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और म्यांमार के सदर ऊ मिन आउं लाइन ने नई दिल्ली में दोतरफा बातचीत की है। इस बातचीत का मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी और तहजीबी राबतों को मजीद मुस्तहकम करना है। भारत और म्यांमार के दरमियान वसीतर शोबों में अच्छे ताल्लुकात हैं, जिनमें सिक्योरिटी और कनेक्टिविटी शामिल हैं। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने कल शाम नई दिल्ली में म्यांमार के सदर से मुलाकात की थी। म्यांमार के सदर ने म्यांमार भारत कारोबारी फोरम से भी खिताब किया था। वो भारत के 5 रोजा दौरे के तहत हफ्ते के रोज बिहार के गया पहुंचे थे। म्यांमार के सदर कल मुंबई भी जाएंगे, जहां वो कारोबारियों और सनअतकारों से बातचीत करेंगे और मुख्तलिफ मकामात देखने जाएंगे। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: म्यांमार के सदर आज शाम राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। उनका कौमी राजधानी के राय पिथौरा सकाफती कॉम्प्लेक्स में एक नुमाइश देखने का भी प्रोग्राम है।

0: नुमाइश में गौतम बुद्ध से वाबस्ता पवित्र पिपरावा बाकियात को रखा गया है, और उसके साथ साथ इससे वाबस्ता कुछ कदीमी चीज़ें भी नुमाइश के लिए रखी गई हैं। म्यांमार भारत की पड़ोस मुकदम मशरकी मुल्कों से रबते बढ़ाने और महासागर पॉलिसियों के सिलसिले में अहम मकाम रखता है। सदर ऊ मिन ऑंगलिंग के भारत के दौरे से दोनों मुल्कों के दरमियान कसीर रुखी ताल्लुकात के मजीद मुस्तहकम होने का इम्कान है। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद आजम खान।
1: भारत ओमान जामे इकतसादी शराकत दारी माहिदा सेपा आज से नाफिज हो गया है। कॉमर्स और तजारत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि यह माहिदा दोनों मुल्कों के दरमियान इकतसादी और कलीदी राबतों को मुस्तहकम करेगा। एक कौमी रोजनामे में शाये एक मजमून में जनाब गोयल ने कहा कि इस माहिदे से खासतौर से मुल्क के तलबा, दस्तकारों, खवातीन, किसानों, माहीगीरों और MSME इदारों को फायदा होगा और इसके तहत नए बाजारों तक रसाई मुमकिन हो पाएगी, बरामदात को फरोग हासिल होगा, सरमायाकारी रागिब होगी और रोजगार के मौके पैदा होने में तेजी आएगी। भारत के ओमान के साथ गहरे इकतसादी और अवाम से अवाम के दरमियान रबते हैं, जहां तकरीबन 7 लाख भारतीय आबाद हैं। मरकजी वजीर ने कहा कि ओमान में आबाद भारतीय शहरी सालाना $2 अरब की रकम अपने घरों को भेजते हैं, जबकि 6,000 से ज्यादा भारतीय कंपनियां वहां काम कर रही हैं। 10 रियासतों में राज्यसभा की 24 सीटों के चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हर 2 साल बाद होने वाले इस चुनाव के तहत पोलिंग इस महीने की 18 तारीख को होगी। इनमें आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में 1-1 सीट शामिल है। साबिक वजीर आजम और JDS के रहनुमा HD देवेगौड़ा, मरकजी वजीर और BJP के लीडर जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह, राज्यसभा में ऑपोजिशन के रहनुमा और कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे उन अरकान में शामिल हैं जिनकी रुकनियत की मुद्दत इस महीने मुकम्मल हो रही है। होटलों, रेस्तरां और दीगर कारोबारी इदारों में इस्तेमाल होने वाले 19 किलोग्राम के कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में 4 बड़े शहरों में 42 रुपये से लेकर 53 रुपये 50 पैसे का इजाफा किया गया है। घरेलू LPG सिलेंडर की शरहों में कोई तब्दीली नहीं की गई है। दिल्ली में कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में 42 रुपये का इजाफा किया गया है और अब ये 3,113 रुपये 50 पैसे का मिलेगा। मुंबई में इसकी कीमत 43 रुपये 50 पैसे बढ़ गई है और वहां कमर्शियल सिलेंडर के लिए 3,067 रुपये 50 पैसे देने होंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मगरबी बंगाल में वजीर आला शुभेंदु अधिकारी की सरबराही वाली काबीना ने 35 नए वजीरों को शामिल करके तौसी की गई है। रियासत के गवर्नर RN रवि ने कोलकाता में लोकभवन में वजारती कौंसिल के नए अरकान को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। स्वपन दास गुप्ता, अर्जुन सिंह, तपस रॉय और शंकर घोष उन अरकान असेंबली में शामिल हैं जिन्हें काबीना वजीर की हैसियत से हलफ दिलाया गया है। नए वजीर रियासत के मुख्तलिफ खित्तों की नुमाइंदगी करते हैं और इसमें तजुर्बेकार अरकान असेंबली के साथ साथ पहली बार वजीर का ओहदा संभालने वाले अरकान भी शामिल हैं। सामान और खिदमात टैक्स GST की मजमूई वसूलियाबी में गुज़श्ता महीने 3.2% का इजाफा हुआ और ये 1,94,000 करोड़ रुपये से तजावज कर गई। सामान और खिदमात की फराहमी में बेहतरी, नीज दरामदाज से होने वाली वसूलियाबी लगातार बढ़ने की वजह से ऐसा हुआ है। पिछले साल मई के महीने में GST की मजमूई वसूलियाबी 1,88,000 करोड़ रुपये थी। रेहड़ी पटरी वालों से मुतालिक प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि स्कीम को आज 6 साल मुकम्मल हो गए हैं। मस्कूरा स्कीम से पिछले 6 साल में लाखों रेहड़ी पटरी वालों को कर्ज हासिल करने और अपनी रोजी रोटी को बरकरार रखने में सहूलत हुई है। मस्कूरा स्कीम की सताइश करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आसान कर्जों की फराहमी, माली शमूलियत और तरक्की के लिए नए मौकों को यकीनी बनाकर PM स्वनिधि स्कीम से बेशुमार रेहड़ी पटरी वालों की जिंदगी बदल गई है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मस्कूरा स्कीम के तहत सूद में सब्सिडी और कर्ज गारंटी मदद के साथ 3 मरहलों में 15,000, 25,000 और 50,000 रुपए के कर्जे फराहम किए जाते हैं। इस पहल से मुख्तलिफ शहरों और कस्बों में 75 लाख से ज्यादा मुतालिक अफराद को फायदा हुआ है। मस्कूरा स्कीम के तहत 17,800 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے قرضے فراہم کیے گئے ہیں۔ اسکیم کے تحت 55 لاکھ سے زیادہ افراد ڈیجیٹل طریقے سے اس میں شامل ہوئے ہیں۔ مجموعی طور پر مستفید ہونے والے افراد نے 841 کروڑ سے زیادہ ڈیجیٹل لین دین

0: किए हैं, जिनकी मालियत तकरीबन 8,96,000 करोड़ रुपए है। पीएम स्वनिधि स्कीम के तहत मुतालिका अफराद को डिजिटल कैश बैक तरगीबात और सूद में रियायत के जरिए तकरीबन 800 करोड़ रुपए भी मौसूल हुए हैं। स्कीम की मुद्दत मार्च 2030 तक के लिए बढ़ा दी गई है। दिल्ली से सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए शमीम इरफान।
1: अमरीका ने खत्म हफ्ता पर ईरान के रडार और ड्रोन कंट्रोल मराकज पर हमले किए हैं, जिससे मगरबी एशिया खत्ते में फिर से कशीदगी बढ़ गई है। बैन अल-अक़वामी आबी हदूद के ऊपर परवाज करने वाले अमरीका के MQ-1 प्रीडेटर ड्रोन को ईरान की जानिब से मार गिराए जाने के बाद अमरीका ने यह फौजी कार्रवाई की है। ईरान ने जवाबी हमला करने की बात कबूल की है और उधर कुवैत ने कहा है कि उसके फिजाई दिफाई निज़ाम के जरिए मिजाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम बनाया जा रहा है। हालिया हमलों से जंगबंदी के कमजोर होने का इशारा मिलता है। कशीदगी में लगातार इजाफा हो रहा है क्योंकि इसराइल ने लितानी दरिया से भी आगे तक लिबनान में अपना कब्जा बढ़ा दिया है। हांगकांग में 20 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों की एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने सोने के 10 तमगों समेत 19 तमगे जीते हैं। इस तरह भारत ने तारीख साज कारनामा अंजाम दिया और मजमू एतबार से दूसरे मकाम पर रहा। भारत को चांदी के 5 और कांसे के 4 तमगे भी मिले। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 19 तमगे जीतने पर भारतीय खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी है। और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और म्यांमार के सदर ऊ मिन आउंग लाइन ने नई दिल्ली में दोतरफा बातचीत की है। भारत और ओमान के दरमियान जामे इकतसादी साझेदारी समझौता नाफिज हो गया है। मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने 35 नए वजीरों को शामिल करके काबीना में तौसी की है। मई के महीने में GST की मजमूई वसूलियाबी बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई, जिसमें दरामदाज से होने वाली वसूलियाबी में इजाफे का अहम रोल है। पीएम स्वनिधि स्कीम को 6 साल मुकम्मल हो गए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मस्कूरा स्कीम से रेहड़ी पटरी वालों के लिए तरक्की के नए मौके दस्तियाब हुए हैं और हांगकांग में 20 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों की एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने सोने के 10 तमगों समेत 19 तमगे जीते हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: 180 candidates have qualified, including 10,107 females. Shubham Kumar from the IIT Delhi zone secured the first rank. On to sports. In the 22nd Asian Under-20 Athletics Championships, India delivered a historic campaign, finishing second in the standings with 19 medals comprising 10 gold, 5 silver and 4 bronze in Hong Kong. The runner-up finish marked India's best ever performance at the Continental Track and Field Championships outside home soil. A total of 48 Indian athletes, 30 men and 18 women competed in the tournament held from the 28th to the 31st of last month. The championships are serving as a qualifying event for the World Under-20 Athletics Championships scheduled to be held at Oregon in the United States in August. Prime Minister Narendra Modi has congratulated the Indian contingent of Asian Under-20 Athletics Championships on winning 19 medals. In a social media post, Mr. Modi said this outstanding performance reflects the determination and excellence of India's young athletes. In the Under-17 Asian Wrestling Championships, India's women grapplers delivered a strong performance, winning a total of 10 medals, including 2 gold, 3 silver and 5 bronze at Da Nang in Vietnam. Leading the charge, Deeksha in the 43-kilogram category and Garima in 73-kilogram category clinched gold medals. The Intermeteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over Gujarat, Kerala, Mahe, Lakshadweep, Nagaland, Manipur, Tripura, Odisha, Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry and West Madhya Pradesh today. The Met Department has predicted thunderstorms and lightning over Delhi, Haryana, Chandigarh, Himachal Pradesh, Bihar, Jharkhand, Uttar Pradesh, Uttarakhand and West Rajasthan till tomorrow. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi and Myanmar President U May Aung Lying hold bilateral talks in New Delhi. India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement comes into force, gives Indian exporters duty-free market access in Oman to 98% of tariff lines. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari expands cabinet with induction of 35 new ministers. Gross GST collection rises to over 1,94,000 crore rupees in May. PM Swanidhi scheme completes 6 years. Prime Minister Narendra Modi says scheme opened new growth opportunities for street vendors. And India ends impressive campaign at Asian Under-20 Athletics Championships with 19 medals, including 10 gold in Hong Kong. With that, we end the midday news.
1: Namaskar. Aakashwani se dopahar samachar ke saath main Sir Firozi. मुख्य समाचार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की. भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू. भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी. पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया. 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ. मई महीने में सकल जीएसटी संग्रह बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हुआ. पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले हैं. पश्चिम एशिया में तनाव फिर तेज. अमेरिका ने ईरान में रडार और ड्रोन प्रणालियों पर हमले किए. और हांगकांग में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण सहित 19 पदक जीते. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हुई. दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए वार्ता हुई. बातचीत के दौरान म्यांमार और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई. हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे.
2: सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे. इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है. म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है. म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक

0: यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में आयोजित समारोह में 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभाग बाद में आवंटित होंगे।
2: ये मंत्रिमंडल विस्तार राज्य सरकार की प्रशासनिक संरचना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नए मंत्री राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनमें अनुभवी विधायकों के साथ साथ पहली बार विधायक बने सदस्य भी शामिल है। समारोह में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ साथ वरिष्ठ राजनीतिक नेताए, सरकारी अधिकारियों और आमंत्रित अतिथियों उपस्थित थे। नवनियुक्त मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन बाद में घोषित किया जाएगा। आज शपथ लेने वाले मंत्रियों में सपन दास गुप्ता, अर्जुन सिंह, तापस राय, शंकर घोष और अन्य शामिल है। काशफिन नाहर, आकाशवाणी समाचार, कलकत्ता।
1: 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। 18 जून को मतदान होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री गोयल ने कहा कि यह समझौता नए बाजार खोलेगा, इससे निर्यात में वृद्धि होगी तथा निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री गोयल ने कहा कि व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यातक को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि इससे रोजगार बढ़ेगा और विद्यार्थियों, कामगारों, महिलाओं, किसानों, मछुआरों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को महत्वपूर्ण रूप से लाभ होगा। वस्तु और सेवा कर GST का सकल संग्रह पिछले महीने 3.2% बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। पिछले वर्ष मई में ये 1,88,000 करोड़ रुपए था। पिछले महीने केंद्रीय GST का सकल संग्रह 37,397 करोड़, राज्य GST का 45,143 करोड़ और एकीकृत GST का 51,990 करोड़ रुपए रहा। इस अवधि के दौरान वस्तुओं की कर योग्य आपूर्ति में 26.9% की वृद्धि हुई। सेवा क्षेत्र में इसमें 22.2% की बढ़त दर्ज की गई। GST रिफंड में 2.6% की वृद्धि हुई और यह आंकड़ा 27,281 करोड़ रुपए रहा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर खोलकर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्ष 2020 में योजना शुरू होने के बाद से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण दिए गए हैं।
3: देश के लाखों रेहड़ी पटरी वालों को पिछले 6 साल से पीएम स्वनिधि स्कीम के जरिए आसानी से कर्ज मिल रहा है। इससे उनके लिए अस्थायी आजीविका सुनिश्चित हो पाई है। इस योजना के तहत बिना किसी गारंटी के 3 चरणों में क्रमशः 15,000, 25,000 और 50,000 रुपए तक के कर्ज उपलब्ध कराए जाते हैं। इन कर्जों पर ब्याज सब्सिडी तथा ऋण गारंटी सहायता भी प्रदान की जाती है। इस पहल से देश भर के शहरों और कस्बों में 75,00,000 से अधिक लाभार्थियों को फायदा हुआ है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 55,00,000 से अधिक लाभार्थियों को इस स्कीम से डिजिटल रूप से जोड़ा गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रामसिया गांव से राष्ट्रव्यापी

0: एक खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये अभियान 1 महीने तक चलेगा।
1: 1 महीने तक चलने वाला यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा,
2: ये खेत बचाओ कार्यक्रम इसलिए कि हमारी माटी बर्बाद ना हो जाए, हमारे खेत बर्बाद ना हो जाए। धरती कहे पुकार के इतना खाद मत डालो, इतना कीटनाशक मत डालो।
1: इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि मिलकर भाग ले रहे हैं। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोइल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। अभियान के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ भी किसानों तक पहुँचाया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की।
3: विधि मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू, बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण पल्ली को पदोन्नत किया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकिता सुब्रमणि मोहना को भी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने पिछले महीने एक अध्यादेश जारी कर कानून में संशोधन किया था। इसके अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश के अलावा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़कर 37 कर दी गई थी। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में देश भर में वृद्धि की गई है। हालांकि घरों में उपयोग होने वाली घरेलू खाना पकाने की गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 42 रुपये की वृद्धि हुई है और अब इसकी कीमत 3,113 रुपये 50 पैसे होगी। मुंबई में 43 रुपये 50 पैसे की वृद्धि के साथ नई कीमत 3,067 रुपये 50 पैसे होगी। कोलकाता में 53 रुपये 50 पैसे की वृद्धि के साथ व्यावसायिक सिलेंडर की कीमत अब 3,255 रुपये 50 पैसे होगी। चेन्नई में कीमतों में 42 रुपये की वृद्धि हुई है और अब नई कीमत 3,283 रुपये होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने अमेरिका के एक ड्रोन को मार गिराया है। अमेरिका के ईरान में रडार और ड्रोन नियंत्रण स्थलों पर हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। ईरान ने जवाबी हमले की बात स्वीकार की, जबकि कुवैत ने कहा कि वो आने वाले ड्रोन और मिसाइल हमलों को रोक रहा है। कुवैत की सेना ने कहा है कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना कर रही है। इसराइल द्वारा लिटानी नदी के पार लेबनान पर अपना कब्जा बढ़ाने के कारण तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट।
4: सैन्य टकरावों के बीच राजनयिक बातचीत जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे ईरान के साथ एक अच्छे समझौते के करीब हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्जी ने पुष्टि की है कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि औपचारिक रूप से समझौता होने तक किसी भी निर्णय को अंतिम नहीं माना जा सकता। दूसरी ओर लेबनान पर इसराइल के बढ़ते जमीनी हमलों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी आलोचना हो रही है। फ्रांस ने स्थिति पर विचार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाने का अनुरोध किया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों की दूसरी संवाद बैठक नई दिल्ली में हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक के दौरान श्री सिंह ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा संबंध काफी मजबूत हुए हैं।
5: मैं आपकी सरकार को 2026 की राष्ट्रीय रक्षा रणनीति और एकीकृत निवेश कार्यक्रम की पहल के लिए बधाई देना चाहता हूं चर्चा के दौरान मैं इन नीतिगत दस्तावेजों और भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा संबंध

0: में विकास के संभावित अवसरों पर आपके विचारों को सुनने के लिए उत्सुक हूँ।
1: श्री माल्स ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत ने अपनी रक्षा साझेदारी को और मजबूत किया है और दोनों पक्ष समुद्री क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। वार्ता में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा और सहयोग के नए रास्ते तलाशे जाएंगे। म्यांमार के नामकाम शहर में भीषण विस्फोट में 55 लोगों की मौत हो गई है। कल हुए इस विस्फोट में 70 से अधिक लोग घायल हुए हैं। ये घटना खनन के लिए रखे गए सामान में हुए विस्फोट के कारण हुई। स्थानीय अधिकारी प्रभावित निवासियों को राहत, चिकित्सा देखभाल और पुनर्वास सहायता प्रदान कर रहे हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार विस्फोट में 100 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगाने वाले नियमों को आज से लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत कम से कम 80 लाख उपयोगकर्ताओं वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आयु सत्यापन प्रणाली लागू करनी होगी। नियमों का पालन न करने वाली कंपनियों पर 100 लाख रिंगिट तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार ने कहा कि इन उपायों का उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और जैसी चीजों से बचाना है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और इंडोनेशिया सहित अन्य देशों ने भी बच्चों के सोशल मीडिया तक पहुंच पर आयु आधारित प्रतिबंधों की घोषणा की है। हांगकांग में 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य सहित 19 पदक जीते हैं। पदक तालिका में भारत दूसरे स्थान पर रहा। घरेलू मोगली वेंकटराम ने कल पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ। पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं इंद्रप्रस्थ चैनल 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट मनीषा बोस। सत श्री अकाल और सभी लिसनर्स का स्वागत करती हूं कार्यक्रम में, क्योंकि आज का सफर तय होगा आप सभी का मेरे साथ। तो साथियों, कार्यक्रम एक ही कलाकार में आज हम बात करेंगे एक नहीं दो कलाकारों की, एक सुरों की सादगी से ढली हुई उस आवाज की जिन्होंने अपनी सादगी भरी सुरीली आवाज से हिंदी सिनेमा को आबाद किया, और दूसरी वो कलाकार जिन्होंने अपनी सादगी और सजीव अभिनय से हिंदी सिनेमा को चार चांद लगाए। लेकिन पहले बात उनकी जिनकी आवाज ने भारतीय सिनेमा को सुरीली पहचान दी और जो कल 31 मई 2026 को ही हमसे विदा ले गईं। हम उन्हें अपनी पूरी टीम की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

जी हाँ, सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर, जो अब हमारे बीच नहीं है, जिनकी आवाज सुनकर लोग अक्सर समझ नहीं पाते थे दोस्तों कि ये उनकी आवाज है या लता जी की आवाज है। सुमन कल्याणपुर, जिन्होंने कई भाषाओं में अपने संगीत, अपने गीत से हिंदी सिनेमा को और अन्य भाषाओं के सिनेमा को नवाजा है, जिसमें हिंदी, मराठी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ और ऐसी कई भाषाएं शामिल रही हैं, जो उनकी आवाज से सजी हुई रही। दोस्तों, सुमन कल्याणपुर जी के बारे में एक दिलचस्प वाक्या ये है कि वो जब औपचारिक रूप से अपने स्टूडेंट्स लाइफ में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे विद्यार्थी जीवन में, तब उन्होंने औपचारिक रूप से चित्रकला की विद्यार्थी के रूप में अपनी शिक्षा ली थी, परंतु बाद में संगीत को उन्होंने अपना जीवन बनाया और यही वजह रही कि उनकी गायकी में जो नज़ाकत और संवेदनशीलता नज़र आती है, वो उनकी कलात्मक सोच का ही सबब नज़र आती है।

जी हाँ दोस्तों, करीब 6 दशकों तक अपने सुरों से संगीत प्रेमियों के दिलों पर राज करने वाली सुमन कल्याणपुर ने अपने गीत से, अपने संगीत से ये साबित कर दिया कि उनके गीतों ने सुरों के साथ भावनाओं को भी आवाज दी, रिश्तों को संगीत दिया और भारतीय संगीत को अमूल्य विरासत।

और साथियों, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंद्रप्रस्थ चैनल पर कार्यक्रम आपका अपना एक ही कलाकार, जहां हम बात कर रहे हैं आज हिंदी सिने जगत के उन दो कलाकारों की। एक ने सुरों से, संगीत से संगीत जगत को हिंदी सिनेमा के नवाजा, और दूसरी जिन्होंने अपनी मोहक अदाकारी से, अपने अभिनय से सिने जगत को एक स्मृति दे गई, एक स्वर्णिम युग दे गई। हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम युग की वो दिग्गज और सदाबहार अभिनेत्री रहीं, शानदार अभिनय से करियर की शुरुआत करने वाली अदाकारा। 1940 के दशक से अपनी पहल बनाते बनाते 1950 के दशक में भारतीय सिनेमा की बुलंदी बनकर छाने वाली। चलिए सुनते हैं वो कौन है और आप अंदाजा लगाइए।

जी हाँ, नरगिस भारतीय सिनेमा की वो पहली अभिनेत्री जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया, वो अदाकारा जिनकी सादगी भरी सुंदरता, आंखों में मासूमियत, आवाज में ठहराव और सच्चाई का गुमा, उनके चेहरे का ठेठ भारतीय नयन नक्श, शालीन अंदाज उन्हें उस दौर की अन्य सभी अभिनेत्रियों से अलग बनाता था। उनके मुस्कान पर्दे पर आते ही जादू बिखेर देती थी। जी हाँ, उनकी जो जादुई आवाज थी, उनकी जो जादुई अभिनय की क्षमता थी, उनके जो जलवे हैं, उनकी बात हम अपने कार्यक्रम में आज कर रहे हैं एक ही कलाकार में। और ये बात इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि आज है उनका जन्मदिन। 1 जून 1929 को कोलकाता में उनका जन्म हुआ था और उनका असली नाम फातिमा रशीद, जो बाद में भारतीय सिने जगत में नरगिस के नाम से मशहूर हुई थी। तो चलिए, हम नरगिस के बारे में और भी बातें करेंगे, लेकिन फिलहाल हम लेते हैं उन चिट्ठियों को, उन संदेशों को, जिसके लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं हमारे बहुत सारे श्रोता साथी। और इसमें ये जो पहला संदेश है मेरे सामने, ये है टोरोवाल नवा शहर पंजाब से गगनदीप थांडे का। तृप्ता कुमारी थांडे, डॉक्टर प्रियंका थांडे, प्रशांत, प्रियम, बेबी वामिका, वाणी थांडे का बहुत शुक्रिया कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। हमारी नियमित श्रोता साथी सुदर्शन मुखी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत स्वागत है आपका। फारूक अली खान हैं हमारे साथ, उन्हें कार्यक्रम अच्छा लग रहा है जी, बहुत स्वागत है आपका। ये हैं गुन्नौर यूपी से और इनके साथ फैजी फराज, फरहीन, फरहान, फारिया, ताहिरा जुड़ी हुई हैं। आप हमारा कार्यक्रम सुनते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। और इससे जुड़ी हुई कोई भी बात, कोई भी जानकारी जो आपको चाहिए, आप संदेश के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं और अपना सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हम इस कार्यक्रम को जो आपके लिए लेकर आते हैं और भी उम्दा, और भी रोचक, और भी बेहतरीन बना सकें। हमारे पास अगला संदेश है गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा का, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता का। इन्हें कार्यक्रम अच्छा लग रहा है जी, बहुत शुक्रिया। और वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू, टॉमस, पिंकी, लवली और आरती अरोड़ा भी जुड़े हुए हैं। इंद्रभान सिंह जी हैं और ये चिरमरी कुरासारिया कालरी से हैं। इंद्रभान सिंह, अनुभव, ऋषभ, राम सहोदर, नारायण प्रसाद, दिनेश प्रसाद, कालिंदी लहरे। और हमारे साथ एक और संदेश में शामिल करती हूँ तुलसी मस्कीन जी का, और इनके साथ जुड़े हुए हैं वीना, चैतन्य, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता और केशु रिधान खुराना। बहुत शुक्रिया, कार्यक्रम से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं उनकी जिन्होंने हमें हिंदी सिनेमा के माध्यम से कला के जीवन में ऐसी बहुत

जी हाँ दोस्तों, नरगिस एक ऐसी अदाकारा जिनका नाम हिंदी सिनेमा में मदर इंडिया के रूप में अमर हो गया। कला उन्हें विरासत में मिली क्योंकि उनकी माँ जद्दन बाई खुद एक मशहूर गायिका और फिल्म मेकर रही। बहुत कम लोग जानते हैं कि नरगिस सिर्फ 6 साल की उम्र में 1935 की तलाश हक में बीबी नरगिस के नाम से अभिनय करने वाली अभिनेत्री बनी, लेकिन उनका असली फिल्मी सफर शुरू हुआ 1942 की तमन्ना से। याद कीजिए आरके स्टूडियो का वो आइकॉनिक लोगो जिसमें राज कपूर नरगिस को उठाए हुए हैं, जो फिल्म बरसात के ही एक सीन से लिया गया था। 1940 से 1950 के दशक का वो दौर जहां नरगिस की जोड़ी बनी राज कपूर के साथ और दोनों ने साथ में बेहतरीन फिल्में दी। बरसात, आवारा, श्री 420, चोरी चोरी जैसी कई यादगार फिल्में उनके नाम में हैं। उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी गहरी थी कि लोग उसे असली प्रेम कहानी मानने लगे थे। उनकी फिल्म आवारा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि सोवियत यूनियन और कई देशों में बेहद लोकप्रिय हुई और इन फिल्मों में उन्होंने एक युग लिख दिया। तो चलिए सुनते हैं उनके युग लिखे हुए उन्हीं फिल्मों से एक फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत।

और साथियों अब बात उस फिल्म की जिसने भारतीय सिनेमा का एक अमर अध्याय बन नरगिस को अमर बना दिया। राधा के किरदार में नरगिस भारतीय नारी की पहचान बनी। एक ऐसी माँ को अपने अभिनय में यहाँ उन्होंने उकेरा जो गरीबी, अत्याचार और समाज के खिलाफ संघर्ष करती हुई नैतिकता और महिला संघर्ष की सच्चाई बनी। साल 1975 में आई फिल्म मदर इंडिया महबूब खान के निर्देशन में बनी उस समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी और भारत की पहली ऑस्कर नामांकित फिल्म भी। अभिनेत्री नरगिस को मिला इस फिल्म का फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड।

साथियों, एक दिलचस्प वाकया नरगिस के जीवन का ये भी रहा। मदर इंडिया की शूटिंग के दौरान जब फिल्म सेट पर आग लग गई और सुनील दत्त ने उन्हें अपनी जान की परवाह किए बगैर बचाया, यानी नरगिस को बचाया, और यहीं से शुरू हुई एक खूबसूरत प्रेम कहानी। 1958 में नरगिस ने सुनील दत्त से शादी कर ली और शादी के बाद उन्होंने फिल्मों से लगभग दूरी बना ली। उनके 3 बच्चे हुए, नम्रता, प्रिया और संजय दत्त। नरगिस ने अपने करियर में लगभग 3 दशक तक काम किया, लेकिन उनकी आखिरी मास्टरपीस फिल्म रही 1967 की रात और दिन, जिसके लिए उन्हें मिला पहला नेशनल बेस्ट फिल्म एक्ट्रेसेस अवार्ड, जिसमें उन्होंने ड्यूअल पर्सनालिटी का किरदार निभाया जो उस दौर के लिए नया और चुनौतीपूर्ण था। नरगिस सिर्फ एक अदाकारा नहीं बल्कि एक संवेदनशील शख्सियत थी। अपने जीवन काल में उन्होंने स्पेस्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया के साथ काम किया, भारतीय सैनिकों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम किए। नरगिस चाहती थी कि वो अपने बेटे संजय दत्त को फिल्मों में देखें, लेकिन संजय दत्त की रॉकी रिलीज होने के 3 दिन पहले ही वो इस दुनिया से अलविदा कह गईं। महिला किरदारों को एक नई पहचान दिलाने वाली नरगिस वो पहली अभिनेत्री रहीं दोस्तों जिन्होंने अपने नाम पे फिल्मों को एक पहचान दी, यानी कि उनके नाम पे फिल्में बिका करती थीं।

तो दोस्तों, ये थी आज के एक ही कलाकार में नायिका नरगिस दत्त के जीवन की यात्रा और उसकी कहानी। अब आपकी होस्ट और दोस्त मनीषा बोस को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अगले सफर में। तब तक के लिए ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, शब बख़ैर।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। साथ ही साथ नए महीने जून की आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे आपके सबके चहेते कार्यक्रम उमंग में। आइए करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: मौसम चाहे जैसा हो, मन में उम्मीद की धूप हमेशा खिली रहनी चाहिए। बहुत खूबसूरत विचार है, आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से धन्यवाद।
3: और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास, कोटकुटिया नायक, पद्मलोचन मोहंती, अभिराम साहू, सत्यजीत नायक और साई प्रसाद नायक जी का।
2: रिंग रोड नर्मदा नगर से सूरज वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा।
3: और ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, निकेश, धर्मेंद्र और ममता बाई वर्मा जी ने लिखा है। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
2: प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं जी? आशा करते हैं आप सकुशल होंगे। आज बहुत दिनों बाद आपके उमंग कार्यक्रम में पत्र भेज रहे हैं। काम की कुछ व्यस्तताओं के कारण आपके उमंग कार्यक्रम में पत्र नहीं भेज पा रहे थे, लेकिन हम लोग नियमित रूप से आपका उमंग कार्यक्रम सुन रहे थे। उमंग कार्यक्रम में इन दिनों राग रस बरसे कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा है। धन्यवाद इस कार्यक्रम को उमंग कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। आपने संगीत प्रेमियों की खुशी को दोगुना बढ़ा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।
3: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है जेल रोड कानपुर से फातिमा वली बेलदार, सरफुद्दीन वली बेलदार, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम बेलदार जी का।
2: खेरागढ़ राजलालपुर छत्तीसगढ़ से मोतीलाल भीमटे और सुशीला भीमटे।
3: और हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी।
2: आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों के लिए।
3: और अब बारी है श्रोताओं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ है?
2: इसका उत्तर जान लेते हैं साथियों। दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है अंटार्कटिका का शीत मरुस्थल।
3: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, चेरी ब्लॉसम के फूलों

0: जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
1: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में सकुरा कहते हैं।
0: और अब हमारा पूछा गया अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न था मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है?
1: ट्यूलिप फूल मूल रूप से कजाकिस्तान का है। यहाँ से ये तुर्की पहुंचा और धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गया।
0: और फिर हमने आपसे पूछा था श्रोताओं, रजनीगंधा फूल रात में ही अधिक खुशबू क्यों देता है?
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। प्रकृति ने रजनीगंधा फूलों को रात्रि परागण या नाइट पॉलिनेशन के लिए बनाया है। रात को इस फूल के अंदर का सुगंधित तेल बहुत अधिक सक्रिय हो जाता है, जिसके कारण रात्रि बेला के कीट पतंगे इस फूल की ओर आकृष्ट होते हैं।
0: हमारा अंतिम प्रश्न था, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं?
1: इसका उत्तर है, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग 100 प्रजातियां पाई जाती हैं।
0: तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का क्या नाम था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का क्या नाम था?
0: आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800044555 पर या हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, एक्स, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आज का हमारा पहला कार्यक्रम है श्रोता संवाद। चर्चा का विषय है समावेशी शिक्षा।
0: यह कार्यक्रम उमंग प्रसारण का मासिक संस्करण है, जिसे हम CIET NCERT और शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से की जाने वाली डिजिटल व अन्य पहलों के बारे में जानकारी देते हैं। आज की चर्चा की विषय विशेषज्ञ हैं प्रोफेसर भारती कौशिक। श्रोता संवाद।
1: उमंग कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि हर महीने हमारा विशेष मासिक रेडियो संस्करण श्रोता संवाद प्रसारित होता है, जिसमें हम जानकारी देते हैं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और CIET NCERT द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही विभिन्न पहलों पर। इस क्रम में आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर भारती कौशिक। आप CIET के मीडिया निर्माण प्रभाग की अध्यक्षा हैं। तो प्रोफेसर कौशिक, आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: हमारे श्रोता ये जानने के लिए हमेशा बहुत उत्सुक रहते हैं कि श्रोता संवाद में हमारी चर्चा का विषय क्या रहेगा। तो आज हम किस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं?
2: आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो अक्सर आपको और मुझको छूता तो है, हम देखते तो हैं
1: जी,
2: लेकिन कहीं ना कहीं हम झिझक जाते हैं इस पर बातचीत करने में
1: जी।
2: आज हम बातचीत करेंगे समावेशी कक्षाओं की, समावेशी शिक्षा की।
1: क्या बात है। तो मेरा पहला प्रश्न श्रोताओं की ओर से ये है कि समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है? क्या इसे हम समता मूलक शिक्षा भी कह सकते हैं?
2: इसको हम समता मूलक शिक्षा तो शायद नहीं कह पाएंगे। क्यों? क्योंकि समावेशी शिक्षा का अर्थ है सभी को सम दृष्टि से देखना
1: जी,
2: तभी तो वो समावेशी शिक्षा है, सबको साथ लेकर के चलना। लेकिन जहां हम बात करते हैं समता मूलक, मतलब हर एक की विशिष्टता को, हर एक की आवश्यकता को पहचान देना, हर एक की आवश्यकता को समझना और उसके अनुरूप उसकी पूर्ति करना
1: जी।
2: अब ये विद्यालयों में, हमारे कक्षा कक्ष में कैसे हो सकती है, इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं
1: जी।
2: आप ये समझिए कि समावेशी कक्षा के या समावेशी शिक्षा के प्रावधानों में आता है कि सबको समान तरह की पुस्तकें देना, सबको समान तरह का खाना देना मिड डे मील के अंतर्गत, या सबको समान तरह की आप यूनिफॉर्म देते हैं, ठीक है
1: जी।
2: अब अगर कोई विद्यार्थी मेरी कक्षा में ऐसा है जो देख नहीं सकता या जिसको देखने में दिक्कत है, तो क्या होगा? लेकिन मैं तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत काम कर रही हूँ, तो मुझे तो उसको मुद्रित या प्रकाशित या छपी हुई किताबें ही देनी है
1: जी।
2: लेकिन वो विद्यार्थी जो नहीं देख पा रहा, उसका क्या? उसके लिए तो वो किताबें किसी काम की नहीं है। यहाँ पर मुझे क्या करना है? यहाँ मुझे समतामूलक शिक्षा के सिद्धांतों का पालन करते हुए मैं उनके लिए ऐसी किताबें दूं जो या तो वो सुन लें, यानी ध्वनि के रूप में हो किताबें, रिकॉर्डेड हो
1: जी,
2: या मैं उन्हें ऐसी किताबें दूं जो ब्रेल में हो, जिनको वो छू करके पढ़ सकें, या एक तीसरा स्वरूप हो सकता है कि मैं उन्हें डेजी में भी किताबें दूं, जो भी ध्वनि आधारित किताबें होती
1: जी।
2: समतामूलक शिक्षा में हम क्या करते हैं? हम प्रत्येक विद्यार्थी की व्यक्तिगत आवश्यकता को ध्यान में रख करके हम तब उसको पूर्ति करते हैं। और समावेशी शिक्षा में हम क्या करते हैं, सब

0: को सम दृष्टि, एक समान दृष्टि से देखते हैं। यानी अगर हम एक को अगर हम मुद्रित किताबें दे रहे हैं तो पूरी कक्षा को हम मुद्रित किताबें दे रहे हैं, तो वहां व्यक्तिगत आवश्यकताओं का उतना ज्यादा ध्यान हम नहीं दे पाते हैं।
1: जी, आपने बहुत ही विस्तार से हमें बताया कि समावेशी शिक्षा और समता मूलक शिक्षा में क्या अंतर है। आप थोड़ी सी बात करते हैं इसके इतिहास की। प्रोफेसर भारती, हमें अब ये बताएं कि भारत में समावेशी शिक्षा की शुरुआत कब हुई?
0: सबसे पहला जिक्र विकलांग विद्यार्थियों की शिक्षा का आता है हमारे कोठारी कमीशन में, जो 1964 का जो शिक्षा आयोग है, जिसको हम कोठारी कमीशन के नाम से भी जानते हैं।
1: जी,
0: इस कमीशन में बातचीत तो की गई थी कि हमें दिव्यांगजन विकलांगजनों को हमें शिक्षा देनी है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि इनकी शिक्षा दीक्षा कैसे होगी।
1: जी,
0: क्या इन्हें सामान्य विद्यालयों में, मुख्यधारा विद्यालयों में बिठा करके पढ़ाना है, या इनके लिए अलग से कुछ हमें एक विद्यालय खोलने होंगे। लेकिन हाँ, जिक्र जरूर किया गया था। तो शुरुआत हमने किया कि ठीक है, इनके लिए हम कुछ अलग से विद्यालय बनाते हैं, वहां हम इनको पढ़ाएंगे। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि ये विद्यार्थी भी अंततः हिस्सा तो हमारे ही समाज का बनेंगे। तो एक पहल छोटी सी ये की गई कि इन विद्यार्थियों को विशेष विद्यालयों से निकाल करके कुछ समय के लिए मुख्यधारा विद्यालयों में लाया गया, ताकि दोनों तरह के विद्यालयों के बच्चे आपस में बातचीत कर सकें और घुल मिल सकें और एक दूसरे को अजूबा न समझें। विशेष विद्यालयों में पाठ्यचर्या भी विशेष थी, शिक्षक भी विशेष थे और बच्चे भी हमारे विशेष आवश्यकता वाले थे। तो जब ये हम मुख्य धारा में इनको कुछ समय के लिए लेके आए, तो ये हमारा एक प्रयोग कुछ आंशिक रूप से सफल हुआ।
1: जी,
0: उसके बाद धीरे धीरे हमने क्या किया, कुछ विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को हमने विद्यालय से पूर्व उनकी पूर्ति करने की कोशिश की और फिर उन्हें मुख्य धारा विद्यालयों में प्रारंभिक कक्षाओं से समावेश करना उनका शुरू किया। इसमें भी कुछ सफलताएं मिली, कुछ विफलताएं मिली, लेकिन सफलताओं से सीख करके आगे बढ़े और आज हम एक ऐसी स्थिति में हैं जहां हम कहते हैं कि हर बच्चे को मुख्य धारा विद्यालय में दाखिला दे। इसीलिए हम जीरो रिजेक्शन पॉलिसी अपनाते हैं कि एडमिशन में हमें सभी को दाखिला देना ही है। इसीलिए आज हमारा हर एक विद्यालय समावेशी विद्यालय है।
1: जी प्रोफेसर भारती, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि दिव्यांगजनों को मुख्यधारा में पढ़ाने की बात की है। जैसा कि हम सभी ये जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने देश की शिक्षा के पूरे परिदृश्य को बदल दिया है।
0: बिल्कुल,
1: आज हम विशेष रूप से आपसे ये जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समावेशी शिक्षा के मौलिक सिद्धांत क्या क्या है।
0: हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने हमारे शिक्षा के परिदृश्य को बहुत अच्छी तरह से परिवर्तित किया
1: जी
0: है, ठीक है। इसने मुख्य धारा की शिक्षा व्यवस्था में तो बहुत परिवर्तन किए ही हैं, साथ ही साथ जो समावेशी शिक्षा की हमारी परिकल्पना है
1: जी,
0: उसमें भी बहुत बदलाव किए हैं। जैसे अभी तक हम समझते थे कि समावेशी शिक्षा का मतलब एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो सिर्फ और सिर्फ दिव्यांगजन या विकलांग शिक्षार्थियों से जुड़ी हुई है या उन विद्यार्थियों से जुड़ी हुई है जो अलाभान्वित वर्गों या क्षेत्रों से आते हैं।
1: जी,
0: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने हमारी इस अवधारणा को और व्यापक और विस्तृत स्वरूप दिया है।
1: जी,
0: इसने सामाजिक आर्थिक रूप से अलाभान्वित समूहों की पहचान की है, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। तो इसमें 5 उपसमूह आते हैं।
1: जी,
0: सबसे पहला उपसमूह इसमें लिंग के आधार पर है, जिसमें हम जेंडर आधारित आवश्यकताओं को पहचानते हैं और उनकी पूर्ति विद्यालयों में कैसे की जाए इस पर सोच विचार करते हैं।
1: जी,
0: दूसरा जो हमारा उपसमूह है वो ऐसा उपसमूह है जो विषम भौगोलिक परिस्थितियों से आता है या वहां से संबंधित रखता है। विषम भौगोलिक परिस्थितियां जैसे पहाड़ी क्षेत्रों से आता है, मरुभूमि से आता है या ऐसी जगहों से आता है जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है, विद्यार्थियों को अपने विद्यालयों तक पहुंचने में अतिरिक्त कठिनाई का सामना करना पड़ता है।
1: जी,
0: तो वहां पर विद्यालय कैसे सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं, ये हमारा दूसरा उपसमूह है।
1: जी,
0: तीसरा उपसमूह हमारा सांस्कृतिक परिवेश को लेकर के है। सांस्कृतिक परिवेश कैसे, इसमें हमारे ऐसे उपसमूह में लोग आते हैं जो जनजातीय क्षेत्रों से हैं, आदिवासी क्षेत्रों से हैं या अल्पसंख्यक समूहों से संबंधित हैं।
1: जी,
0: इन उपसमूहों के छात्रों को भी विशेष आवश्यकताएं हैं, उनकी पाठ्यचर्या से संबंधित, उनके दिनों दिन की आवश्यकताओं और रहन सहन से संबंधित, जिनका पाठ्यचर्या से जुड़ाव होना बहुत जरूरी है, तो इन पर भी

0: ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक चौथा उपसमूह है जो है हमारा
1: जी
0: आर्थिक रूप से कमजोर समूह, हमें दोनों ही जगहों पे मिलता है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी मिलता है और शहरी क्षेत्रों में भी मिलता है, तो इस पर भी विशेष रूप से ध्यान देना जरूरी है।
1: जी
0: पांचवा उपसमूह इसमें आता है जो है विकलांगताओं का या विशेष आवश्यकताओं का, जिनको हम पहले से भी पहचानते हैं।
1: जी
0: इसमें NEP 2020 या राष्ट्रीय शिक्षा नीति विकलांग जन अधिकार अधिनियम 2016 को पूर्ण रूप से अपना समर्थन देती है और इस 2016 के अधिनियम में 21 तरह की विकलांगताओं या दिव्यांगताओं को पहचाना जाता है। तो हम इन पूरी 21 तरह की दिव्यांगताओं के सकारात्मक शैक्षिक समावेशन पे हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में।
1: जी
0: इसके अलावा राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 2020 ने जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई है वो है भारतीय सांकेतिक भाषा।
1: जी
0: पहली बार एक सरकारी दस्तावेज में भारतीय सांकेतिक भाषा को भाषा का एक औपचारिक दर्जा दिया गया और ये भी कहा गया कि जो भी हमारे शिक्षण अधिगम सामग्री है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो या राजकीय स्तर पर हो, दोनों ही स्तरों पर यह सामग्री सांकेतिक भाषा में भी उपलब्ध कराई जाए। तो ये बहुत दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने समावेशी शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में हमारी दृष्टि को बहुत व्यापक किया है।
1: जी आपने अभी सांकेतिक भाषा की बात की, तो हमारे श्रोता जरूर ये जानना चाहेंगे कि सांकेतिक भाषा क्या है और समावेशी शिक्षा में इसकी क्या भूमिका है।
0: सांकेतिक भाषा एक ऐसी भाषा जहां आप बोल करके नहीं बातचीत करते हैं
1: जी।
0: एक ऐसी भाषा जहां आप देख करके हाव भावों से संकेतों से पहचानते
1: जी।
0: हैं। जैसे आपको प्यास लगी है लेकिन आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां बहुत शोर शराबा हो रहा है, आप चाहे जितना मर्जी चिल्ला करके बोले क्या होगा, कोई आपकी बात नहीं समझ पाएगा। लेकिन अगर आपने पानी पीने का इशारा किया
1: जी
0: तो जो देख रहा है वो समझ जाएगा ना कि भाई आपको पानी पीना है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन ये तो बात हुई एक विशेष स्थिति की
1: जी।
0: आप सोचिए आपके हमारे बीच में ऐसे लोग भी तो हैं जिनको सुनाई कम देता है
1: जी,
0: या जिनको बिल्कुल ही सुनाई नहीं देता और ये स्थिति शायद उनकी जन्म से है
1: जी।
0: अच्छा अब ये लोग क्या करेंगे, ऐसा तो नहीं है कि सुनाई नहीं देता तो वो बात नहीं करना चाहते, अपने विचार नहीं रखना चाहते, उनको समझ नहीं आ रहा है, तो उनके लिए जो भाषा है वो है संकेतों की भाषा
1: जी।
0: अब ये संकेत हर जगह के अलग हो सकते हैं। भारत में अगर सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वो है भारतीय सांकेतिक भाषा
1: जी।
0: अगर आप अमेरिका में जाकर के कुछ सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वो अमेरिकन सांकेतिक भाषा हो जाती है
1: जी।
0: दोनों भाषाओं में अंतर है और ये अंतर उस तरीके से है जिस तरीके से आप अपने हाथों का, अपनी उंगलियों का या अपने हाव भावों का इस्तेमाल करते हैं। तो हर देश की अपनी एक सांकेतिक भाषा है और आपको यहाँ ये जानकर आश्चर्य होगा, जैसे संज्ञा शब्द होते हैं हमारी बोलचाल की भाषा में, मौखिक भाषा में, बिल्कुल उसी तरह से उदाहरण के लिए लेते हैं गणपति का संकेत
1: जी।
0: गणपति का संकेत मंगलवार को दर्शाता है महाराष्ट्र में
1: जी,
0: ठीक है, लेकिन मंगलवार को दर्शाएगा हनुमान जी की गदा का संकेत कहाँ, उत्तरी भारत में।
1: बिल्कुल।
0: तो ये संकेत भी हमारे अलग अलग जगह पे अलग अलग आते हैं
1: जी।
0: तो इसीलिए भारतीय सांकेतिक भाषा की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी उतनी ही विविधता है जितनी की किसी और मौखिक भाषा में है
1: जी। ये तो हुई हमारी सांकेतिक भाषा के बारे में जानकारी और समावेशी शिक्षा के बारे में जानकारी। तो अब हमारे श्रोता विशेष रूप से ये जानना चाहेंगे कि समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमारी यानी CIET NCERT द्वारा क्या क्या पहलें की गई हैं।
0: जी देखो सांकेतिक भाषा में भी हम बहुत काम कर रहे हैं, जैसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अधिगम सामग्री बनेगी, तो हमारी जितनी भी पाठ्य पुस्तकें हैं उनको हम सांकेतिक भाषा के वीडियोज में हम परिवर्तित कर रहे हैं
1: जी।
0: लेकिन इन वीडियोज में ऑडियो भी है
1: जी,
0: और इन वीडियोज में सांकेतिक भाषा तो है ही है, साथ ही साथ आपकी पाठ्य पुस्तक का पेज भी है
1: जी,
0: ताकि कोई भी छात्र चाहे उसे सांकेतिक भाषा आती हो या नहीं आती हो अपने साथी के साथ बैठ करके वो वीडियो देख सके। इसके अलावा CIET NCERT सभी पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूप भी बना रही है जो बहुत सरलता से CIT की वेबसाइट पर उपलब्ध है
1: जी।
0: इसके अलावा समावेशी कक्षाओं को प्रोत्साहित करने के लिए हर रोज दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे तक हमारा एक विशेष लाइव सत्र

0: हर डीटीएच चैनल पर प्रसारित होता है। इस लाइव सत्र में हम क्या करते हैं, इस लाइव सत्र में हम एक कक्षा, एक विषय, एक पाठ्य पुस्तक और एक पाठ लेकर के हम विशेषज्ञों को आमंत्रित करते हैं कि आप आइए, इस पाठ की सहायता से आप ये बताइए कि आप कैसे इस पाठ को समावेशी कक्षाओं में सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए
1: जी
0: आप पढ़ा सकते हैं। और जब आप आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे तो समावेशी कक्षा है, लेकिन सिद्धांत आपको समतामूलक अपनाना है, यानी प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता को आपको ध्यान में रखना है। तो एक हमारी ये जाती है सीरीज
1: जी।
0: इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपने विद्यालयों को किस तरह से अवरोध मुक्त बना सकते हैं
1: जी,
0: उसके लिए हमारे पास है प्रिया सुगम्यता योद्धा। अब ये प्रिया सुगम्यता योद्धा क्या है, ये एक छोटी सी कॉमिक बुक है जो बहुत सरलता से समझाती है कि सुगम्यता का मतलब केवल इतना ही नहीं है कि आप सीढ़ियां हटा करके रैंप बना लें
1: जी,
0: सुगम्यता का मतलब यह भी है कि आपकी जो कक्षा है उसका दरवाजा थोड़ा सा बड़ा हो
1: जी,
0: आपका जो सभागार है उसके मंच तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों के साथ रैंप हो, व्हीलचेयर आसानी से पहुंच जाए
1: जी।
0: आपके विद्यालय में कौन सी कक्षा कहाँ है, कौन सी प्रयोगशाला कहाँ है उसका एक मानचित्र भी कहीं उपलब्ध हो
1: जी।
0: आपके विद्यालय में टेक्टाइल पाथ हो, टेक्टाइल पाथ क्या, आपने मेट्रो में सफर तो किया ही होगा
1: जी जी।
0: जब आप मेट्रो स्टेशन पर होते हैं तो आपने देखा होगा वो पीली टाइलें,
1: बिल्कुल
0: पीली टाइलें कैसी हैं, उनकी विशेषता यह है कि आप अपने जूते पहने हुए भी उनको महसूस कर सकते हैं
1: जी,
0: उनके उभारों को महसूस
1: बिल्कुल
0: कर सकते हैं, मतलब वो स्पर्शनीय टाइल हैं
1: जी।
0: ये स्पर्शनीय टाइल बताती हैं कि कहाँ रास्ता है, कहाँ इकट्ठा होना है हमें
1: जी।
0: तो उस तरह की टाइलें हमारे विद्यालयों की संरचना को भी बहुत सुगम्य बनाती हैं
1: जी।
0: इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण पहल हमारी सीआईटी एनसीईआरटी की है, वो है दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 में पहचानी गई सभी 21 तरह की दिव्यांगताओं को विद्यालयी स्तर पर पहचानने के लिए एक जांच सूची बनाना जिसको हम कहते हैं प्रशस्त। प्रशस्त हिंदुस्तान की पहली स्टैटिस्टिकली स्टैंडर्डाइज्ड मानकीकृत जांच सूची है जो 21 तरह की सभी दिव्यांगताओं को शिक्षकों विशेष शिक्षकों की मदद से पहचानती है और इसके लिए शिक्षकों का दिव्यांगताओं के बारे में विशेषज्ञ होना भी जरूरी नहीं है
1: जी।
0: तो ये भी एक हमारी पहल है
1: जी। प्रोफेसर भारती अभी आपने ये जानकारी दी कि एनसीईआरटी की बुक्स ऑडियो बुक्स के रूप में उपलब्ध हैं, तो ये किताबें हमें कहाँ से मिल सकती हैं?
0: ये किताबें आपको बहुत सरलता से सीआईईटी के वेब पेज से मिल सकती हैं। आप सीआईईटी के वेब पेज पे जाइए, वहां पे ऑडियो बुक्स लिखिए तो आपको वो मिल जाएंगी
1: जी।
0: और एक और सरल उपाय है
1: जी,
0: आजकल तो गूगल हम सब की मदद के लिए है ही है, गूगल पर जाइए लिखिए ऑडियो बुक्स सीआईईटी एनसीईआरटी आपको सीधा वहां उसी पेज पे ले जाएगा और आप वहां से ले सकते हैं
1: जी।
0: एक चीज और भी, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये किताबों के लिए आपको कुछ शुल्क देना पड़ेगा तो ये बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध हैं और सीआईटी वेब पेज के साथ साथ आपको ये दीक्षा पर भी आराम से मिल सकती हैं
1: जी।
0: और यह किताबें आपको एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी आपको मिल जाएंगी। तो सरलता से आप हमारी ऑडियो बुक्स को सीआईटी की वेबसाइट से, एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब से और साथ ही साथ दीक्षा से बिल्कुल निशुल्क बिना किसी शुल्क के प्राप्त कर सकते हैं
1: जी। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। अब मेरा अगला प्रश्न ये है कि समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया में आदिवासी समूहों और समाज के अन्य पिछड़े समूहों को भी शामिल करने की दिशा में एनसीईआरटी की क्या पहल है?
0: बिल्कुल, आदिवासी जाति या अन्य पिछड़े समूहों को शिक्षा से जोड़ने के लिए एनसीईआरटी की पहलों में सबसे मुख्य जो है वो यह है कि हमारी जो पाठ्य पुस्तकें हैं
1: जी,
0: अगर आप ध्यान से देखें तो वो पाठ्य पुस्तकें पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं
1: जी।
0: उनकी कहानियां, उनके पाठों की विषय वस्तु जनजाति समूहों, हमारे आदिवासी समूहों और अन्य पिछड़े वर्गों के परिवेश को भी दर्शाती हैं
1: जी,
0: जिससे ये पाठ्य पुस्तकें हर बच्चे को अपनी सी लगती हैं, उससे उनमें कोई अलगाव की भावना विकसित नहीं होती है। तो सबसे बड़ी बात तो यही है और जब आप पाठ्य पुस्तकों से

0: करते हैं तो फिर आप अपने विद्यालयों से भी जुड़ते हैं। जी, ये पहल हमारी यहाँ से शुरू होती है लेकिन अंत यहाँ पर नहीं है।
1: जी बिल्कुल। तो अब आज का अंतिम प्रश्न, ये भी प्रश्न मेरा दिव्यांगों से ही जुड़ा हुआ है। मेरा प्रश्न है, दिव्यांगों के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु क्या कुछ विशेष प्रयास किए जा रहे हैं?
0: दिव्यांगों की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए, जैसा हमने बीच में भी बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने तो बहुत सारे प्रावधानों की बात की है। उसके दो प्रावधानों पर हमने चर्चा की कि सामाजिक आर्थिक रूप से अलाभान्वित समूह कौन से हैं, उसमें कौन से बच्चे आते हैं, और भारतीय सांकेतिक भाषा की। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है कि प्रत्येक बच्चे की भागीदारी और उसको अपनापन या जुड़ाव महसूस हो, इस पर बहुत ज्यादा काम करना जरूरी है। दूसरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये भी कहती है कि व्यक्तिगत सहयोग और समर्थन दिया जाए प्रत्येक बच्चे को, तभी हम समतामूलक शिक्षा की बात करते हैं, समावेशी कक्षाओं या शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत। तीसरी चीज, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि आपको तकनीक और सहायक उपकरणों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। इसका अर्थ यह भी है, बहुत सरल से शब्दों में, कि आप दीक्षा प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कीजिए, आप ध्वनि पुस्तकों का इस्तेमाल कीजिए। साथ ही साथ अगर कोई बच्चा आकर के शिक्षक को कहता है कि जी मुझे आज की कक्षा रिकॉर्ड करनी है क्योंकि मैं सही से लिख नहीं पाता हूँ या समझ नहीं पाता हूँ या ज्यादा देर तक याद नहीं रख पाता हूँ, तो शिक्षकों को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह भी समावेशी कक्षा प्रणाली का ही एक भाग है और सहायक उपकरणों का प्रयोग है। एक और चीज भी है, इसी कड़ी में जुड़ता है, शिक्षकों का संवेदीकरण और उनकी तैयारी। मतलब शिक्षकों को आपको सेंसिटाइज करना भी जरूरी है विशेष आवश्यकताओं के प्रति, ताकि वो अपनी कक्षाओं को समतामूलक और समावेशी कक्षाओं में परिवर्तित कर सके।
1: जी,
0: यह काम लेकिन सिर्फ और सिर्फ शिक्षा, शिक्षक और विद्यालय नहीं कर पाएगा। इस काम के लिए आपको परिवार और समुदाय का सहयोग भी लेना होगा। जब परिवार और समुदाय शिक्षा व्यवस्था प्रणाली से जुड़ते हैं तभी तो विद्यार्थियों का समग्र विकास हो पाएगा। तो बहुत सारी चीजें हम एक साथ शुरू कर रहे हैं।
1: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर भारती इस उपयोगी जानकारी के लिए। इस आशा के साथ कि देश की शिक्षा व्यवस्था में समावेशी शिक्षा का भविष्य दिन प्रतिदिन उज्ज्वल होता जाएगा, हम आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। आप हमारे श्रोताओं को कोई विशेष संदेश देना चाहेंगी?
0: मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आप विशेष आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील रहिए, ये आपके और हमारे आसपास ही हैं। कई बार हम इन्हें देख करके भी अनदेखा कर देते हैं, तो ऐसा ना करें। याद रखिए, बूंद बूंद से ही सागर भरता है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम श्रोता संवाद। हमें इस कार्यक्रम पर आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा।

0: तो हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है, इसलिए मुझे यानी अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT से प्रायोजित कार्यक्रम।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेग 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में हम आपको सूचना देते हैं। दोपहर 3:30 पर आप थोड़ी ही देर में सुनेंगे उर्दू मजलिस। शाम 5:10 पर लोक संगीत का कार्यक्रम सुन सकेंगे आप लोक रंजनी में। और दैनिक कार्यक्रम होगा खेल जगत का खेल खिलाड़ी में, जिसे आप सुन सकेंगे शाम 5:30 पर। और शाम 6:10 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम संस्कृत सौरभम। और शाम 6:30 पर ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम होगा कार्यक्रम ग्राम संसार में। फिर शाम 7:05 पर किसान भाइयों का कार्यक्रम सुनेंगे आप कृषि जगत में। तो चलिए अब सुनते हैं कार्यक्रम उर्दू मजलिस।

0: उसमें अफसाने पढ़ता था,
1: जी
0: फिर डिस्कशंस वगैरह में और फिर युवाणी में और इधर उधर मुख्तलिफ प्रोग्रामों में आने लगा।
1: तो बाकायदे तौर पे 1982 में आपने ज्वाइन किया गोरखपुर आकाशवाणी में।
0: हाँ, उसका भी एक मजेदार किस्सा ये है
1: जी
0: कि चूंकि जब स्टूडेंट होता है आदमी तो बहुत सारी चीजों में हाथ पैर मार। मैंने भी कई जगह अप्लाई किया था, बॉम्बे यूनिवर्सिटी की लेक्चरशिप के लिए मैंने इंटरव्यू दिया था, और उसके बाद में मैंने बैंक का प्रोबेशनरी ऑफिसर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का वो भी एग्जाम दिया था। इत्तेफाक से एक ही दिन मुझे तीन लिफाफे मिले और तीनों में सिलेक्शन लेटर था।
1: क्या बात है।
0: यूपीएससी में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव का
1: जी।
0: और एसबीआई का मैं प्रोबेशनरी ऑफिसर और बॉम्बे यूनिवर्सिटी की लेक्चरशिप उर्दू डिपार्टमेंट।
1: लेकिन आपने लेक्चरशिप के सामने ऑल इंडिया रेडियो को मुंतखब करना बेहतर समझा।
0: मैंने चूंकि वो एक ग्लैमर था उस वक्त, रेडियो इतना उरूज पे था कि रेडियो के नाम से ही तो मैंने सारी चीजें छोड़ी कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये चाहिए। तो मैं यहाँ पे आया डायरेक्टरेट में और मेरे सारे क्लियर हो गया, और उसके बाद में मैंने गोरखपुर ज्वाइन कर लिया। तो गोरखपुर जब मैं गया तो आकाशवाणी गोरखपुर उस वक्त बहुत उरूज पे था और बहुत अच्छे अच्छे लोग वहाँ पे थे,
1: तकरीबन 44 साल पहले।
0: जी हाँ,
1: और हम रेडियो के 90 साल इस वक्त जश्न मना रहे हैं,
0: आधे
1: उसी के उम्र के आधे में यहाँ जहमत दी गई। जी,
0: तो वो उस वक्त वाकई रेडियो बहुत बड़ा नाम हुआ करता था, बहुत उरूज पे था। और मुझे याद है कि मैं तो एक मामूली सा स्टूडेंट होते हुए निकला था, उसके बाद में मैंने पीएचडी तो बाद में सर्विस में आने के बाद की, लेकिन मैं उस वक्त समझ गया था कि जब मैं कहीं पे जाता था और जब पता चलता था कि रेडियो का आदमी है तो बड़ी इज्जत और बहुत शोहरत हुआ करती थी, तो मुझे लगा कि भाई वाकई हमने सही फील्ड चुना, और मुझे रिग्रेट नहीं है, मैं बहुत कामयाब रहा। इस दौरान मेरे बहुत सारे मुलाकातें रहीं, बहुत सारे, जैसे आप इंटरव्यू ले रहे हैं मेरा,
1: जी, जी,
0: मैंने बेशुमार इंटरव्यू लिए हैं
1: जी सर,
0: और बड़े बड़े शख्सियत।
1: आज कैसा लग रहा है आपको पहली बार इंटरव्यू देकर?
0: देखिए, ये होता है कि एक होता शिकार और दूसरा होता शिकारी, तो इस वक्त मैं अपने आप को शिकार समझ रहा हूँ
1: जी सर,
0: और आपके जितने तीर होंगे मैं सबको कोशिश करूंगा कि बर्दाश्त कर सकूं।
1: जी सर, तो आपने बड़ी बड़ी शख्सियत का इंटरव्यू लिया, कुछ याद है उनके नाम?
0: बहुत सारे लोग हैं। अब देखिए, उर्दू की जितनी अजीम शख्सियतें उस वक्त थी, सबका नाम लेना तो मुमकिन नहीं।
1: कुछ नाम चंद,
0: फराग गोरखपुरी के गोरखपुरी बहुत बड़ा नाम था और उनसे लोग घबराते थे।
1: आज भी वो राज कर रहे हैं 100 साल से, बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं।
0: जी,
1: तुझे जिंदगी हम दूर से
0: पहचान लेते हैं। तो उनका हमने वहीं उनके घर जाके, जब वो बहुत अलालत थी, बमुश्किल तमाम हमें उनसे मिलने की इजाजत मिली। अब मैं फखरिया कह सकता हूँ कि मैंने फिराक को देखा है।
1: बिल्कुल, वो कहते भी थे कि आने वाली नस्लों तुम पे फख्र करेंगी कि तुमने फिराक को देखा है।
0: जी जी, तो उनसे मैंने इंटरव्यू लिया। कुर्रतुल ऐन हैदर,
1: बहुत बड़ा नाम, ज्ञानपीठ अवार्ड मिला।
0: जी जी,
1: कुछ फिराक साहब को भी ज्ञानपीठ अवार्ड मिला।
0: जी हाँ जी, पहला ज्ञानपीठ अवार्ड तो फराग साहब को मिला था उर्दू वाला। उसके अलावा असमत चौगताई का मैंने इंटरव्यू लिया, तो ये बड़े नाम थे।
1: ये भी बड़ा नाम
0: जी,
1: ये सब हम इनको अदब में पढ़ के आए हैं, देखा नहीं, मतलब उनसे मिले नहीं है, लेकिन ये बड़े नाम है।
0: तो ये वैसे फराग साहब से तो बस एक ही मुलाकात हुई थी, लेकिन कुर्रतुल ऐन हैदर साहब साहिबा के साथ में बहुत वक्त गुजारा उनके साथ में।
1: वो मेरे, तो जब आप दिल्ली में रहे होंगे, चूंकि दिल्ली में रहती थी,
0: दिल्ली में जब वो मैं अलीगढ़ में स्टूडेंट था तभी वो वहां पे एज ए विजिटिंग प्रोफेसर, तो मुझे बाजाबता उनसे पढ़ने का भी फख्र हासिल है, मैं उनका स्टूडेंट रहा हूँ।
1: ये तो बहुत बड़ी बात बताई सर आपने।
0: तो इस तरह बहुत सारे लोगों, तो ये तो अदबी हो गए। स्पोर्ट्स में मैंने,
1: स्पोर्ट्स में जी,
0: स्पोर्ट्स में बहुत बड़े बड़े लोग, सचिन का मैंने इंटरव्यू लिया, कपिल देव का मैंने इंटरव्यू लिया, उसके अलावा लाल अमरनाथ के दो बेटे,
1: हाँ, एक
0: सुरेंद्र अमरनाथ और महेंद्र अमरनाथ, उनसे भी मेरे मुलाकातें रही। वेंग सरकर का मैंने, ये तो वो है। हॉकी में काफी लोग, चूंकि मैं खुद हॉकी खेलता था और हॉकी से ही मैं ऑल इंडिया रेडियो में भी मुझे हॉकी खेलने का मौका मिला, और मैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट का कैप्टन भी रहा हूँ हॉकी का, और काफी अरसे तक मैं कैप्टन रहा हूँ, तो यहाँ भी मैं हॉकी खेलता था। तो स्पोर्ट्स वालों के भी, फिल्म दुनिया का तो खैर एक ग्लैमर है, उसमें बहुत सारे लोगों से मुलाकातें रहीं,
1: ये अचानक फिल्मी दुनिया की तरफ रुख कैसे हुआ आपका?
0: अचानक तो नहीं हुआ,
1: पहले से ही कुछ मामला था अलीगढ़ से, क्योंकि ये सारे लोग जो फिल्मी दुनिया में गए हैं, राई मासूम रजा हो या जितने भी हजरात हैं बड़े बड़े, हाँ।

0: राही मासूम
1: वो सब
0: रजा साहब,
1: अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ के गए हैं।
0: जी, राही मासूम रजा साहब से मेरी मुलाकात अलीगढ़ में हुई थी जब वो अलीगढ़ छोड़ चुके थे, आते जाते
1: जी
0: रहते थे कभी, तो वहाँ मुलाकात हुई थी। उसके बाद में इत्तेफाक से मैं जब इंटरव्यू था मेरा, जैसे मैंने बताया कि उसमें
1: जी
0: बॉम्बे यूनिवर्सिटी में, उससे पहले भी एक एक कॉलेज में मेरा इंटरव्यू था, तो उसके लिए मैं गया था वहाँ पर। तो मजरू साहब से कभी ताल्लुक नहीं था, लेकिन काजी अब्दुल सत्तार जो मेरे उस्ताद थे,
1: जी दोनों बड़े नाम हैं, एक अफसाने के ताल्लुक से, एक शायरी के ताल्लुक
0: तो
1: से।
0: काजी साहब से मैंने कहा कि हजरत कोई आप बॉम्बे में आपका जान पहचान का हो तो मेरे लिए एक सिफारिशी लेटर लिख दीजिए। तो उन्होंने मजरू साहब को खत लिख दिया था मेरे बारे में।
1: तो मतलब आपको मजरू का शेर आप पे सादिक आया कि मैं अकेला ही चला था जानी पे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए कानवा बनता गया।
0: जी जी जी तो खैर मजरू साहब से मुलाकात, वो भी एक अजीब व गरीब किस्सा है लेकिन वो बहुत तवील हो जाएगा।
1: जी
0: मजरू साहब के घर ही राही मासूम रजा आए हुए थे, वहीं पे उनसे मुलाकात हुई। मजरू साहब ने कहा भाई ये नौजवान बड़ा अच्छा नसर लिखता है तो इसको कुछ काम दो। और उस वक्त महाभारत की तैयारियां चल रही थी। राही साहब ने मुझे एक एड्रेस पर्चे पे लिख के दे दिया कि इस पे कल पहुंच जाना। दूसरे रोज मैं उनके बताए हुए एड्रेस पे पहुंचा तो वहाँ पे काफ़ी शूटिंग वूटिंग की और लोग डायलॉग भी याद कर रहे थे और गरज के बहुत कुछ था। तो वहीं पे राही मासूम रजा साहब ने मुझसे कहा कि हिंदी लिख लेते हो? मैंने कहा बहुत अच्छे लिख लेता हूँ। तो उन्होंने एक साहब के पास बिठा दिया जो मैंने अपनी किताब में भी इसका जिक्र किया है तफसील से। तो वहीं पे महाभारत के जो कुछ स्क्रिप्ट वो लिखते थे अलग अलग, तो जो रिसर्च भी हो रही थी उनके अंडर में, बहुत सारे लोग रिसर्च कर रहे थे। तो मैंने एक साहब के पास बिठा दिया, उन्होंने वो मुझे डिक्टेट करते रहे, मैं लिखता रहा। अब वो थे भगवत गीता मलयालम या किसी और जबान में थी, वो हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे थे और मैं लिख रहा था। तो ट्रांसलेशन भी उनका ऐसा था कि वो किताब पढ़ते थे और ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ हिंदी में ही पढ़ रहे हैं। तो वहीं से मेरा ताल्लुक हुआ। उसके बाद में राही साहब के साथ में काफ़ी काम करने का मौका भी मिला, तो वो एक फिल्म दुनिया में एक तरह का कदम था, तो मैंने आजमाया किस्मत और वहाँ पे मैं
1: तो
0: गया।
1: उसमें कुछ आपका फिल्मी कहानियों में भी कोई रोल है डायलॉग लिखने में? जो
0: बहुत बहुत, बहुत।
1: तो अब गोरखपुर से आपको ट्रांसफर मिला होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि
0: गोरखपुर से मैं
1: चाहते हैं कि जो आपके रेडियो के सफर हैं
0: जी जी जी
1: वो उनके बारे में जरा बताएं, गोरखपुर का, फिर रामपुर और फिर जहां जहां आपने
0: जी
1: किया, तो आपके क्या तजुर्बात रहे?
0: तजुर्बात देखिए गोरखपुर के बहुत अच्छे तजुर्बात थे और गोरखपुर मुझे बहुत अजीज था और आज भी है। बहुत मुखलिस लोग वहाँ के, बड़े मेहमान नवाज लोग। और जब गोरखपुर छोड़ रहा था तो मेरी आंखें नम थी कि पता नहीं ऐसा माहौल मिलेगा या नहीं मिलेगा। जब रामपुर आया तो पता चला कि ये तो उससे भी ज़्यादा तो रामपुर ने तो मुझे बहुत, रामपुर ने पजीराई की, इज्जत अफजाई
1: तो
0: की।
1: अदबी गहवारा भी कहा जाता है, उर्दू शायरी का तीसरा स्कूल भी कहा जाता है।
0: जी हाँ जी हाँ। तो रामपुर में मैं ऐसा रम गया कि मैं खुद अपने आप को रामपुरी कहते हुए फख्र महसूस करता हूँ। मेरा वतन सानी समझ लीजिए रामपुर है, काफ़ी वक्त गुजारा मैंने और मेरे दो बच्चों की पैदाइश वहीं पे हुई, तो ये इस लिहाज से भी मुझे रामपुर बहुत अजीज है।
1: बच्चों का तो हो ही गया वतन वो।
0: हाँ, तो रामपुर में बहुत अच्छा वक्त गुजारा, बड़े अच्छे लोगों से मुलाकातें हुई, बहुत शोरा हजरात अदबी ज़ौक़ शौक़ के लोग वहाँ पे बहुत हैं, बल्कि वहाँ के जो घरेलू जबान है वो भी अदबी जबान है, ये रामपुर की ये खसूसियत है उसकी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके अलावा बहुत सी जगह पे गया मैं। कुछ
1: रामपुर से आप दिल्ली आ गए?
0: रामपुर से मैं दिल्ली आया,
1: ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस से मुंसलिक हो गए।
0: जी हाँ जी हाँ।
1: यहाँ आके फिर कैसा महसूस किया आप?
0: यहाँ आके तो चूंकि दिल्ली बहुत बड़ा शहर है, यहाँ पे शनाख्त मुश्किल है, सब गुम हो जाते हैं, लेकिन शुक्र है खुदा का कि मेरी शनाख्त कायम रही। उर्दू सर्विस में भी मैंने प्रोग्राम अच्छे किए और उसके अलावा भी फिर चूंकि अदबी फील्ड में था तो अफसाने और नॉवेल और ड्रामे इस तरह के जलसों में भी जाता रहा और तख्लीकात भी पेश करता रहा, तो मुझे उसमें भी पजीराई हुई।
1: ऐसी बात मशहूर है कि जो कम्युनिटी रेडियो हमारे हिंदुस्तान में आता है
0: जी जी
1: उसके मौजूद आप हैं, इसके बारे में कोई बात बताएं हमें कि किस तरीके से इसका आगाज हुआ?
0: देखिए ये तो कम्युनिटी रेडियो नाम था नहीं उस वक्त, ना मैं जानता था
1: जी,
0: लेकिन मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जब आकाशवाणी गोरखपुर में मैं था, तो गोरखपुर के पास ही मघर एक जगह है,
1: जी शायद उनका वहां पे
0: तदफीन
1: मजार
0: वहां
1: है वहां
0: हाँ, और मघर में उनको दफनाया गया।

बल्कि उनकी समाधि है। तो उनके एक मेला होता है, उनके उर्स भी होता है और समाधि का एक मेला भी होता है। तो उसके कवरेज के लिए मैं गया था। वहाँ पे देखा तो मुख्तलिफ कम्युनिटी के लोग थे, बहुत से आदिवासी भी आए हुए थे और मुहज़्ज़ब लोग भी थे। तो मुझे लगा कि भाई ये तो बड़ा अच्छा माहौल है। तो वहीं से मैंने अपने डायरेक्टर से इजाज़त ली कि

0: कमेंट्री ना होके वो कुछ प्रोग्राम्स वहाँ के लोगों को बुला देता था, और ऐसा टेंट हमने लगाया था उसमें, वो तरह का रेडियो स्टेशन ही वहाँ पे कायम किया हमने। तो कुछ दिन वहाँ पे गुजारे और आकाशवाणी गोरखपुर से उसको ब्रॉडकास्ट
1: होता। मतलब स्टूडियो से बाहर आपने प्रोग्राम किए और उसको ऐसे ही बना दिया माहौल जैसे कि स्टूडियो से प्रोग्राम।
0: जी हाँ जी, वो डायरेक्ट चूंकि लाइन पड़ी हुई थी तो उसमें हमने प्रोग्राम
1: और की। कोशिश यही थी कि जो आसपास के जो कम्युनिटी के लोग,
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
1: उन तक चीजें पहुंचे वहां।
0: जी हाँ,
1: ये तजर्बा आपने किया और ये तजर्बा बहुत कामयाब रहा।
0: कामयाब रहा।
1: जब आपने रेडियो से इजाजत ली और फिर आप जामे मिल्लिया इस्लामिया के अनवर जमाल के दुआई मास कम्युनिकेशन सेंटर में आप आ गए एज एसोसिएट प्रोफेसर की हैसियत से,
0: जी,
1: तो फिर ये तजर्बे को आपने अमली जामा भी बना।
0: फिर ये हुआ कि कम्युनिटी रेडियो
1: कैसे आपका सिलेक्शन हुआ,
0: राज हो गया था
1: रेडियो का एक शख्स और अचानक यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर।
0: जी, इसका भी एक ये है कि मैं चूंकि पीएचडी तो था ही, तो एलिजिबल था, मैंने एक पोस्ट निकली वहां पे और मैंने अप्लाई किया। इन बिटवीन ये हुआ था कि यहाँ मेरा प्रमोशन हो गया था, असिस्टेंट स्टेशन डायरेक्टर तो था ही मैं,
1: डिप्टी डायरेक्टर
0: और स्टेशन डायरेक्टर होके मुझे भेजा जा रहा था गुजरात अहमदाबाद स्टेशन पे। तो मैं वहाँ जाना नहीं चाहता था, इसलिए कि मेरे बच्चे, दोनों बच्चों का बोर्ड था, एक का 10th और एक का 12th, ना बच्चों को छोड़ सकते थे ना ले जा सकते थे। तो उसी वक्त चूंकि वहाँ पे एक पोस्ट निकली हुई थी जामिया में, मैंने अप्लाई किया था। इंटरव्यू इत्तेफाक से बहुत अच्छा हो गया और वहाँ के जो उस वक्त वाइस चांसलर थे शाहिद मेहदी साहब, तो वो उनके जहन में था कि वो एक कम्युनिटी रेडियो वहाँ कायम करना चाहते थे। जब मेरी बातचीत हुई इंटरव्यू में, उन्होंने पूछा, तो मैंने ये जिक्र कर दिया कि मैंने वहाँ पे इस तरह के प्रोग्राम। और इत्तेफाक से ये भी था कि यहाँ पे एक सर्च कमेटी बनी हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट में, 3 लोगों को ये जिम्मेदारी दी थी, उनमें से एक मैं था कि कम्युनिटी रेडियो कैसे कायम किया जाए। मैंने उन्हें सजेशंस दिए और कम्युनिटी रेडियो का एक प्रपोजल पास हो चुका था और ये तय हुआ था कि पहले इंस्टीट्यूट्स को दिया जाए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को। जामिया ने अप्लाई किया था, उनको वो मिल रहा था। मैं इत्तेफाक से वहाँ जब इंटरव्यू के लिए गया तो शाहिद मेहदी साहब जो वाइस चांसलर, उन्होंने पूछा मुझसे बाकायदा कि आप रेडियो संभाल सकते। मैंने कहा जी, बहुत अच्छा तजर्बा तो था मुझे, 22.5 साल मैंने आकाशवाणी में गुजारे थे, तो शायद इसी वजह से मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं वहाँ पे चला गया।
1: और फिर आपने जब वहाँ ज्वाइन कर लिया तो बाकायदा तौर पर,
0: हाँ, मैं
1: जामिया कम्युनिटी रेडियो का,
0: जामिया कम्युनिटी रेडियो का
1: मैं इंचार्ज। किसी किस्म की कोई दिक्कत या क्या तजर्बा रहा आपका, या उससे पहले कम्युनिटी रेडियो बन चुके थे?
0: नहीं,
1: इंडिया में
0: मैंने, हाँ, इंडिया में सिर्फ एक कम्युनिटी रेडियो था,
1: अन्नामलाई में,
0: मद्रास में।
1: तो दूसरा आपने,
0: दूसरा हमने,
1: किस तरह के उसमें तजर्बात रहे, कैसे लोग प्रोग्राम करने आते थे, आते थे?
0: देखिए, जब ऑल इंडिया रेडियो में किसी को भी बुलाते हैं हम, तो उसको चेक देते हैं
1: जी,
0: वो चाहे एक डायलॉग बोलने के लिए बुलाया
1: जी,
0: तो उस जहन में तो वो था। अब कम्युनिटी रेडियो में इस तरह का कोई तस्वर नहीं पेमेंट का, तो वहाँ मुश्किल ये हुई कि शुरू में तो खुद ही प्रोग्राम लिख लिख के खुद ही ब्रॉडकास्ट किया, ना वहाँ अनाउंसर था, ना कोई वहाँ पे चपरासी था, ना कुछ था, बस एक स्टूडियो था जो मुझे दे दिया गया था, एक इंजीनियर मेरे साथ में थे जो मेंटेन करते थे। तो मैं चूंकि इंचार्ज था, तो चपरासी से लेकर डायरेक्टर तक की पोजीशन मेरी थी वहाँ पे
1: जी।
0: तो मैं सुबह आके क्लासेस पढ़ाना, वो अलग चीज़ है,
1: वो अलग,
0: ये एक्स्ट्रा काम था, तो ये मैंने किया, बड़ा अच्छा।
1: और एक खूबसूरत बात यह है कि आपने वहाँ भी तालिब इल्मों को रेडियो ही पढ़ाया।
0: फिर स्टूडेंट्स को मैंने शामिल किया कम्युनिटी रेडियो में। फिर
1: दूसरे तरीके से रेडियो का बड़ा अच्छा इस्तेमाल हो रहा है, जैसे पहले इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट के लिए होता था
0: जी जी,
1: लेकिन आज तालीम के लिए ज्यादा
0: इस्तेमाल, एजुकेशन पे भी बहुत इस्तेमाल हो रहा है।
1: आपकी शख्सियत का एक बहुत अहम पहलू है कि आप बहुत बहुत अच्छे अफसाने लिखते हैं, हमने पढ़े हैं आपके कई, मेरे ख्याल से मजमूए जो आपके हैं अफसानों के, जरूर मंजर आम पर आए होंगे
0: जी,
1: उनके बारे में भी हमारे सामने को बताएं।
0: देखिए, मैं अफसाने लिखता हूँ, बल्कि मेरा पहला जौक और शौक अफसाना लिखना ही था
1: जी।
0: कहानी मुझे पसंद थी, कहानियां मैं सुनता था बचपन में, फिर कहानियां सुनाने लगा और उसके बाद में फिर कहानियां दिखाने लगा, यानी फिल्मों में भी काम
1: जी,
0: किया
1: जी,
0: तो कहानियां दिख गई,
1: हर तरह का काम किया आपने।
0: जी जी, तो मेरे 2 अफसाने, अफसानों के मजमूए आ चुके हैं और 5 नावल आ गए हैं मेरे
1: जी। अफसाने के जो मजमूए हैं आपके, उनके कुछ नाम,
0: पहला मजमूआ है वो दिन,
1: वो दिन,
0: और दूसरा मजमुआ है

0: उसका नाम है ख्वाब नुमा।
1: ख्वाब नुमा जी, और पांच नॉवल भी आ गए हैं। ये जो हैं सातों अफसाने नॉवल मंजर आम पे हैं।
0: उसके अलावा किताबें मेरी बहुत सारी हैं। मैंने रेडियो पे बहुत इस टेक्नोलॉजी या प्रोग्राम मेकिंग पे मैंने किताबें लिखी हैं।
1: अच्छा, मास मीडिया से रिलेटेड भी आपकी किताबें हैं।
0: जी जी, क्योंकि
1: उनके नाम बता दे तो हमारे तालबिल मुझसे फायदा उठा सकते हैं जो मीडिया के लाइन में जाना।
0: जी जी, वो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम, ये इंग्लिश में है मेरी किताब।
1: उर्दू में भी कोई है?
0: उर्दू में भी है, उर्दू में है हिंदुस्तानी ब्रॉडकास्ट के रुमूज।
1: अच्छा, हिंदुस्तानी ब्रॉडकास्ट के रुमूज।
0: जी, बहुत सारे कोर्स में पढ़ाई जाती है, तो ये है। उसके अलावा मैंने फिल्मों पे बहुत लिखा। फिल्मों पे एक किताब मेरी जो बहुत मशहूर हुई है, और ख़ासतौर से हिंदुस्तान भर में तो हुई है, पाकिस्तान में भी उसके काफ़ी पसीराई हुई है, वो है हिंदी फिल्मों में मुस्लिम ख्वातीन या मुस्लिम अदाकारा,
1: वो जो हीरोइंस जो थी।
0: हीरोइंस, तो उसमें मैंने वो काम किया, उसमें मुझे अवार्ड भी मिला था मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट से।
1: बहसियत एक अफसाना निगार, आज के अफसाने को कहाँ देखते हैं आप तो खुद लिख रहे हैं मौजूदा दौर में।
0: देखिए, बदलाव तो एक नेचुरल है, चेंज आ गया है, अफसाने बहुत आगे बढ़ गए हैं। अफसानों का ट्रेडिशनल अंदाज जो था, वो जो प्रेमचंद का था, उसके बाद मंटो और असमत चुगताई और कुरतुलैन हैदर, और फिर उसमें हमारे उस्ताद काजी अब्दुल सत्तार, उनका अंदाज अलग था, वो सुनहरी दौर था। उसके बाद में जो अफसाना आया है उसमें अलामतें और बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, तजरीद आ गई है। पहले चूंकि तहरीक के तहत अफसाने लिखे गए, अदबी तहरीक हुआ करती थी, उसके बाद में तरक्की पसंद तहरीक, फिर जदीद तहरीक, फिर बाद
1: जदीद भी आई जी।
0: उसके बाद में अब तहरीकें सारी ख़त्म हो गई हैं,
1: मिला जुला है,
0: और जिसकी मर्जी जो है वो लिख रहा है।
1: प्रोफेसर गयासुर रहमान सैयद साहब, जो कि जीआर सैयद साहब के नाम से मशहूर हैं, अभी उनसे रूबरू प्रोग्राम के तहत हम गुफ्तगू कर रहे थे। और सामिन, अब ये गुफ्तगू को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।
0: शुक्रिया बहुत
2: सामिन। अभी आप रूबरू के तहत जनाब जीआर सैयद से उनकी बातचीत सुन रहे थे। आपसे महवे गुफ्तगू थे जनाब शुएब रजा खान। पेशकश थी इंतज़ार सैफी की। इसी के साथ अपनी मेज़बान फरीन इकबाल को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स पर। लीजिए पेश है समाचार, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन ने आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए चर्चा हुई। सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर भी चर्चा हुई। म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि समझौता नए बाजार खोलेगा, इससे निर्यात में वृद्धि होगी तथा निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों की दूसरी बैठक आज नई दिल्ली में हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने बैठक की सह अध्यक्षता की। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उन्होंने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और इसे और मजबूत करने के बारे में चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा साझेदारी आने वाले वर्षों में लगातार प्रगति करेगी। श्री सिंह ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा संबंध काफी मजबूत हुए हैं। श्री माल्स ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत ने अपनी रक्षा साझेदारी को और मजबूत किया है और दोनों पक्ष समुद्री क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश में रायसेन जिले के रामसिया गांव में राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। एक महीने तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य कृषि भूमि की रक्षा करना और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए प्रोत्साहित करना है। श्री चौहान ने कहा कि खेत बचाओ अभियान का उद्देश्य मिट्टी और कृषि भूमि की रक्षा करना है। उन्होंने किसानों से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग सीमित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर सृजित कर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। श्री मोदी ने कहा कि ये योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में आयोजित समारोह में 35 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों को विभाग बाद में आवंटित किए जाएंगे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि लोक अदालतों और जिला विधि सेवा प्राधिकरणों को तलाक निर्णय देने का अधिकार नहीं है और विवाह भंग करने का अधिकार केवल पारिवारिक

एक न्यायालयों के पास है। उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने एक महिला की उन्नाव स्थित जिला विधि सेवा प्राधिकरण के 2018 के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। वस्तु और सेवा कर का सकल संग्रह पिछले महीने 3.2% बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। पिछले वर्ष मई में ये 1,88,000 करोड़ रुपए था। मौसम विभाग ने आज गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और ओलावृष्टि की संभावना है। कल तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान में गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना है। हांगकांग में 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य सहित कुल 19 पदक जीते हैं। पदक तालिका में भारत दूसरे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: the sea, consistent with international law. The meeting was co-chaired by Defence Minister Rajnath Singh and Australian Deputy Prime Minister and Minister for Defence Richard Marles. In Myanmar, the death toll from a powerful explosion in Kongtop village of Namkam Township has risen to 55. More than 70 people were injured in the blast, which occurred yesterday, following the accidental detonation of materials allegedly stored for mining purposes. In the 22nd Asian Under-20 Athletics Championships, India delivered a historic campaign, finishing second in the standings with 19 medals comprising 10 gold, 5 silver and 4 bronze in Hong Kong. The runner-up finish marked India's best-ever performance at the Continental Track and Field Championships outside home turf. Prime Minister Modi has congratulated the Indian contingent on winning 19 medals. In the Under-17 Asian Wrestling Championships, Indian women grapplers delivered a strong performance, winning a total of 10 medals, including 2 gold, 3 silver and 5 bronze at Da Nang in Vietnam. Leading the charge, Diksha in 43kg category and Garima in 73 clinched the gold. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। इस समय स्टूडियो की घड़ी में 4:10:20 हो रहे हैं। समय है लापता व्यक्तियों से संबंधित सूचना का। इस क्रम में पहली सूचना एक अज्ञात मृत पुरुष की है, जिन्हें अंतिम बार दलित प्रेरणा स्थल के पास 16 मार्च 2026 को देखा गया था। सुबह के समय में ये मृत अवस्था में वहां मिले थे। इनके बारे में संक्षिप्त ब्यौरा इस प्रकार है। इनकी आयु लगभग 35 वर्ष, शरीर की बनावट सामान्य, इनकी लंबाई 5 फीट 4 इंच, और जिस वक्त इन्हें मृत अवस्था में पाया गया उस समय इन्होंने कमर पर एक पुरानी चोट के निशान के साथ इन्हें देखा गया था। इनके बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त होने पर आप थाना फेज 1 नोएडा में संपर्क कर सकते हैं या इनसे संबंधित सूचना प्राप्त कर सकते हैं। अगली जानकारी है लापता व्यक्तियों में सादिया की। इनका पूरा नाम है सादिया परवीन, डॉटर ऑफ जियालुद्दीन उर्फ रहमत। ये रहने वाली हैं कलोंदा पुलिस थाना जारचा कमिश्नरेट गौतम बुद्ध की। इनके बारे में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। इनका रंग गोरा है, इनका शरीर मजबूत है, लिंग महिला है और इनकी लंबाई 5 फीट है। इन्हें जिस समय देखा गया था अंतिम बार, उस समय ये काले रंग का ट्राउजर पहनी हुई थी और ब्राउन फ्रॉक पहनी हुई थी और पैरों पर हवाई चप्पल इन्होंने धारण किए हुए थे। इनसे संबंधित जानकारी के लिए एक नंबर है, वहां से भी आप जानकारी दे सकते हैं और वो नंबर इस प्रकार है 8433218281। नंबर एक बार फिर से नोट कीजिए 8433218281। इनसे संबंधित सूचना के लिए आप थाना जारचा कमिश्नरेट गौतम बुद्ध में संपर्क साध सकते हैं। अगले लापता व्यक्ति का नाम है रेशमा, जो डॉटर ऑफ सुकल हैं। ये निवासी ग्राम अमरगढ़ थाना जहीराबाद जिला बुलंदशहर की रहने वाली हैं। हालिया ये मकान ग्राम देवता

थाना सूरतपुर गाजियाबाद में गौतम बुद्ध नगर में रहती हैं। इनके बारे में संक्षिप्त ब्यौरा इस प्रकार है। उम्र 18 वर्ष, लिंग महिला, आंख, नाक और कद इनका औसत है और इनकी जो लंबाई है वो 5 फिट है। ये घर से बिना कुछ बताए कहीं चली गई हैं। इनके बारे में आपको कोई भी जानकारी प्राप्त हो तो आप थाना सूरजपुर कमिश्नरेट गाजियाबाद में संपर्क कर सकते हैं। अगला नाम है यशी ठाकुर का, जो पुत्री हैं रजनीश सिंह के। इन्हें अंतिम बार याकूबपुर गली नंबर 6 सेक्टर 85 नोएडा फेस 2 में देखा गया था। इनके बारे में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। इनकी उम्र 12 वर्ष 6 माह है, लिंग महिला है, शरीर की बनावट औसत है, इनकी ऊंचाई 147.32 सेंटीमीटर है। इनके बारे में जानकारी देने वालों को ₹5,000 नकद इनाम की राशि भी दी जाएगी। ये घर से बिना कुछ बताए कहीं चली गई हैं। इनसे सूचनार्थ आप थाना फेज 2 नोएडा में संपर्क कर सकते हैं। अगला नाम है गुमशुदगी में रिया तोमर का, जो पुत्री हैं चेतन प्रकाश की। ये ग्राम पृथ्वी राजपुर जिला एटा की रहने वाली हैं, किंतु वर्तमान में ये रामपुर फतेहपुर थाना दादरी गौतम बुद्ध नगर में रहती हैं। इन्हें अंतिम बार 7 मई 2026 को उनके ही घर पर देखा गया था। इनके बारे में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। लिंग महिला, आयु इनकी 16 वर्ष है, शरीर की बनावट सामान्य, इनकी ऊंचाई 5 फिट 6 इंच है। इनसे संबंधित जानकारी प्राप्त होने के लिए आप एक नंबर है जिस पर आप सारी जानकारी ले सकते हैं और वो नंबर है 7531012023। नंबर अंग्रेज़ी में 7531012023। इनसे संबंधित कोई भी जानकारी या सूचना अगर आपको प्राप्त है तो आप थाना दादरी गौतम बुद्ध नगर में संपर्क कर सकते हैं। लापता व्यक्तियों में अगला नाम है सोनू का, जो पुत्र हैं राम विशिष्ट के। ये निवासी ग्राम ढाई पोखर पोस्ट सिकटहा जिला संत कबीर नगर के रहने वाले हैं, किंतु वर्तमान में ये गैस एजेंसी के पास मथुरापुर ओमिक्रॉन ग्रेटर नोएडा थाना दादरी में रहते हैं। इनके बारे में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। लिंग पुरुष है, इनकी आयु 15 वर्ष है, शरीर की बनावट इकहरा बदन है इनका, रंग सांवला है और इनकी लंबाई 5 फिट 2 इंच है। ये मानसिक रूप से कुछ कमजोर हैं। इन्हें अंतिम बार इनके ही घर पर 1 मार्च 2026 को देखा गया था, जब ये बिना कुछ बताए घर से कहीं चले गए थे। इनसे संबंधित जानकारी प्राप्त होने पर आप थाना दादरी गौतम बुद्ध नगर में इत्तला कर सकते हैं। अगला नाम गुमशुदगी में है तृप्ति शर्मा का। इनके बारे में संक्षिप्त विवरण है। लिंग महिला है, आयु इनकी 16 वर्ष है, शरीर की बनावट सामान्य है, इकहरा बदन है, इनकी ऊंचाई 5 फिट है। ये भागीरथ शर्मा की पुत्री हैं और सेक्टर 49 नोएडा की निवासी हैं। इनके बारे में जानकारी प्राप्त होने पर एक नंबर है जिस पर आप इत्तला कर सकते हैं या इनसे संबंधित जानकारी ले सकते हैं।

0: www.caomod.nic.in. The Population Research Center under University of Kashmir has invited applications for the post of Associate Professor, one unreserved post, and Research Investigator, one SC post. The center functions under the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. Online application submissions last date is 12th June 2026, while hard copies may be submitted by 16th June 2026. For details, do refer to the website, that is at www.kashmiruniversity.net. I repeat, www.kashmiruniversity.net. The National Sugar Institute under the Department of Food and Public Distribution, Government of India, has invited applications for the post of a Senior Technical Assistant, Sugar Technology, on deputation basis. The post is Group B, non-gazetted, carrying pay matrix level 6 as per the 7 CPC. Eligible officers from central or state governments, PSUs, universities and autonomous bodies may apply within 60 days from the release of this advertisement in the Employment News. For details, do refer to the website, that is at www.nsi.gov.in. I repeat, the website is www.nsi.gov.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: Namaskar, Rozgar Samachar ke aaj ke ank ke saath main hoon Munish Sharma. आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट वरिष्ठ तकनीकी सहायक शर्करा प्रौद्योगिकी के एक पद के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। आयु 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। केवल उन्हीं उम्मीदवारों के आवेदनों पर विचार किया जाएगा जिन्हें चयन होने की स्थिति में तुरंत कार्यमुक्त किया जा सकता है। आवेदन उचित माध्यम से भेजे जाने चाहिए और उसके साथ ये दस्तावेज संलग्न होने चाहिए। बायोडाटा दो प्रतियों में, पिछले 5 वर्षों के ACR, नियुक्ता संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र। पात्र उम्मीदवारों के आवेदन इस पते पर पहुंचने चाहिए। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कल्याणपुर, कानपुर 208017। पद का विवरण, पात्रता शर्तों आदि के लिए देखिए राष्ट्रीय शर्करा संस्थान की वेबसाइट nsi.gov.in। डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन नीलगिरी तमिलनाडु इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। अवर श्रेणी लिपिक, सिविलियन मोटर ड्राइवर सामान्य ग्रेड, बहुकार्य कर्मचारी आशुलिपिक ग्रेड 2, पर्यवेक्षक नेटवर्किंग, नेटवर्क प्रशासक, हार्डवेयर प्रशासक, लाइनमैन, नाव निर्माता और तकनीकी परिचारक मुद्रण मशीन ऑपरेटर। कुल पदों की संख्या 78 है। आरक्षित पदों की जानकारी, योग्यता, वेतनमान और अन्य शर्तों के लिए देखिए डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज की वेबसाइट www.ids.nic.in। भारत सरकार का उपक्रम बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। उपप्रबंधक विपणन, सहायक प्रबंधक वाणिज्यिक, उपप्रबंधक सहायक प्रबंधक फीको प्रकार्यात्मक, मुख्य प्रचालन अधिकारी, मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी, अधिकारी प्रचालन अधिकारी ट्रैवल, कनिष्ठ अधिकारी ट्रैवल यूनिट हेड, कनिष्ठ अधिकारी आयात प्रचालन, कनिष्ठ अधिकारी विद्युत और रखरखाव, अधिकारी उत्पादन, सहायक प्रबंधक बिक्री और विपणन, अधिकारी वाणिज्यिक, अधिकारी लेखा और वित्त, अधिकारी बिक्री और विपणन तथा कनिष्ठ अधिकारी लेखा और वित्त। इन सभी पदों के लिए एक एक रिक्तियां उपलब्ध हैं। केवल इन पदों को छोड़कर ये पद हैं

0: अधिकारी, वाणिज्यिक अधिकारी, लेखा एवं वित्त और अधिकारी, बिक्री एवं विपणन, जिनके लिए पदों की संख्या 3 है। विस्तृत जानकारी, पात्रता मानदंड, आयु, शैक्षणिक योग्यता और अनुभव, आयु में छूट तथा आवेदन प्रक्रिया की जानकारी के लिए देखिए बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड की वेबसाइट www.bamarlorry.com/careers/current-openings। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
2: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। निजी प्रस्तुत है न्यूज मैगजीन परिक्रमा।
3: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
4: नमस्कार। कार्यक्रम परिक्रमा में आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। हम आपके लिए लेकर आए हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं आकर्षिता सिंह और मेरे साथ है मेरी को होस्ट सायरा मुश्तबा। सायरा, आपको भी मेरा नमस्कार।
5: नमस्कार आकर्षिता, आदाब एंड अ वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हु हैव जॉइंड अस इन दिस वेरी वेरी फ्रेश एपिसोड ऑफ परिक्रमा। एंड यस, आकर्षिता हैज ऑलरेडी अपडेटेड यू टू व्हाट टू लुक फॉरवर्ड टू इन टुडेज शो। आज वे दस्तूर हम देश की परिक्रमा पे निकलेंगे एंड वील गो टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री वेयर आवर कॉरेस्पॉन्डेंट्स आर स्टेशन्ड विद सम इंटरेस्टिंग स्टोरीज। बिकॉज आकर्षिता, सारी खबरें तो हम लोग अपने बुलेटिन में नहीं समेट पाते ऑफकोर्स, एंड देर आर स्टिल सो मेनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज दैट नीड टू shared with our very special listeners. So that's why we are here every day exactly at 4:30 to bring those stories to you.
4: और सायरा, आजकल के टाइम में जब नेगेटिव न्यूज इतनी ज्यादा हावी है तो हम कुछ पॉजिटिव खबरें भी लाते हैं अपने साथ। बहुत ढेर सारे जो हमारे राज्य हैं वहां से कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी होती ही है, तो कहीं ना कहीं आजकल की जो डिमांड है वो पॉजिटिव न्यूज भी है।
5: एब्सोल्युटली, आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट थिंग दीज डेज दैट वी शुड लुक फॉर पॉजिटिविटी अराउंड, नॉट जस्ट यू नो इन डिफरेंट अदर प्लेसेस बट ऑल अराउंड अस। एंड आई थिंक दैट विल बी ओनली एबल टू मे बी सी इट आकर्षिता व्हेन वी हैव अ positive outlook towards life. कहते नहीं, अगर पानी का ग्लास कुछ लोग के लिए आधा भरा है, दूसरों के लिए आधा खाली भी है, so it's your perspective that matters most. So, but nonetheless, we make an effort that we bring good, happy and positive stories in Parikrama. So why not start with the headlines first, आकर्षिता?
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की।
5: India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement comes into force, gives Indian exporters duty-free market access in Oman to 98% of tariff lines.
4: पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्री परिषद का विस्तार किया, 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ।
5: Gross GST collection rises to over 1,94,000 crore rupees in May.
4: पश्चिम एशिया में तनाव फिर तेज, अमेरिका ने ईरान में रडार और ड्रोन प्रणालियों पर हमले किए।
5: And India ends impressive campaign at Asian Under 20 Athletics Championships with 19 medals, including 10 gold in Hong Kong. And now we open our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. Today we are going to talk about the PM Swanidhi scheme that has completed 6 years today. Well, we bring you stories that live not in headlines alone, but in the heartbeat of everyday life. Today,

0: we take you to the narrow lanes, the crowded markets and vibrant corners of India's cities and towns, where a quiet revolution has been unfolding for the past 6 years. A revolution powered by small cards, small loans and very big dreams. It is the story of PM Swanidhi scheme, which has now completed 6 years. Look around any busy Indian market. A fruit seller is arranging mangoes. A tea stall is steaming in the morning rush while a cobbler under a tree is carefully stitching a shoe. A vendor selling phone covers, bangles and other knickknacks. For decades, these small entrepreneurs formed the invisible backbone of urban India. But access to formal credit, well, that was often out of reach. That's where the story begins.
1: PM Swanidhi mein.
2: हमारे जो रेहड़ी वाले भाई बहन हैं, ठेला लगाने वाले हैं, उन्होंने इस दौरान बहुत कष्ट झेले हैं। अब हमारा कर्तव्य है उन्हें ताकतवर बनाने का।
3: कोरोना लॉकडाउन से प्रभावित रेहड़ी पटरी वालों के लिए है पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, यानी पीएम स्वनिधि में 10,000 रुपए तक का बिना किसी सिक्योरिटी के लोन, समय से भुगतान पर 7% की दर से ब्याज सब्सिडी और अगली बार ज्यादा लोन भी पा सकते हैं।
4: इतना ही नहीं, डिजिटल लेन देन पर 1200 रुपए तक का सालाना कैशबैक। आत्मनिर्भर होगा रेहड़ी पटरी का हर जन जब मिलेगा पीएम स्वनिधि से धन। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें पीएम स्वनिधि वेबसाइट या संपर्क करें नजदीकी म्युनिसिपैलिटी से।
3: आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: क्या हो अगर रेहड़ी पटरी वालों को बिना किसी हिचकिचाहट के ऋण दिया जाए? जी हाँ, ये योजना इसी बारे में है। पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर खोलकर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। यह योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। इस योजना के तहत रेहड़ी पटरी वालों को 3 अलग-अलग चरणों में बिना किसी गारंटी के लोन मिलता है। एक बार में 15,000, फिर 25,000, उसके बाद 50,000। कोई भारी भरकम कागजी कार्रवाई नहीं, कोई प्रॉपर्टी की गारंटी नहीं, बस एक मौका। और कई लोगों के लिए तो ये उनका पहला औपचारिक लोन है। और सायरा, अगर हम बात करें तो जो रेहड़ी पटरी हैं या जिनके पास कोई ऐसा कुछ नहीं होता जो एज अ कोलेट्रल दे सके, उनके लिए ये बहुत मुश्किल होता है लोन लेना। तो ये कहीं ना कहीं जो हमारे बहुत छोटे जो है रेहड़ी पटरी ठेला लगाने वाले, उनके लिए बहुत ही सकारात्मक कदम है कि वो आत्मनिर्भर बन पाएं। और कहीं ना कहीं ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भी एक अहम कदम है।
0: Well, that's right, Akarshita. And if we talk about the scale, because Swanidhi isn't small in impact. Since its launch 6 years ago, over 1.12 crore loans have been disbursed, more than 75 lakh street vendors have benefited, and over 17,800 crore rupees have been provided as credit support. But numbers alone don't tell the full story. If you stand in a crowded bazaar where life begins before sunrise, here every vendor has a story, and many of them now share a common turning point, that is Swanidhi. Earlier, some of them borrowed money daily just to buy milk and even tea leaves. Interest was high and pressure was constant. Now, when they get a government loan, their shop feels stable. For some vendors, the biggest change is digital payment. I think that is the revolution that has come, especially with UPI, isn't it? And well, even small customers, they pay by UPI. No more worrying about change or cash shortages. UPI beep you hear in the small nook and lanes of busy markets, well, that's become the new sound of India's street economy.
5: और सायरा, अगर बात करें इस योजना की उपलब्धियों की, तो 2020 में शुरू की गई इस योजना ने अब तक, जैसा कि आपने बताया, कि 75 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को लाभ पहुंचाया है, जिनमें 55 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है। आज हम देखते हैं कहीं भी रेहड़ी पटरी वालों को, इनफैक्ट एक फुल्की तक खाते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पे QR कोड लगा रहता है, स्कैनर लगा होता है। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि इस योजना के तहत डिजिटल जो एक कनेक्शन बढ़ा है वो भी काफी ज्यादा सराहनीय है। और इन लाभार्थियों ने 8.96 लाख करोड़ रुपए के डिजिटल लेन देन किए हैं। सिर्फ आप समझ सकते हैं कि आप एक जो शू जो आपका बनाता है वो, उसके पास स्कैनर है, एक सब्जी वाले के पास स्कैनर है। तो पहले जो होता था कि छुट्टा नहीं है भैया, अरे भैया डिस्काउंट दे दो, वो जो था वो खत्म हो गया कहीं ना कहीं। और लाभार्थियों को 800 करोड़ रुपए से अधिक के कैश बैक और ब्याज सब्सिडी भी दी गई है। समय पर चुकाने पर ब्याज सब्सिडी और क्रेडिट गारंटी भी दी गई है। और सफल चुकान वालों को 30,000 रुपए तक का रुपए क्रेडिट

0: कार्ड भी दिया जाता है। स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम के तहत परिवारों को अन्य कल्याणकारी योजनाओं से भी जोड़ा जाता है और वित्तीय डिजिटल साक्षरता और खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण भी उन्हें दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं सिर्फ ये एक योजना नहीं है जिसमें उन्हें ऋण दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं उन्हें समाज की मुख्यधारा से भी हम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो गरीब होते हैं वो इनमें पिछड़े रह जाते हैं। इंटरनेट हो, फिर चाहे इक्विपमेंट्स की बात हो, चाहे मोबाइल फोन जो है चलाने की बात हो, तो कहीं ना कहीं वो भी इससे जुड़ रहे हैं मुख्य धारा से।
1: That's very right, Akarshita. And if we take a look what economists have to say, well, they say that the biggest impact of Swanidhi is not just financial, it is structural. It brings street vendors into the formal credit system for the first time at scale, reduces dependence on informal money lenders, and creates a bridge between small informal businesses and India's growing digital economy.
0: सरकार ने योजना की सफलता को देखते हुए इसे मार्च 2030 तक बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है, जो अनौपचारिक शहरी अर्थव्यवस्था को मुख्य धारा से जोड़ने में सफल रहा है। ये वित्तीय समावेशन का सबसे बेहतर उदाहरण है। ये सिर्फ पैसे ही नहीं देता बल्कि पहचान, क्रेडिट हिस्ट्री और लंबे समय के अवसर भी देता है। अब आप किसी भी शहर में घूमकर देखिए, आपको फर्क साफ नजर आएगा। जैसे कि हमने बात की थी कि सब्जियों की टोकरियों के पास लगे QR कोड, चाय के ठेले जो UPI पेमेंट स्वीकार कर रहे हैं, सड़कों पर चलने वाली रेहड़ियां जिनका कैश फ्लो अब ज्यादा आसान है और जो ज्यादा आत्मविश्वास के साथ अब आगे बढ़ रही हैं।
1: That's right. Perhaps the most important change, well, that is dignity. Yes, a sense that small businesses are no longer informal in spirit, even if they remain small in scale. They are recognized, supported, and empowered. The government has now extended the scheme until March 2030, as you have just mentioned, Akarshita, signaling that this is not the end but a continuation of a longer journey, a journey where India's street economy becomes stronger, more resilient, and more connected.
0: पीएम स्वनिधि योजना सिर्फ एक सरकारी नीति नहीं है, ये एक ऐसा बदलाव है जो हम सबके आसपास हो रहा है, हमारे गली मोहल्लों बाजारों में। पीएम स्वनिधि के लाभार्थियों का दृढ़ संकल्प और उनकी उद्यमशीलता देश की अर्थव्यवस्था को लगातार मजबूत कर रही है। और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर उत्तर प्रदेश में 5 जून से 21 जून तक विकास, सेवा, सुशासन और जन कल्याण की उपलब्धियों को समर्पित व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा।
2: अभियान के तहत 5 जून से 21 जून के बीच प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में लगभग 10 किलोमीटर की प्रगति पथ यात्रा आयोजित की जाएगी। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण और 8 जून से 14 जून तक जनसंपर्क अभियान, संवाद कार्यक्रम और पैदल मार्च आयोजित किए जाएंगे। 11 से 14 जून तक मीडिया संवाद कार्यक्रम होंगे। 14 से 16 जून के बीच जन कल्याण मेलों का आयोजन होगा। वहीं 16 और 17 जून को जिला स्तर पर विकसित भारत संकल्प सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। 18 एवं 19 जून को केंद्र सरकार के 12 वर्षों की विकास यात्रा तथा विकसित भारत के संकल्प को प्रदर्शित करने के लिए विशेष प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यह अभियान जनता से सीधे संवाद स्थापित करने, लाभार्थियों तक पहुंचने, उनकी अपेक्षाओं को समझने तथा विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को जन आंदोलन में परिवर्तित करने का प्रभावी माध्यम बनेगा। राघवेंद्र त्रिपाठी के साथ परिक्रमा के लिए आकाशवाणी गोरखपुर से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: और सायरा, जैसे जैसे पूरी दुनिया में जो पर्यावरण संकट है वो गहराता नजर आ रहा है, हम भारत में भी देख रहे हैं कि ऊर्जा के क्षेत्र में और पर्यावरण संकट को झेलने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं और शायद इन्हीं प्रयासों से ग्रीन कॉरिडोर अभियान भी शुरू किया जा रहा है कई राज्यों में, जिनमें गोवा ने भी ऐसी ही एक पहल की शुरुआत की है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर गोवा सरकार पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की दिशा में एक नई पहल शुरू करने जा रही है। इसके तहत राज्य भर में व्यापक वृक्षारोपण और हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन कॉरिडोर अभियान शुरू किया जाएगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता
3: से। हरित बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार 5 जून से ग्रीन कॉरिडोर अभियान शुरू करने जा रही है। 90 दिनों का यह अभियान

0: राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के किनारे चलाया जाएगा और 5 सितंबर तक जारी रहेगा। अभियान के तहत सड़कों के किनारे बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया जाएगा। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बताया है कि इस अवधि के दौरान करीब 10 लाख पौधे लगाए जाने की संभावना है। हर पौधा एक हरित भविष्य की ओर कदम है और इसी संकल्प के साथ गोवा एक स्वच्छ, हरित और संतुलित पर्यावरण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। परिक्रमा के लिए निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: And Akarshita, we all know that Akashvani is has celebrated 90 years, 90 glorious years rather, of its service to the nation. And everywhere, even in Delhi, Akashvani, we had a walkathon.
2: Walkathon.
1: And even Akashvani Cuttack organized a vibrant walkathon that brought together listeners, employees, presenters, anchors, and retired staff members as well, in a spirited display of unity, wellness, and community participation. Let's hear more from our correspondent.
3: The walkathon witnessed participation from more than 400 people, reflecting the enduring bond between Akashvani and its audience. The walkathon commenced from the Jawaharlal Nehru Indoor Stadium and passed through various parts of the city, spreading the message of fitness, togetherness and public awareness. Flagging off the walkathon as Chief Guest Justice Savitri Rotha of the High Court of Odisha highlighted the growing importance of physical fitness in contemporary society. Recalling her lifelong association with Akashvani, she said that the programs broadcast by the public service broadcaster had played a significant role in shaping childhood.
4: It's a great privilege for me to be part of this program, 90 years of Akashvani. We have been hearing Akashvani early in the morning before going to school, and hope we keep hearing Akashvani throughout our lives.
3: Justice Sivasankar Mishra and Commissioner of Cuttack Municipal Corporation Kirandip Kaur Sahota also attended the event.
5: The walkathon not only marked a milestone in Akashvani's illustrious journey, but also reinforced its commitment to public engagement, social awareness, and nation building through meaningful community initiative. For Parikrama, this is Itishri Singh.
6: कूनों के जंगलों में चीतों के पंजों के निशान और गहरे होते जा रहे हैं। चीता परियोजना की ताजा खबर क्या है और ये कामयाबी कितनी बड़ी है, बता रहे हैं भोपाल से आकाशवाणी संवाददाता अभिनव गोयल।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी चीता परियोजना को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में एक और बड़ी कामयाबी मिली है। हाल ही में मादा चीता निर्वा और उसके 3 शावकों को बाड़े से निकालकर खुले जंगल में छोड़ा गया। इस नई बढ़त के साथ अब कूनो के खुले वन क्षेत्र में घूमने वाले चीतों की कुल संख्या 20 हो गई है। वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक निर्वा के साथ छोड़े गए 3 शावकों में 2 नर और 1 मादा हैं। इनकी उम्र करीब 13 महीने है। इन सभी को श्योपुर जिले के पालपुर ईस्ट रेंज के आहेरा पर्यटन क्षेत्र में रिलीज किया गया है। चीता परियोजना के फील्ड डायरेक्टर ने बताया कि सभी चीते पूरी तरह स्वस्थ हैं और जंगल के माहौल में अच्छी तरह ढल रहे हैं। उन्होंने इसे परियोजना की बड़ी उपलब्धि बताया है। जंगल में छोड़े जाने के बाद इन चीतों की रेडियो टेलीमेट्री सिस्टम के जरिए 24 घंटे निगरानी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 में अपने जन्मदिन पर कूनो नेशनल पार्क से इस परियोजना की शुरुआत की थी। उन्होंने खुद नाम्बिया से लाए गए पहले 8 चीतों को जंगल में छोड़ा था। पीएम नरेंद्र मोदी की इस पहल के बाद से कूनो में चीतों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। परिक्रमा के लिए अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
6: विख्यात गायिका पद्मभूषण से सम्मानित सुमन कल्याणपुर के पार्थिव देह का आज मुंबई में अंतिम संस्कार किया गया। उनका कल 89 वर्ष की आयु में मुंबई स्थित उनके निवास स्थान पर निधन हो गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है। अधिक जानकारी के लिए चलते हैं हमारी मुंबई संवाददाता के पास।
8: सुमन कल्याणपुर के करियर की एक विशेषता ये थी कि उनकी आवाज महान गायिका लता मंगेशकर से काफी मिलती जुलती थी, जिसके कारण कई श्रोता उनके गीतों को लता मंगेशकर के गीत समझ बैठते थे। लेकिन संगीत अभ्यासक और गायिका डॉक्टर मृदुला दाढ़े जोशी का कहना है कि इस समानता के बावजूद सुमन कल्याणपुर की आवाज में कुछ ऐसी विशेषताएं थी जिनकी वजह से उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। सुनते हैं खुद मृदुला दाढ़े जोशी से।
6: सुमन जी की आवाज, उनकी गायकी, इन चीजों का विचार अगर हम किसी अन्य सुर के साथ, अन्य आवाज के साथ ना करें, तो वो सुमन जी को सही मायने में श्रद्धांजलि होगी। क्योंकि कई सारी बातें ऐसी है जो सुमन

कल्याणपुर जी को अलग स्थापित करती है। खास तौर पर उनकी आवाज में जो एक वाइब्रेटो था, उनकी आवाज एक अलग किस्म से वाइब्रेट होती थी, कंपित होती थी, और ये सिर्फ और सिर्फ सुमन जी की आवाज में ही हम पाते हैं। मेरे

एक पत्रकार के रूप में उन्होंने अलीगढ़ ओपिनियन शुरू किया था। उन्होंने बॉम्बे क्रॉनिकल में लंबे समय तक बतौर संवाददाता और फिल्म समीक्षक के रूप में काम किया। शहर और सपना के अलावा अहमद अब्बास की दो फिल्मों सात हिंदुस्तानी और दो बूंद पानी, फिर से सुन ले कृपया करके, दो बूंद पानी ने राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार जीते। 1946 में आई उनकी फिल्म नीचा नगर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति जुटाने में कामयाब रही और इसने कांस फिल्म समारोह में पाल्मे डियोर पुरस्कार जीता। दूसरी ओर 1957 में आई उनकी फिल्म परदेसी भी इसी पुरस्कार के लिए नामित होने में सफल रही। उन्हें 1969 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आइए सुनते हैं उनकी फिल्मों के ये गीत। मेरा

सिर्फ 6 साल की उम्र में नरगिस ने 1935 में आई फिल्म तलाशे हक के अभिनय की शुरुआत की थी इसी फिल्म से, और 1940 और 50 के दशक में नरगिस ने कई फिल्मों में काम किया और 1957 में प्रदर्शित महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया नरगिस की सर्वाधिक चर्चित फिल्मों में से एक रही। इस फिल्म को ऑस्कर के लिए भी नामित किया गया था। आइए सुनते हैं इसी फिल्म से ये गीत।

0: भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया।
1: Now we are remembering Ismail Darbar today, and of course we all know that he was a composer and singer as well. लेकिन उनकी सबसे ज़्यादा

0: और सायरा, अब समय हो चला है अपने श्रोताओं से हमें अनुमति लेने का, और तो इजाजत दीजिए आकर्षिता और सायरा को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ओम मिन आउं लाइन ने आज नई दिल्ली में ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के बारे में द्विपक्षीय वार्ता की। इस दौरान सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति व्यापार और उद्योग जगत के साथ बातचीत के लिए कल मुंबई भी जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। इस समझौता पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में बताया कि इस समझौते के लागू होने से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों और कपड़ा, खेल वस्त्र, कृषि उत्पाद, फार्मा तथा चिकित्सा उपकरण, चमड़ा, ऑटोमोबाइल और समुद्री उत्पाद जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले प्राथमिकता मिलेगी।
2: I am confident that this comprehensive agreement
3: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता पर श्री गोयल के एक लेख को साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह समझौता भारतीय निर्यातकों को बाजारों में विविधता लाने, रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। इस दौरान क्षेत्र में निर्बाध व्यापार तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप समुद्र के अन्य वैध उपयोगों के लिए मजबूत समर्थन भी व्यक्त किया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियों पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रहा है।
4: डोमेस्टिक LPG घरेलू कुकिंग गैस के संबंध में पिछले 3 दिनों में 1,21,00,000 बुकिंग्स रिसीव हुई हैं, उसके अगेंस्ट 1,22,00,000 डिलीवरीज की गई हैं और 95% डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई हैं।
1: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश में रायसेन जिले के रामसिया गांव में राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। 1 महीने तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य कृषि भूमि की रक्षा करना और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए प्रोत्साहित करना है। श्री चौहान ने कहा कि खेत बचाओ अभियान का उद्देश्य मिट्टी और कृषि भूमि की रक्षा करना है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि लोक अदालतों और जिला विधि सेवा प्राधिकरणों को तलाक निर्णय देने का अधिकार नहीं है और विवाह भंग करने का अधिकार केवल पारिवारिक न्यायालयों के पास है। न्यायालय की लखनऊ पीठ ने एक महिला की उन्नाव स्थित जिला विधि सेवा प्राधिकरण के 2018 के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी

0: लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को नमस्कार। मैं
1: नमस्कार।
0: हूं आपके साथ प्रीति
1: और मैं शाहिद।
0: लेकर हाजिर हैं कार्यक्रम जो कि लोक संगीत से सजा हुआ है और इस कार्यक्रम का हमारे जो सुनने वाले हैं बड़ा ही बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। तो सुनवाते हैं सबसे पहले प्रियंका चौधरी को जो हमारे हाथों की उंगलियों के बारे में कुछ बता
1: जी
0: रही
1: हाँ,
0: हैं।
1: बता रही कि ये बातें कैसे करती हैं।
0: तो आइए सुनते हैं उनकी ये बातें।

0: उंगलियां आपस में बतलाएं, ये आपने सुना प्रियंका चौधरी की आवाज़ में।
1: और कितने अच्छे से उन्होंने पांचों चार उंगलियां और एक अंगूठे के बारे में बताया कि चार उंगलियां, चार कहानी और एक अंगूठा, उसकी भी
0: जी
1: एक कहानी।
0: इसमें भी देखिए कि दुनियादारी, जिंदगानी और
1: सब कुछ कह दिया।
0: अध्यात्म सब कुछ जोड़ दिया।
1: बिल्कुल, तो ऐसे ही महत्व है जिंदगी में हर चीज का। तो चलिए अब हम अगला गाना सुनते हैं रोली बरुआ की आवाज में।

0: तो अभी आप सुन रहे थे
1: डोली बरुआ की आवाज में ये लोकगीत। और अब हम अगला लोकगीत सुनवाने जा रहे हैं
0: रचना
1: रचना
0: शर्मा
1: शर्मा
0: की
1: की
0: आवाज़ में।
1: आवाज में।

0: अभी आप सुन रहे थे रचना शर्मा की आवाज़ में ये लोकगीत, और अपने लोकगीत के माध्यम से उन्होंने इतनी बातें कह दी भाई, इतनी बातें कह दी जिसमें हंसी भी है, ठिठोली भी है और छेड़ना भी
1: शिकायत
0: है।
1: भी है।
0: बिल्कुल
1: तो आइए अब अपने जो है कि श्रोताओं को सुनवाते हैं रोली बरुआ की आवाज़ में एक बार फिर ये कोयल क्या कहती है।

0: कोयल बिन बगिया ना सोहे राजा। हकीकत में प्रीति, ये जो है कि कोयल तो एक प्रतीक था रिश्तों की महिमा, इन्होंने जो बड़ी सुंदरता के साथ
1: जी
0: बयां किया।
1: बिल्कुल, और इसी के साथ कार्यक्रम लोकरंजनी यही संपन्न होता है। सुनने वाले हमारे सभी साथियों को नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पराशर और संयोजक थे शिवनंदन लाल।

0: अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंजनी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। शाम के 5:30 होने को हैं। आइए सुनते हैं दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
1: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में। और आज मैं हूं आपके साथ दीपिका जसवाल, और आज मेरे साथ हैं
1: अभिनव कुमार झा। नमस्कार साथियों।
0: और आईपीएल की शुरुआत आज एक बड़ी खबर से करेंगे, और वो बड़ी खबर है आईपीएल 2026 का खेला गया फाइनल मुकाबला दूसरी बार फिर से आरसीबी ने अपने नाम किया। जी हाँ, खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में आज ये बड़ी खबर। 19वां सीजन था आईपीएल का, और आरसीबी लगातार दूसरी बार चैंपियन बनती है, अपने ताज को बचाती है और वापस घर ले जाती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो और भी खबरें हैं, हॉकी भी है, स्क्वैश भी है, और साथ ही साथ रेसलिंग से जुड़ी भी जानकारियां हैं। उन सभी के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।

0: रोशनी से जगमगाता मैदान, लाखों दिलों की धड़कनें तेज, और आखिरकार वो पल आ ही गया जब पूरे सीजन की मेहनत ने इतिहास रच दिया। आईपीएल 2026 का ताज सज चुका है। जुनून, संघर्ष और शानदार खेल के दम पर इस टीम ने करोड़ों फैंस का सपना सच कर दिखाया, और कल रात सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि क्रिकेट के सबसे बड़े मंच पर गौरव, गर्व और ग्लोरी का उत्सव मनाया जा रहा है।
1: 19 ओवरों का तनाव, आखिरी ओवर का रोमांच और फिर पूरे स्टेडियम में गूंज उठा जीत का शोर। आईपीएल 2026 के इस ऐतिहासिक फाइनल में जिस टीम ने दबाव को मात देकर ट्रॉफी उठाई, उसने साबित कर दिया कि चैंपियन वही होते हैं जो बड़े मंच पर सबसे बड़ा प्रदर्शन करें। ये सिर्फ एक खिताब नहीं बल्कि पूरे सीजन की मेहनत, भरोसे और जज्बे की शानदार कहानी है।
0: और ये कहानी इस बार दोहराई। आरसीबी ने लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब जीतकर अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कल खेले गए आईपीएल 2026 के रोमांचक फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब अपने नाम कर लिया।
1: कप्तान रजत पाटीदार के टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने के फैसले को आरसीबी के गेंदबाजों ने पूरी तरह सही साबित किया और शानदार गेंदबाजी के दम पर गुजरात टाइटंस को निर्धारित 20 ओवरों में 8 विकेट पर महज 155 रनों पर रोक दिया। गुजरात की ओर से वॉशिंगटन सुंदर ने अकेले संघर्ष करते हुए कुछ अच्छे शॉट जरूर लगाए, लेकिन बाकी बल्लेबाज आरसीबी की सदी हुई गेंदबाजी के आगे बेबस नजर आए।
0: जवाब में 156 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी की शुरुआत बेहतरीन रही। स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने आईपीएल फाइनल में अपने अनुभव का लोहा मनवाते हुए शानदार बल्लेबाजी की और अपने आईपीएल करियर का सबसे तेज अर्धशतक जड़ दिया।
2: It's stuff that you dream of. I've thought of this moment many times that, you know, once when we win the IPL, I should be standing there hitting the winning runs, and tonight it was possible. So yeah, just a dream day for us, and as I mentioned straight after the game as well, we just felt really relaxed coming to the game today and really confident about how we wanted to go about our game and what kind of team we have, and that gives you confidence to just

0: you know, see any kind of situation through. But yeah, in a chase, I felt really comfortable out there knowing exactly what to do.
1: उन्होंने अंत तक नाबाद रहते हुए 75 रनों की जाबाज पारी खेली और टीम को बेहद आसानी से जीत की दहलीज के पार पहुंचा दिया।
2: राशिद खान ने बीच में 2 विकेट लेकर गुजरात की मैच में वापसी कराने की कोशिश जरूर की श्रोताओं, लेकिन कोहली के संयम और आरसीबी के मजबूत मध्यक्रम के आगे उनकी एक ना चली। इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही आरसीबी चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बाद आईपीएल इतिहास में लगातार 2 बार बैक टू बैक ट्रॉफी जीतने वाली तीसरी फ्रेंचाइजी बन गई है।
3: Yeah, it was clear plan. I think when we win the toss, it's easy to chase, you know, and our plan was easy to get their top three in the power play, so it will be easy for us. And the way our bowler bowled throughout the tournaments in this match, I think it was superb. And the way Bhuvi, Hazelwood, and Rasik, I want to mention every bowler, KP, Suyash, Sheppy, I think they bowled brilliantly throughout the tournament. So this one is for you again, RCB fans.
1: आईपीएल 2026 के फाइनल मैच के बाद आयोजित हुए पुरस्कार समारोह में व्यक्तिगत खिलाड़ियों और टीमों को कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा गया। इस सीजन के सबसे बड़े स्टार रहे राजस्थान रॉयल्स के 15 वर्षीय ओपनर वैभव सूर्यवंशी, इलेक्ट्रिक सुपर स्ट्राइकर कहें या फिर सबसे ज्यादा छक्के लगाने का अवार्ड कहें या एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन कहें या फिर प्रतिष्ठित ऑरेंज कैप के हकदार कहें, तो एक ही नाम था, वैभव सूर्यवंशी।
4: प्राउड मूवमेंट है और अच्छा लग रहा है और ट्राई करूंगा और अच्छा करूं नेक्स्ट सीजन भी। बस ट्राई करता हूं अपने गेम को बैक करूं और अगर मुझे लग रहा है कि ये बॉल मैं मार सकता हूं तो मैं ऑल आउट जाता हूं और उसी तरीके से खेलने का ट्राई करता हूं।
1: तबाही मचाते हुए कुल 5 बड़े अवार्ड्स अपने नाम किए और वैभव ने सीजन में सबसे ज्यादा 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीती और इसके साथ ही उन्हें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन, एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन, जिसमें 237.30 के धमाकेदार स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करने के लिए उन्हें सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन और सीजन में सबसे ज्यादा 72 छक्के लगाने के लिए सुपर सिक्सेस ऑफ द सीजन का पुरस्कार दिया गया।
2: वहीं दूसरी ओर पूरे टूर्नामेंट में अपनी सटीक गेंदबाजी से बल्लेबाजों को परेशान करने वाले गुजरात टाइटंस के तेज गेंदबाज कागिसो रबाडा ने 17 मैचों में सर्वाधिक 29 विकेट चटकाकर पर्पल कैप पर अपना कब्जा जमाया।
1: समारोह का सबसे बड़ा पल तब आया जब आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार और दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली ने चमचमाती हुई आईपीएल 2026 की ट्रॉफी को अपने हाथों में उठाया। उनकी टीम ने इस साल केवल खेला ही नहीं बल्कि पूरे टूर्नामेंट में अपना दबदबा बनाया, जबकि कोहली ने अपनी टीम के खिलाड़ियों के जज्बे और मुश्किल परिस्थितियों में भी शांत रहने की बिल्कुल मुश्किल परिस्थितियों में शांत रहने की और एकजुट होकर खेलने की और पूरे टीम के बैलेंस को इस बार सलाम करती है पूरा का पूरा भारतवर्ष, क्योंकि आरसीबी ने दूसरी बार ये टाइटल अपने नाम किया है। और इस इतनी बड़ी अचीवमेंट पर क्या कहते हैं एक्सपर्ट फॉर्मर क्रिकेटर भूप सिंह जी, आइए सुनते हैं।
5: आरसीबी की बड़ी बैलेंस टीम है और पिछले साल ट्रॉफी जीतने के बाद में उनका कॉन्फिडेंस काफी हाई है। बॉलिंग भी अच्छी है, बैटिंग भी अच्छी है और फील्डिंग भी उन्होंने बड़ी अच्छी करी है। और देखने वाली बात यह है कि उनकी टीम एक इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड नहीं करती, पूरी टीम एक तरीके से खेलती है। अगर हम बैट्समैन को लेंगे तो कोहली है, पडिकल है और उनके जो कैप्टन है पाटीदार, और उसके बाद में जो उनके मिडल ऑर्डर बैट्समैन है वो भी बहुत अच्छा खेलते हैं। जहां तक बॉलर्स की बात है, उनके पास विकेट टेकिंग बॉलर्स हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार एंड अदर बॉलर्स हैं उनके पास, तो एक बहुत ही अच्छी वेल बैलेंस्ड टीम है जो ये टूर्नामेंट जीत गई है।
1: जीत के साथ साथ हम शुभमन गिल के कंट्रीब्यूशन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, उन्होंने टीम को जिताने में अपना पूरा दमखम लगा दिया।
5: हाँ, शुभमन गिल इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा खेले, बट उनका प्रॉब्लम ये है उनकी टीम का कि उनकी टीम में जो पहले 3 बैट्समैन है उनके ऊपर काफी वो डिपेंड करते हैं, जैसे शुभमन गिल, साई सुदर्शन और बटलर। इस मैच में फाइनल में तीनों ने स्कोर नहीं किया, इसलिए उनकी टीम हार गई, अदरवाइज उनका भी जीतने का बहुत अच्छा चांस था। एज फार एज शुभमन गिल की कैप्टनसी इज कंसर्न्ड, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से कैप्टनसी की और अपनी टीम को फाइनल तक लेके आए।
1: ओवरऑल फाइनल के प्रेशर की अगर बात करें तो कहा जा सकता है कि गुजरात टाइटंस जो है उस प्रेशर से बाहर नहीं निकल पाई।
5: एक्चुअली प्रेशर था स्कोर सेट करने का, क्योंकि पहले बैटिंग गुजरात

0: टाइटंस की आई थी, तो वो चाहते थे कि 200 से ऊपर स्कोर किसी तरीके से सेट करें, लेकिन उस चक्कर में उन्होंने कुछ गलत शॉट खेल दिए और जिसके कारण पहले 3-4 विकेट बहुत जल्दी गिर गए और उसके कारण पूरी टीम प्रेशर में आ गई।
1: और आरसीबी को मिल गई लगातार दूसरी जीत, और ये जीत इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है। और अब ये चौके और छक्कों की जो बारिश है, उसका फैंस को इंतजार रहेगा आईपीएल के अगले सीजन का।

0: और अब क्रिकेट की ही बात को आगे बढ़ाते हैं और भारतीय महिला टीम का इंग्लैंड महिला टीमों के बीच चल रही T20 इंटरनेशनल सीरीज की बात करते हैं जो बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है। 3 मैचों की सीरीज में दोनों टीमें एक एक की बराबरी पर हैं और अब निर्णायक मुकाबला बाकी है। अगर सीरीज की स्थिति की बात करें तो पहला T20 इंटरनेशनल भारत ने 38 रन से जीत दर्ज की थी और दूसरे में इंग्लैंड ने 26 रन से जीत दर्ज करके वापसी की थी और एक एक से अब बराबर पर है। तीसरा और अंतिम मुकाबला खेला जाना अभी बाकी है और ये सीरीज जो है ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और अब बात कर लेते हैं फुटबॉल की और सुनते हैं दिल्ली प्रीमियर लीग की संपूर्ण रिपोर्ट हमारी सहयोगी कविता शर्मा द्वारा।
1: 31 मई को नई दिल्ली के डॉक्टर B.R. अम्बेडकर स्टेडियम में दिल्ली प्रीमियर लीग 2025-26 का समापन हुआ। लगभग 2.5 महीने तक चले इस प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट में 14 टीमों ने हिस्सा लिया। 16 मार्च से शुरू हुए इस लीग अभियान में कुल 113 मुकाबले खेले गए जिनमें खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा, संघर्ष और खेल भावना का शानदार प्रदर्शन किया। सुपर 5 चरण के अंतिम दिन खेले गए मुकाबलों के बाद गढ़वाल हीरोज FC ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दिल्ली प्रीमियर लीग का खिताब अपने नाम कर लिया। वहीं रॉयल चैलेंजर FC उप विजेता रही। पूरे सत्र में गढ़वाल हीरोज FC ने निरंतर उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन किया। विजेता टीम गढ़वाल हीरोज FC को 2,50,000 रुपए की पुरस्कार राशि और ट्रॉफी प्रदान की गई, जबकि उप विजेता रॉयल रेंजर्स FC को 1,50,000 रुपए की पुरस्कार राशि देकर सम्मानित किया गया। इस जीत के बाद क्या कहना था टीम के कोच विकास पंथी का, आइए सुनते हैं।
2: बहुत प्रेशर था, रॉयल रेंजर्स एक बहुत अच्छी टीम है, टॉप ऑफ द लीग थी ये लोग, मगर जो टॉप 5 में हमने बहुत अच्छा ना रेजिलियंस दिखाया। मेहनत तो हमने बहुत किया है, हमने थोड़ा बहुत प्री सीजन हमने असम में जाके टूर्नामेंट खेला है, उसके बाद आके हमने थोड़े बहुत लड़कों को सीनियर डिवीजन में भी एक्सपोजर दे दिया गढ़वाल यूनाइटेड के, उसके बाद लड़के को थोड़े बहुत मोमेंटम मिल गया, यंग लड़के हैं हमारे मगर उन्होंने बहुत मेहनत किया, उसकी वजह से हम जीत पाए ट्रॉफी। मैं फर्स्ट टाइम एज अ कोच दिल्ली प्रीमियर लीग में आया हूँ और मुझे अच्छा चीज़ लगा कि दिल्ली लीग एक बहुत टॉप कॉम्पिटिटिव लीग है। आई थिंक नॉट जस्ट हाँ बंगाल गोवा हम बोलते हैं मगर दिल्ली लीग भी एक बहुत कॉम्पिटिटिव लीग है। आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर।
1: लीग में टॉप स्कोरर रहे सिद्धार्थ खिची भी गढ़वाल के खिलाड़ी थे। सिद्धार्थ फाइनल में भले ही गोल नहीं कर पाए लेकिन टीम के लिए उनके किए हुए गोल उन्हें फाइनल तक लाए। अपने सफर को लेकर सिद्धार्थ ने कहा,
3: मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। मैम
1: जब शुरू हुई थी लीग तो सोचा था टॉप स्कोरर बनूंगा,
3: तब तो मैम एक भी गोल नहीं लग रहा था, फिर लास्ट में सर ने मोटिवेट किया फिर जाके गोल लगना स्टार्ट हुए।
1: कितने गोल किए अब तक आपने टोटल?
3: अब तक मैम 12। प्रेशर तो बहुत होता है मैम क्योंकि हम नहीं मारेंगे तो दूसरा टीम मारेगा ही, इसलिए।
1: जहां एक तरफ खुशी का माहौल था वहीं दूसरी तरफ थोड़ी मायूसी भी थी। खिताब के इतने पास आके दूसरे पायदान पर रहना, क्या कमियां रह गईं, इस पर रॉयल रेंजर्स FC के कप्तान कर्मण्य बंसल कहते हैं,
4: हमारे बैक टू बैक बहुत मैचेस हुए, अच्छा सफर था, फाइनल मैच ड्रॉ रहा, अगर हम जीतते तो हम क्वालिफाई करते, चैंपियन होते, बट वही है मैम फुटबॉल होता है, इसमें ज्यादा गलती की गुंजाइश होती नहीं है, तो मैम ऐसा कुछ हार्ड फीलिंग्स है नहीं, फुटबॉल है ये होता रहता है।
1: आपको लगता है कि कुछ ज्यादा इससे बेटर खेल सकते थे, कुछ कमी लगती है अपने खेल में?
4: हमें लगता है कि थोड़ा सा हमारे मैच ज्यादा एक साथ हो गए, हमें हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं मिला रेस्ट करने का, सबके साथ ही ऐसा परेशानी है सारी टीमों के साथ, वही है मैम चलता है, बट हमारी टीम और सारी सामने वाली टीम और टॉप 5 की सारी टीमें अच्छी हैं। आप देखेंगे तो इनमें से कोई भी टीम ऐसी नहीं है जो आप बोलेंगे कि अच्छी टीम नहीं है या फिर ढीली टीम है, सारे टॉप फाइव की सारी टीम अच्छी है। कॉम्पिटिशन आप देखिए, आप कोई किसको जिता रहा है, कोई किसी को हरा रहा है, तो वही है मैम हम कुछ कह नहीं सकते थे, फाइनल 50-50 होता है।
1: वही टीम कोच परितोष की माने तो पूरी टीम ने टूर्नामेंट के दौरान अनुशासित और सकारात्मक सोच के साथ खेला।
5: टीम ने कोशिश पूरा किया जीतने के लिए, बट हाँ सामने वाली टीम भी अच्छी थी, वो भी उनका मॉरल अच्छा था और वो अच्छा खेले, हमने कुछ चांसेस मिस किए जिसका खामियाजा।

0: सामना में भुगतना पड़ा।
1: टूर्नामेंट के समापन समारोह में उपस्थित विशेष अतिथि ब्रिजमोहन जी ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि दिल्ली प्रीमियर लीग युवा प्रतिभाओं को अपनी क्षमता दिखाने का मंच प्रदान कर रही है।
2: गेम्स अच्छा था, स्पोर्टिव नेचर था सभी बच्चों का, एंड द वे दे प्लेड एंड एस्टैब्लिश्ड देयर प्रेजेंस, इट वाज वंडरफुल। ओनरशिप को बनाने के लिए यदि आप फ्रैंकली पूछे तो इट वैल्यूज अ लॉट, और ये बच्चों का भविष्य बनाने के लिए एक बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। और अगेन एज यू राइटली सेड एंड यू आर राइट इन योर स्टेटमेंट दैट जो अच्छा खेलेगा वो आगे बढ़ेगा।
1: कुछ कहेंगे सर आगे आने वाली ऐसी लीग्स के लिए ताकि और बच्चों को भी प्लेटफॉर्म मिले?
2: यही है कि अच्छा खेलें, टाइम डिवोट करें, डेडिकेशन से खेलें एंड स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तरह इसको ट्रीट करें।
1: दिल्ली प्रीमियर लीग आयोजन समिति के कन्वीनर आनंद डबास ने कहा कि दिल्ली प्रीमियर लीग अब राजधानी के फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बन चुकी है जिसका उद्देश्य युवा प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना है।
3: फाइनल मैच तक नहीं पता लगा था कि कौन सी टीम विनर होगी, सो इट वॉज अ वेरी कॉम्पिटिटिव लीग एंड सभी चीजें बेहतर गई हैं, चाहे हमारे रेफरी डिपार्टमेंट हो, चाहे हमारे क्लब्स हो, हमारा सेक्रेटरीट हो, लीग सब कमेटी हो। पहली बार ऐसा एक पूरी की पूरी लीग कम्पीट कर में नॉनस्टॉप हम करा पाए हैं।
1: अभी यहाँ से जो नेक्स्ट स्टेप रहता है इन प्लेयर्स के लिए वो क्या रहता है, यहाँ से ये क्या लेकर के जाते हैं?
3: दिल्ली के जितने भी क्लब मेंबर्स हैं, एग्जीक्यूटिव कमेटी के लोग हैं, कोचेस हैं, हमारे स्काउट्स हैं, उन्होंने सभी बच्चों को खेलते हुए यहाँ देखा है, तो आने वाले जो नया सीजन एक जून से शुरू होने वाला है तो उसमें जो संतोष ट्रॉफी आएगी इस सीजन की उसमें काफी सारे प्रोबेबल्स यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं।
1: किस तरह से और बच्चे यहाँ जुड़ सकते हैं कुछ इसके बारे में?
3: जो भी प्लेयर प्रोफेशनल एज एन प्रोफेशनल फुटबॉलर बनना चाहता है वो हमारी दिल्ली की बी डिवीजन, ए डिवीजन, सीनियर और फिर प्रीमियर लीग है। प्लेयर के क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि वो बी डिवीजन का हिस्सा बने शुरू में, वो या वो सीनियर का बने या वो सीधा DPL का भी बन सकते हैं, तो उनको सीनियर और DPL में एक प्रोफेशनल एमेच्योर, दो एमेच्योर लीग लेकिन ऐसे प्रोफेशनली देखा जाता है। सभी प्लेयर्स को यहाँ पे पूरी लीग के लिए एक अच्छी सपोर्ट, एक अच्छी रकम मिलती है।
1: इस अवसर पर खिलाड़ियों, अधिकारियों, क्लब प्रतिनिधियों ने सफलता का जश्न मनाया। लगभग 113 मुकाबलों की इस रोमांचक यात्रा ने दिल्ली फुटबॉल को नई ऊर्जा और पहचान दे दी। आकाशवाणी के लिए प्रोड्यूसर शहनवाज खान के साथ कविता शर्मा की रिपोर्ट।
4: और अब फुटबॉल की बात को ही आगे बढ़ाते हैं और बहु चर्चित और बहुत ज्यादा लोकप्रिय फीफा फुटबॉल के बारे में जानते हैं।

फीफा वर्ल्ड कप दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित और सबसे लोकप्रिय फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संस्थान फीफा द्वारा हर 4 वर्ष में किया जाता है। 2026 का फीफा वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे बड़ा संस्करण होगा। पहली बार 48 टीमें भाग लेंगी। टूर्नामेंट की मेजबानी 3 देश मिलकर करेंगे, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा शामिल हैं। प्रतियोगिता 11 जून से 19 जुलाई 2026 तक चलेगी। नई व्यवस्था में 12 ग्रुप होंगे और कुल 104 मैचेस खेले जाएंगे। 2026 फीफा वर्ल्ड कप का ग्रुप ए काफी संतुलित और रोमांचक माना जा रहा है। इस ग्रुप में मेजबान मेक्सिको के साथ दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका और चेक रिपब्लिक शामिल हैं। टूर्नामेंट का उद्घाटन मुकाबला भी इसी ग्रुप से शुरू होगा। ये ग्रुप बैलेंस्ड ग्रुप माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ कोई भी टीम पूरी तरह कमजोर नहीं है। श्रोताओं, मेक्सिको को घरेलू परिस्थितियों और दर्शकों का फायदा मिलेगा। दक्षिण कोरिया के पास एशिया की सबसे अनुशासित टीमों में से एक है और चेक रिपब्लिक शारीरिक रूप से मजबूत और सेट पीस फुटबॉल में खतरनाक मानी जाती है। दक्षिण अफ्रीका 2010 के बाद पहली बार वर्ल्ड कप खेल रही है और उलटफेर करने की क्षमता रखती है। मेक्सिको इस ग्रुप की सबसे मजबूत टीम मानी जा रही है। कोच जेवियर एग्विरे के नेतृत्व में टीम ने हाल के वर्षों में शानदार प्रदर्शन किया है। अनुभवी गोलकीपर उचोआ अपना 6ठा वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, जो एक रिकॉर्ड होगा। दक्षिण कोरिया इस ग्रुप की डार्क हॉर्स टीम मानी जा रही है। कप्तान सोन हुंग मिन की गति और अनुभव टीम की सबसे बड़ी ताकत है। टीम हाई प्रेस और तेज ट्रांजिशन फुटबॉल खेलती है। वहीं चेक रिपब्लिक 2006 के बाद पहली बार वर्ल्ड कप खेल रही है। कोच मिर्सलव ओबेक ने अनुभवी और युवा खिलाड़ियों का संतुलित मिश्रण चुना है। वहीं बात करें साउथ अफ्रीका की, तो 2010 के बाद पहली बार वर्ल्ड कप में वापसी दक्षिण अफ्रीका इस ग्रुप की अंडरडॉग टीम है, लेकिन उनकी डिफेंसिव संरचना मजबूत मानी जाती है। टीम सेट पीस और काउंटर अटैक पर निर्भर करती है। और बात करें ग्रुप

ए के मैचेस की, तो पहला मैच मेक्सिको बनाम साउथ अफ्रीका का 11 जून 2026 को खेला जाएगा और उसी दिन साउथ कोरिया वर्सेस चेक रिपब्लिक का भी मैच होगा। फिर चेक रिपब्लिक वर्सेस साउथ अफ्रीका का 18 जून, मेक्सिको वर्सेस साउथ कोरिया 18 जून, चेक रिपब्लिक वर्सेस मेक्सिको 24 जून और साउथ अफ्रीका वर्सेस साउथ कोरिया 24 जून। इस प्रकार से ग्रुप ए के सारे मैचेस खेले जाएंगे। और खास बात यह है श्रोताओं कि इन मैचेस के बाद शीर्ष दो टीमें संभवतः

0: महिला चैंपियनशिप की ओर, जहां भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गत चैंपियन बांग्लादेश को 3-0 से करारी शिकस्त दी। मडगांव गोवा के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेले गए इस ग्रुप बी के मुकाबले में भारतीय टीम शुरू से ही हावी रही। भारतीय टीम की ओर से प्यारी सासा ने 36वें मिनट में पहला मैदानी गोल दागकर टीम को शुरुआती बढ़त दिलाई, जिसके बाद दूसरे हाफ में सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी के रूप में आई लिंडा कॉम ने 78वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर स्कोर 2-0 कर दिया, जबकि मैच के इंजरी टाइम में मालविका पी ने तीसरा गोल कर भारत की शानदार जीत पर मुहर लगा दी। ग्रुप बी में शीर्ष पर रहने के बाद अब भारतीय टीम का अगला मुकाबला 3 जून यानी बुधवार को सेमीफाइनल में ग्रुप ए की उपविजेता भूटान के साथ होगा।
1: और अब हॉकी की बात करते हैं। अंडर 18 मेंस एशिया कप जो 29 मई से 6 जून तक आयोजित किया गया है, उसमें पूल ए में भारत के साथ साथ कोरिया, जापान, चीनी ताइपे और कजाकिस्तान है। और आज भारत का मुकाबला कोरिया के साथ था और भारत ने 4-1 से जीत दर्ज कर ली है। और पूल बी की अगर बात करें तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और मलेशिया और चाइना पूल बी में है।
0: और अब बात करते हैं साथियों एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप की, जो कि हांगकांग में आयोजित हुआ है। वहां पे भारतीय खिलाड़ियों ने ऐतिहासिक और अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ विदेशी प्रदर्शन करते हुए पदक तालिका में दूसरा स्थान हासिल किया। इस 4 दिवसीय प्रतियोगिता में भारत ने कुल 19 पदक जीते, जिसमें से 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल हैं। भारतीय दल केवल चीन से पीछे रहा, जिसने 14 स्वर्ण जीते और उसने मजबूत प्रतिद्वंदी जापान को तीसरे स्थान पर धकेल दिया। प्रतियोगिता के अंतिम दिन भारतीय एथलीटों ने शानदार खेल दिखाते हुए 3 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किया, जिसमें नीरू पाठक की अगुवाई वाली महिला 4x400 मीटर रिले टीम ने 3:38.07 के समय के साथ नया मीट रिकॉर्ड बनाया। इसके अलावा महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ में मुस्कान और पुरुषों की 800 मीटर स्पर्धा में वेंकट राम रेड्डी मोगाली ने व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीते। प्रतियोगिता के दौरान डेकाथलन में राहुल जाखड़ और महिलाओं की ऊंची कूद में पूजा सिंह ने 1.93 मीटर कूद कर नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ सोने के तमगे हासिल किए, जिसने इस चैंपियनशिप में भारत के दबदबे को और मजबूत कर दिया। वहीं बात करें इसी अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप की, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक्स हैंडल से इन सभी एथलेटिक्स की जो उन्होंने इतना अच्छा खेल दिखाया उसको सराहा और उनकी तारीफ की।
1: और अब बात कर लेते हैं स्क्वैश ब्रिटिश ओपन की, जो इंग्लैंड में आयोजित है। 30 मई से 7 जून तक भारत के अभय सिंह और वी चौटरानी ब्रिटिश ओपन स्क्वैश के दूसरे राउंड में पहुंचे और विश्व के 24वें नंबर के खिलाड़ी अभय ने कोलंबिया के मार्टिस नूडेंसन को 11-8, 11-5, 11-4 से हराया, जबकि वर्ल्ड नंबर 44 चौटरानी ने पाकिस्तान के विश्व के 29वें नंबर के खिलाड़ी नूरजमान को 11-8, 12-14, 11-6 से हराया। चौटरानी का मुकाबला 5वीं वरीयता प्राप्त वाले वेल्श खिलाड़ी जोएल माकिन से होगा, जबकि अभय का अगला मुकाबला 7वीं वरीयता प्राप्त वाले मिस्र के मोहम्मद जाकिरिया से हो चुका है और वो 11-9, 11-4, 7, 11-12, 10 से हार चुके हैं और ये मुकाबला 76 मिनट तक चलेगा। और अब वीर चौटरानी के मुकाबले का इंतजार है, क्योंकि अगला मुकाबला उनका जोएल माकिन से होना है।
0: और अब बात करते हैं अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप की साथियों। ये प्रतियोगिता 4 दिनों तक चली, जिसमें ग्रीको रोमन, महिला कुश्ती और फ्री स्टाइल मुकाबले आयोजित हुए। भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कई पदक अपने नाम किए। खासतौर पर भारतीय महिला पहलवानों ने बेहतरीन प्रदर्शन कर देश का गौरव बढ़ाया। उन्होंने कुल 10 पदक जीते, जिसमें 2 स्वर्ण, 3 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल हैं। ग्रीको रोमन में जरूर प्रदर्शन थोड़ा निराशाजनक रहा, किंतु फ्री स्टाइल कैटेगरी में भारतीय खिलाड़ियों ने वापसी की और कई पदक अपने नाम किए, जिसमें 92 किलोग्राम भार वर्ग में दीपांशु धैया ने उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। 110 किलो भार वर्ग में अरुष राणा ने स्वर्ण पदक जीता। वहीं 80 किलोग्राम भार वर्ग में मनदीप ने रजत पदक अपने नाम किया और 65 किलोग्राम भार वर्ग में विनीत ने भी रजत पदक हासिल किया। बात करें कांस्य पदक की, तो फ्री स्टाइल कैटेगरी में भारत ने 3 कांस्य पदक जीते। 48 किलोग्राम भार वर्ग में आर्यन ने, 55 किलोग्राम भार वर्ग में साहिल ने और 71 किलोग्राम भार वर्ग में अनुज ने कांस्य पदक अपने नाम किए। इस प्रकार फ्री स्टाइल कैटेगरी में भारतीय खिलाड़ियों ने कुल 7 पदक जीते।
1: और अब बात कर लेते हैं रेसलिंग स्क्वाड की, जो एशियन गेम्स के लिए चयनित हुआ है। एशियाई खेलों के लिए भारतीय पुरुष कुश्ती टीम

0: की घोषणा हो चुकी है और साई सेंटर में आयोजित चयन ट्रायल में फ्री स्टाइल वर्ग में पेरिस ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता अमन सहरावत ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो 65 किलोग्राम भार वर्ग में सुजीत ने, 74 किलोग्राम में सागर जागलान ने, 86 किलोग्राम में मुकुल दहिया, 97 किलोग्राम में दीपक पुनिया और 125 किलोग्राम में रजत राहल चयनित हुए हैं। ग्रीको रोमन की बात करें तो 60 किलोग्राम में सुमित, 67 में दीपक, 77 किलोग्राम में अमन, 87 किलोग्राम भार वर्ग में सुनील कुमार, 97 किलोग्राम भार वर्ग में नितेश और 130 किलोग्राम में दीपांशु चयनित हुए हैं।
1: और अब साथियों बात करते हैं कल हुए रबात डायमंड लीग की, जिसमें भारत रबात डायमंड लीग की जो कि 31 मई 2026 को आयोजित हुई, दुनिया भर के एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन किया। पुरुषों की 200 मीटर रेस में अमेरिका के केनी बेडनारेक ने 19.69 सेकंड का समय निकालकर एक नया मीटिंग रिकॉर्ड बनाते हुए जीत हासिल की, जबकि ओलंपिक चैंपियन लेत्सिले तेबोगो दूसरे स्थान पर रहे। महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में नाइजीरिया की स्टार एथलीट टोबी अमूसन ने 12.28 सेकंड के शानदार समय के साथ अपना ही मीटिंग रिकॉर्ड तोड़ते हुए इस सीजन की अपनी पहली डायमंड लीग जीत दर्ज की। वहीं महिलाओं की 100 मीटर रेस में जमैका का दबदबा देखने को मिला, जहां 21 वर्षीय टीना क्लेटन ने 10.76 सेकंड में रेस पूरी कर पहला स्थान हासिल किया और उनके साथ लवान्या विलियम्स और जॉनियल स्मिथ ने पोडियम पर जमैका के लिए क्लीन स्वीप किया। इसके अलावा स्थानीय प्रशंसकों को खुश करते हुए मोरक्को के स्टार धावक सुफियान एल बकलीक ने पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेज में 7:57.25 के समय के साथ जीत दर्ज की, जबकि पुरुषों के भाला फेंक मुकाबले में ग्रेनाडा के एंड्रयू पीटर्स 86.08 मीटर के थ्रो के साथ शीर्ष पर रहे। बात करें भारतीय खिलाड़ियों की तो इस बार भारत का कोई भी प्रमुख एथलीट मुख्य स्पर्धाओं के अंतिम परिणामों में पोडियम या शीर्ष स्थानों में शामिल नहीं था। भारत के स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा और हाल ही में सुर्खियों में आए सचिन यादव इस मीट का हिस्सा नहीं थे, जिसके कारण पुरुषों के जैवलिन थ्रो इवेंट में इस बार कोई भारतीय चुनौती देखने को नहीं मिली। हालांकि भारतीय एथलीट आगामी एशियाई खेलों की तैयारी में जुटे हैं। रबात में भारतीय खिलाड़ियों की सीधी बड़ी दावेदारी ना होने के बावजूद वैश्विक स्तर पर यह मीट बेहद रोमांचक रही, जहां एंडी पीटर्स और केनी बेडनार्क जैसे दुनिया के दिग्गज खिलाड़ियों ने अपनी बादशाहत साबित की।
0: और अब चेस की ओर चलते हैं, चेस की बात करते हैं, जहां पर नॉर्वे चेस 2026 के छठे दौर में रोमांच अपने चरम पर रहा और ओस्लो में रविवार को खेले गए सभी तीन मुकाबलों का नतीजा निकला, जिससे खिताब की दौड़ और भी दिलचस्प हो गई। विश्व नंबर एक मैग्नस कार्लसन ने टूर्नामेंट के शीर्ष खिलाड़ी अलीरेजा फिरोजा को हराकर महत्वपूर्ण जीत दर्ज की। सफेद मोहरों से खेलते हुए कार्लसन ने रणनीतिक मुकाबले में धीरे धीरे दबाव बनाया और अंतिम चरण में बढ़त को जीत में बदल दिया, और इस जीत के साथ कार्लसन अंक तालिका में शीर्ष खिलाड़ियों के करीब पहुंच गए, जबकि फिरोजा को टूर्नामेंट में अपने पहले क्लासिकल हार झेलनी पड़ी। दूसरे मुकाबले में वेस्ली सॉ ने भारत के युवा ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानंदा को लंबे संघर्ष के बाद मात दी और वेस्ली सॉ ने जटिल परिस्थितियों को बेहतर ढंग से संभाला। दिन का तीसरा निर्णायक परिणाम तब आया जब जर्मनी के विंसेंट कीमर ने मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश को पराजित किया। छठे दौर के बाद वेस्लो सॉ नॉर्वे शतरंज 2026 की अंक तालिका में शीर्ष पर है, जबकि अलीरेजा फिरोजा उनके करीब बने हुए हैं। खिताब की दौड़ अभी पूरी तरह खुली हुई है। और महिला वर्ग की बात करें तो एक क्लासिकल मुकाबले का फैसला हुआ, जबकि दो मैच आर्मोगेडिन टाइब्रेकर तक पहुंचे। और अब चलते हैं अभिनव के पास।
1: और अब बात करते हैं लॉन टेनिस में चल रहे फ्रेंच ओपन की। पेरिस की लाल मिट्टी पर खेले जा रहे फ्रेंच ओपन में कल और आज बेहद रोमांचक और चौंकाने वाले मुकाबले देखने को मिले। रविवार को टूर्नामेंट का सबसे बड़ा उलटफेर तब हुआ जब पुरुष सिंगल्स में खिताब के सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे यानिक सिनर को अर्जेंटीना के जुआन मैनुअल सरुंडोलो ने 5 सेटों के कड़े मुकाबले में हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। सिनर शुरुआत में हावी थे, लेकिन चोट और शारीरिक परेशानी के चलते वे अपनी लय खो बैठे, जबकि युवा खिलाड़ी जाकूब मेनिसियक ने भी 5 सेटों के मैराथन मैच में एंड्री रुबलेव को हराकर सबको चौंका दिया। महिला सिंगल्स में जापान की नाओमी ओसाका ने शानदार वापसी करते हुए डोना वेकिच को 7-6, 6-4 से हराकर तीसरे दौर में अपनी जगह पक्की की। आज यानी सोमवार को खेले गए मुकाबलों की बात करें तो महिला सिंगल्स में एक बेहद संघर्षपूर्ण चौथे दौर के मैच में अनास्तिनिया पोटापोवा ने अन्ना कलिनिस्काया को 3 सेटों के कड़े मुकाबले में हराया।
0: आज के लिए बस इतना ही। कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शहनवाज खान।

0: के साथ मुझे दीपिका जसवाल को और मेरे सहयोगी
1: अभिनव कुमार झा को
0: दीजिए इजाजत।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक रक्षा सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की।
3: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
4: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में बताया कि समझौते के लागू होने से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों और कपड़ा, खेल वस्त्र, कृषि उत्पाद, फार्मा तथा चिकित्सा उपकरण जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले प्राथमिकता मिलेगी।
5: I am confident that this comprehensive agreement
6: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
5: Of our shared future.
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर श्री गोयल का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह समझौता रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, मुक्त, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं। LPG आपूर्ति के संबंध में उन्होंने बताया कि पिछले 3 दिन में 1,21,00,000 से अधिक बुकिंग प्राप्त हुई, जबकि 1,22,00,000 से अधिक सिलेंडरों की डिलीवरी की गई। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल RN रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों को विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। शपथ लेने वाले सदस्यों में स्वपन दास गुप्ता, अर्जुन सिंह, तापस रॉय, शंकर घोष और अन्य शामिल हैं। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने के आरोप में निष्कासित कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने NEET UG 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। प्रख्यात पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर का अंतिम संस्कार आज मुंबई में पूरे राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया। उनका निधन कल रात मुंबई में हुआ था। हांगकांग में 22वीं एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य पदक सहित कुल 19

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुरुषोत्तम शर्मा। आदौ मुख्याः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी म्यामायाः राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन च नवदिल्ल्यां द्विपक्षीयोपवेशनं कृतवन्तौ। उभयोः मध्ये ऐतिहासिक सभ्यतागत सम्बन्धान् सुदृढीकर्तुं वार्ता अभवत्। भारत ओमान व्यापकार्थिक सहभागिता सन्धिः CEPA इति अद्य क्रियान्वितः अभवत्। अनेन भारतीय निर्यातकेभ्यः ओमाने प्रतिशतं 98% विपणौ शुल्कमुक्त कार्यानुमतिः भविष्यति। प्रधानमन्त्री स्वनिधि योजनायाः षड्वर्षपूर्तौ प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अवोचत् यत् अनया योजनया पथव्यवसायिभ्यः प्रगतेः नूतनावसराः प्रदत्ताः। पश्चिमबंगालस्य मुख्यमन्त्री शुभेन्दु अधिकारी अद्य मन्त्रिमण्डलस्य विस्तारं विधाय 35 नूतनमन्त्रिभ्यः मन्त्रिमण्डले स्थानम् अयच्छत्। अपि च हांगकांग नगरे आयोजितायां 22तमायां एशिया महाद्वीपीयायां अण्डर 20 एथलेटिक्स चैम्पियनशिप इति स्पर्धा मालिकायां भारतेन 10 स्वर्णपदकानि समेत्य 19 पदकानि विजितानि। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी म्यामायाः राष्ट्रपतिः ऊ मिन आउ लाइन च अद्य नवदिल्ल्यां द्विपक्षीयोपवेशनं कृतवन्तौ। उभयोः मध्ये ऐतिहासिक सभ्यतागत सम्बन्धान् इतोपि सुदृढीकर्तुं वार्ता अभवत्। संवादे म्यामा भारतदेशयोः मिथः सुरक्षां सम्पर्कं च समेत्य देशद्वयोः सम्बन्धानां समेऽपि पक्षाः चर्चिताः। उपवेशनस्य अनन्तरं विदेशसचिवः विक्रम मिसरी अवोचत् यत् देशद्वयेन विदेशव्यवहार विकास शिक्षा स्वास्थ्यादि विषयेषु कार्याचरणाय सहमत्यं प्रकटितम्।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: भारत ओमान व्यापकार्थिक सहभागिता सन्धिः CEPA इति अद्य क्रियान्वितः अभवत्। वाणिज्योद्योगमन्त्री पीयूष गोयलः अवोचत् यत् अयं सन्धिः देशद्वयस्य आर्थिक रणनीतिक सम्बन्धान् दृढयिष्यति। एकस्मिन् राष्ट्रिय दैनिकपत्रे प्रकाशिते लेखे श्रीगोयलः अवोचत् यत् अयं निधिः नूतनापणम् उद्घाटयिष्यति। अनेन निर्याते वृद्धिः भविष्यति, निवेशः अपि वृद्धिं यास्यति। व्यापकार्थिक सहभागिता सन्धेः अन्तर्गतं भारतीय निर्यातकेभ्यः ओमाने उत्पाद समूहेषु विपणौ प्रतिशतं 98% शुल्कमुक्ति कार्यानुमतिः भविष्यति। श्रीगोयलेन उक्तं यत् अनेन आजीविका संवर्धनाय विद्यार्थिभ्यः, श्रमिकेभ्यः, महिलाभ्यः, कृषकेभ्यः, मत्स्यजीविभ्यः, सूक्ष्म लघु मध्यमोद्योगेभ्यः च महत्वपूर्णरूपेण लाभो भविष्यति।
3: I am confident that this comprehensive agreement.
4: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
3: Of our shared future.
0: प्रधानमन्त्री स्वनिधि योजनायाः 6 वर्षाणि पूर्णानि अभवन्। श्रीमोदी अस्याः योजनायाः प्रशंसां विधाय अवदत् यत् PM स्वनिधि योजनया प्रतिभूतिं विना ऋणप्रदानं, वित्तीय समावेशनम् अपि च विकासस्य नवीन अवसराः प्रदत्ताः, येन लक्षशः पथविक्रेतिजनानां जीवने उन्नतिः समागता। पश्चिमबंगालस्य मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी अद्य मंत्रिमंडलस्य विस्तारं अकरोत्। राज्यपालः RN रविः कोलकातायाः लोकभवने आयोजिते समारोहे 35 नूतनमन्त्रिभ्यः पदस्य गोपनीयतायाः च शपथग्रहणं कारितवान्। समारोहे मुख्यमंत्रीवर्येण सह अन्यवरिष्ठनेता

0: इति वार्ताः।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम ग्राम संसार।

0: कार्यक्रम ग्राम संसार सुनने वाले हमारे सभी ग्रामीण भाइयों व बहनों को
1: राम
0: राम
1: राम
0: राम। शाहिद,
1: जी।
0: कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं और इस कार्यक्रम में हम हमेशा कुछ ऐसा नया बताते हैं जो हमारे, वैसे तो वो जानकार होते हैं, हमारे जो ग्रामीण भाई बहन होते हैं उन्हें बहुत जानकारी होती है, लेकिन हमारी ये कोशिश होती है कि हम सरकार से जुड़ी कुछ कल्याणकारी योजनाओं के बारे में उन्हें बताते रहें और समय समय पर कुछ जानकारी भी साझा करते रहें,
1: जी हाँ, नई जानकारियाँ, नई बातें, नए शोध उनको।
0: बताने चाहिए। और आज भी ऐसा ही है। आज भारत जो है दुनिया के सबसे बड़े दुग्ध उत्पादक देशों में शामिल है और यहाँ की श्वेत क्रांति ने दूध उत्पादन में ऐतिहासिक वृद्धि की है। इस क्रांति का श्रेय काफ़ी हद तक डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जाता है, जिन्हें भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा
1: जनक भी
0: जाता है।
1: कहा जाता है।
0: और हर साल इस दिवस की एक विशेष थीम होती है जो दूध के महत्व, पोषण और डेयरी क्षेत्र की चुनौतियों पर केंद्रित रहती है।
1: जी हाँ,
0: तो आज हम अपने ग्रामीण भाई बहनों को जानकारी दिलवाते हैं कि अगर दूध में आपको जांच करनी हो कि उसकी शुद्धता देखनी हो तो
1: हाँ, ये
0: क्या
1: दूध
0: करना
1: सही
0: चाहिए।
1: है या नहीं है
0: जी
1: ना, इसमें कितनी मिलावट है, तो घरेलू स्तर पे घर में रहते हुए ही बिना प्रयोगशाला में जाए आप कैसे उसकी जांच कर सकते हैं घरेलू विधि से। ये
0: क्योंकि कहते हैं ना, दूध जो होता है वो केवल दूध नहीं बल्कि वो पोषण होता है, आपके स्वास्थ्य, जीवन और समृद्ध किसान का एक आधार भी होता है।
1: भाई, हम उत्पादक भी बड़े हैं और उपभोक्ता भी बड़े हैं। हमारे यहाँ जितना उपभोग है दूध का, इतनी खपत और कहीं नहीं है।
0: जी, तो आइए सुनते हैं ये जानकारी।
2: दूध में मिलावट या दूध को चेक करने के लिए घर ही में ही हम कुछ आसान से नुस्खों या उपायों से हम घर पे बैठे ही दूध की जांच कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि दूध में किस तरह के मिलावटी पदार्थ मिलाए जाते हैं और उनको हम घर में ही बैठे अपने रूटीन के आइटम से, घर पे ही जो हमारे पास अवेलेबल चीज़ें हैं उन्हीं से ही हम उसको चेक करके, जो दूध आता है हमारे पास हम उसको चेक कर सकते हैं कि हमारे दूध में मिलावट है या नहीं। सबसे पहले यह है कि जल का परीक्षण, पानी की मिलावट अगर हमें अपने दूध में जांचनी है कि हमारे दूध में पानी की मिलावट है या नहीं, तो इसको कैसे हम चेक कर सकते हैं। बहुत ही आसान नुस्खा है। सबसे पहले हमने क्या करना है, किसी चीकनी और साफ सतह पे जैसे कांच, कोई टाइल, इस तरह से दूध की एक बूंद डालें। यदि वो बूंद धीरे धीरे नीचे बहे और पीछे सफ़ेद निशान छोड़े तो दूध अपेक्षाकृत है कि शुद्ध हो सकता है। और अगर यदि बूंद बहुत तेज़ी से बह जाए और निशान ना छोड़े तो उसमें पानी की मिलावट हो सकती है। तो ये नुस्खा था पानी का, कि हमें अगर पानी की मिलावट जांचनी है तो हमें कैसे जांचनी है। दूसरा तरीका, हम उबाल के जांच सकते हैं। हमें दूध को उबालना है, थोड़ी क्वांटिटी में आप दूध ले लें किसी बर्तन में, उस दूध को उबाल लें। उस दूध में हम उसको उबालने के बाद देखें कि दूध फट तो नहीं रहा, उसमें कोई अजीब तरह की कोई गंध तो नहीं आ रही। अगर हमारा दूध उबालने के बाद बिल्कुल सही है और बिल्कुल पीने लायक है तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें कोई भी किसी तरह की मिलावट नहीं है। तीसरा तरीका इसमें है, हमने स्टार्च का पता लगाना है कि दूध में हमारा कोई किसी टाइप का कोई स्टार्च है या नहीं। स्टार्च का मतलब होता है मैदे की मिलावट हो सकती है या कार्बोहाइड्रेट है कोई हमारा, उसी टाइप से कोई हमारी स्टार्च की कोई मिलावट है या नहीं। तो इसको जानेंगे हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, थोड़ा सा ठंडा दूध लेना है। उस ठंडे दूध में थोड़ी मात्रा में लें ठंडे

0: दूध में, उसमें हम 2-3 बूंदें आयोडीन सॉल्यूशन के डालें। यदि दूध का रंग गहरा नीला हो जाए तो उसमें स्टार्च की मिलावट है, और अगर आपका दूध पीला या भूरा रंग का हो जाए तो उसमें आप अनुमान लगा सकते हैं ये हमारा दूध शुद्ध है। तो ये तो था हमारा स्टार्च पता करने का तरीका, इसको हम आयोडीन टेस्ट भी कर देते हैं। उसके बाद हमारा अगला तरीका आता है डिटर्जेंट की मिलावट। कोई भी टाइप का वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, कुछ इस टाइप की अगर आपके दूध के मिलावट है तो हम कैसे जान सकते हैं कि हमारे दूध में डिटर्जेंट की मिलावट है। डिटर्जेंट की मिलावट के लिए हमने क्या करना है, हमने एक बोतल में थोड़ा दूध ले लीजिए, और बराबर मात्रा में दूध और बराबर मात्रा में पानी दोनों को एक बॉटल में ले लिया आपने, और उसका ढक्कन बंद करके उसको जोर से हिलाएं। हिलाने के बाद यदि बहुत अधिक और लंबे समय तक झाग बना रहे तो उसमें डिटर्जेंट की मिलावट है। अगर उसमें थोड़ी बहुत हल्की सी झाग बन रही है तो उसमें फिर आप ये कह सकते हैं कि वो आपका दूध मिलावट रहित है, वो आपका दूध बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हमने सिंथेटिक दूध की पहचान करनी है कि हमारा सिंथेटिक दूध कैसा है। सिंथेटिक दूध की पहचान के लिए हमने क्या करना है, सिंथेटिक दूध हमेशा अक्सर साबुन जैसा स्वाद या गंध देता है। जब भी दूध आप लें तो उसकी उसको स्मेल करें, उसकी गंध को महसूस करें और उसके स्वाद को देखें। अगर हम सिंथेटिक दूध को अपने दोनों हाथों के बीच रगड़ते हैं तो एक चिकनाई जैसी साबुन जैसा बनता है, तो वो एक अलग से आपको एहसास दे देगा कि हमारा दूध सिंथेटिक है या यह मिलावटी है। और अगर हम उसको गर्म करेंगे तो इसका व्यवहार सामान्य दूध जैसा नहीं रहता। एक और घरेलू नुस्खा जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमारे दूध में मिलावट है या नहीं, दूध में एक ऐसा अडल्टरेंट या ऐसे मिलावटी तत्व कई बार मिलाया जाता है जो हमें बाद में पता लगता है कि ये एक मिलावटी तत्व था, इसको हम कहते हैं यूरिया। इसको भी हम एक घरेलू नुस्खे के साथ जो घर में हमारे पास इजीली अवेलेबल जो हमारे घर पे चीज़ें हैं उनसे हम पता लगा सकते हैं कि हमारा दूध में यूरिया है या नहीं। इसमें हमें क्या करना है, 1 चम्मच सोयाबीन या अरहर की दाल का पाउडर दूध में मिलाएं और कुछ मिनटों के बाद देखें, एक लाल लिटमस पेपर को इस मिश्रण में डुबा लें। यदि लाल लिटमस पेपर नीला हो जाए तो आपके दूध में यूरिया है। शुद्ध दूध लिटमस पेपर का रंग नहीं बदलेगा। अगर उस दूध में कोई मिलावट नहीं है तो आपका रंग नहीं बदलेगा लिटमस पेपर का। अगर लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है तो आपके दूध में यूरिया की मात्रा मौजूद है, तो संभावना है कि आपके दूध में यूरिया की मिलावट है। तो इस तरह से ये हमारे कुछ घरेलू नुस्खे थे। हमारे घर में जो भी फैमिली का मेंबर है, जो परिवार के सदस्य हैं, जो दूध लेते हैं, सबसे पहले क्या करना है, वो दूध को जब भी लें तो देखें उसमें कोई भी तत्व तैरना नहीं चाहिए, बिल्कुल साफ क्लियर होना चाहिए दूध। दूसरी बात, दूध में कोई भी अजीब तरह की गंध, स्मेल, ऑडर नहीं आनी चाहिए। दूध की फ्रेश प्लीजेंट और फ्रेश अरोमा आना चाहिए दूध में जब भी आप दूध लें। उसके बाद दूध को हमेशा साफ बर्तन में लें, कोई भी आप जिसमें पतीला या कोई भी स्टेनलेस स्टील का कंटेनर या वेसल या पतीला यूज़ करें, तेज़ गैस पे उसको उबालें। उबालने के बाद उसको ठंडा करने के लिए हम फ्रिज में रखें। उसको घर पे रखने का जो भी तरीका है उसको हमेशा 4 डिग्री सेल्सियस पे या 4 से कम डिग्री सेल्सियस पे रखें। मिनिमम टेम्परेचर हमारा दूध का 4 डिग्री सेल्सियस या 4 या 4 से कम तापमान होना चाहिए, तभी हमारा दूध सेफ है, वो पीने लायक है।
1: तो अभी आपने सुनी ये वार्ता, और जैसा कि उन्होंने बताया कि आप घर पर रहकर दूध की शुद्धता जांच सकते हैं, कितने मतलब आसान तरीके उन्होंने बताए,
2: ये भी बताया कि कितने तरह की मिलावट हो सकते हैं दूध
1: जी, और क्योंकि मिलावट तो होती है और उसको जानना आपका एक तरह से कहते हैं ना कि एक अधिकार है, तो आपको जानना भी चाहिए। और हर वर्ष 1 जून को दुनिया भर में विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है, और इस दिवस की शुरुआत हुई थी वर्ष 2001 में संयुक्त राष्ट्र की संस्था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा की गई थी, और इसका उद्देश्य ही यही था कि लोगों को दूध और डेयरी उत्पादों के पोषण महत्व, डेयरी उद्योग की उपयोगिता और किसानों के योगदान के प्रति लोगों को जागरूक करना जी। तो इसी उपलक्ष्य में 28 और 29 मई को एक सम्मेलन का आयोजन किया गया विश्व दुग्ध दिवस के अवसर पर इंडियन डेयरी एसोसिएशन के द्वारा किया गया, और इनके अध्यक्ष हैं डॉक्टर सुधीर कुमार, और इनसे बातचीत

0: की मंजीत कौर ने, और ये बातचीत बहुत ही उपयोगी है। आइए सुनते हैं ये बातचीत।
1: हमारे साथ इस समय मौजूद हैं श्री सुधीर कुमार सिंह, जो कि प्रेसिडेंट हैं, और आज 26वां वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेट किया जा रहा है इंडियन डायरी एसोसिएशन द्वारा। सर, क्या कहना चाहेंगे इस उपलक्ष्य में?
2: मैं कहूँगा कि बड़े प्राउडली हम बोलते हैं, इस बात का गर्व है कि भारत जो है पूरे विश्व का नंबर वन मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री है, और जितना विश्व में उत्पादन होता है उसका 1/4 यानी कि 25% मिल्क प्रोडक्शन अब इंडिया में होता है। तो ये जो हम लोगों ने शुरू किया था, एक डिफिशिएट मिल्क कंट्री से अब सरप्लस कंट्री हो गए, और इसमें सारा जो श्रेय जाता है वो हमारे भारतवर्ष के जितने दूध उत्पादक हैं, हमारे किसान हैं, उनको जाता है जिनके कारण ये संभव हो पाया। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस गति से बढ़ रहा है, अराउंड 5% के रेट से एक ग्रोथ हमारा है, और सरकार भी इस पे काफ़ी काम कर रही है, चाहे ब्रीड इम्प्रूवमेंट हो, ग्रीन फॉर्डर हो, एनिमल हेल्थ हो, ये सारी चीज़ों को लेकर, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें जब एक साथ आएंगी, और आज के दिन में हम नंबर वन मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री है, जब हमारा ऑन एन एवरेज मिल्क का उत्पादन प्रति जानवर जो है 6 से 8 लीटर है, तब हम 25% प्रोडक्शन पूरे वर्ल्ड का कर रहे हैं। तो जिस तरीके से काम हो रहा है चारों तरफ हर क्षेत्र में, चाहे वो कोई भी राज्य हो, चाहे वो पूर्वी उत्तर भारत हो, पूर्वी अरुणाचल प्रदेश हो, मिजोरम हो, सब जगह जिस तरीके से नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वहाँ की सरकार मिलकर काम कर रही है, ये दिन दूर नहीं जब ये हमारा प्रोडक्शन 20 लीटर प्रति जानवर हो जाएगा। और उम्मीद करिए कि जब हमारा 6 से 8 एवरेज है मिल्क का उत्पादन एक जानवर पर, जब ये दुगुना हो जाएगा, तो आज तो हम 25% है, हम पूरे वर्ल्ड को दूध से फ्लड कर देंगे, और हमारा 50% हो जाएगा, क्योंकि इतना अच्छा लाइवलीहुड का कोई दूसरा साधन नहीं है जो गांव के क्षेत्र में उपलब्ध है। इससे दो फायदे हैं, एक तो उनका आमदनी बढ़ता है, दूसरा न्यूट्रिशन है, और सबसे मज़े की बात तो ये है कि ये पूरे इंडस्ट्री में 80% महिलाएँ जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। तो वुमेन एम्पावरमेंट का इससे बढ़िया जीता जागता उदाहरण कोई नहीं हो सकता है, और हर कोई कर सकता है। मैं अपने अनुभव पे बता सकता हूँ, मैं झारखंड में काफ़ी दिन काम किया, बिहार में मैंने 38 साल काम किया, तो मैंने एक देखा कि लोगों को जितना भरोसा है, वहाँ लोग के दिमाग पे रखा हुआ है 4, 14 और 24, यानी कि 3 डेट को, जैसे सैलरी हमें 1 तारीख को हमारे खाते में आता, ठीक उसी प्रकार इनके दूध का कीमत 4, 14, 24 जो 10 दिन के इंटरवल पर मिलता है, निश्चित जाना है, और वो उनको तय है कि उनको मिलेगा। कोविड के टाइम में एकमात्र ऐसा सोर्स बच गया था उस टाइम में गांव के लेवल पे, जो मैंने नज़दीकी से देखा कि उनका दूध आता रहा, उनका पेमेंट जाता रहा, और हमने सरकार की मदद लेके जैसे भी हो उस कोविड के टाइम में भी सारे प्रिकॉशन को लेते हुए दूध का बांटा, क्योंकि वो बच्चों के लिए था, बूढ़ों के लिए था, और लोगों का विश्वास इतना बढ़ा, चाहे वो अर्बन मिल्क कंज्यूमर हो या रूरल मिल्क प्रोड्यूसर हो, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें से आने लगे। मुझे एक वाक्य याद है कि झारखंड से दुमका के लिए ट्रेन रवाना हुई, जो लद्दाख में जा रहे थे लोग काम करने, फिर वो ट्रेन में जाने के बाद फिर उतर गए कि मैं एक गौपालन करूँगा, और उन्होंने ग्रुप बनाया, और उस क्षेत्र में साहेब गंजेरिया में हम लोगों ने मिल्क का प्लांट लगाया, और आज के दिन में 50,000 लीटर दूध वहाँ आ रहा है। लोग विश्वास नहीं कर सकते कि जहाँ कभी डिफिशिएट था, वहाँ हर कोई एक जानवर, जिसके पास एक जानवर था वो 2 पाल रहा है, जिसको 2 था वो 4 पाल रहा है, और ये सारा मैनेजमेंट जो है वो हैंडल वहाँ की महिलाएं कर रही हैं। तो ये महिला सशक्तिकरण का जबरदस्त नमूना है, तो उसमें और बढ़ोतरी हुई है। सिर्फ हम दूध से ही आमदनी नहीं बढ़ा सकते, बल्कि जो गोबर है उससे हम गैस उत्पादन कर रहे हैं, जो स्लरी बचता है उससे हम जो है प्रोम, जिसमें कि फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मिनरल्स बना रहे हैं, जो किसान अपने गांव में ही बना रहे हैं और दे रहे हैं। एक एक्सपेरिमेंट किया था कि एक खेत का 2 टुकड़ा किया गया, एक में DAP डाला गया, एक में जो गोबर से बना हुआ खाद था उसको डाला गया, और उसमें जितना क्षेत्र दिया गया था उसमें, जिसमें DAP डाला था उसमें 5 क्विंटल तरबूज पैदा हुआ, और जिसमें गोबर से बना हुआ खाद जो दिया गया था उसमें 15 क्विंटल हुआ। ऊपर से 5 रुपया उन्हें ऑर्गेनिक के नाम पे अलग से प्रीमियम मिला उस प्रोडक्ट का। तो हर कोई टूट पड़ा। रदर रांची यूनिवर्सिटी के लोगों ने अप्रोच किया था कि मुझे भी इस प्रॉम को दीजिए ताकि हम अपने यहाँ लगाएं, बट गांव वालों ने कहा हमसे बचेगा तभी तो दूसरे को देंगे। तो ये जागरूकता जो विलेज लेवल पे आया, तो वो देख के दिल खुश हो जाता है, और वो एक अलग आमदनी है। अब तो तरह तरह के और आ रहे हैं, बाकी को इंटीग्रेट किया जा रहा है कि मछली पालन, गौ पालन, कृषि, ये सब को एक साथ इंटीग्रेट करेंगे कॉर्पोरेट के माध्यम से, या अन्य किसी SHG के माध्यम से हम दूध का कलेक्शन करेंगे, और करते जा रहे हैं, और इतना अच्छा इनकम

0: का सोर्स दूसरा नहीं है जो घर बैठे नौकरी दिला देता है। कोई सीएल की जरूरत नहीं, कोई ईएल की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे अपना मैनेजमेंट कर सकते हैं। और परिवर्तन देखना तो इन राज्यों में जाके देखिए कैसे ट्राइबल लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया। और वो खुद बोलते हैं कि हमने इसके आमदनी से, दो लड़कियां थी एक महिला की जिसने दोनों को बीएड कराया, और मज़े की बात तो यह है कि बीएड करने के बाद बोलते मुझे नौकरी नहीं चाहिए, मैं यही धंधा करूंगी। तो ये एक लगता है कि एक कमाई है, और डॉक्टर वर्गीश कुरियन ने रास्ता दिखाया, तो हम उनको सैल्यूट करते हैं आज के दिन। और उम्मीद करते हैं कि जिस गति से भारत में डेयरी का विकास हो रहा है, शायद दूसरे अन्य जो इंडस्ट्री हैं या अन्य जो उत्पाद हैं उसको भी इसी तरीके से करा के, और इसको हम उसमें भी नंबर वन पूरे वर्ल्ड का बन सकते हैं।
1: व्हाइट रेवोल्यूशन ऑफ मिल्क, जो कि डॉक्टर कुरियन हैं, और आज का जो 26वां जो संस्करण है विश्व दुग्ध दिवस का, और आज का जो थीम कहें कि जो है महिला किसानों को जो डेयरी के अंदर उनका अहम योगदान है, तो उस पर आप क्या कहेंगे?
0: मैं तो ये कहूँगा कि जब मैं पढ़ाई करता था करनाल में, तो मैं जब बाहर कैंपस से आता था, मैं देखता था कि महिलाएं साइकिल पे मिल्क लेके आते थे। तो हम लोग कोशिश करते थे जानने का कि यहाँ की महिलाएं कैसे कर लेते हैं। मैं चूंकि एक ग्रामीण परिवेश से पला बढ़ा हूँ, मैं झारखंड का रहने वाला हूँ, और उसमें महिलाएं मार्केट जाके करेंगी ये थोड़ा एक्सेप्टेबल नहीं था। दूसरी इंडस्ट्री ने ऐसा परिवर्तन लाया कि समस्तीपुर की एक महिला को राष्ट्रपति द्वारा बेस्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेटर का अवार्ड मिला। तो ये परिवर्तन दिखाता है और ये महिला शक्ति को दिखाता है। और आज के दिन में आपने देखा होगा प्रेजेंटेशन में, एक वक्ता ने बताया कि सारे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जो होते हैं वो महिलाओं के हाथ में हैं, वो फाइनेंस मिनिस्टर है अपने घर की, और उनके हाथ आता उनसे पुरुष लेते हैं। ये ना वोमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया है, और 80 से 90% महिलाएं इसको अपने हाथ में ले रही हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है, ये जेन्युइनली उनके लिए है, क्योंकि वो न्यूट्रिशन भी देखती हैं, वो फाइनेंस भी देखती हैं, और वो जो खाद का मैनेजमेंट है विलेज लेवल पर वो भी देखती हैं। तो इससे लगता है कि एक क्रांति जो है आने वाली है। श्वेत क्रांति तो निश्चित रूप से आया, उससे बढ़ के कुछ और होगा, इंटीग्रेटेड होगा, जिसमें मल्टी फेसेस जो है, ये हर तरह का जो विकास होता है गांव में वो महिलाओं के माध्यम से होगा, पुरुष उसको देखेंगे। तो ये मैं शुभकामना देता हूँ इस अवसर पर उन महिलाओं को, और डेफिनेटली डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने पूजनीय है हमारे, जिन्होंने ये रास्ता दिखाया है। और ये जो भारत की इकोनॉमी को जो स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, इसमें जो महिलाओं का योगदान है इस श्वेत क्रांति के माध्यम से, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। इसी तरह उनका योगदान भी मिलता रहेगा, और हम उम्मीद करते हैं कि भारत विश्व का नंबर वन है और ये बना रहेगा।
1: और जो हमारे डेयरी फार्मर्स हैं, उनके लिए क्या कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे?
0: मैं इतना ही कहूँगा, एक एक आदमी इससे जुड़े, हर कोई इससे जुड़ जाए। इसमें दो फायदा है न्यूट्रिशन में, जो सपोज अगर किसी के यहाँ 10 लीटर दूध होता है तो वो 5 लीटर अपने यहाँ यूज़ करता है और 5 लीटर बेच लेता है, तो उससे क्या होता है कि अन्य सामान खरीदने का उसको अवसर मिल जाता है, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होगा। घर में न्यूट्रिशन है, घर में पैसा है, तो हर कोई इस उद्योग को अपनाएं, इसको आगे बढ़ाएं और ये अपने जीविका का मुख्य साधन बनाएं।
1: आकाशवाणी से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
2: तो अभी आप सुन रहे थे ये बातचीत। विश्व दुग्ध दिवस के अवसर पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया आज, और इस पर जानकारी दे रहे थे इंडियन डेयरी एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर सुधीर कुमार, और इनसे बातचीत कर रहे थे मंजीत कौर।
3: जी हाँ, आपने बिल्कुल सही फरमाया जो है कि प्रीति जी, देखिए ये मैं जो बता रहे थे कि दुग्ध जो है पोषण देता है, हकीकत में ये पोषण तो शरीर को देता है, परिवार को देता है, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था को, सामाजिकता को और देश के विकास को पोषण देता है। तो आइए अभी इसी के साथ जो है कि हम अपने ग्रामीण भाइयों बहनों का मनोरंजन भी कराते हैं और उनको सुनाते हैं मूलचंद शर्मा की आवाज़ में ये रागनी।
2: और किस्सा रहेगा नल दमयंती का।

0: तो अभी आपने सुना मूलचंद शर्मा की आवाज़ में इस रागनी को, और किस्सा था नल दमयंती से।
1: अब आइए हीर रांझा के किस्से को सुनते हैं गजेंद्र सिंह की आवाज़।

0: तो अभी आप सुन रहे थे हीर रांझा का किस्सा गजेंद्र सिंह की आवाज़ में, और
1: और
0: इसी के
1: इसी के
0: साथ
1: साथ कार्यक्रम ग्राम संसार यहीं संपन्न होता है। सुनने वाले हमारे सभी ग्रामीण भाइयों बहनों को राम
0: राम राम।
1: राम। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पाराशर और संयोजक थे शिवनंदन लाल।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार, या आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब से कुछ ही पलों में सुनते हैं हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच

0: के लिए कनेक्टिविटी पर महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन का स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि साझा बौद्ध विरासत और सदियों पुराने जन संबंध भारत म्यांमार संबंधों को अनूठी पहचान प्रदान करते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में बताया कि इस समझौते के लागू होने से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों और कपड़ा, खेल, कृषि उत्पाद, फार्मा तथा चिकित्सा उपकरण जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर श्री गोयल का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये समझौता रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, मुक्त, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं। एलपीजी आपूर्ति के संबंध में उन्होंने बताया कि पिछले 3 दिनों में 1,21,00,000 से अधिक बुकिंग प्राप्त हुई, वहीं 1,22,00,000 से अधिक सिलेंडरों की डिलीवरी की गई। पश्चिम बंगाल में आज मंत्री परिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आर एन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों को विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। शपथ लेने वाले सदस्यों में स्वपन दासगुप्ता, अर्जुन सिंह, तापस रॉय, शंकर घोष और अन्य शामिल हैं। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने के आरोप में निष्कासित कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। प्रधानमंत्री ने हांगकांग में 22वीं एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य सहित कुल 19 पदक जीतने पर बधाई दी है। इस प्रतियोगिता में भारत दूसरे स्थान पर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुने कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत सुनने वाले सभी ग्रामीण बहनों भाइयों को राम
1: राम
0: राम।
1: राम कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं। और कृषि जगत कार्यक्रम में हमारे जो किसान भाई हैं वो इंतजार करते हैं कि आज हमारे कार्यक्रम में क्या खास होगा, तो हम उनके लिए मनोरंजन भी लेकर आए हैं और जानकारी भी लेकर आए हैं।
0: जी हाँ, और आप जानकारी दे रहे हैं कि धान की नर्सरी जो है ना, अब खरीफ का सीज़न आ रहा है, तो नर्सरी जो है कि बुनियादी चीज़ है धान की फसल के लिए, तो नर्सरी तैयार कैसे करें, इसमें सबसे पहले हमारे जो है कि किसान भाई बहन ये करते हैं कि खेत को अच्छी तरह से तैयार कर लें। बेहतर हो कि एक सिंचाई के बाद मिट्टी को भुरभुरा कर लें, अच्छा कर लें, और उसमें जो है कि अगर कंपोस्ट है, गोबर की खाद मिल जाए तो वो डालें, और उसमें जो है कि जिस भी किस्म, उन्नत किस्म तलाशें बेहतर है, उसके बीज जो है कि बोने की शुरुआत करें,
1: जी
0: और
1: बिल्कुल,
0: उसको जो है कि बहुत घना नहीं और बहुत ज़्यादा जो है कि मिलर भी नहीं, तो ऐसा हो कि जो बीज है उसको पूरी नमी और पूरी तरीके से प्रचुर मात्रा में खाद भी मिले, और एक हल्की परत उसके ऊपर लगा के उसको जो है कि ढकने की कोशिश करें।
1: भाई आपने बीज की बात कही है, तो जो बीज का चयन है और फिर उसका उपचार वो बहुत ज़रूरी है।
0: जी
1: उच्च गुणवत्ता वाले प्रमाणित और रोग मुक्त बीजों का चयन करना बहुत ज़रूरी होता है। बीजों को बोने से पहले उसका उपचार करना चाहिए ताकि जो रोग है उस बीज में या जो अगर कोई कीट है तो वो उसका खतरा खत्म हो जाए। बीजों को फफूंद नाशक दवा जैसे कि आपने कहा
0: हाँ
1: कि या फिर जैविक उपचार के माध्यम से भी आप उसको सुरक्षित कर सकते हैं। और धान के बीजों को पहले 24 घंटे पानी में भिगोया जाता है और फिर उसका जो जो धान है उसको अंकुरित होने के लिए रखा जाता है। अंकुरित बीजों को तैयार नर्सरी में समान रूप से बोया जाता है और इसके बाद हल्की सिंचाई की जाती है ताकि मिट्टी में पर्याप्त नमी बनी रहे।
0: बनी रहे, और वो जो अंकुरण है वो
1: जी
0: अच्छी तरीके से जो है कि मिट्टी में अपने आप को स्थापित कर सके, उसके जड़ और वो
1: जी
0: निकल सके।
1: बिल्कुल। और अब हमने जैसा कि कहा था कार्यक्रम की शुरुआत में कि हम अपने किसान भाइयों को जानकारी देंगे, तो आइए लेकर आए हैं हम एक रेडियो रिपोर्ट जो कि है राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन पर आधारित खरीफ अभियान पर। ये रेडियो रिपोर्ट है और इसमें प्रस्तुति सहयोग दिनेश कुमार और विशाल कुमार का है। आइए सुनते हैं ये रेडियो रिपोर्ट।
2: दिनांक 28 से 29 मई 2026 तक दिल्ली में नास कॉम्प्लेक्स के सी सुब्रमण्यम सभागार में 2 दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन 2026 खरीफ अभियान का आयोजन किया गया। विगत दिनांक 29 मई 2026 को इस सम्मेलन में देश के विभिन्न राज्यों के कृषि मंत्री, वैज्ञानिक एवं किसानों ने भाग लिया और कृषि के विभिन्न आयामों पर चर्चा की। इस अवसर पर DGICR सेक्रेटरी डेयर डॉक्टर मांगीलाल जाट ने अपने उद्बोधन में कहा,
3: भारत 2047 में विकसित और आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है और उसके लिए कृषि काफी महत्वपूर्ण है। यदि हम 2047 की बात करते हैं, वैसे ये खरीफ कॉन्फ्रेंस है लेकिन हर सीजन मैटर करता है, तो हम सिर्फ एक खरीफ की बात ना करते हुए उस खरीफ की भी प्लानिंग 2047 के कॉन्टेक्स्ट में करें, तो उसी दिशा में यदि हम देखें कि आज हम हमारा जो क्षेत्र है धान का, गेहूं का, मक्का का, न्यूट्री सीरियल्स का, दलहन का, तिलहन का या हॉर्टिकल्चर का, वो जितना है यदि हम इसी तरीके से चलते रहे तो 2047 में हमें कितना क्षेत्र चाहिए, और यदि हम हाई यील्ड ग्रोथ के साथ में और डाइवर्सिफिकेशन के साथ में जिसकी जरूरत है तो वो कितना चाहिए। और मैं धान का एग्जाम्पल दूं कि अभी लगभग 50 मिलियन हेक्टेयर एरिया है, जिस तरीके से चलते रहे वो 52 के लगभग होगा क्योंकि स्टेबलाइज भी होगा, लेकिन हमें उतने की जरूरत नहीं है। 2047 में 35 मिलियन हेक्टेयर से भी हमारा काम चल जाएगा। दलहन और तिलहन में, हॉर्टिकल्चर में बढ़ाने की जरूरत है। यदि आप टोटल जोड़ेंगे तो कहेंगे कि ये इतना एरिया कहाँ से आएगा, हमें इंटेंसिफिकेशन पे जाना पड़ेगा, और उसके साथ में अभी हमारी जो यील्ड है, प्रोडक्टिविटी है, उस प्रोडक्टिविटी को बिजनेस एज यूजुअल में हम कहाँ तक ले जा सकते हैं और हाई यील्ड ग्रोथ सिनेरियो में कहाँ तक ले जाना है, उसके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है। यदि हम आज के डेट में टोटल हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को देखते हैं तो 1.5 बिलियन टन है, 2047 में बिजनेस एज यूजुअल सिनेरियो में चलेंगे तो 2.67 बिलियन टन होगा, लेकिन यदि हम हाई यील्ड ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन के सिनेरियो के साथ में जाएगा, वो सस्टेनेबल भी होगा, तो हम 3 बिलियन टन पे जा सकते हैं, जिसकी हमें जरूरत भी है।

0: की इकोनॉमी 30 ट्रिलियन की जब बात करते हैं तो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन वहां से आएगा। महोदय यदि हम देखते हैं 1960 से शुरू करते हैं तो एवरेज फर्टिलाइजर यूज और आज का जो 2 किलो से 180 किलो बढ़ा है, लेकिन साथ साथ में हमने क्या खोया है, यील्ड रेस्पॉन्स है वो 30 किलो से 3 से 8 किलो पे आ गया, और जो हमारी फैक्टर प्रोडक्टिविटी मतलब जितना डाल के जितना निकाल रहे थे वो लगभग 45 से 50 किलो था, वो आज 8 से 15 किलो पे आ गया। और ये स्थिति ठीक नहीं है, इसी स्थिति से गए तो 2047 में हम कहाँ होंगे, ये हमें सोचने की जरूरत है और उसी दिशा में हमारा विकसित कृषि का रोडमैप बनाने की आवश्यकता है। तो आप देखते हैं कि जितना नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, इतना शेडेड एरिया है वो एरिया जहां पे हम आवश्यकता से ज्यादा फर्टिलाइजर डाल रहे हैं। हमने देखा कि देश के 180 से ज्यादा जिले ऐसे हैं जो आवश्यकता से बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर नाइट्रोजन डाल रहे हैं, कुछ जिले ऐसे भी हैं जो आवश्यकता से 300 किलो से ज्यादा पर हेक्टेयर यूज कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो सही दिशा में नहीं है और उसके लिए हमने एक डिस्ट्रिक्ट वाइज अभी कृषि मंत्रालय ने, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने सर्कुलेट भी किया होगा सारे राज्यों को, ICAR ने उसको बनाया है कि कितना फर्टिलाइजर साइंटिफिक बेसिस पे हमें डालने की जरूरत है ताकि हम इसका अंधाधुंध उपयोग ना करें। वो भी हमारे रोड मैप का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। आगे जो हमारा जो ग्लोबल सिनेरियो है, मेगा ट्रेंड्स है, उसके कॉन्टेक्स्ट में ये इतने सारे और चैलेंजेज हैं, चाहे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के हो, चाहे क्लाइमेट चेंज के हो, चाहे बायोडाइवर्सिटी लॉस के हो, चाहे हमारा सस्टेनेबल और हेल्थी डाइट न्यूट्रिशन की बात करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा फोकस करते हैं न्यूट्रिशियस फूड की, तो सेहत के कॉन्टेक्स्ट में, सोयल हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में मुझे लगता है आत्मनिर्भरता पल्सेज और ऑयल सीड की जब हम बात करते हैं उसको कैसे लेके आएंगे, जो वाटर यूज एफिशिएंसी है उसको डबल करना है, न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी को डबल करना है ताकि हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ें, जो इंपोर्ट डिपेंडेंस है उसको कम करें, और उसी के कॉन्टेक्स्ट में एग्रीकल्चर में इम्पोर्ट को हमें मिनिमाइज करना है और एक्सपोर्ट को मैक्सिमाइज करना है, तो हमारा रोड मैप उसी दिशा में होना चाहिए। उसके साथ साथ में जो अभी ग्लोबल इकोनॉमिक शिफ्ट्स हैं उसको भी ध्यान में रख के हमारा रोड मैप बनना चाहिए, और खेती को प्रोफेशन ऑफ चॉइस बनाने के लिए, स्पेशली यूथ के लिए, वो हमारे रोड मैप का हिस्सा होना चाहिए, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में हमें काम करने की जरूरत है। महोदय आइंस्टीन ने कहा था कि वी कैन नॉट सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स विद द सेम थिंकिंग वी यूज्ड व्हेन वी क्रिएटेड देम। तो इसका मतलब है कि वी नीड बिजनेस अनयूजुअल, बिजनेस एज यूजुअल इज नॉट गोइंग टू हेल्प अस। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं खेती में, वो आइसोलेशन में सॉल्व नहीं हो सकती, उसके लिए एक सिस्टम्स अप्रोच चाहिए, उसमें होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच चाहिए, उसमें होल ऑफ द सोसाइटी अप्रोच चाहिए, और इसीलिए माननीय मंत्री जी ने टीम एग्रीकल्चर की बात की, और मुझे लगता है टीम एग्रीकल्चर का मतलब है शेयर्ड विजन एंड कलेक्टिव एक्शन फॉर आवर सिक्योर्ड फ्यूचर, एंड मुझे लगता है ये टीम उसी डायरेक्शन में हम लोग काम कर रहे हैं, एक्शन प्लान हमारे रोड मैप बनाने के लिए।
1: खरीफ कृषि सम्मेलन में कृषि मंत्रालय के सचिव आतिश चंद्रा ने अपने वक्तव्य में कहा,
2: कृषि खरीफ कॉन्फ्रेंस जो इस बार आयोजित की गई तो उसमें हम लोग ने जो इसका प्रारूप माननीय मंत्री जी की प्रेरणा से बनाया उसमें यह था कि हम लोग हमेशा अपनी बात कहते हैं, राज्यों को भी हमको सुनना चाहिए। तो पहले दिन सभी प्रेजेंटेशंस राज्यों द्वारा बनाए गए और हम लोग ने 3 ग्रुप में राज्यों को बांटा था, और उसमें भी सब राज्यों को मिक्स किया गया, ऐसा नहीं कि हम लोग ने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में राज्यों को बांटा, हम लोग ने पूरे देश के राज्यों को इस तरह से संगठित किया कि सभी क्षेत्रों का समागम हो सके और उनको डिफरेंट डिफरेंट राज्य की क्या अनुभव है वो भी समझने और देखने और साझा करने का मौका मिले। देखिए जो हमारा केंद्र सरकार की प्रायोरिटीज़ और इनिशिएटिव्स हैं उनको हम इन गाइडिंग प्रिंसिपल्स में विभाजित कर सकते हैं। पहला देखिए सेल्फ सफिशिएंसी इन एग्रीकल्चर, और हमारा उद्देश्य क्या है, हम फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनना चाहते हैं और ये मुद्दा प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी पे केंद्रित है। दूसरा जो है वो ये है कि इनकम सपोर्ट, क्रेडिट रिस्क कवरेज और डिजास्टर मैनेजमेंट। तो किसान को जो भी हम सपोर्ट करें उनका इनकम और रिस्क को कवर करने के लिए, वो एक हमारे लिए गाइडिंग प्रिंसिपल। आज ये बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हम अपने एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई करें, जैसे कि ICAR के DG साहब और DAIR के सेक्रेटरी सर ने बताया कि कैसे हमारी चुनौतियां हैं, जिसको करने के लिए क्या क्या हमारे लिए एक्शन पॉइंट्स हैं, और हम जो एक कृषि रोड मैप की बात करते हैं वो ये सबको समाहित करेगा। फोर्थ जो प्रायोरिटी है वो है कि हमको डाइवर्सिफाई करें, तो हमारा उद्देश्य ये रहना चाहिए हम कैसे इम्पोर्ट को सब्स्टिट्यूट करें, और इसमें क्लस्टर बेस अप्रोच, वैल्यू चेन डेवलपमेंट, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और एक्सपोर्ट्स, हमको वो उगाना है जो विदेशी मार्केट्स में हमारी मार्केट उपलब्ध हो सके। जो इनपुट यूज एफिशिएंसी है वो हम लोग की जो एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिसेस डेवलप हुई हैं ओवर द इयर्स, उसमें ये एफिशिएंसी लगातार घटती जा रही है, चाहे वाटर हो,

0: सीड हो, फर्टिलाइजर हो, पेस्टिसाइड हो, तो इस व्यवस्था को भी हमको सुदृढ़ करने की जरूरत है। बहुत सारे सॉल्यूशंस डिजिटल एग्रीकल्चर और आईटी इनिशिएटिव्स का, एक एग्रीकल्चर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है और राज्य के भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं। अब इन सबको एक संग लाने की जरूरत है, जो कि एक प्रयास डिजिटल एग्रीकल्चर का चल रहा है, उसमें राज्यों का बहुत बड़ा भूमिका है। जो वर्ल्ड क्लास एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है और मैकेनाइजेशन, इसमें जो प्रिसिशन फार्मिंग की तरफ हमें जाना है, उसका भी एक इनिशिएटिव हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है गोइंग फॉरवर्ड। और लास्ट है कि इनोवेशन, एक्सटेंशन और कैपेसिटी बिल्डिंग, जो हमारे इंडस्ट्री का रोल है, जो हमारे स्टार्टअप्स का रोल है, और प्लस हमारी एक्सटेंशन मशीनरी का ये रोल हमारा, तो ये हमारे लिए पूरा रूप से गाइडिंग प्रिंसिपल्स है। और आप देखिएगा कि भारत सरकार की जो योजनाएं वो इन सभी को कहीं ना कहीं छूती हैं, जो हमारी सेंट्रल स्कीम्स हैं या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं। तो कल की जो चर्चाएं हुई और जो हमारी प्रायोरिटीज केंद्र सरकार की रही है, देखिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और इससे हम आगे अपनी सारी स्कीम्स को और सारी सर्विसेज को इसके मैकेनिज्म से डिलीवर करना चाहते हैं और हम अपने जो एग्रीकल्चर का डेटा है उसकी असिमेट्री को ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये दो बहुत बड़े लक्ष्यों के साथ इस इनिशिएटिव की स्वीकृति केंद्र सरकार से हुई है। अभी तक हम 9.76 करोड़ फार्मर आईडी बना चुके हैं और इसमें बहुत तेजी से काम चल रहा है। पिछले 2-3 महीनों में बहुत तेजी से कई राज्यों ने इसमें उल्लेखनीय काम किया है, लेकिन ये काम एक कैंपेन मोड में ही हो सकता है, ये रूटीन टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। दूसरा था कि हमारे बहुत सारे कृषक ऐसे हैं जो कल्टिवेटर्स हैं, वो लैंड ओनर नहीं है, तो उनको हम कैसे फार्मर आईडी क्रिएट करें, ये अनुरोध सब राज्य सरकारों को भेजा गया था और बहुत मुझे कहते हुए प्रसन्नता है और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा राज्यों को कि इसमें सभी राज्यों ने पहल की और कुछ राज्य कल अपनी प्रस्तुति के दौरान जो उन लोग ने सॉल्यूशंस सामने रखे वो मतलब बहुत ही प्रेरणादायक थे और मुझे बहुत खुशी हुई कि अब हम इस दिशा में बढ़ गए हैं कि इस एक बहुत बड़ी समस्या हमारे कल्टिवेटर्स को आइडेंटिफाई करने की, उसका काम अब हम बहुत जल्दी पूरा कर सकेंगे।
1: इस मौके पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा,
2: मुझे ये कहते हुए थोड़ा दुख है कि सही समय पर सब किसानों के पास बीज उपलब्ध नहीं हो पाता। अब बीज के मिनी किट हम बांटते हैं, कई बार मिनी किट बांटते तब है जब बोनी हो जाती है कुछ जगह में, सब जगह की बात नहीं कर रहा, इसलिए सभी राज्य समय पर अपना बीज उठा लें और किसान तक पहुंचा दें, ये सबसे प्राइमरी काम है हमारा। और ये समय पे पहुंचा दिया तो अपने आप उत्पादन बढ़ जाएगा। कुछ राज्य में नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन ब्रीडर सीड भी पूरा नहीं उठाते टाइम पे। आपको ब्रीडर सीड उठाना चाहिए टाइम पे, सब राज्यों की बात नहीं कर रहा हूं, कई उठाते हैं। और मैं फिर हमारी नेशनल सीड कॉर्पोरेशन सहित राज्य के बीज विकास निगम, बीज निगम सबसे अपील करता हूं कि ये बीज उपलब्ध कराना सबसे बड़ी चुनौती है, हम मिलकर इस काम को करें। एक एक आग्रह मैं जरूर आज करना चाहता हूं, मैं डरा नहीं रहा, लेकिन इस साल जिस तरह की खबरें आ रही है हम डरने वाले नहीं हैं, जो परिस्थिति होगी उसका मुकाबला करेंगे और देश को हर संकट के पार निकाल के ले जाएंगे, लेकिन आपातकालीन व्यवस्थाएं बनाना जरूरी है। एल नीनो के प्रभाव के कारण कुछ दिक्कतें हो सकती है, अभी स्पष्ट रूपरेखा सामने नहीं आई है, लेकिन हम देख रहे हैं मानसून कुछ लेट हो गया है, बीच में बारिश में गैप हो सकता है और इसलिए सूखा और आपातकालीन स्थितियों से निपटने की तैयारी भी हम सबको करनी पड़ेगी। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हमने लगभग 1,74,000 क्विंटल का एक राष्ट्रीय बीज भंडार आवंटित किया है, जहां जैसे बीज की जरूरत होगी हम पहुंचाने की पूरी व्यवस्था करेंगे, लेकिन आप आपात स्थिति अगर वैसी आती है तो अपनी तैयारी भी रखें। अलग अलग जिलों का प्लान भी बन रहा है कि अगर कम बारिश हुई तो हम क्या करेंगे, होगी ही कम ये मैं नहीं कह रहा बिल्कुल अभी, लेकिन तैयारी इसकी जरूरत है। एक और मेरा आग्रह है, खराब गुणवत्ता वाले बीजों को ना जाने दें, उसके लिए प्रभावी मैकेनिज्म हमारे पास होना चाहिए। हमको सीड रिप्लेसमेंट की दर कैसे और बढ़े इसकी कोशिश लगातार करते रहना चाहिए। एक सॉयल हेल्थ कार्ड कई राज्यों ने बताया बने हुए हमारे, लेकिन मित्रों दिल पे हाथ रख के सोचो कितने किसान उनका उपयोग करते हैं, हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि उनका उपयोग हो। अगर वो उपयोग करेंगे तो पता चलेगा कि यूरिया कितना डालना है, डीएपी कितना डालना है, काय की कमी है, तो ये हमको लीड करना पड़ेगा खेत बचाओ अभियान में। आपका स्वायत्त हेल्थ कार्ड ये कहता, हरियाणा ने बहुत अच्छा काम किया उसमें,

0: उर्वरकों का वो उपयोग घटाया है। पिछले साल विकसित कृषि संकल्प अभियान में सबसे बड़ी समस्या अगर कोई उभर के आई थी तो किसानों ने यही कहा था, घटिया से बचा लो, नकली से बचा। और मैं सब अफसरों से भी कह रहा हूँ, इस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी जो कीटनाशी अधिनियम है, हालांकि वो कमज़ोर है और हम लोग अभी लगातार विचार विमर्श कर रहे हैं, कोशिश रहेगी कि संसद के अगले सत्र में अगला नया पेस्टिसाइड एक्ट लेके आए जो बहुत कठोर और प्रभावी हो। नकली बेचने वाले, नकली बनाने वाले दोनों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहिए, वो राष्ट्रीय अपराध एक तरह से करते हैं, किसान की बर्बादी का कारण बनते हैं, इसलिए हमको उस पर प्रभावी कार्रवाई करने की कोशिश करनी चाहिए। अंत में मुझे एक बात करनी है, वो है खेत बचाओ अभियान की। खेत बचाओ अभियान ये आपके बिना नहीं चल सकता। 1 जून से 30 जून तक, 1 जून लगभग आई गई है, आज उसका पूरी रूपरेखा प्रस्तुत की जाएगी। आप सबको भी निकलना पड़ेगा, मैं भी निकलूंगा, आप भी निकलें, बाकी मंत्रियों से भी कहें, केंद्रीय मंत्रियों से कहें, विधायकों से कहें, सांसदों से कहें, जनप्रतिनिधि लीड करें तो स्वीकारिता बढ़ती है। और खेत बचाव में माटी, माटी में कौन से तत्व है, वो सब देख के कौन सी फसल, कितना खाद, कौन सा पेस्टिसाइड। अभी हमने एक प्रयोग के बारे में और आपसे शेयर करना चाहता हूँ, मित्र कीट भी पेस्टिसाइड की आवश्यकता उसको कम कर देंगे, खत्म कर देंगे। ऐसे कीट जो दूसरे हमारे शत्रु कीट है फसलों को, उनको ही खा जाते हैं, इसके बारे में भी बहुत तेजी से काम करने की जरूरत है। ICR काम कर रहा है। खेत बचाओ अभियान में आप सब चीजें जोड़ सकते हैं, बीजों के मिनी किट देना, अभी दो ना आप जनता के सामने, तो बड़े कार्यक्रम नहीं करना, गाँव का ही कार्यक्रम करना है। 100-200 लोग आएंगे किसान और उनके सामने प्रस्तुतिकरण होगा वहां की परिस्थिति के हिसाब से। दूसरे अम्बा योजनाओं का लाभ बांटते, KCC बन रहे, KCC बांटते हैं अम्बा। किसान सम्मान निधि में कोई रह गया है औपचारिकता पूरी करके, उसका लाभ हम दे दें। हमको कोई मैकेनाइजेशन का लाभ देना, जनता के सामने दो ना। बेईमानी तब नहीं होगी जब सबके बीच में हम योजना का लाभ देंगे। मैं कहता हूं कि जितनी योजनाओं के लाभ अभी 6 महीने के विद इन 6 मंथ देना है, हम इस खेत बचाओ अभियान में दे दें औपचारिकताएं पूरी करके। यहां से मदर सेंक्शन जारी हो गई, आप औपचारिकताएं पूरी करो, ड्रिप देना है आपको, स्प्रिंकलर देना है, मैदान में दो ना गांव में सबके सामने। तो हम योजनाओं का लाभ भी उनको ढंग से बांट सकते हैं, जागरूकता भी पैदा कर सकते हैं, कितना खाद डालना है वो भी बता सकते हैं। इसको बहुत गंभीरता से हम चलाने की कोशिश करें, खेत बचाओ अभियान की।
1: विगत दिनांक 29 मई 2026 राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन खरीफ अभियान 2026 पर आधारित ये रेडियो रिपोर्ट अब संपन्न होती है। स्वर मंजीत कौर, प्रस्तुति सहयोग विशाल और दिनेश, संयोजक शिवनंदन लाल, प्रस्तुतकर्ता तुषार पराशर।
2: तो अभी आपने सुना राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन खरीफ अभियान पर ये रेडियो रिपोर्ट।
3: और आइए अब आपको सुनवाते हैं ओमवीर आर्या की आवाज में ये उपदेश।

0: अभी आपने सुना ओम बिरारिया की आवाज़ में ये बहुत ही खूबसूरत सा
1: उपदेश।
0: उपदेश।
1: और इसी के साथ विश्व जगत कार्यक्रम में हम आपसे लेते हैं विदा।
0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पाराशर और संयोजक थे शिवनंदन लाल।
1: सभी ग्रामीण साथियों को राम
0: राम
1: राम।
0: राम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब आनंद लेते हैं हमारे अगले कार्यक्रम का, और इसके अंतर्गत सुनते हैं चंद खूबसूरत सी गजलें।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गीत गजल का हमारा कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत खूबसूरत सी गजलें हमने आप सभी को सुनवाई। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए आपसे कुछ ही पलों में सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: दी, ये देख कैसे।
1: हैप्पी बर्थडे भाई।
0: दीका,
2: हाँ मेरा फेवरेट कलर
1: हमेशा शॉपिंग।
2: I know ma, but खर्चा करने की भी यही उम्र है, right?
3: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
4: I know pa, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
2: I know na.
4: RBI कहता है,
5: करो सही शुरुआत, बनो financially smart।
6: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आकर्षता सिंह। दिल्ली सरकार ने अतिवृष्टि से फसल नुकसान झेलने वाले किसानों को अब 75,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा देने का निर्णय लिया है। परिवहन विभाग ने मात्र 90 दिनों में 10 लाख से अधिक महिलाओं को पिंक सहेली कार्ड जारी किए। दिल्ली सरकार ने जम्मू कश्मीर प्रवासी परिवारों के लिए एडहॉक मंथली रिलीफ योजना को मंजूरी दी। इससे पंजीकृत लगभग 1,832 प्रवासी परिवारों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हुए। प्रधानमंत्री ने कहा, स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर सृजित कर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया। और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की ने JEE एडवांस्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए। IIT दिल्ली जोन के शुभम कुमार ने कॉमन रैंक लिस्ट में शीर्ष स्थान हासिल किया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली सरकार ने अतिवृष्टि से फसल नुकसान झेलने वाले किसानों को अब 75,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि वर्ष 2015 से लागू 20,000 रुपए प्रति एकड़ की पुरानी दर में वृद्धि की गई है। एक रिपोर्ट।
7: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इसके अंतर्गत अगस्त सितंबर 2025 की अतिवृष्टि से ग्रसित किसानों को 75,000 रुपए हेक्टेयर की दर से मुआवजा दिया जाएगा। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इससे लगभग 10,000 किसानों को लाभ मिलेगा। ये निर्णय आज कैबिनेट की बैठक में लिया गया। ये सहायता उन किसानों को मिलेगी जिनकी फसलें भारी वर्षा और उसके कारण खेतों में हुए जल भराव से क्षतिग्रस्त हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सहायता भूमि के अभिलेखित स्वामी को दी जाएगी। इसके अलावा कंपनियों के स्वामित्व वाली भूमि, ग्राम सभा में निहित भूमि और पक्की चार दीवारी वाले प्लॉट स्वरूप के फार्म हाउस इस सहायता के दायरे में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि ये सहायता किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के साथ साथ उन्हें अगली फसल की तैयारी में सक्षम बनाएगी और कृषि गतिविधियों की निरंतरता सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार अन्नदाताओं के साथ सदैव खड़ी है। प्रादेशिक समाचार के लिए शिवांग मिश्रा।
6: परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने बताया है कि परिवहन विभाग ने सिर्फ 90 दिनों में 10 लाख से अधिक महिलाओं को पिंक सहेली कार्ड जारी किए जा चुके हैं। श्री सिंह ने कहा कि ये केवल निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा नहीं, बल्कि महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और डिजिटल सार्वजनिक परिवहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार इस योजना को महिलाओं तक पहुंचाने के लिए तेजी से काम कर रही है।
8: मुझे बड़ी खुशी है कि हमारा ट्रांसपोर्ट विभाग, हमारे ट्रांसपोर्ट मंत्रालय में हमारे सारे अधिकारी ने मिलकर 10 लाख प्लस हमने पिंक सहेली कार्ड बनाए हैं और हमारी दिल्ली की माता बहनों को उसका लाभ मिले और एक वो प्राउड फील करें कि हमारे पास डिजिटल कार्ड है। जो सपना सोचा था वो सपने की ओर हम बढ़ रहे हैं, तो इसका जितना लाभ मिलना मिले मैं उसी की प्रयास में हूं कि ये कार्ड नहीं है, इसको बहुत चीजों में इस्तेमाल किया सकता है रिचार्ज करके।
6: उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज उद्योग नगर औद्योगिक क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान श्री सिंह ने वहां के उद्योग संघ, फैक्ट्री मालिकों और श्रमिकों के साथ बैठक की और क्षेत्र की समस्याओं पर चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों को एक मजबूत जल निकासी प्रणाली बनाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने सभी को भरोसा दिलाया है कि यहां की आंतरिक सड़कों का काम जल्द शुरू किया जाएगा।
9: PSIDC में जो भी सड़कें बनने वाली हैं, उनका 36 करोड़ रुपए का टेंडर मेरा हो चुका है। जो अंदर की सड़कें हैं और नाला है उसका काम तो हम अभी शुरू करा देंगे। जो बाहर की एक बड़ी रोड है और बड़ा नाला है उसके लिए भी हमने अलग से पैसा मांगा है। सड़कों के लिए, पिछले सड़कों के लिए स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज के लिए हमने पैसे दे दिए हैं। और ये आपका जो पानी भरता है इसके लिए मैं आज या कल 2 दिन में जैसे भी होगा बैठक करूंगा और इसका एक परमानेंट सोल्यूशन निकाल के दूंगा।
6: लोक निर्माण मंत्री परवेश साहिब सिंह ने आज देवली विधानसभा क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान लोक निर्माण मंत्री के साथ दिल्ली जल बोर्ड, लोक निर्माण, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, दिल्ली

विकास प्राधिकरण, राजस्व, वन, दिल्ली पुलिस और बिजली विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान उन्होंने क्षेत्रवासियों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और उनके शीघ्र समाधान हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने जनहित से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण मांगों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराने का आश्वासन भी दिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट

0: एडवांस्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। कुल 56,880 उम्मीदवार परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, इनमें से 10,107 छात्राएं हैं। आईआईटी दिल्ली जोन के शुभम कुमार ने कॉमन रैंक लिस्ट में शीर्ष स्थान हासिल किया है। उन्हें 360 में से 330 अंक मिले हैं। शुभम ने कहा कि ये उपलब्धि कई सालों के मेहनत का परिणाम है।
1: जेई एडवांस के लिए हम लोग 2 साल से तैयारी कर रहे थे और तैयारी अच्छी चली रही थी, तो बहुत मेहनत करने के बाद तो लगता है कि अच्छा रैंक या अच्छे मार्क्स आने चाहिए। तो पहले से उम्मीद तो थी कि अच्छा परफॉर्म करेंगे, बट अब ऑल इंडिया रैंक बनना है तो अच्छा तो लग ही रहा।
0: उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित कराने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। न्यायालय की पीठ ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल नहीं उठता, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। राजधानी के नेशनल जूलॉजिकल पार्क में आज स्वच्छता पखवाड़ा 2026 का उद्घाटन किया गया। ये 15 दिनों का स्वच्छता और पर्यावरण जागरूकता अभियान है, जिससे इस महीने की 15 तारीख तक चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य स्वच्छ भारत मिशन और मिशन लाइफ पर्यावरण के लिए जीवन शैली के दूरदर्शिता के अनुरूप स्वच्छता, पर्यावरण की देखभाल, टिकाऊ जीवन शैली और संरक्षण प्रयासों में जन भागीदारी को बढ़ावा देना है। दिल्ली मंत्रिमंडल ने आज जम्मू कश्मीर प्रवासी परिवारों को प्रदान की जाने वाली एडहॉक मंथली रिलीफ योजना को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस निर्णय से दिल्ली सरकार के साथ पंजीकृत लगभग 1,832 जम्मू कश्मीर प्रवासी परिवारों को लाभ मिलेगा। ये योजना केवल उन पंजीकृत जम्मू कश्मीर प्रवासी परिवारों पर लागू होगी जिन्होंने 31 मार्च 2024 तक राहत प्राप्त की है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर प्रवासी परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए आय संबंधी पात्रता की शर्त को भी समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। एक रिपोर्ट।
2: दिल्ली सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए इस योजना के सुचारू संचालन के लिए 30 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया है। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी पात्र जम्मू कश्मीर प्रवासी परिवार को राहत प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। दिल्ली सरकार जम्मू कश्मीर प्रवासी परिवारों के समान सुरक्षा, पुनर्वास और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उनके हितों की रक्षा के लिए आगे भी आवश्यक कदम उठाती रहेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि प्रवासी परिवार की आय कितनी भी हो या उनके पास कोई अचल संपत्ति हो, इससे राहत प्राप्त करने की पात्रता प्रभावित नहीं होगी। उन्होंने बताया कि एक परिवार में अधिकतम 4 सदस्यों तक इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत प्रवासी परिवारों को अपने परिवार के मौजूदा सदस्यों की सही जानकारी और उनके आधार विवरण को अपडेट करने का एक और अवसर मिलेगा। इसके अलावा एडहॉक मंथली रिलीफ की बकाया राशि के भुगतान से संबंधित व्यवस्था को भी मंजूरी दी गई है। इससे पहले 30 सितंबर 2025 तक की बकाया राहत राशि के भुगतान का प्रावधान था, जिसे अब बढ़ाकर 31 मार्च 2026 तक कर दिया गया है। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज जन सेवा सदन में ककरोला गांव के निवासियों से बातचीत की। द्वारका मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर द्वारका ककरोला किए जाने की वर्षों पुरानी मांग पूरी होने पर ग्रामवासियों ने सरकार का आभार व्यक्त किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर खोलकर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। वर्ष 2020 में योजना शुरू होने के बाद से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण दिए जा चुके हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रामसिया गांव में राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। 1 महीने तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य कृषि भूमि की रक्षा करना और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए प्रोत्साहित करना है। श्री चौहान ने कहा कि खेत बचाओ अभियान का उद्देश्य मिट्टी और कृषि भूमि की रक्षा करना है। उन्होंने किसानों से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग सीमित करने का आग्रह किया।
3: ये खेत बचाओ कार्यक्रम इसलिए कि हमारी माटी बर्बाद ना हो जाए, हमारे खेत बर्बाद ना हो जाए। धरती कहे पुकार के इतना खाद मत डालो, इतना कीटनाशक

0: मत डालो कि जो मुझे मार दे।
1: अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस आज पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने दिल्ली वासियों को शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चे देश का उज्जवल भविष्य हैं और सभी बच्चों को सुरक्षित वातावरण, उत्तम स्वास्थ्य, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और समुचित पोषण प्रदान करना दिल्ली सरकार की प्राथमिकता है। होटलों, रेस्टोरेंट और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में देश भर में वृद्धि की गई है। हालांकि घरेलू उपयोग के सिलेंडरों की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर 42 रुपए बढ़कर अब 3,113 रुपए 50 पैसे में मिलेगा। शिक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि आज दिल्ली में लगी आग स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर में लगी थी, न कि शिक्षा मंत्रालय के कार्यालय में। मंत्रालय का कार्यालय नई दिल्ली के कर्तव्य भवन 2 में स्थित है, जबकि आग लगने की घटना आईटीओ नई दिल्ली स्थित स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के परिसर में हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22वीं एशियाई अंडर 20 प्रतियोगिता चैंपियनशिप में 10 स्वर्ण पदकों सहित 19 पदक जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये शानदार प्रदर्शन भारत के युवा खिलाड़ियों के दृढ़ संकल्प और उत्कृष्टता को दर्शाता है। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। प्रख्यात पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर का अंतिम संस्कार आज मुंबई में पूरे राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया। उनका निधन कल रात मुंबई में उनके आवास पर हुआ। वे 89 वर्ष की थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी उनके निधन पर दुख जताया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में लू के दौरान सुरक्षा, सावधानियां और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग की डॉक्टर रूपाली मलिक शामिल होंगी। दिल्ली में आज सुबह के समय हल्के बादल छाए रहने के साथ हल्की धूप रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 36.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल राजधानी में बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने अतिवृष्टि से फसल नुकसान झेलने वाले किसानों को अब 75,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा देने का निर्णय लिया है। परिवहन विभाग ने मात्र 90 दिनों में 10 लाख से अधिक महिलाओं को पिंक सहेली कार्ड जारी किए। दिल्ली सरकार ने जम्मू कश्मीर प्रवासी परिवारों के लिए एडहॉक मंथली रिलीफ योजना को मंजूरी दी। इससे पंजीकृत लगभग 1,832 प्रवासी परिवारों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हुए। प्रधानमंत्री ने कहा, स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर सृजित कर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया। और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की ने JEE एडवांस्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
3: रुक जा गुड्डू।
4: व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
2: तू समझ गई ना, रिलैक्स।
5: पर कार जीत जाते तो
6: पापा होमवर्क नहीं कराते।
4: RBI कहता है स्मार्ट बनो।
7: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम, आकाशवाणी के 90 वर्षों का सफर पर एक विशेष फीचर, आशाओं के स्वर।

अगर इतिहास को आंखें मिल जाएं, तो वो कैसा दिखेगा? शायद वो दिखाई नहीं देगा, वो सुनाई देगा। एक ऐसी ध्वनि बनकर जो समय के आर पार बहती रही हो, एक ऐसी गूंज जिसने शब्दों को सिर्फ कहा नहीं, जिया है, जिसने एक अकेले ट्रांसमिशन की हल्की सी कंपन से शुरुआत की और आज डिजिटल आकाश में अपनी उपस्थिति को उतनी ही दृढ़ता से दर्ज किया है। भारत की धड़कनों में अगर किसी आवाज ने जनमानस तक निरंतर गूंज बनकर साथ निभाया है, तो वो है आकाशवाणी। एक ऐसा मंच

0: जिसने सिर्फ सूचनाएं नहीं दी बल्कि भावनाएं भी बांटी हैं। खेतों से लेकर शहरों तक, सीमाओं से लेकर घर के आंगन तक, इसने हर उस आवाज को जगह दी है जो समाज को जोड़ती है।
1: आकाशवाणी, जो केवल एक प्रसारण सेवा नहीं बल्कि भारत की चेतना का वो अदृश्य तंत्र है, जिसने मिट्टी से उठती आवाजों को, सीमाओं पर तैनात सन्नाटों को और घरों के भीतर धड़कते छोटे छोटे सपनों को एक ही तरंग में बांध दिया।
0: आकाशवाणी के 90 वर्षों के इतिहास में महिलाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। ये भूमिका केवल भागीदारी तक सीमित नहीं रही बल्कि एक सशक्त उपस्थिति के रूप में सामने आई। शुरुआती दौर में जब रेडियो का विस्तार हो रहा था, तब महिलाओं की आवाज का सार्वजनिक मंच पर आना एक बड़ा सामाजिक बदलाव था। उस समय महिलाएं उद्घोषिका के रूप में जुड़ी। उनकी स्पष्ट और आत्मविश्वासी आवाज ने श्रोताओं का भरोसा जीता।
1: धीरे धीरे महिलाओं ने समाचार वाचन में भी अपनी पहचान बनाई। महिला समाचार वाचिकाओं ने देश दुनिया की खबरों को गंभीरता और संतुलन के साथ प्रस्तुत किया। इससे श्रोताओं के बीच उनकी विश्वसनीय छवि बनी। क्या था वो दौर, कैसा था वो मंजर, जानते हैं आकाशवाणी की जानी मानी समाचार वाचिका चंद्रिका जोशी से।
2: आकाशवाणी से मैं 1989 से जुड़ी हिंदी उद्घोषिका के पद पर और 1993 में समाचार वाचक का इम्तिहान पास करके ज्वाइन कर लिया था। लोगों में रेडियो के प्रति दीवानगी थी। लोग अपने प्रस्तुतकर्ता को सुनना और उससे मिलना चाहते थे। समाचार में इंदु वाही जी को मैंने पढ़ते देखा और कुछ बुलेटिन साथ पढ़े भी, शीला मेहरा या रविंदर सबरवाल। उस दौर में आज के जैसे तकनीक का अभाव था। घंटों लाइब्रेरी में बैठकर हम पढ़ते लिखते थे और समाचारों के प्रस्तुतीकरण में काफी बदलाव भी आए। चर्चा के कार्यक्रम काफी ज्यादा हो गए। सन 2000 में आकाशवाणी में कंप्यूटर आया, हमें ट्रेनिंग दी गई। आकाशवाणी के सफर में मुझे लगता है कि महिलाओं ने उसे संवारा है। महिलाओं की भूमिका बहुआयामी रही है। श्रोताओं के दिलों में अपनी पहचान बनाई, लोग नाम याद रखने लगे। रेडियो के सर्वोच्च पदों पर महिलाओं ने कीर्तिमान गढ़े हैं और 24 घंटे काम करने वाली जगह पर समाज के दबाव से ऊपर उठकर शिफ्ट ड्यूटी में काम करते हुए, जो कि हमसे पहले वक्त की भी एक बड़ी चुनौती होती थी। लेकिन असल बात तो ये है कि रेडियो की लोकप्रियता तब भी थी, आज भी है और आने वाले समय में भी हमेशा रहेगी, क्योंकि रेडियो आपको अपना काम करने देता है। ये आपके साथ साथ चलता है, आपको बैठने के लिए मजबूर नहीं करता और ये आपके साथ यूं ही चलता भी रहेगा।
0: 90 वर्ष, ये सिर्फ समय की गणना नहीं, एक विश्वास की स्थापत्य कला है जो बिना दीवारों के खड़ी हुई संरचना है। तारों और टावरों से कहीं आगे दिलों के भीतर निर्मित हुई, जहां हर शब्द, हर विराम, हर धुन एक जिम्मेदारी बनकर गूंजी।
1: सोचिए जरा, जब दुनिया तकनीक की परिभाषाएं बदलती रहीं, तब भी आकाशवाणी ने अपने स्वर की विश्वसनीयता को कभी डगबगाने नहीं दिया। खेतों में मौसम की सूचना हो, समुद्र में मछुआरों के लिए चेतावनी, कक्षाओं तक पहुंचती शिक्षा हो, सीमाओं पर गूंजती लाइव कमेंट्री, या फिर शाम ढलते ही फिल्म संगीत की वो मधुरता, आकाशवाणी हर रूप में एक जीवित, जागृत और जनमानस से जुड़ा हुआ संसार बनी रही।
0: 26 जनवरी या 15 अगस्त के राष्ट्रीय पर्वों की लाइव कमेंट्री हर घर तक पहुंचती है। जब शाम को हवा महल की कहानियां मुस्कान बन जाती हैं, झलकियां यादों में बस जाती हैं और लोक संगीत हर दिल की धड़कन में शामिल हो जाता है, तब एहसास होता है कि ये सिर्फ प्रसारण नहीं, एक जीवंत परंपरा है।
1: हर आयु, हर वर्ग और हर रुचि के लिए, चाहे घर परिवार से जुड़े कार्यक्रम हो, बुजुर्गों के लिए विशेष पहल हो, स्वास्थ्य और विज्ञान से जुड़ी जानकारियाँ, राजनैतिक चर्चाएं, साहित्यिक गतिविधियाँ, नाटक, संगीत रूपक, शास्त्रीय से लेकर वेस्टर्न म्यूजिक तक, युवाओं, महिलाओं के लिए समर्पित कार्यक्रम, हर दिशा में आकाशवाणी सदैव तत्परता से समाज के साथ कदम मिलाता रहा है।
0: भारत में रेडियो संचार की दुनिया में एक ऐसे माध्यम के रूप में उभर रहा था जिसकी संभावनाएं असीम थीं और लोगों के भीतर इस नई तकनीक को लेकर उत्सुकता बढ़ रही थी। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि ये छोटी

0: सी शुरुआत आगे चलकर करोड़ों भारतीयों के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन जाएगी।
1: आकाशवाणी के 90 वर्षों से अधिक के गौरवशाली इतिहास की ये यात्रा केवल तकनीक और प्रसारण की कहानी नहीं है, बल्कि उन असंख्य नारी स्वर की कहानी भी है जिन्होंने भारत के जनमानस को एक सूत्र में बांधा। इस पूरी यात्रा में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण, प्रेरणादायक और परिवर्तनकारी रही है।
0: आकाशवाणी ने महिलाओं को केवल मंच ही नहीं दिया, बल्कि उनके लिए विशेष रूप से ऐसे कार्यक्रम भी तैयार किए जिनमें उनकी दुनिया, उनके अनुभवों और उनकी आवश्यकताओं को केंद्र में रखा गया। आधा आकाश हमारा, घर आंगन और गृह लक्ष्मी जैसे महिलाओं के स्वास्थ्य और जागरूकता से जुड़े अनेक कार्यक्रमों ने स्त्री जीवन के विविध आयामों को स्वर दिया। इन कार्यक्रमों ने महिलाओं को जानकारी, संवाद, आत्मविश्वास और अपने अनुभव साझा करने का एक आत्मीय मंच प्रदान किया।
1: उन्होंने केवल उद्घोषिका या समाचार वाचिका के रूप में ही नहीं, बल्कि निर्माता, पत्रकार, लेखिका, तकनीकी विशेषज्ञ और प्रबंधक के रूप में भी आकाशवाणी की गरिमा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। एक आवाज जो लोकप्रिय तो बनी ही, संग ही संग रचनात्मकता और कार्यकुशलता के नए मानक तय करती हुई जनमानस के दिलो दिमाग पर छा गई। आकाशवाणी की उद्घोषिका, विविध भारती की शान, डॉक्टर अचला नागर, जो कई सुपरहिट फिल्मों की कथा पटकथा लिख चुकी हैं, जैसे निकाह, आखिर क्यों, बागबा, आज उम्र के इस पड़ाव में भी फिल्म, धारावाहिक और साहित्य लेखन कर कला के नए मानदंड स्थापित कर रही हैं। आज डॉक्टर अचला नागर हमारे साथ हैं, आइए सुनते हैं वो क्या कह रही हैं।
2: आकाशवाणी से बड़ा कोई भी शिक्षा संस्थान नहीं हो सकता, मेरे लिए तो मेरी ये पाठशाला है। कौन सा ऐसा विषय है जिसके बारे में आकाशवाणी ने हमें जानकारी ना दी हो? ध्येय ये है कि शिक्षित करना, मनोरंजन करना, दुनिया भर में क्या हो रहा है उन समाचारों से अवगत करना। इसका जो मुझे प्राप्य है उसके लिए मैं जितने भी बधाई क्या दूं, मैं तो धन्यवादों की बौछार करना चाहती हूँ। मेरी जो डिग्रियां हैं, मेरे जो स्कूल में पढ़ी हूँ, सबसे बढ़ के मैंने आकाशवाणी से सीखा है। हम लोग रेडियो बोलते थे, बचपन से रेडियो देखा, शुरुआत में तो फिल्मी गानों का ही शौक था, फिर क्रिकेट मैच आते थे, फिर समाचार आते थे। वो तो मैं अगर ये कहूँ कि मेरा तो आकाशवाणी परिवार है तो गलत नहीं होगा। बाबूजी नाटक प्रोड्यूसर के रूप में लखनऊ में रहे, एक जो पैक्स थे उस समय जानते थे, मैं रेडियो नाटकों के लिए जाती थी, घर आए मेरी कि देखो एक ऐसी ऐसी वैकेंसी निकल रही है और तुम ये फॉर्म भर दो। वो तो चले गए कह के फॉर्म छोड़ के, फॉर्म तो भर दिया मैंने। छोटा ही स्टेशन था मथुरा, लेकिन मेरे लिए छोटा नहीं था, मेरे लिए वो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी मेरी। और आज अगर मैं जो कुछ भी हूँ, जहाँ भी हूँ, जहाँ तक पहुँची मैं, वो आकाशवाणी मथुरा की वजह से। नाटक ऑडिशन लिखना, नाटक विभाग मेरे पास आ गया, जो रविन्द्र जैन जी का सबसे पहला इंटरव्यू, फिल्मों में जब आए भी नहीं थे तब मैंने पहला इंटरव्यू लिया, वो भी इसमें जाना शुरू किया मैंने। फिर मैंने परमिशन ली अपने डायरेक्टर से कि हमारे यहाँ हवा मिल हम लोग बजाते हैं विविध भारती से, हम क्यों नहीं भेज सकते। बोले तुम बनाओ, अच्छा बना के भेजो, वो सिलेक्ट हो जाएगा तो शायद हो जाए, तो हम चंक अपने यहाँ लगा देंगे 15 मिनट का। तो मुझे बहुत खुशी हुई जब हमारे यहाँ हवा महल आते थे बम्बई केंद्र से, और जब हमारे की केंद्र का बजाय और कहा कि आकाशवाणी मथुरा की भेंट, मैं बहुत खुशी हुई। मेरा कुछ सौभाग्य कि मुझे बहुत अच्छे लोग मिले, कई जगह मैं ओबीज में गई तो बहुत प्रॉब्लम्स आई मुझे, लेकिन हार नहीं मानी और फिर मैं फिल्मों में पहुंच गई 10 साल काम करने के बाद। लेकिन वहाँ विविध भारती में वहाँ भी मैंने बहुत काम किया, तो मैं आशा भोसले जी को और कई समय के बड़े एक्टर थे, ख्वाजा अहमद अब्बास जी और काफी नाम है वो जिनको कभी बुलाया नहीं गया था, तो उनके घर दौड़ दौड़ के जाना आना, तो एक लगन अगर होगी वो बहुत अच्छा काम करेगा। एक बार उनसे बीबीसी के एक रिपोर्टर ने पूछा, टेलीविजन आ रहा है, प्राइवेट चैनल आ गए, आपको क्या लगता है ये चलेगा? मैंने कहा कभी बंद नहीं होगा आकाशवाणी, ये रेडियो तो हमेशा चलता रहेगा, चलते चलते आकाशवाणी से जो भी जुड़े हुए हैं उन सबको मैं बधाई देना चाहती हूँ।
0: भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत बहुत साधारण परिस्थितियों में हुई थी। जब कलकत्ता रेडियो क्लब की स्थापना हुई तब किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि ये छोटा सा प्रयास आगे चलकर करोड़ों लोगों के जीवन का हिस्सा बन जाएगा। ये

0: सरकारी पहल नहीं थी, बल्कि उन लोगों का प्रयास था जो रेडियो के माध्यम से संवाद की नई संभावनाओं को तलाशना चाहते थे। धीरे धीरे ये तकनीक लोगों के जीवन में प्रवेश करने लगी और एक नए युग की शुरुआत हुई।
1: समय के साथ आकाशवाणी घर घर तक पहुंचने लगी। विशेष रूप से महिलाओं के जीवन में रेडियो ने एक आत्मीय साथी की भूमिका निभाई। रसोई में काम करती गृहिणी, खेतों में काम करती ग्रामीण महिला या परिवार की जिम्मेदारियों के बीच कुछ पल अपने लिए खोजती स्त्रियां, सभी के जीवन में रेडियो ने एक अपनापन पैदा किया। मनोरंजन के साथ साथ रेडियो ने महिलाओं को जानकारी, शिक्षा और जागरूकता भी दी। महिला केंद्रित कार्यक्रमों के माध्यम से बाल विवाह, महिला शिक्षा, परिवार नियोजन, स्वास्थ्य और घरेलू हिंसा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर समाज को संवेदनशील बनाया गया।
0: आकाशवाणी की ये यात्रा केवल समाचारों, वार्ताओं और कार्यक्रमों तक ही सीमित नहीं रही। इसने भारत की मिट्टी की सुगंध को अपनी तरंगों पर सहेजा। गांवों की चौपालों से उठते लोक स्वर, खेतों में गूंजते श्रम गीत, ऋतुओं के गीत, विवाहों और उत्सवों की पारंपरिक धुने, इन सब को आकाशवाणी ने घर घर तक पहुंचाया। विशेष रूप से महिला लोक गायिकाओं ने इस विरासत को जीवित रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी आवाजों में केवल संगीत नहीं बल्कि लोक जीवन की स्मृतियाँ, परंपराएं और भावनाएं भी समाहित थीं।
1: बिल्कुल, चाहे पूर्वांचल की कजरी हो, राजस्थान के मांड गीत हो, पंजाब के टप्पे, बुंदेलखंड के फाग, बिहार के सोहर, उत्तराखंड के छोड़े या ब्रज के रसिया, होरी, जिकड़ी, नौटंकी या फिर संस्कार गीत, आकाशवाणी ने इन लोक धुनों को एक ऐसा मंच दिया जहां क्षेत्रीय सीमाएं समाप्त हो गईं। अनेक महिला लोक गायिकाएं जो कभी अपने गांव या क्षेत्र तक सीमित थीं, रेडियो के माध्यम से पूरे देश की पहचान बन गईं। उनकी सहज मिट्टी से जुड़ी आवाजों ने भारतीय लोक संस्कृति को जीवंत बनाए रखा। इसका जीता जागता उदाहरण है उत्तराखंड की लोक गायिका, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित श्रीमती बसंती बिष्ट। आइए सुनते हैं वो आकाशवाणी की भूमिका के बारे में क्या कहती हैं। बसंती जी, जब आपको पद्मश्री पता चला कि मुझे पद्मश्री मिल गया है, उसके बाद आपको कैसा लगा?
2: उस दिन तो बहुत अच्छा लगा। ये मुझे लगा कि ये किस दुनिया में हूँ मैं
1: जी,
2: और क्या मैं इस काबिल थी क्या? कौन सी शक्ति है जो मुझे रास्ता दिखा रही है, ऐसा लगा मुझे। फिर सबसे पहले मैंने आकाशवाणी का धन्यवाद दिया जिसने मेरा प्रवेश किया संगीत के क्षेत्र में
1: जी,
2: और जहाँ मेरा इंटरव्यू लेने आ गए, कहाँ से कैसे हुआ, मैंने बोला आकाशवाणी ने मेरे संगीत को जगह दी है और इसको आगे भी हमारा क्षेत्रीय कार्यक्रमों में, राष्ट्रीय कार्यक्रम में हमको मौका दिया। यहाँ के बड़े कलाकारों के साथ, जो देश के कलाकार हैं भारतवर्ष के, उनके साथ हमारा कार्यक्रम हुआ शिमला में, तो उससे काफ़ी लोगों को पता चला उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में, तो बहुत अच्छा लगा। तो उस दिन लोगों ने बोला आपको कैसा लग रहा, आप क्या चाहते हैं? मैंने कहा मैं ये चाहती हूँ कि मेरे उत्तराखंड को और भी पद्मश्री मिले।
0: और ये हैं राजस्थान के प्रसिद्ध मांड गायक अली गनी ब्रदर्स।

0: ऐसा है कि मुंबई जो कलाकार होते हैं, हर कलाकार का सपना होता है, और कुछ कलाकारों का ये सपना होता है कि मैं पूरी दुनिया में नाम करूं। तो नाम होने के जो जरिए हैं वो फिल्म इंडस्ट्री है ना, या फिर रेडियो तो है ही है। और रेडियो की बात बीच में हम करना इसलिए पसंद करते हैं कि हमारी युवा वाणी आपका एक प्रोग्राम आता था, तो हम लोग 14-14, 15-15 साल के थे उस वक्त, हमने युवा वाणी में गाना शुरू किया। तो हमें बीच में भी गुलाम अली साहब के प्रोग्राम सुना हमने, तो उन्होंने भी याद दिलाया, उन्होंने भी उससे शुरू किया प्रोग्राम, तो हमें बड़ी खुशी मिल गया रेडियो से, ये भी जुड़े हुए।
1: तो युवाणी से जो है ना हमने शुरुआत की, और
0: हम लोग जब कलकत्ते गए ना मैडम, तो कलकत्ते में हमारी उस वक्त गले में तैयारी इतनी करके गए थे, वो तैयारी अभी भी काम कर रही है, वही चीज है। अब रही बात के संगीत जो फोक है, फोक हर जगह का अच्छा है।
2: लोक संगीत की वही परंपरा जिसकी सुगंध आज भी आकाशवाणी के अभिलेखागारों में सांस

0: ले रही है, उसे जीवित रखने में अनेक महिला लोक गायिकाओं का अमूल्य योगदान रहा। उन्हीं स्वरों में से एक ऐसा स्वर भी है जिसने लगभग देश के हर आकाशवाणी केंद्र पर अपनी आवाज की पहचान छोड़ी। आकाशवाणी के टॉप ग्रेड लोकगीत गायिका माधुरी शर्मा एक ऐसा नाम जिसकी आवाज में मिट्टी की सौंधी महक भी थी और भारतीय लोक जीवन की आत्मा भी।
1: माधुरी शर्मा बताती हैं कि उस समय आकाशवाणी के स्टूडियो में प्रवेश करना किसी साधना स्थल में प्रवेश करने जैसा अनुभव देता था। घंटों रियाज, शब्दों की शुद्धता, लोक धुनों की आत्मा को बनाए रखने का प्रयास और माइक्रोफोन के प्रति एक गहरा सम्मान।
2: सबसे पहले आकाशवाणी केंद्र के 90 वर्ष पूर्ण होने पर मैं हार्दिक बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं दे रही हूँ। आकाशवाणी की आवाज, ये गूंज जन जन तक, युगों युगों तक चलती रहे, यही प्रार्थना है हमारी। आकाशवाणी से जुड़ाव मेरा 50 वर्षों से है, तो मैंने एक ठान ठानी थी उस समय कि इन लोकगीतों को मैं उस स्तर पे पहुंचाऊंगी कि हर वर्ग का कलाकार इन लोकगीतों को गाने को उत्सुक रहेगा। मैं एक उदाहरण बनी संभव आकाशवाणी के माध्यम से। यहाँ का जो माहौल था उसमें अनुशासन, मर्यादा और शालीनता थी। मैंने इतनी कंसर्ट की रेडियो की, उन दिनों मुझे कंसर्ट क्वीन के नाम से पुकारा जाता था। जब चेन बुकिंग हुआ करती थी, जैसे गुजरात बुलाया है तो अहमदाबाद, राजकोट, भुज, नलिया तक, वहां तक हम कंसर्ट करके 15-15 दिन में लौट के आते थे। राजस्थान दिवस होता था तो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, ये सब कवर करते थे। इसी तरह से जम्मू में जाते थे, जम्मू, उधमपुर, जिंद्रा, बहुत कंसर्ट किए हमने। ग्वालियर में जाते थे, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, ये सब, यानी देश के कोने कोने में मैंने कोई जगह नहीं छोड़ी जहां मैंने रेडियो कंसर्ट नहीं की। अपितु विदेश में भी मैं आकाशवाणी महानिदेशालय के माध्यम से ही, जब 1991 में ए ग्रेड हुई तो तुरंत मुझे आकाशवाणी डायरेक्टर के माध्यम से मुझे बाहर भेजा गया। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में वर्ल्ड सॉन्ग फेस्टिवल का आयोजन था और फिर 1994 में भी कनाडा में कॉमनवेल्थ गेम्स के अवसर पे टाइटल सॉन्ग गाया कॉमनवेल्थ का और फिर उसके बाद सोलो प्रस्तुतियां हुई। एक रेडियो कंसर्ट में भी मैंने भाग लिया कनाडा में, जो सीबीसी रेडियो है। चाहे मंची कार्यक्रम हो या स्टूडियो रिकॉर्डिंग हो या कोई वार्ता हो या निर्णायक की भूमिका में हो, मैंने अधिक से अधिक समय आकाशवाणी को ही दिया है, आकाशवाणी को ही जिया है। मैं पहली लोक कलाकार बनी जिसको आकाशवाणी ने 2012 में लोक संगीत में डॉक्टरेट दिया।
0: आकाशवाणी के 90 वर्षों की यात्रा में केवल सुगम और लोक संगीत ही नहीं बल्कि भारतीय शास्त्रीय और पारंपरिक संगीत विधाओं को भी संरक्षण मिला। इन्हीं में समाज गायन और हवेली संगीत की परंपरा विशेष उल्लेखनीय है, जो मंदिरों और देवालयों में विशिष्ट पद्धति से गाया जाने वाला संगीत है।
1: पुष्टि मार्ग से जुड़ी इस परंपरा में अष्टछाप के कवियों की पद रचनाओं को समयानुसार निर्धारित रागों में निबद्ध कर गाया जाता है। मंगला से शयन तक प्रत्येक सेवा के साथ संगीत का स्वरूप भी बदलता है। आकाशवाणी ने इस दुर्लभ विधा को मंच देकर इसके संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
0: समाज गायन और हवेली संगीत की इस परंपरा को आगे बढ़ाने वाली प्रमुख महिला कलाकारों में डॉक्टर वंदना तैलंग का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उनके लिए समाज गायन केवल संगीत नहीं बल्कि साधना और सामूहिक समर्पण का स्वर है।
3: आकाशवाणी एक ऐसा माध्यम रहा कलाकारों के लिए, जिन गायन की कलाओं की विधाओं का, शैलियों का लोगों को पता नहीं था, मालूम नहीं था कि आला क्या होता है, लावनी क्या होती है, सोवर क्या चीज होती है, शादी ब्याह होते हैं तो उस समय कौन कौन से गीत किस तरह से गाए जाते हैं, सब जगह की विधाएं अलग होती हैं। तो उनके कलाकार जो सुनने को मिले वो आकाशवाणी के माध्यम से मिले। आकाशवाणी ने उन विधाओं के कलाकारों को ला करके सबको सुनवाया और लोगों ने उन शैलियों को जाना, उन शैलियों के विषय में जिनके की विषय में लोग जानते ही नहीं थे, कलाकारों के विषय में जाना। जितने भी पुष्टि संप्रदाय के जो मंदिरों में जो गायन होता है वो समय और व्यवहार और स्थिति परिस्थितियों को देखते हुए नहीं, खाली आपके राग और भोग सेवा आपके समय के अनुसार होता है। जब मैंने अपना ये कार्यक्रम शुरू किया था तब उस समय इतना प्रचार प्रसार नहीं था, ना समाज गायन का था ना हवेली संगीत का था, लेकिन यहाँ के जो जितने भी कलाकार हुए वो आकाशवाणी के माध्यम से बहुत आगे बढ़े और कलाकारों को एक तरह से रोजी रोटी वो प्राप्त हुई। तो हम यही चाहते हैं आकाशवाणी से।

0: कलाकार जुड़े रहें और आकाशवाणी उनको आगे बढ़ाए, और आकाशवाणी का योगदान जो अभी तक रहा है वो हमेशा ऐसा ही यथावत बना रहे।
1: आकाशवाणी के इस सफर में नाटक, झलकी, रूपक और विज्ञापन जैसी विधाओं ने श्रोताओं के मन पर गहरी छाप छोड़ी है। ये केवल मनोरंजन के माध्यम नहीं रहे, बल्कि सामाजिक संदेश, संवेदनाएं और जीवन के विविध रंगों को घर घर तक पहुंचाने का सशक्त जरिया बने। ध्वनि, संवाद और अभिनय के माध्यम से आकाशवाणी ने बिना दृश्य के भी ऐसी सजीव दुनिया रची जिसने श्रोताओं की कल्पना को विस्तार दे दिया।
2: आकाशवाणी के नाट्य प्रसारणों की ये विशेषता रही कि उन्होंने शब्दों और स्वरों से पात्रों को जीवंत बना दिया। रेडियो नाटक केवल अभिनय नहीं बल्कि आवाज के माध्यम से भावनाओं को जीवंत करने की कला है। यही कारण है कि आकाशवाणी के नाटक आज भी श्रोताओं की स्मृतियों में उतने ही आत्मीयता से बसे हुए हैं।
1: आकाशवाणी का नाटक श्रोता की कल्पनाओं को उसका अपना मंच देता है। यहाँ कलाकार केवल संवाद नहीं बोलता बल्कि अपनी आवाज से एक पूरा संसार रचता है। यही आकाशवाणी की सबसे बड़ी शक्ति और उसकी अमर पहचान है।
2: इस विधा में अनेक कलाकारों ने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। डॉक्टर सुचित्रा गुप्ता का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अपनी प्रभावशाली वाणी, सशक्त संवाद अदायगी और सहज अभिनय से उन्होंने श्रोताओं के दिलों में एक विशेष स्थान बनाया।
3: आकाशवाणी से मेरा जुड़ाव मेरे बचपन से ही शुरू हो गया। ये उम्र का वो मासूम दौर था जब विधा की स्पष्ट जानकारी तो नहीं थी लेकिन उत्साह भरपूर था। मेरी शुरुआत बाल कलाकार के रूप में तब हुई जब रिकॉर्डिंग का कोई सिस्टम नहीं था। नाटक लाइव ब्रॉडकास्ट होते थे। उस जमाने से लेकर हाई टेक्नोलॉजी के आज के दौर तक मैं लगातार आकाशवाणी का हिस्सा रही हूँ। कितने नाटक किए, कितने किरदार निभाए याद नहीं। सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि आकाशवाणी मेरा परिवार बनता चला गया, अभिनय साधना की जमीन बनता चला गया और ये सफर आज भी जारी है। जब समाज में महिलाओं के लिए मंच बहुत सीमित थे तब रेडियो ने उन्हें एक ऐसा आकाश दिया जहां उनकी आवाज को न केवल सुना गया बल्कि उसे सम्मान भी मिला। जब अल्फाज को एहसास की जरूरत पड़ी तो एक नारी स्वर ने उन्हें रूह दी। एक माँ का स्नेह, एक बहन का अपनापन, एक बेटी की कोमलता, एक प्रेमिका का प्रेम और सबसे बढ़कर एक स्त्री की अटूट शक्ति अपनी आवाज के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से अपने श्रोताओं तक पहुंचाई। नर्म लहजे में भी ताकत का असर होता है, एक नारी स्वर में पूरा समंदर होता है। ये सफर आवाज से शुरू हुआ था और पहचान तक पहुंच गया। रेडियो के इस समृद्ध इतिहास में महिलाओं का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण, प्रेरणादायक और हमेशा याद रहेगा। ये सफर चला, चलता रहा और चलता रहेगा।
1: आकाशवाणी केवल ध्वनियों का संसार नहीं बल्कि भारत की स्मृतियों, संवेदनाओं और सामूहिक चेतना का एक जीवंत अभिलेख है। दशकों से ये माध्यम समाज की धड़कनों के साथ स्पंदित होता रहा है और इस पूरी यात्रा में महिलाओं की भूमिका इसकी आत्मा के समान रही है। नारी प्रतिभा, संवेदनशीलता और समर्पण ने आकाशवाणी को वो आत्मीयता दी जिसने इसे करोड़ों श्रोताओं के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया। एक कदम बुजुर्गों की ओर, जैसे कार्यक्रम केवल शब्द नहीं थे, अनुभव थे, केवल अभिव्यक्ति नहीं थी, विश्वास था। इन आवाजों ने पीढ़ियों को जोड़ा, बुजुर्गों को जोड़ा, घरों में अपनापन दिया और समाज को बुजुर्गों के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए एक नई दृष्टि भी दी। आकाशवाणी ने दिव्यांगजनों के जीवन को आसान करने और उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम बनाए। दिव्यांग कलाकारों को, वक्ताओं को, गायकों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर दिया, मंच दिया, समावेशी सामग्री दी, दिव्यांगों की समस्याएं, उनके अधिकार और सफलता की कहानियों को प्रमुखता से शामिल किया, रोजगार के अवसर और सूचना की सुलभता प्रदान की। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं अशोक तुकाराम भोई, जो कि भारत सरकार के सामान

0: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से दिव्यांग जन सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं और एक खिलाड़ी भी हैं।
1: मैं आकाशवाणी का और आपका सबका मैं आभारी हूँ। बचपन में 10 महीने का था, उसी टाइम मुझे पोलियो हो गया था। पिताजी को जॉब था छोटा मोटा, वो भी चला गया था। 10वीं से होने से पहले घर की पोजीशन इतनी खराब थी कि मेरे को स्कूल में जाने के लिए कपड़े भी नहीं रहते थे। 12 घंटा ड्यूटी करता था एक साइकिल के दुकान पे, उससे 5 रुपया रोज का देते थे और इसके बाद वो जो पैसा मिलता था वो पैसे से हम लोग नोटबुक्स खरीद लेते थे। और कभी कभी तो मैं ठेले का भी धंधा किया, छोटा सा मैं डेकोरेटर का बिजनेस शुरू किया। फिर कॉलेज 12वीं में जाने के बाद मेरे पास पैसा नहीं रहता था, मेरे पिताजी ने एक साइकिल ली गई थी 470 रुपए में, 10 साल उसका पेमेंट भरते बैठा था पिताजी मेरा। फिर इसके बाद मैं स्पोर्ट में चला गया, नेपाल में मेरा स्पोर्ट्स हो गया, फिर कुआलालंपुर में चला गया, 8 गोल्ड मेडल मैंने पाया, शॉट पुट है और जेवलिन करके है। लेकिन मैं कभी हार नहीं मानी कि मैं दिव्यांग हूँ। शरीर हमारा कमजोर हुआ तो क्या हुआ, मानसिक तो ठीक है मेरी। जब ग्राउंड पे उतरते हैं तो सिर्फ इतना ही दिखता है, मैं जीत के ही आऊंगा। अगर समाज को बदलना है तो पहली बात आपुन खुद बदलना चाहिए। दिव्यांग महिलाओं के लिए हर जगह पे कैंप होना चाहिए, उसकी प्रसिद्धि होना चाहिए। जैसे आपने आकाशवाणी के बीच में FM से आप जो ये कर रहे, उसके माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूँ कि जिसकी ज्यादा से ज्यादा उनकी प्रसिद्धि मिलना चाहिए और होना चाहिए वो करे। तो मुझे नहीं लगता कि दिव्यांगन महिला आज भी पीछे रहेगी, लेकिन आज भी दिव्यांगन महिला आगे है।
0: घरों को संजोती सवारती महिलाएं हों या समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बना चुकी नेत्रियां, सभी ने आकाशवाणी से भरपूर स्नेह किया। क्या कह रही हैं सिनेतारिका और सांसद हेमा मालिनी जी, आइए जानते हैं उन्हीं से।
2: जब हम छोटे थे तो आकाशवाणी ही हमारी जानकारियों और एंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन का जरिया था, लेकिन आज भी मुझे आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनना उतना ही पसंद है, चाहे वो कार में बैठते ही रास्ते में थकान मिटाना हो या घर में सारे दिन धीमे धीमे बजने वाले गीत, सभी सुकून देते हैं। आकाशवाणी से जुड़ाव अब तो जीवन का एक हिस्सा बन चुका है, तो एक बार फिर सभी को मंगल कामनाएं। धन्यवाद।
0: समय बदला, तकनीक बदली, माध्यम बदले, पर आकाशवाणी की गरिमा और उसकी आत्मीयता आज भी अक्षुण्ण है। शायद इसीलिए आकाशवाणी को सुनना केवल किसी कार्यक्रम को सुनना नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति, अपनी जड़ों और अपने समय से संवाद करना है। और जब जब इसकी तरंगों पर कोई स्त्री स्वर गूंजता है, तब तब उसमें समर्पण, सृजन और संवेदना की पूरी परंपरा साथ बोलती हुई महसूस होती है। आकाशवाणी की ये यात्रा यूं ही नई पीढ़ियों, नए स्वरों और नए सपनों तक पहुंचती रहे, क्योंकि कुछ आवाजें केवल सुनी नहीं जाती, वो इतिहास रच जाती हैं, और आकाशवाणी उन्हीं अमर स्वरों की एक अनश्वर

आकाशवाणी के 90 वर्षों का सफर, अभी आप सुन रहे थे ये विशेष फीचर आशाओं के स्वर। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं गीतों का कार्यक्रम गीतमालिका।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गीत मालिका के अंतर्गत ये खूबसूरत से गीत। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स पर, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। आइए आपसे कुछ ही पलों में सुनते हैं समाचार, पहले हिंदी, फिर अंग्रेजी और उसके बाद उर्दू में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की। एक दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। मलेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल। और राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक

0: रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कालाधान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है, क्योंकि ये एकमात्र आसियान देश है जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करता है। उन्होंने शांति और सुलह के लिए म्यांमार के प्रयासों के प्रति भारत के अटूट समर्थन का भी आश्वासन दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी।
3: I am confident that this comprehensive agreement
4: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
3: Of our shared future.
0: श्री गोयल ने बताया कि समझौते के लागू होने के बाद आज मुंबई, कोलकाता और चेन्नई से कई खेपें भेजी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यह समझौता अपनी उन्नत रसद और बंदरगाह अवसंरचना के माध्यम से खाड़ी सहयोग परिषद और पूर्वी अफ्रीकी बाजारों तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण द्वार बनेगा। श्री गोयल ने कहा कि अमरीकी FDA, यूरोपीय औषध एजेंसी या ब्रिटेन के MHRA से अनुमोदित भारतीय जेनरिक दवाओं को अब ओमान में 90 दिन के भीतर बाजार में बिक्री की अनुमति मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत ने समझौते के तहत गैर सेवा क्षेत्रों में भारतीय श्रमिकों की सुरक्षा के लिए एक बाध्यकारी प्रतिबद्धता भी हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर श्री गोयल का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह समझौता रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में क्षेत्र में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया की रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी

0: फर्जी हैं और इनका आधिकारिक एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप चयन प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। प्रामाणिक जानकारी केवल आधिकारिक एलपीजी वितरक चयन पोर्टल पर ही उपलब्ध है। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों की विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने दो विधायकों संदीप अंसाहा और ऋतव्रत बैनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने के आरोप में निष्कासित कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि लोक अदालतों और जिला विधि सेवा प्राधिकरणों को तलाक का निर्णय देने का अधिकार नहीं है और विवाह भंग करने का अधिकार केवल पारिवारिक न्यायालयों के पास है। एक याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कहा कि लोक अदालतों को केवल सौहार्दपूर्ण समझौते कराने का अधिकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
1: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
1: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रूपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रूपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
3: किसान मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रूपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से
1: न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
0: ये आकाशवाणी है।

0: मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और ऑनलाइन गतिविधियों की लत से बचाना है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए हैं। देश में विनिर्माण क्षेत्र में मजबूती से औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में अप्रैल 2025 की तुलना में इस वर्ष अप्रैल में 4.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बताया कि विनिर्माण क्षेत्र में इस दौरान 6.2% की वृद्धि दर्ज की गई। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक बिजली तथा तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लू के दौरान सुरक्षित रहें, सावधानियां, तैयारी और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसमें मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक और सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग की डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। श्रोता इस विषय से संबंधित अपने प्रश्न टेलीफोन नंबर 011-233-10481, 011-237-1717 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी को आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। वन रेंज अधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि फूलों की घाटी में वर्तमान में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और वनस्पतियों की कई दुर्लभ किस्में हैं।
1: वैली 1 जून से 31 अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आई 1937 में, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की। एक दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुँच प्राप्त होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। मलेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल। और राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I'm Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar Aung San Suu Kyi Aung Lyan hold talks in New Delhi, emphasize upon preventing misuse of their territory against each other's security interests. India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement becomes effective, giving duty-free access to Indian exporters on 98% of Oman's tariff lines. India and Australia to enhance defense industrial collaboration in futuristic technology research. Malaysia joins countries banning social media use by children below 16. And orange alert for thunder squall issued for Rajasthan, Gujarat, West Madhya Pradesh, Odisha and coastal Andhra Pradesh till tomorrow. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar Aung San Suu Kyi held detailed talks on the entire gamut of bilateral issues in New Delhi today. The discussions covered trade, defense, border management, culture, among other areas of interest. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said both sides expressed interest in forging closer cooperation, particularly in the areas of trade and investment, development, cooperation, health, education and energy. Foreign Secretary said Prime Minister

0: तब उनको बढ़ाने में दिलचस्पी जाहिर की गई। खारजा सेक्रेटरी ने बताया कि वजीर आजम ने म्यांमार की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहत भारत की हिमायत की तौसीक की और दोनों मुल्कों ने ऐसी सरगर्मियों के लिए अपने इलाके के गलत इस्तेमाल की रोकथाम की अहमियत को उजागर किया जो दोनों के सिक्योरिटी मफादात के लिए नुकसानदह हों। जनाब मिस्री ने कहा कि म्यांमार के सदर ने इस यकीन दहानी को दोहराया कि म्यांमार की सरजमीन को भारत के सिक्योरिटी मफादात के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जनाब मिस्री ने कहा कि म्यांमार एक अहम मुल्क है और एक ऐसा पड़ोसी है जिसके साथ भारत की सरहद 1643 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। ये भारत की पड़ोसी को अव्वलियत देने एक्ट ईस्ट, नीज महासागर और भारत बहरुल काहल पॉलिसियों में मरकजी हैसियत रखता है। भारत और म्यांमार के दरमियान बाहमी तिजारत तकरीबन $2 अरब पर मुश्तमिल है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि भारत की पड़ोस पहले एक्ट ईस्ट और महासागर जैसी पॉलिसियों में म्यांमार अहम शराकत दार है। राष्ट्रपति भवन में म्यांमार के सदर मिन ऑंग लैंग का खैर मकदम करते हुए सदर मुर्मू ने कहा कि भारत और म्यांमार के सकाफती, तहजीबी और रूहानी ताल्लुकात सदियों पुराने हैं। भारत से म्यांमार के गहरे रिश्ते की निशानदही करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत और म्यांमार के दरमियान मुश्तरक सरहद होने की वजह से म्यांमार जुनूब मशरक़ी एशिया में रसाई का जरिया भी है। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान जामे इक्तसादी शराकत दारी मुआहिदा CEPA जिस पर 6 महीने कबल दस्तखत किए गए थे आज से नाफिजुल अमल हो गया है। नई दिल्ली में मीडिया से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि CEPA सिर्फ कोई तिजारती माहिदा नहीं है बल्कि ये तहजीबी रिवायतों पर एतमाद का एक बयानिया है। जनाब गोयल ने कहा कि ये जामे माहिदा ओमान के साथ भारत के ताल्लुकात को नई रफ्तार अता करेगा। मरकजी वजीर ने मुतल्ला किया कि पहले ही दिन भारत को ओमान के टैरिफ खतूत के 98% तक ड्यूटी फ्री रसाई हासिल हो जाएगी और ये ओमान के लिए भारत की 99% बरामदात का अहाता करते हैं। वजीर मौसूफ ने इतला दी कि मुख्तलिफ साजो सामान पर मुश्तमिल कई खेप मुंबई, कोलकाता और चेन्नई से आज पानी के जहाज से रवाना हो रही हैं जो कि इस माहदे पर अमल आवरी की अलामत है। CEPA के तहत कई अहम हसूलियाबियों को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि USFDA, यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी या UKMHRA से मंजूर शुदा भारत की जेनरिक दवाओं को अब 90 दिन के अंदर ओमान में मार्केट ऑथोराइजेशन मिल जाएगी। जनाब गोयल ने इस बात का भी जिक्र किया कि भारत ओमान माहिदा भारत के 9 आज़ाद तिजारती माहिदों का हिस्सा है जो 38 ममालिक का अहाता करता है और जिसे पिछले 3.5 साल में कतई शक्ल दी गई है। हुकूमत ने मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल के खातिरख्वाह स्टॉक की दस्तियाबी की बात को फिर दोहराया है। मगरबी एशिया की मौजूदा सूरत हाल के बारे में नई दिल्ली में बैन वजारती ब्रीफिंग से खिताब करते हुए पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत में जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी खुर्दा आउटलेट्स पर पेट्रोल और डीजल की हसब मामूल फराहमी बरकरार रखने के लिए सभी तेल मार्केटिंग कंपनियां सरगर्म तरीके से पेट्रोल और डीजल के जखीरे को पूरा कर रही हैं। LPG सप्लाई पर मोहतरमा शर्मा ने बताया कि गुज़िश्ता 3 दिन के दौरान 1,21,00,000 से ज़्यादा बुकिंग हुई हैं।
1: डोमेस्टिक LPG घरेलू कुकिंग गैस के संबंध में पिछले 3 दिनों में 1,21,00,000 बुकिंग्स रिसीव हुई हैं, उसके अगेंस्ट 1,22,00,000 डिलीवरीज की गई हैं और 95% डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई हैं।
0: मुल्क भर में होटलों, रेस्टोरेंट्स और दीगर कारोबारी इदारों के इस्तेमाल में आने वाले 19 किलोग्राम के कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत बढ़ा दी गई है। अलबत्ता घरों में इस्तेमाल होने वाले रसोई गैस की कीमत में कोई कमी नहीं की गई है। कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में दिल्ली में 42 रुपये का इजाफा हुआ है और अब ये सिलेंडर 3,113.50 रुपये का हो गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क़यादत में पिछले 12 साल के दौरान भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के नज़रिए के तहत काबिल ज़िक्र यकसर तब्दीली के दौर से गुजरा है। इस अरसे में मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, ख़वातीन और नौजवानों की फलाह व बहबूद और उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए कई फ्लैगशिप इकदाम किए। आकाशवाणी न्यूज़ गुज़िश्ता 12 साल के दौरान अहम शोबों में हुकूमत की कोशिशों पर खसूसी फ़ीचर पेश कर रहा है। इसके तहत आज किसानों की बहबूद के तहत हुकूमत के इकदाम पर रोशनी डाली जाएगी। पेश है एक रिपोर्ट।
2: नरेंद्र मोदी हुकूमत ने गुज़श्ता 12 साल के दौरान किसानों की फलाह बहबूद और उनकी आमदनी में इजाफे के लिए कई इकदाम किए हैं। इन फैसलों में सबसे अहम फैसला पीएम किसान स्कीम का आगाज है, जो कि मुल्क में फलाह बहबूद का सबसे बड़ा कदम है। किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि

0: ये स्कीम के तहत सालाना 6,000 रुपए सीधे उनके बैंक खातों में फराहम किए जाते हैं। इसके तहत तकरीबन 9.5 करोड़ किसान कुंभों को 4,28,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मुंतकिल की गई है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के अयोध्या के किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रही है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
0: मुख्तलिफ जराए के जरिए किसानों की आमदनी में इजाफे के लिए पीएम मत्स्य संपदा योजना और मवेशी परवरी के कौमी मिशन जैसी स्कीमों का आगाज किया गया। पीएम कृषि सिंचाई योजना और सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम जैसी कोशिशों ने सिंचाई को मुस्तहकम किया और मिट्टी की पैदावारियत में इजाफा किया। आकाशवाणी न्यूज़ से बात करते हुए उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले इस्तेफादा कुनिंदा ने स्कीम की तारीफ करते हुए इसे किसानों के लिए फ़ायदेमंद बताया क्योंकि ये उनके गुजर बसर में मदद कर रही है।
2: मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रुपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से
0: फसलों की कम से कम इमदादी कीमत MSP किसानों के लिए लाइफलाइन बन गई है क्योंकि हुकूमत ने पैदावारी लागत का 1.5 गुना MSP मुकर्र की है। भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए 154 मिलियन टन से ज़्यादा चावल की रिकॉर्ड पैदावार के साथ चावल उगाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन गया है। नई दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
3: सुप्रीम कोर्ट ने आज उस अर्जदाश्त की समाअत से इनकार कर दिया जिसमें नीट UG 2026 के दोबारा होने वाले इम्तिहान को मौजूदा कागज़ कलम फॉर्मेट की बजाय कंप्यूटर पर मबनी जांच के तर्ज पर मुनाकिद करने की दरख्वास्त की गई थी। जस्टिस PC नरसिम्हा और जस्टिस अरविंद कुमार की एक बेंच ने कहा कि दोबारा होने वाले इम्तिहान को कंप्यूटर पर मबनी जाँच CBT मोड में मुनाकिद करने का सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA इम्तिहान की मनसूखी के बाद पहले ही मुख्तलिफ चैलेंजों का सामना कर रही है। अलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला सामने आया है कि तलाक के सिलसिले में डिक्रीज जारी करना लोक अदालतों और ज़िला लीगल अथॉरिटीज़ के दायरे इख्तियार में नहीं आता। हाईकोर्ट ने मजीद कहा कि शादी को मनसूख करने का इख्तियार पूरी तरह से फैमिली कोर्ट्स के पास है। एक खातून की जानिब से उन्नाव की ज़िला लीगल सर्विस अथॉरिटी DLSA के साल 2018 के हुक्म को चैलेंज करने वाली अर्जदाश्त की समाअत के दौरान अलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ये बात कही। अर्जीगुजार का इल्ज़ाम था कि उसके शौहर ने सेटलमेंट रिकॉर्ड को DLSA के सामने तलाक डिक्री के तौर पर पेश किया और इसे दोबारा शादी करने की बुनियाद बनाया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने आज इलाकाई पार्टनरों के साथ ताउन को फ़रोग देने की अहमियत की तौसीक की है ताकि एक आज़ाद, खुले, पुरमन, मुस्तहकम और खुशहाल भारत बहरुल काहल को बरकरार रखने में मदद मिल सके। नई दिल्ली में दूसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वज़राए दिफा मुज़ाकरात के दौरान दोनों मुल्कों ने नेविगेशन और ओवरफ्लाइट की आज़ादी और खित्ते में बिला रुकावट तिजारत के लिए अपनी मजबूत हिमायत और बैनुल अक्वामी कानून के मुताबिक समंदर के दीगर कानूनी इस्तेमाल की अहमियत को उजागर किया। इस मीटिंग की मुश्तरक सदारत वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा रिचर्ड मार्लिस ने की। एक बयान में वजारत दिफा ने बताया कि दोनों मुल्कों ने समंदरी सरहद की सिक्योरिटी के बाहमी ताउन में पेशरफ्त और समंदरी सरहद की सिक्योरिटी इश्तराक के मुश्तरक लाहे अमल को कतई शक्ल देने के मामलों पर तबादला ख्याल किया। वज़रा ने ऐलान किया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया दिफाई सनती शराकत दारी को मुस्तहकम करने के अगले कदम के तौर पर दिफाई आर्टिकल और दिफाई सर्विसेज की शिकों के मुतालिक एक मफाहमत नामे की तैयारी शुरू करेंगे। दोनों वजीर सेंसर टेक्नोलॉजी जैसे टेक्नोलॉजी के नए शोबों में मुस्तकबिल की दिफाई साइंस और टेक्नोलॉजी की तहकीक में ताउन को आगे बढ़ाने के ख्वाहिशमंद हैं। मगरबी बंगाल काबीना में 35 नए वजीरों की शमूलियत के साथ आज तौसी की गई। इस सिलसिले में कोलकाता में लोक भवन में आज हलफबरदारी की तकरीब मुनद हुई। गवर्नर RN रवि ने वज़रा की कौंसिल में शामिल होने वाले नए अरकान को अहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। वजीर अला शुभेंदु अधिकारी समेत दिगर सियासी लीडरों के साथ इस तकरीब में मौजूद थे। आज काबिनी वज़रा के तौर पर हलफ लेने वाली शख्सियात में स्वप्नदास गुप्ता, अर्जुन सिंह, तपस रॉय, शंकर घोष और दीगर शामिल हैं। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने अपने दो कानून साजों संदीपान साहा और ऋतव्रता

0: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं कनकलता। श्रोताओं, गर्मी का मौसम चल रहा है। ये मौसम जहां अपने साथ रसीले आम, तरबूज, लीची, खरबूज जैसे स्वादिष्ट फल लाता है, वहीं लू का प्रकोप भी। देश के कई हिस्से इस समय लू यानी हीट वेव से जूझ रहे हैं। हालांकि बीच बीच में थोड़ी बारिश होने से गर्मी से राहत भी मिलती है। भीषण गर्मी के मौसम में लू कई बार जानलेवा भी साबित होता है। ऐसे में जरूरी है कि हम लू से बचाव के लिए सावधानियां बरतें। हमारा आज का कार्यक्रम इसी पर आधारित है। लू से बचाव के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और लू लगने की स्थिति में प्रभावित व्यक्ति की सहायता किस प्रकार करनी चाहिए, इन्हीं सब बातों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक और सफदरजंग अस्पताल में मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर रूपाली मलिक। स्टूडियो में आप दोनों का स्वागत है। श्रोताओं, स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हुई हैं। नंबर है 2-3-3-1-0-4-8-1, 2-3-7-1-7-1-1-7, 2-3-7-1-7-1-0-6 और 2-3-3-1-4-4-4-4। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 0-1-1 लगाना ना भूलें। व्हाट्सएप नंबर है 9-2-8-9-0-9-4-0-4-4। आप इस पर भी प्रश्न भेज सकते हैं। आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप NewsOnAIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। कार्यक्रम की शुरुआत में हमारे साथ जुड़ चुके हैं रमाशंकर वाजपेयी रायबरेली से। जी रमाशंकर जी।
1: जी नमस्कार। मैं ये पूछना चाहता था कि लू से बड़ी पुरानी सुनते रहे हैं, लू में प्याज बहुत ही बचाव करता है और अन्य कोई भी साधन जिस तरह से लू से बचा जा सके वो कृपया बताएं।
2: रूपाली जी। जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि लू के समय में प्याज से बहुत बहुत ही बचाव मिलता है, तो इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस मेरे पास है ऐसा तो मैं नहीं कहूँगी, बट फिर भी जो हम पुराने समय से ये जो धारणाएं चलती आ रही हैं इनमें कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई है। तो आप प्याज जैसी चीज़ों का सेवन कर सकते हैं, बट उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना फ्लूइड इनटेक यानी कि पीने की जो तरल पदार्थ जो होते हैं उनका सेवन आपको बढ़ाना है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी लू के समय में बचने के लिए है एक एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक यानी कि तरल पदार्थ का सही मात्रा में आपको आपको लेना है, और इसके अलावा आपको गर्म जगह से बचना है। मतलब अगर घर से बाहर जितना हो सके उन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, घर जितना हो सके घर के अंदर रहना है, तो ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं। खाने पीने में आपको जो भी आपको अभी मौसमी फल जो मैडम ने अभी बताए तरबूज, लीची, आम, इनका सेवन करना है, और तरल पदार्थ का आपको पर्याप्त मात्रा में सेवन करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है।
0: डॉक्टर रूपाली, आपने कहा कि पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ लिक्विड लेना चाहिए, तो किस तरह के तरल पदार्थों को लेना ठीक रहेगा ताकि जो शुगर का जो लेवल है वो बॉडी में वो कंट्रोल्ड रहे?
2: आप नारियल पानी ले सकते हैं, आप आम रस, आम पन्ना जो कि बहुत गर्मी के समय में बहुत ही एक कॉमन एक कूल ड्रिंक माना जाता है, बेल का रस, इस तरह के जो नेचुरल ड्रिंक्स हैं आप उनको प्रिपेयर कीजिए, आप उनको लीजिए और आप नॉर्मल अपना पानी लीजिए। और अगर आपको डिहाइड्रेशन क्रैम्प्स जैसी अगर फीलिंग आती है तब आप ORS का जो मेडिकल ORS जो अवेलेबल है उसका सेवन भी कर सकते हैं।
0: श्रीकांत झागडे हैं महाराष्ट्र से। श्रीकांत जी क्या पूछना चाहते हैं आप?
3: हेलो
0: जी
3: नमस्कार।
0: नमस्कार,
3: मैं श्रीपाद डॉक्टर बोल रहा हूँ पूरे महाराष्ट्र से। मेरे दो सवाल है। जो बहुत अधिक गर्मी में जैसे थकान है, चिड़चिड़ापन है, बेचैनी लगती है, तो उसी स्थिति में क्या करना चाहिए? और दूसरा ये था कि ऐसे में मतलब ब्लड प्रेशर वालों ने क्या सावधानियां रखनी चाहिए, खासकर ना हाई बीपी वालों ने?
2: हाँ जी, देखिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि जो हाई बीपी के जो मरीज़ होते हैं वो बहुत समय इस तरह की कुछ दवाइयों पे होते हैं जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स, एंड वो जो लोग होते हैं दे आर प्री डिस्पोज टू हैव हीट स्ट्रोक। मतलब उन को हीट स्ट्रोक की कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको कोई भी कोमॉर्बिडिटी है या कोई और आपको बीमारी से अगर आप ग्रस्त हैं, कोई भी क्रॉनिक आपको डिजीज़ है, COPD, एस्थमा, ब्लड प्रेशर की बीमारी, शुगर की बीमारी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को धूप से, गर्मी से बचा कर रखें, क्योंकि इसमें आपका जो कार्डियो रेगुलेटरी जो मैकेनिज्म्स हैं वो सब कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस तरह के मरीज को खास ध्यान रखना है।
0: डॉक्टर पटनायक, आपसे हम ये जानना चाहेंगे सबसे पहले कि हीट वेव यानी लू क्या है?
4: देखिए, ये हीट वेव जो लू बोलते हैं बहुत भाषा में, तो हमारा जो समर टाइम में जो ज़्यादातर कि अप्रैल में, जून, थोड़ा सा जुलाई पार्ट में भी, तो क्या टेम्परेचर जो तापमान है, ये तापमान है उसका साधारणतः नॉर्मल से कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है। तो ये तो गर्मी का महीना है, गर्मी का महीना है तो टेम्परेचर साधारणतः ज़्यादा रहता है, लेकिन जो नॉर्मल होता है हमारा जो क्लाइमेटोलॉजी 30 साल का एवरेज जो उसको नॉर्मल बोलते हैं, उससे भी थोड़ा ज़्यादा होता है, कंटिन्यूसली कुछ दिन के लिए प्रिवेल करता है, तो वो हम उसको एक हीट वेव डिफाइन करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम डेफिनेशन अगर हम करेंगे तो 40 डिग्री से अगर ज़्यादा टेम्परेचर है तो एंड उसका जो नॉर्मल से 4.5 से 6.4 तक अगर हो गया तो हीट वेव हम बोलेंगे। अगर उस 6.4 से भी ज़्यादा डिपार्चर जो कि नॉर्मल से ज़्यादा इतना हो गया तो सीवियर हीट वेव बोलेंगे। तो ये एक डेफिनेशन के हिसाब में हम जैसा कि नॉर्मल से अगर इतना तो करते हैं, और एक डेफिनेशन

0: ये भी है कि अगर 45 डिग्री हो गया
1: हम्म,
0: तो हम उसको
1: डिक्लेयर
0: हीट
1: कर।
0: वेव कर देंगे।
1: लेकिन क्या ये अलग अलग इलाकों के लिए अलग अलग होता है? जैसे
0: नहीं,
1: कोस्टल एरियाज के लिए अलग होगा, प्लेन्स के लिए अलग होगा।
0: हाँ, कोस्टल एरिया के लिए थोड़ा सा है कि कोस्टल एरिया में 37 डिग्री होने के बाद भी हमने हीट वेव करते हैं, क्योंकि कोस्टल एरिया में जो ह्यूमिडिटी का थोड़ा प्रभाव रहता है ना, तो इससे कारण ज़्यादा हानिकारक हो जाता है। तो अगर तापमान बहुत ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन जो ह्यूमिडिटी जो एयर का ह्यूमिडिटी होता है कोस्टल एरिया में उसको मिलता है, इसलिए हमने उसको थोड़ा सा कोस्टल जो 40 डिग्री 37 डिग्री से ज़्यादा होना वो कोस्टल एरिया है।
1: और प्लेन्स के लिए?
0: प्लेन्स के लिए 40 डिग्री से ज़्यादा होना।
1: एक और श्रोता है हमारे साथ, राजू लवानिया, आगरा उत्तर प्रदेश से। राजू जी
2: जी मेरा नमस्कार डॉक्टर साहब को, दीदी आपको भी
1: नमस्कार।
0: नमस्कार
2: डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे घरेलू नुस्खों में तो खैर जैसे आम का पना है, बेल का शरबत है, या नींबू पानी है, ये तो खैर पुराने जो नुस्खे हैं वो तो है ही, लेकिन मेडिकल साइंस में हीट वेव का परमानेंट ट्रीटमेंट और इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट क्या है?
3: जी देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट है कि आप जो गर्मी वाली जगह है उससे दूर रहें। तो अगर कोई किसी को भी इस तरह के लक्षण अगर आते हैं, तो सबसे पहले हमें उस व्यक्ति को फटाफट से गर्मी वाली जगह से दूर मूव करना है। उसके बाद हमें उनको ठंडे पानी की पट्टी करनी है, और साथ में अगर पॉसिबल है तो एक पंखा करना है। आप थोड़ा पानी स्प्रिंकल करके और पंखा करें, पंखा करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे इवेपोरेशन से जब हीट उड़ती है तो उससे और ज़्यादा आपका हीट लॉस होता है, ज़्यादा देर की अगर आप खाली उस पर ठंडा कुछ रख देंगे। उसके अलावा आपको पंखा भी ऊपर से करना है, तो पंखे के आगे थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क के थोड़ी ठंडी पट्टी करना। तो ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट इलाज है जो कहीं भी किया जा सकता है।
1: लू लगने पर क्या लक्षण दिखते हैं?
3: देखिए, लू के लक्षण बहुत तरह के हो सकते हैं। माइल्ड लक्षण हो सकते हैं जिसमें कि आपको हीट क्रैम्प्स हो सकते हैं, स्किन रैश हो सकते हैं, जिसको कि नॉर्मल भाषा में हम प्रिकली हीट बोलते हैं या घमोरियाँ बोलते हैं। तो उसमें आपको आपको थोड़ा पाउडर डाल लेना है, कुछ एंटी एलर्जी का एंटी हिस्टामिनिक दवाई जैसे कि सिट्रोजीन वगैरह है उसका आप यूज़ कर सकते हैं, और पानी आपको अच्छे से पीना, और ढीले ढाले कपड़े पहनने हैं, और हल्के रंग के हल्के कपड़े, ढीले ढाले कपड़े वो आपको पहनने हैं। तो ये हुआ हीट रैश के लिए। हीट क्रैम्प्स में आपको हो सकता है कि थोड़ा अकड़न जकड़न महसूस हो, आपको हाथ पैर सीधा करने में दिक्कत लगे, मांसपेशियों में आपको जकड़न महसूस हो, तो इस स्थिति में आपको फ्लूइड्स का ध्यान रखना। ये डिसइलेक्ट्रोलीमिया जो हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस जो हो जाता है हीट के वजह से, वो उससे होता है। तो उस समय आपको मेडिकल जो ORS है, आप ना केवल जो बाकी तरल पदार्थ जो कि हम रूटीनली लेते हैं, उसके अलावा आप मेडिकली जो ORS मिलते हैं, मेडिकल ORS, आप उनका सेवन करें अगर आपको हीट क्रैम्प जैसा सिस्टम हो।
1: गंभीर लक्षण क्या होते हैं?
3: गंभीर लक्षण हो सकते हैं आपको हीट एग्जॉशन या फिर हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक सबसे सीवियर वैरायटी है, जिसमें कि आपको बेहोशी, आपका एक तो जो कोर बॉडी टेम्परेचर है वो 40 डिग्री कोर बॉडी टेम्परेचर, जो कि आपका रेक्टल टेम्परेचर आइडली होना चाहिए, ना कि सरफेस सतह वाला नहीं, कोर बॉडी जिसमें कि रेक्टल टेम्परेचर आइडियल माना जाता है, वो 40 डिग्री से ज़्यादा अगर आपका है तो वो, प्लस आपको कुछ भी बेहोशी का लक्षण, ऑल्टर सेंसोरियम जिसको बोलते हैं, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, इस तरह का कोई भी लक्षण है, तो ये आप सबसे सीवियर फॉर्म जो होता है हीट स्ट्रोक का उसमें गिना
1: तो
3: जाता।
1: अगर ऐसी स्थिति हो तो हॉस्पिटल ले जाने से पहले तुरंत
3: बिल्कुल
1: क्या सहायता उपलब्ध कराई जा सकती
3: है?
1: घर
3: फटाफट आप उनको ठंडी जगह, तो हल्के कपड़े, ढीले कपड़े और गीला करके, कपड़ा गीला करके पंखा उसके ऊपर करना है, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। इवन अस्पताल में भी जो सबसे पहला ट्रीटमेंट दिया जाएगा यही दिया जाएगा। हीट स्ट्रोक दो तरह का होता है, क्लासिकल और एक्सर्शनल। तो क्लासिकल में आपको यही सबसे इम्पोर्टेंट और इफेक्टिव मेथड है। जो एक्सर्शनल होता है, उसमें बहुत बार हम इमर्शन भी बोलते हैं कि आप उसको ठंडे पानी में इमर्स कर दो, कि कपड़े सब हटा के किसी ठंडे पानी के टब में लिटाना, वो एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक में होता है। बट जो आजकल जो मिलता है उसमें क्लासिकल हीट स्ट्रोक है, और कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। अगर कोई बाहर हैवी वर्क कोई कर रहा है तो उसमें क्लासिकल और एक्सर्शनल दोनों तरह का हीट स्ट्रोक हो सकता है।
1: चौधरी महेंद्र सिंह मथुरा उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। जी महेंद्र जी।
4: जी कनक जी नमस्कार।
1: नमस्ते।
4: आकाशवाणी स्टूडियो में आमंत्रित दोनों विशेषज्ञों का बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार।
3: धन्यवाद।
4: जी मैं चाहता हूँ कि एक स्वस्थ व्यक्ति दिन में कितना

0: पानी पिए और कितना पानी जरूरी है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे अच्छा एक स्वस्थ व्यक्ति पानी की पूर्ति हेतु बोतल लगवाता है, यानी डिस्टिल वाटर कहें या कुछ भी कहें उसे, तो आवश्यक है या नहीं?
1: ये देखिए, एक किसी भी अडल्ट व्यक्ति की जो बॉडी होती है उसका 70-80% जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो पानी है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर जो अडल्ट व्यक्ति है कम से कम उसको 8-10 ग्लास पानी डेली पीना है। ये नॉर्मल सिचुएशन की बात है, लगभग एटली कम से कम आपको 8 ग्लास पानी पीना है, क्योंकि आपका 70-80% जो आपका बॉडी का वेट है वो उसमें वाटर है, तो उसको जो रिप्लेनिश करने के लिए आपको कम से कम 2 लीटर आपको पानी पीना है। बट अगर हम आज के समय की बात करें, जब हम लू लगने की बात कर रहे हैं, तो उस समय आपको थोड़ा सा अतिरिक्त पानी की आवश्यकता होती है। कम से कम 2 से 3 लीटर आपको पीना ही है। इसके अलावा डिपेंडिंग कि आप क्या काम कर रहे हैं, आप कहाँ हैं, वहाँ कितनी गर्मी है, अगर आपको लगता है बहुत पसीना आ रहा है, बहुत वाटर लॉस है, तो आप इसके अतिरिक्त भी पानी पी सकते हैं। बट नॉर्मल स्थिति में 3-3.5 लीटर से ज़्यादा पानी पीने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वरना उसके भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं।
2: और ये भी ध्यान रखना होगा कि हम पानी पीने के नाम पर या लस्सी पीने के नाम पर बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें
1: बिल्कुल मीठा तो अतिरिक्त बिल्कुल ना लें, और पैक्ड इसलिए जूसेस जो हैं वो अवॉइड करें। नेचुरल अगर आप लें वो फिर भी
2: जो हमारे पुराने लस्सी, छाछ, बेल का शरबत, ऐसी चीज़ें ज़्यादा अच्छी होती हैं। नींबू पानी
1: बिल्कुल।
2: डॉक्टर पटनायक, कई बार वार्म नाइट और वेरी वार्म नाइट की भी चेतावनी जारी की जाती है, तो ये कब किया जाता है और इसका मतलब क्या होता है?
3: देखिए, ज़्यादातर क्या होता है, तो दिन का तापमान तो हमेशा समर में हाई रहता ही है, तो उससे जो हम हीट वेव का डेफिनेशन करते हैं, दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है उसके ऊपर। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दिन के साथ मैक्सिमम टेम्परेचर हो गया, हीट वेव हुआ, उसके बाद नाइट जब आता है तो नाइट में भी क्या होता है, जो नाइट का टेम्परेचर तापमान है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो ज़्यादा हानिकारक होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो बाहर में रहते हैं ये दिन का भी गर्मी झेल लिया, उसके बाद जब नाइट का भी टेम्परेचर, अगर उनके पास एसी नहीं है जो यूज नहीं करते, तो उसको हम वार्म नाइट कहते हैं। तो उसमें तो मिनिमम टेम्परेचर जो है आपका नाइट का टेम्परेचर वो भी अगर 4.5 to 6.4 हो गया तो उसमें वार्म नाइट कर दे। तो वार्म नाइट जो है नाइट टेम्परेचर में, समर के टाइम में, लेकिन नाइट टेम्परेचर में अगर अधिक हो गया तो उसको वार्म नाइट कहे,
2: और वो भी खतरनाक होता है। धर्मवीर लाइन पर है हमारे साथ दिल्ली से। जी धर्मवीर जी।
4: हेलो, नमस्कार जी। मैं धर्मवीर गांधी दिल्ली से बात कर रहा हूँ
2: जी।
4: हमारे एक्सपर्ट को भी नमस्कार। मैं ये पूछना चाहूंगा, जैसे हम गांधीनगर मार्केट में रहते हैं और दुकान, हर प्रत्येक दुकान में एसी चलते हैं, एक एक दो दो, तो एक तो उनकी भी हीट निकलती है, मार्केट में निकलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी बस्ती से गुजर रहे हैं, तो ऐसे में हम लोग सावधानी क्या बरते हैं, जाना भी जरूरी होता है। और दूसरा मेरा ये पूछना है कि डायबिटीज मरीजों को शिकंजी और ओआर सब होल लेना ठीक है कि नहीं? और तीसरा एक और पुरानी एक बात याद आती है, बुजुर्ग कहते थे, जैसे कहते थे कि लोहा लोहे को काटता है, ऐसे जो गर्मी गर्मी को मारती है, बैलेंस बराबर करती है। अगर जितनी ज्यादा गर्मी हो आप चाय पी लें, कॉफी पी लें, तो बैलेंस बना रहता है। कोल्ड ड्रिंक लेना ठीक रहता है कि नहीं, कृपा करके?
1: हाँ जी, देखिए कोल्ड ड्रिंक लेना तो नहीं ठीक है ना, बट जो आप नेचुरल जो चीजें हैं जो आपको वैसे ठंडक प्रदान करती हैं, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि आप बेल रस पी सकते हैं या फिर आप नींबू पानी ले सकते हैं, तो जो नेचुरल चीज़ है, कोकोनट वाटर ले सकते हैं, तो जो तरल चीज़ें हैं उनका सेवन आपको बढ़ाना है। इसका मतलब कोल्ड ठंडा लेने से आपको कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक लेने से आपकी शरीर को कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा, तो कोल्ड ड्रिंक जैसी चीज़ें नहीं अवॉइड करनी है, नहीं लेनी है, वो अवॉइड करनी है। और जो आपने कहा शुगरी ड्रिंक, क्या डायबिटीज़ के मरीज़ को हम दे सकते हैं? नहीं, वो अवॉइड करनी है। नींबू पानी अगर आप देंगे उनको तो आप बिना चीनी के दीजिए, नमक वाला नींबू पानी दे सकते हैं, सॉल्टेड नींबू पानी दे सकते हैं, या आप उनको लस्सी दीजिए, छाछ वाली जो होती है, जो कि नमकीन लस्सी होती है, तो उनको उस कोकोनट वाटर आप दे सकते हैं।
2: जो श्रोता अभी अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। आज हम लू से सुरक्षा और सावधानियों पर चर्चा कर रहे हैं, आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक और सफदरजंग अस्पताल में मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर रूपाली मलिक।

0: ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमित उपाध्याय बिहार से। अमित जी आप हमें सुन पा रहे हैं? जी
1: हाँ हाँ जी जी मैं सुन पा रहा हूँ। मैं सासाराम बिहार से बोल रहा हूँ, अमित उपाध्याय। मैं मेरा ये सवाल था कि जैसे कि पिछले हम लोग देख रहे हैं तुलना करें और पिछले साल के और हर एक साल से तुलना करें तो गर्मी का जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। तो जैसे कि अब पहले टेम्परेचर हाई, अभी जैसे मई में ही टेम्परेचर इतना 45 प्लस जा रहा है, 48 तक आ जा रहा है। तो हम ये मेरा ये प्रश्न है कि स्वस्थ शरीर जो जिसका शरीर में कुछ नहीं है जांच करने पर भी, वो भी चलते चलते कभी कभी गिर जाते हैं अचानक से, उनका भी बेहोशी वह कुछ वैसे हो जाता है। तो हम लोग इसमें क्या और ऐड कर सकते हैं, जैसे कि खूब पानी पीना जो भी डॉक्टर साहब बताते हैं वो सब हम लोग करते हैं, इसमें और क्या हम लोग ऐड कर सकते हैं ताकि हम लोग स्वस्थ रह सके? जी
2: देखिए, जब भी आप बाहर निकलें कुछ एक आप छतरी लें या कपड़ा लें, गमछा जैसा कि कहा जाता है, गीला करके लें तो और भी अच्छा है। तो आपको उन चीज़ों का ध्यान रखना। देखिए, नॉर्मल व्यक्ति में भी ये चीज़ हो सकती है, जिसको पहले से कोई बीमारी है वो ज़्यादा प्रीडिस्पोज्ड है क्योंकि उसके रेगुलेटरी मैकेनिजम्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। एंड स्पेशली जैसे कि कोई एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो लेते हैं ख़ास तौर से, वो लोग बहुत ही प्रीडिस्पोज्ड होते हैं इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस के लिए, हीट स्ट्रोक के लिए, क्योंकि उसमें पूरा टेम्परेचर रेगुलेशन उनका हो जाता है। तो वो लोग खास ध्यान रखें। और जो नॉर्मल व्यक्ति है, तो बाहर निकलते समय ये सब प्रिकॉशंस लें, फ्लूइड्स लें, तो इतना ही है आप कर सकते हैं। और अगर कोई सिम्टम आपको लगता है हीट एग्जॉशन का या हीट स्ट्रोक का, तो इमिडिएटली ठंडी जगह पे मूव करके गीला कपड़ा रख के आप हवा कर सकते हैं।
0: तो हीट वेव किसी को भी प्रभावित कर सकता है, पर जैसा कि आपने बताया कि जिनको शुगर है या जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर है उन्हें इसका ज़्यादा खतरा रहता है। और कौन कौन से ऐसे वर्ग हैं, मतलब कैटेगरी क्या क्या है जिनके लोगों को इसका खतरा?
2: किसी भी क्रॉनिक डिजीज़ का अगर कोई मरीज है, कोई अस्थमा है, कोई COPD है, कोई हार्ट डिजीज़ का पेशेंट है, कोई कैंसर कीमोथेरेपी पे है, ये सब भी प्रीडिस्पोज्ड हैं। बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, ये सभी जो हाई रिस्क ग्रुप्स में ही आते हैं।
0: तो प्रेग्नेंट लेडीज़ के जो आपने बात की, उसमें क्या असर पड़ता है उस पर, उसके होने वाले बच्चे पर हीट वेव का?
2: देखिए, जब आप हीट, अगर आप हीट से एक्सपोज्ड हैं तो आपको पेरिफेरल वेजो डायलिटेशन होता है, यानी कि आपकी जो पेरिफ्रीज की जो वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट आपके बॉडी से बाहर निकल सके। उसकी वजह से थोड़ा वॉल्यूम जो है आपका, बाकी इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स की ब्लड सप्लाई, उसके लिए ब्लड कम हो जाता है। तो ऐसे में जो बच्चा है उसका ब्लड सप्लाई भी कम हो सकता है। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को हम कोशिश करें ऐसी गर्मी की जगह से बचा कर रखें, और फ्लूइड, फिर से वही बात है, तरल पदार्थ का जितना हो सके सेवन करें।
0: महाराष्ट्र से कोल्हापुर से विजय कुमार स्वामी है हमारे अगले श्रोता।
3: हाँ जी
0: जी,
3: हाँ कनक जी, जी नमस्ते।
0: नमस्ते।
3: हाँ जी जी को भी नमस्ते सर। नमस्ते।
2: नमस्ते।
3: हाँ, विजय कुमार स्वामी, गांव बस्तवा, तहसील शिवर, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ मैं।
0: जी जी।
3: हाँ, मेरा सवाल यह है कि अभी दिन रात पंखे जो चालू है
0: जी,
3: इसका हमारे पर शरीर पर कुछ असर हो सकता है क्या?
0: पंखे का असर तो गलत नहीं होगा?
2: नहीं, पंखे से फायदा है, बट अगर 40 डिग्री से ज्यादा का टेम्परेचर है तब केवल पंखा चलाने से फायदा नहीं है। तब आप एसी चला के एसी का टेम्परेचर 27 डिग्री रख के साथ में आप पंखा चलाएंगे तो उससे और आपको 4 डिग्री कम महसूस होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एसी का टेम्परेचर 15, 20, 22, 21 नहीं रखना है, 27 रखना है ज्यादा से ज्यादा जो पॉसिबल। और साथ में आप थोड़ा फैन तब चलाएंगे तो वो और मदद करेगा। और जैसे कि पहले वो मैं पूछ रहे थे कि हम सब जगह एसी चल रहा है, इतना गर्म है, तो और हम क्या कर सकते हैं? आपको जितना हो सके अपने छतों पे ग्रीन प्लांटेशन करना चाहिए, उससे थोड़ा सा आपका जो है
0: घर का तापमान, थोड़ा
2: तापमान जो है कंट्रोल रहेगा।
0: और घर के आसपास भी पौधे लगाने चाहिए।
2: बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
0: हमारे एक श्रोता ने व्हाट्सएप पर प्रश्न पूछा है डॉक्टर पटनायक कि IMD की एडवाइजरी और मौसम संबंधी अपडेट आम लोग कहाँ से और कैसे प्राप्त कर सकते हैं?
4: नहीं, आईएमडी जो
0: ये मयंक शेखर जी, मैं आपको नाम बता दूं, मयंक शेखर मिश्रा हैं, ये वाराणसी से इन्होंने पूछा है।
4: हाँ, वाराणसी भी बहुत गर्मी जगह है और वहाँ भी बहुत लस्सी ये सब जो इसलिए भी चलता है। तो देखिए, जो हम जो आईएमडी जो देता है सूचना, जो हीट वेव का अर्ली वार्निंग जो बोलते हैं हम, वो बहुत सारे मैकेनिज्म में हम देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, पहला तो एक है

कि हम हमारा वेबसाइट में देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग वेबसाइट नहीं करते, अपडेट मान लीजिए वेबसाइट नहीं देते। दो देन दूसरा हमारा जो ऐप वगैरह है उसमें भी हमारे इसका जानकारी देते हैं। ऐप के साथ साथ हम आजकल क्या कर रहे हैं, हर दिन एक वीडियो बनाते हैं, हम वीडियो बनाते हैं उसको अपलोड किया जाता है, तो उसमें आपका पुरका जानकारी जो यूट्यूब में अपलोड किया जाता है, तो जो जो लोग उसको भी एक्सेस करते हैं।

0: ऐप से मिलेगा, व्हाट्सएप में मिलेगा, देन सोशल मीडिया फेसबुक आईएमडी का अगर कोई है जिनका अकाउंट अगर करेंगे तो उसमें वह मिलेगा। तो ये तो ऑल इंडिया लेवल में भी है, और हमारे जो रीजनल सेंटर वगैरह जैसे कि वाराणसी से उन्होंने बताया भाई साहब, तो लखनऊ में हमारे जो रीजनल मेट सेंटर्स है वहाँ से जो रीजनल डिस्ट्रिक्ट वाइज भी इंफॉर्मेशन उनका वेबसाइट एक अलग होता है, उनका जो डाटा बेस है जहाँ जहाँ मैसेज जाता है उनका सारा सब उन्होंने रखा है। तो हर तरह का मीडियम से हम लोगों को प्रेरित करते हैं।
1: इन्होंने ये भी पूछा है कि दिन के कुछ वो विशेष समय क्या है जब लोगों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए इतनी भीषण गर्मी में।
0: देखिए, ये दिन में जब टेम्परेचर सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है वो लगभग अराउंड 2:30-3 के आसपास, 3:30 इसी में होता है दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर। लेकिन सुबह से गर्मी शुरू हो जाता है, गर्मी टेम्परेचर भी बढ़ता है, और दूसरी बात क्या होता है कि जब नीचे का ज़मीन भी गर्म हो जाता है वहाँ से भी टेम्परेचर ऊपर रेडिएट होता है। तो ये दोनों का जब ये होता है तब तो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। तो आपका इसलिए मैक्सिमम टेम्परेचर लगभग उसी टाइम में 2:30 के बाद आता है, जबकि पहला 12 बजे मैक्सिमम टेम्परेचर नहीं आता है, 2:30 के बाद 3 बजे अराउंड उसमें आता है कि जब दोनों तरफ से रेडिएशन आता है। तो इसलिए उसी टाइम में नेचुरली जब डायरेक्ट सनलाइट है 11 बजे के बाद एटलीस्ट डायरेक्ट सनलाइट ज़्यादा तेज है उस टाइम अवॉइड करना चाहिए। जब मैक्सिमम टेम्परेचर आ रहा है, जब गर्मी धरती के नीचे गर्मी हो गया, गर्म हवा भी नीचे से फेंक रहा है, तो वो भी 3-4 बजे तक तो अवॉइड करना,
1: मतलब 11 से 4 तक अवॉइड करना चाहिए जहां तक हो सके। अगला सवाल है रवि जवालिया जी का हरिद्वार से।
2: हाँ जी, नमस्कार मैम जी।
1: नमस्कार
2: जी, मैं रवि जवालिया गढ़वीरपुर हरिद्वार से बोल रहा हूँ, और सभी विशेषज्ञ को और आपको भी नमस्कार बोल रहा हूँ जी, और आप सभी को और मेरे सभी श्रोता गणों को भी अभिभावक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं जी।
1: जी आपको भी।
2: हाँ जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं कोरजेतन मशीन पे गत्ता कंपनी में काम करता हूँ, वो मशीन थोड़ी हीट जनरेट करती है, तो मुझे वहाँ पे क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि मुझे भी शायद गर्मी का एहसास होता है ये सभी को। तो मैं अपने माध्यम से वैसे तो मुझे पता है, मैं श्रोता उससे भी जान मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि क्या मुझे उसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए मैम जी।
1: ये जहाँ काम करते हैं वो मशीन से गर्मी निकलती है काफ़ी, तो क्या सावधानी इनको बरतनी चाहिए?
3: तो जितना हल्का कपड़ा हो सके आप उतना हल्का कपड़ा पहने, और फिर वही अगर एक गीला कपड़ा आप सिर के आसपास लगा सकते हैं तो वो आई थिंक आपको थोड़ा मदद करेगा, और लिक्विड चीजें लेते
1: हैं। ये तो हम आपको बार बार बता रहे हैं, डॉक्टर साहब बार बार बता रही हैं कि आपको जितना हो सके उतना तरल पदार्थ लिक्विड लेना है,
3: और आसपास कहीं पंखा है तो आप पंखा
1: बीच बीच में आप जा सकते हैं वहाँ। डॉक्टर रूपाली, बहुत छोटे बच्चे जो अभी अपनी स्थिति नहीं बता सकते हैं, ऐसे बच्चों के अभिभावक कैसे समझ पाएंगे कि बच्चे को लू लग गई है?
3: जी बिल्कुल, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि तो बच्चों को गर्मी के समय जैसा सर ने बताया 11 से 4 के बीच में आप घर से बाहर ना भेजें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसी टाइम पे सबसे ज़्यादा लू लगने का रिस्क होता है। और बच्चों को हमें बहुत इंश्योर करना है कि वो कम से कम 8 गिलास पानी ज़रूर पिए, क्योंकि इस समय हो सकता है बच्चा पानी कम पी रहा है, तो हमें उस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि बच्चों का फ्लूइड इंटेक ठीक रहे, 11 से 4 के समय वो बाहर ना निकले। और बाकी अगर लगता है कि बच्चा कुछ भी सुस्तीपन दिखा रहा है,
1: जैसे बहुत छोटा बच्चा,
3: बिल्कुल
1: बहुत का
3: बिल्कुल
1: है,
3: बिल्कुल
1: उसके लिए
3: सुस्तीपन, दूध नहीं पीना अगर बच्चा इतना छोटा, बिल्कुल अगर दूध नहीं पीना या बुखार होना, तो इमिडिएटली आपको किसी भी हेल्थ केयर फैसिलिटी को विजिट करना है और उनकी मदद लेनी है। और बच्चों को भी ढीले कपड़े, ये कपड़े बहुत इम्पोर्टेंट है, हल्के फुल्के हवादार ढीले कपड़े।
1: अगला सवाल है राकेश जी का शिमला से।
4: जी नमस्कार।
1: नमस्कार
4: जी, मेरा दो सवाल है। पहला सवाल तो ये कि जब गर्मी बढ़ती है तो लोग क्या करते हैं, फ्रिज का पानी पीते हैं, और कितना घातक है? और दूसरा सवाल मेरा ये कि जैसे कि अब हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्र में गर्मी भी बढ़ रही है, तो इसमें मैदानी क्षेत्र में क्या असर पड़ेगा? ये मेरे दोनों सवाल है।
1: जब हिल स्टेशन पे गर्मी बढ़ने लगी है तो प्लेन्स पे और भी गर्मी होगी, इनका ये पूछना है कि क्या असर पड़ेगा प्लेन्स पे?
0: देखिए, जैसा कि हिल स्टेशन में थोड़ा सा हमारा ये है कि हिल स्टेशन में थोड़ा तापमान प्लेन स्टेशन से थोड़ा कम रहता है, ठीक है, तो इसलिए जैसा कि प्लेन स्टेशन से भी लोग जाते रहते हैं, तो बट आज

0: आजकल क्या होता है, क्लाइमेट चेंज है तो हिल एरिया में भी, जो जैसे कि पहला पहला इतना गर्मी नहीं होता था, आजकल हिल एरिया में भी गर्मी महसूस कर रहे हैं। तो इसलिए तो हिल स्टेशन के लिए तो गर्मी आपका धीरे धीरे भी हो रहा है, पहले जो इतना नहीं हो रहा था इसलिए। लेकिन प्लेन एरिया में तो आपका उससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि प्लेन एरिया में तो थोड़ा गर्मी का ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि वहाँ नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो ऑलवेज थोड़ा सा ज़्यादा है हिल स्टेशन के ऊपर। तो इसलिए हिल स्टेशन में जब हो रहा है तो उसका प्रभाव प्लेन में नहीं है, लेकिन उसका प्लेन में भी रहेगा, जब हिल में हो रहा था तो प्लेन में भी रहेगा।
1: डॉक्टर पटनायक, हीट एक्शन प्लान्स क्या है?
0: हाँ, हीट एक्शन प्लान क्या होता है कि पहला क्या हो रहा था, जब ये एक्शन प्लान नहीं होता था तो हीट क्या धीरे धीरे धीरे धीरे किल करता है, तो हीट वेव के कारण भी धीरे धीरे ग्रेजुअली डेथ जो है, नंबर ऑफ डेथ बढ़ता गया। तो गुजरात साइड में पहला ये महसूस हुआ कि बहुत सारे जो हीट रिलेटेड डेथ बढ़ रहा है। तो देखा गया कि जब टेम्परेचर बढ़ रहा है, बहुत अनजान के कारण लोग क्या करना है क्या नहीं करना है ये नहीं जानते थे, इसलिए बहुत एक्सपोजर होता था, क्या एक्शन लेना है उनको पता नहीं था, तो इसलिए लोग थोड़ा डेथ 2010-12 में ऐसा हुआ। तो उसमें हीट एक्शन प्लान जब स्टार्ट हुआ, उसमें क्या होता है, एक जो जो भी राज्य में जहाँ हीट रिलेटेड ये सब इफेक्ट रहता है, तो उन्होंने वन बाय वन थोड़ा हीट एक्शन प्लान शुरू किया। तो पहला मान लो गुजरात में हीट एक्शन प्लान शुरू किया, तो हीट एक्शन प्लान में क्या होता है, ये बहुत सारे म्यूनसिपल लोग जो होते हैं, हेल्थ प्रोफेशनल होते हैं, IMD के जो अर्ली वार्निंग देते हैं, और ये बाकी जो एडवाइजरी इशू करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पानी, ये सारे जो है एक तरीके से रहता है। तो पहला उनको क्या होता है, एक हमारे डिपार्टमेंट से अगले 5 दिन अगले 7 दिन के लिए तापमान कैसा रहेगा, वो एक पहला इन्फॉर्मेशन हो गया। तो वो इन्फॉर्मेशन के बाद फिर म्यूनसिपल जो होते हैं वो अपना काम करते हैं, अगर पानी डिस्ट्रीब्यूट करना होता है पानी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अगर ज़्यादा लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो उनको फिर मेडिकल अटेंशन देना जाता है।
1: डॉक्टर पटनायक, अब समय हो रहा है कार्यक्रम को समाप्त करने का। हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने फोन लाइन्स और डिजिटल माध्यम से इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर DR पटनायक और सफदरजंग अस्पताल में मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर रूपाली मलिक, आप दोनों का स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कनकलता को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है, क्योंकि ये एकमात्र आसियान देश है जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करता है। उन्होंने शांति और सुलह के लिए म्यांमार के प्रयासों के प्रति भारत के अटूट समर्थन का भी आश्वासन दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी।
3: I am confident that this comprehensive agreement,
4: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA

0: हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
1: ऑफ आवर शेयर्ड फ्यूचर।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर श्री गोयल का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह समझौता रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारी के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में क्षेत्र में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं। इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिनमें एलपीजी लीडरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info@lpgvitarakchayan.in पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं। प्रामाणिक जानकारी केवल आधिकारिक एलपीजी वितरक चयन पोर्टल पर ही उपलब्ध है। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नव नियुक्त मंत्रियों के विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने दो विधायकों संदीपन साह और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने के आरोप में निष्कासित कर दिया है। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar U Min Aung Hlaing held detailed talks on the entire gamut of bilateral issues in New Delhi today. The discussions covered trade, defence, border management, culture, among other areas of interest. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said both sides expressed interest in forging closer cooperation, particularly in the areas of trade and investment, development cooperation, health, education and energy. Foreign Secretary said Prime Minister reaffirmed India's support for the sovereignty and territorial integrity of Myanmar, and both sides underscored the importance of preventing the misuse of territory for activities inimical to their security interests.
4: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by the President has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing partnership and to work together for mutual benefit, growth and prosperity in the region.
3: Mr. Misri said both sides underlined the importance of connectivity and agreed to work as quickly as possible towards the completion of Kaladan Multimodal Transit Transport Project. President Draupadi Murmu has said Myanmar is an important partner in India's Neighbourhood First, Act East and Mahasagar policies, welcoming Myanmar President U Min Aung Hlaing at Rashtrapati Bhavan today. President Murmu said both the countries share deep cultural, civilizational and spiritual ties that go back to centuries. The President said Myanmar is India's gateway to Southeast Asia as it is the only ASEAN country that shares a land border with India. Congratulating President Hlaing on assuming office as the President of Myanmar, President Murmu said that India looks forward to working closely with the new government to strengthen the bilateral partnership further. The

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुलदस्ता, जिसके अंतर्गत आज आपने सुने श्री संजय भटनागर की आवाज़ में गजलें। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 10:30 हुए हैं। लीजिए आप सुनिए कार्यक्रम राग रंजन। इसके अंतर्गत हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में आज आप सुनेंगे श्री गौरव मजूमदार का सितार पर बजाया गया राग तिलक कमोड़।

0: अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत श्री गौरव मजूमदार का सितार पर बजाया गया राग तिलक कमोड। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। रात्रि के 11 बजने को है। लीजिए अब सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
2: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
3: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
1: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्योगों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। पश्चिम एशिया में बदलती परिस्थितियों के बावजूद सरकार ने आज नागरिकों को आश्वस्त किया है कि ईंधन, खाद्यान्न, उर्वरक और अन्य आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रमों पर आयोजित अंतर

0: मंत्रालयी बैठक को संबोधित करते हुए उपभोक्ता मामलों के विभाग में अपर सचिव अनुपम मिश्रा ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा के मामले में मजबूत स्थिति में है। वहीं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि सभी तेल विपणन कंपनियां सुचारू आपूर्ति बनाए रखने के लिए सभी खुदरा दुकानों पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति में सक्रिय रूप से लगी हुई हैं। वित्तीय सेवा विभाग के संयुक्त सचिव मनोज मुत्तथिल अयप्पन ने बताया कि सरकार ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष से प्रभावित व्यवसायों को सहायता प्रदान करने के लिए आपातकालीन ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दे दी है। इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिसमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info@lpgvitarakchayan.in पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में पार्टी प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने, संगठन के विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच बढ़ाने के लिए भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की गई। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन नवी ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। गृह मंत्री अमित शाह ने मंत्रिमंडल में शामिल हुए नए मंत्रियों को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बनी डबल इंजन सरकार में नई टीम पूर्ण समर्पण, प्रतिबद्धता और जनसेवा की भावना के साथ काम करेगी। राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए गरज के साथ तूफानी मौसम का ओरिएंट अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज शेड बाय अपराजिता नायर। Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar, U Min Aung Hlaing, held detailed talks on the entire gamut of bilateral issues in New Delhi today. The discussions covered trade, defence, border management, culture, among other areas of interest. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said, both sides expressed interest in forging closer cooperation, particularly in the areas of trade and investment, development, cooperation, health, education and energy. Foreign Secretary said, Prime Minister reaffirmed India's support for the sovereignty and territorial integrity of Myanmar, and both sides underscored the importance of preventing the misuse of territory for activities inimical to their security interests.
2: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by the President has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing partnership and to work together for mutual benefit, growth and prosperity in the region.
1: Mr. Misri said, both sides underlined the importance of connectivity and agreed to work as quickly as possible towards the completion of Kaladan Multimodal Transit Transport Project. President Draupadi Murmu has said, Myanmar is an important partner in India's Neighbourhood First Act East and Mahasagar policies. Welcoming Myanmar President U Min Aung Hlaing at Rashtrapati Bhavan today, President Murmu said both the countries share deep cultural, civilizational and spiritual ties that go back to centuries. The President said Myanmar is India's gateway to Southeast Asia as it is the only ASEAN country that shares a land border with India. Congratulating President Hlaing on assuming office as the President of Myanmar, President Murmu said that India looks forward to working closely with the new government to strengthen the bilateral partnership further. The India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement has come into force today. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said the CIPA will deepen the economic and strategic ties between the two nations. Addressing media in New Delhi, Mr. Goyal said that this partnership agreement is not simply a trade agreement, it is a statement of civilizational trust. The Union Minister informed that from day one, India will secure duty-free access on 98% of Oman's tariff lines, covering over 99% of India's export to Oman. Mr. Goyal informed that multiple consignments are being shipped today from Mumbai, Kolkata and Chennai to mark the operationalization of the agreement.

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। लीजिए, वक्त हो चला है कार्यक्रम फिल्म संगीत का। आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत अभिवादन कार्यक्रम फिल्म संगीत में। आज इसे लेकर मैं हूं आपके साथ सविता, और कार्यक्रम का आवाज करते एक ऐसी ही खूबसूरत सी आवाज से जिसके बारे में आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे। वो कौन शख्सियत हैं जिनके विषय में आज हम बात करने वाले हैं, वो शायद आप इस गीत के जरिए पहचान जाए। अगर पहचान जाए तो आप हमें ज़रूर बताएं।

जी हाँ, आपने पुकारा और हम चले आए। कुछ ऐसे ही गीतों की सौगात लेकर आए हैं जो आज के हमारे इस कार्यक्रम के एक थीम भी हैं। और कुछ लोगों ने सही गैस भी किया, उन्होंने ये अंदाज़ा सही लगाया है कि आज हम किस विषय में बात करने वाले हैं। वो विषय नहीं कह सकते हैं, वो एक ऐसी शख्सियत हैं जिसे हमेशा हमेशा आप और हम याद करते रहेंगे। जब भी गीतों की बात आएगी तो ये वो एक ऐसी आवाज़ रहेगी जिसे आप जितना भी सुनेंगे उतनी ही खूबसूरत और उतनी ही आपको मधुर लगेगी। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं सुमन कल्याणपुर के बारे में, जिनकी आवाज़ हूबहू लता मंगेशकर से मिलती थी। बहुत सारे लोगों को काफ़ी समय तक ये पता ही नहीं लगा था कि ये गीत लता मंगेशकर ने गाया है या फिर ये कोई नवोदित कलाकारा आई हैं जिनका नाम है सुमन कल्याणपुर। जब उनके गीतों की बात आती थी तो लोगों के लिए ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि आवाज़ इतनी ज़्यादा मिलती जुलती थी कि अंदाज़ा नहीं लगाया जाता था कि वो सुमन कल्याणपुर की आवाज़ है या लता मंगेशकर साहब की। तो बात ये होता था कि इस अंदाज को कैसे एक दूसरे से अलग किया जाए, यानी कि जो लोग चाहते थे कि भाई हम बिल्कुल अलग तरीके से पहचान पाएं उनकी आवाज़ों को, तो उन्होंने एक अंदाज़ा लगाना शुरू हुआ कि जब सुमन कल्याणपुर गाती हैं तो उनकी आवाज़ का टेक्सचर और उनके गाने की जो रिदम है वो बिल्कुल अलग होती थी। लता मंगेशकर की आवाज़ को लोग मानते थे कि पतली आवाज़ है, लेकिन कहा यह जाता है सुमन कल्याणपुर की आवाज़ भी बेहद ही पतली थी। और इनकी आवाज़ में वो जादू था कि वे लोगों के मन पर चढ़ गई। लोकप्रियता की एक ऐसी छवि उन्होंने लोगों के दिलों में अंकित कर दी कि आज तक उन्हें हम बहुत याद

करते और उनके गीतों को जितना भी सुनते हैं उतना ही ये मधुरता हमारे कानों और हमारे दिल को पुरकशिश करती है और हमें अपनी ओर आकर्षित करती चली जाती है। और आकर्षित कर रहे हैं आपके फिलहाल संदेश जिन्होंने हमें बताया है कि आज हम किन के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसे हमने कहा था कि हम पहले गीत से अंदाज़ा लगवाना चाहते हैं अपने जितने भी हमारे सुनने वाले हैं कि क्या वो जान पाएंगे कि हम आज किस पर बात करने वाले हैं, वो कौन सी ऐसी शख्सियत है जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला अंदाज़ा जो लगाया है और वो बिल्कुल सही निकला है, वो लिखकर भेजने वाले हैं हमारे ये साथी हैं चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा जी, जिन्होंने बोला है कि कार्यक्रम में गायिका सुमन कल्याणपुर के बारे में बात की जाएगी और ये उन्हें शत शत नमन भी कह रहे हैं। साथ में हमारे ये हैं पहाड़गंज मुल्तानी धांडा से, जिन्होंने लिखा है कि सुमन कल्याणपुर की बात होगी इस कार्यक्रम में और लिखने वाले हैं अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक। इसके अलावा हमारे पास सही जवाब के साथ जो एक संदेशा मिला है वो मिला है हमें वणिंग खेड़ा पंजाब से, लिखकर भेजने वाले हैं मिंटू टोमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। इन्होंने भी सही अंदाज़ा लगाया है कि आज हम क्या बात करने जा रहे हैं और जो गीत हमने आपको सुनवाया है वो वाकई गीत इस बात को बता रहा था कि कैसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक और अंदाज़ा बिल्कुल सही निकला है, अंदाज़ा नहीं कहेंगे यानी कि उन्होंने बिल्कुल सही सोचा है कि आज हम यही बात करने जा रहे हैं। ये हैं लिखने वाले कस्बा गुन्नौर यूपी से, लिखकर भेजा है फारूक अली खान, फैज़ी फराज, फरहीन फरहान, फारिया और ताहिरा ने, जो कि कह रहे हैं कि आवाज़ की जादूगरनी है सुमन कल्याणपुर, जिनके बारे में आज आप और हम बात करेंगे और उम्मीद है कि बहुत उम्दा गीत भी सुनने को मिलेंगे। ये जो गीत उनकी आवाज़ में जब भी हमने सुने हैं ये वाकई हमेशा हमेशा के लिए हमारे दिलों में अपनी जगह बना गए हैं। उनके गीत जो है वो उन्हें लोगों के बीच जिंदा रखेंगे क्योंकि उनकी आवाज़ से न जाने कितने ही लोग मुतासिर हैं और उनकी आवाज़ से वो उनके साथ जुड़ जाते हैं। अनिल मोहन जी का एक और संदेश आ गया है जो लिखकर भेज रहे हैं कि भाई सुमन कल्याणपुर, जिनको हम अब अलविदा कह चुके हैं लेकिन उनकी आवाज़ हमेशा यूं ही गूंजती रहेगी। फिलहाल कार्यक्रम में जब बात हो रही है सुमन कल्याणपुर के बारे में तो एक और गीत सुन लेते हैं और फिर उनके जीवन के विषय में कुछ कुछ बातें आपके साथ साझा करेंगे।

जी हाँ, ज़िंदगी इम्तिहान लेती है और इस इम्तिहान में जितने लोग पास हो जाते हैं वो सबसे खुशकिस्मत कहलाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जब कभी हार भी जाएं तो जो हार ना माने वो भी खुशकिस्मत ही बन जाते हैं, क्योंकि हार मानना ज़िंदगी नहीं सिखाती। ज़िंदगी सिखाती है तो सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ना, और शायद यही सीख सुमन कल्याणपुर को इतनी दूर लेकर आ गई। जिनका जन्म 28 जनवरी को हुआ, और इनका जन्म उस समय हुआ था जब भारत आज़ाद नहीं था। 28 जनवरी 1937 को इनका जन्म हुआ, उस समय के पूर्वी बंगाल यानी ढाका में उनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म एक साधारण से परिवार में हुआ था। सुमन कल्याणपुर के पिता जो थे वो मंगलोर में एक ब्राह्मण परिवार से थे जहाँ इनका जन्म हुआ, और वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एक बहुत ही ऊंचे पद पर काम करते थे। इस वजह से उनकी तैनाती ढाका में थी और वहीं पर सुमन कल्याणपुर का जन्म हुआ। सुमन कल्याणपुर जो है वो ढाका से काफ़ी समय तक जुड़ी रही, क्योंकि वो वहीं पर रहकर अपने परिवार के साथ थी। लेकिन साल 1943 में उनका परिवार मुंबई आ गया। सुमन कल्याणपुर अपने सभी भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। यहाँ मुंबई में आने पर उन्हें कई तरह के जो थे वो काम करने को मिले, कई ऐसे मौके मिले जब वो अपने हुनर को निखार सकते थे। वैसे तो वो आर्ट्स की स्टूडेंट थी, वो फाइन आर्ट्स का कोर्स कर रही थी, लेकिन यहीं पर रहते रहते उनका जो संगीत के प्रति प्रेम था वो कम ना हुआ। फाइन आर्ट्स करते करते भी उन्हें संगीत से इतना प्रेम था कि वो संगीत का प्रशिक्षण लेने लगे, यानी वो संगीत सीखने लगे। और सुमन कल्याणपुर जो थी वो हमेशा से चित्रकला में तो माहिर थी ही थी, लेकिन संगीत में उनकी जो रुचि थी उन्होंने ही उन्हें आज ये मुकाम दिलवाया कि आज आप और हम उनके गीतों के दीवाने हैं। मुंबई के बेहद ही प्रसिद्ध सेंट कोलंबा हाई स्कूल से उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की, और उन्होंने चित्रकला यानी फाइन आर्ट्स में ही आगे की पढ़ाई के लिए जे.जे. स्कूल ऑफ आर्ट्स में प्रवेश भी ले लिया। लेकिन उनका मन तो कहीं ना कहीं संगीत पर ही अटका रहा। वो शास्त्रीय संगीत भी सीख रही थी, और बहुत ही अच्छे परिवार से आने के कारण उनका ये जो शौक था कब उनके लिए एक ऐसी विरासत बन गया जो कि अनेकों भारतीयों के दिल में उनके लिए एक अलग जगह कर गया, ये कुछ पता ही नहीं चला। क्योंकि कभी कभार होता है ना, इंसान सोचता कुछ और है लेकिन उसकी नियति कुछ अलग होती है। शायद सुमन कल्याणपुर के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने गीतों को जैसे गुनगुनाना शुरू किया, ऐसा लगा कि शायद ये लफ्ज़ ये अल्फाज उनके लिए ही बने हैं। और ऐसे ही एक और गीत आपको सुनवाते हैं जो उनकी बेहद ही चर्चित फिल्म से रहा, और इस गीत को लोग आज भी खूब गुनगुनाते हैं। और अगर आज के युवाओं की बात करें तो आज के युवा भी इस गीत पर न जाने कितनी बार अपने कदम थिरकाते हैं।

फिल्म ब्रह्मचारी के गीत आपने सुना सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ों में। और बात करें अगर सुमन कल्याणपुर के बारे में, तो साल 1954 वो वर्ष था जब उन्होंने पहली बार फिल्मों में गीत गाना शुरू किया। फिल्म थी दरवाज़ा, जिसमें उन्होंने तलत महमूद

साथ एक ड्यूट गीत गाया। तलत महमूद ने कल्याणपुर को एक संगीत समारोह में गाते हुए सुना था। उनके गायन से वो इतने प्रभावित हुए कि उन्हें लगा कि इनके साथ एक गीत जरूर गाना चाहिए। एक नई गायिका के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि थी कि उन्हें तलत महमूद जैसे गायक के साथ गाने का मौका मिला, जिसने सुमन को गायन के क्षेत्र में स्थापित करने में काफ़ी मदद की। जब तलत उनके साथ ये ड्यूट गीत गाने के लिए सहमत हो गए तो फिल्म उद्योग के जहन में एक नाम बैठ गया कि जो सुमन ने गाया वो काफ़ी लोगों ने नोटिस किया और लोगों के दिल में एक अलग छाप छोड़ दी। उन्होंने फिल्म मंगू में भी 1954 में गीत गाया, कोई पुकारे धीरे से तुझे, ये गाना बहुत प्रसिद्ध भी हुआ। सुमन कल्याणपुर ने मियाँ बीबी राजी जो कि साल 1960 में आई थी, इस फिल्म में भी गीत गाया। तो वहीं 1962 में आई फिल्म बात एक रात की में भी उन्होंने अपनी आवाज़ दी। बात करें अगर दिल एक मंदिर फिल्म की तो साल 1963 में आई इस फिल्म में भी उन्होंने गीत गाया और ये गीत काफ़ी प्रसिद्ध भी हुआ। चलिए इसी गीत को हम भी सुन लेते हैं।

सुमन कल्याणपुर, जिनकी आवाज़ इतनी लोकप्रिय रही कि उनके गाए गीतों को आज भी लोग बहुत पसंद करते हैं। और जैसे कि हमने बताया कि ये वो दशक था जब और भी पार्श्व गायिकाएं वहाँ पर मौजूद थी, यानी फिल्मी फलक पर मौजूद थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी आवाज़ से एक अलग पहचान बनाई। जब बात करें 50 के दशक के बाद, यानी उसके अंत की, और 60 और 70 के दशक की, तो ख़ास तौर पर ये दशक ऐसा रहा जिसमें सुमन कल्याणपुर के गीतों को बहुत पसंद किया गया। इस दशक में, जैसा हमने बताया, कि कई और भी गायिकाएं मौजूद थी, लेकिन फिर भी लता मंगेशकर के साथ साथ सुमन कल्याणपुर की आवाज़ को भी बहुत पसंद किया गया। और दोनों की आवाज़ के मिलने के कारण बहुत बार लोगों को ये गलतफहमी भी हुई कि ये गीत किसने गाया है, लेकिन जैसे धीरे धीरे सुमन कल्याणपुर ने अपनी जगह बनाई और उन्होंने अपने गीतों के ज़रिए लोगों के मन में अपनी एक छाप छोड़नी शुरू कर दी, तो ये जो गायिका है ये इतनी प्रसिद्ध हुई कि इनके गाए गीतों को आज भी बेहद पसंद किया जाता है। और कई किस्से ऐसे भी जुड़े हुए हैं कि सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में गाए गीतों को सुनकर किसी और गायिका को उसकी बधाई दे दी गई, और जब उन्होंने बताया कि ये गीत मैंने नहीं, सुमन कल्याणपुर ने गाया, तो उन्होंने विश्वास नहीं किया इस बात पर कि ये गीत उन गायिका ने नहीं गाया है। लेकिन फिर भी उन्होंने जब बताया कि ये गीत सुमन कल्याणपुर ने गाया है, तो लोगों ने इसे काफ़ी हैरानियत से देखा, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद इतनी मधुरता से उनके अलावा कोई और गीत नहीं गा सकता। लेकिन जब इनके गीतों को सुना और इनके गीतों को सराहा जाने लगा, तब इन्होंने लोगों के दिलों में और फिल्मी जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाई। 60 और 70 का ये वो दशक रहा जब सुमन कल्याणपुर के गीत लोकप्रियता में सबसे चरम पर थे।

सुमन कल्याणपुर की बात करें तो कुल मिलाकर उन्होंने 800 से भी ज़्यादा गीत गाए हैं, जिसमें हिंदी के अलावा मराठी, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, असमिया, मैथिली, भोजपुरी, राजस्थानी, उड़िया, पंजाबी और लगातार कई और भाषाओं में भी उन्होंने गीत गाए हैं। हिंदी फिल्मों की अगर बात की जाए तो हिंदी फिल्मों में उन्होंने तकरीबन 850 गीत रिकॉर्ड किए हैं, जो कि बहुत ही चर्चित भी रहे हैं। और अब इस चर्चा को भी समाप्त करने का जो है समय आ चला है, लेकिन उससे पहले हम अपने जितने भी हमारे श्रोता हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं उनके सबके नाम ले लेते हैं, क्योंकि वो हमारे इस कार्यक्रम के साथ बने रहे हैं। हमारे साथ सतीश अनेजा जी रहे, मुकेश बत्ता जिन्होंने हमें कनेरा मोहल्ला पटियाला से संदेशा भेजा है, किशन सपकाल अपने पूरे परिवार के साथ हमारे साथ जुड़े हुए, तो अनिल मोहन जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े जो कि कहते हैं विधि का विधान है, जब आरंभ होता है तो अंत भी होता है और वाकई जो इंसान इस दुनिया में आया है उसे जाना भी होता है, लेकिन जब वो कुछ अनमोल यादें देकर जाता है तो उसकी यादों के सहारे ये जीवन

रहे हैं, ये भी हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं। उषा मोहन हमारे साथ हैं, जो कि कह रहे हैं कि सविता जी, कल्याणपुर के बारे में जो आपने बात बताई है, यानी सुमन कल्याणपुर की बात की है, वो वाकई बहुत ही पसंद आई है। और अब जैसे कि आप कह रहे हैं कि अलविदा कहने का समय आ गया है, तो हम भी यही कहेंगे कि वक्त जो है वो धीरे धीरे निकल जाता है, चला जाता है, लेकिन उसकी यादें हमेशा हमेशा के लिए हमें समेट लेनी चाहिए। वाकई बिल्कुल सही बात आपने कही है कि जो यादें होती हैं वही किसी भी इंसान के पास एक धरोहर की तरह रह जाते हैं। ये हमारे साथ हैं शीशपाल अकेला, जो कि हमें गाज़ियाबाद से संदेशा भेज रहे हैं, और बब्बल का भी संदेशा हमें मिला है, जो कि मोहाली से संदेशा भेज रहे थे। हमारे साथ रहे खंडवा मध्य प्रदेश से पूरा नागन पूरे परिवार, और इसके अलावा हमारे साथ ये वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से पूरा खर्चे परिवार भी जुड़ा रहा, जो कार्यक्रम को सुन रहा था और कार्यक्रम पसंद कर रहा था, साथ ही साथ अपनी बात भी हमारी बात के साथ जुड़ रहा था। संजय साहू पोटियाकल्ला भी हमारे साथ जुड़े रहे, और इसी के साथ हमारे साथ रहे ये सज्जन जांगड़ा, जो कि हिसार हरियाणा से हमारे साथ बने हुए थे, कार्यक्रम को सुन रहे थे, और अब कार्यक्रम में अंतिम पेशकश का समय आ चला है। और इसी गीत के साथ अब मैं यानी सविता भी इस कार्यक्रम को यहीं संपन्न करने की आपसे लेती हूँ इजाज़त। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, और चलते चलते आप सभी के लिए ये खूबसूरत सा गीत

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संकेत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। इस समय रात्रि के 12 बजने को हैं। अब इन मीटरों पर हमारे प्रसारण यहीं संपन्न होते हैं। कल आपकी सेवा में 4:50 पर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, शुभरात्रि। लेकिन AIR लाइव न्यूज़ 24x7 पर हमारा प्रसारण अब भी जारी है। रात्रि के 12 बजने को है। लीजिए अब सुनिए समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन औंग लाइन ने कल व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
2: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
3: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे कल लागू किया गया। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बावजूद सरकार ने नागरिकों को आश्वस्त किया है कि ईंधन, खाद्यान्न, उर्वरक और अन्य आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। इस बीच वित्तीय सेवा विभाग के संयुक्त सचिव मनोज मुत्तथिल अयप्पन ने बताया कि सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष से प्रभावित व्यवसायों को सहायता प्रदान करने के लिए आपातकालीन ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दे दी है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में कल भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के संवाद के दूसरे संस्करण के दौरान दोनों देशों ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने कल नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका की लघु व्यवसाय विकास मंत्री स्टेला टेम्बिसा नडाबेनी के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। बैठक में दोनों देशों के बीच सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने आज नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में पार्टी प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा ने

ये आकाशवाणी दिल्ली का AR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात्रि के 12:10। अब आप सुनेंगे सुरों का सफरनामा कार्यक्रम।

नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कीर्तिका है आप सभी को प्रणाम। दोस्तों, इस सुहानी शाम की हम सफर कार्यक्रम सुरों का सफरनामा में आपका स्वागत है। 90 के दशक का वो दौर याद है आपको, जब गानों के मुखड़े सीधे दिल में उतर जाते थे, जब शब्दों में सादगी भी होती थी और एक अलग सा नशा भी। आज के शो में हम एक ऐसी अजीम शख्सियत के सफर पर निकलने वाले हैं जिन्होंने अपने कलम से भारतीय सिनेमा को कई सदाबहार नगमे दिए। दोस्तों, आज की ये शाम समर्पित है मशहूर गीतकार अनवर सागर जी के नाम, जो जून 2020 में हमें अलविदा कह गए, लेकिन अपने लिखे गीतों के रूप में हमेशा हमारे बीच जिंदा हैं। आइए, इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं उनके उस ऐतिहासिक गीत से जिसने अक्षय कुमार को बॉलीवुड का खिलाड़ी बना दिया और अनवर साहब की कलम का लोहा पूरी इंडस्ट्री ने माना, फिल्म खिलाड़ी से अलका याग्निक और अभिजीत की आवाज में। सुनिए ये जादुई नगमा।

क्या बात है, वादा रहा सनम। इस गाने को जितनी बार सुनो दिल ठहर सा जाता है। दोस्तों, अनवर सागर साहब के इस मुकाम के पीछे संघर्ष की एक लंबी दास्तां है। अनवर जी का झुकाव बचपन से ही शायरी और अदब की तरफ था। मुंबई में जब वो अपनी किस्मत आजमाने आए तो उनके पास सिर्फ शब्दों की जादुई पोटली थी। शुरुआती दिनों में उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा। फिल्म इंडस्ट्री में पैर जमाना कभी आसान नहीं था, लेकिन अनवर साहब ने कभी हार नहीं मानी। वो एक बेहद सादगी

पसंद इंसान थे जिन्हें लाइमलाइट से दूर रहकर अपनी डायरी में जज्बात लिखना पसंद था। उन्होंने हमेशा माना कि एक सच्चे गीतकार की पहचान उसके चेहरे से नहीं, उसके लिखे शब्दों में होनी चाहिए।

स्वागत है एक बार फिर से दोस्तों। 80 के दशक के आखिरी सालों और 90 के दशक की शुरुआत में अनवर साहब का करियर अपनी ऊंचाइयों पर था। उन्होंने उस दौर के दिग्गज संगीतकारों जैसे जतिन ललित, नदीम श्रवण और अनु मलिक के साथ अद्भुत काम किया। उनकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढाल लेते थे। जहां एक तरफ उन्होंने वादा रहा सनम जैसा रूहानी और रोमांटिक गाना लिखा, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने उस दौर की कमर्शियल और मसाला फिल्मों के लिए भी बेहद सटीक और फुट टैपिंग नंबर्स लिखे। उन्होंने अजय देवगन, शाहरुख खान और मिथुन चक्रवर्ती जैसे सुपरस्टार्स की फिल्मों के लिए भी अपने कलम चलाई।

आज सुरों का सफ़रनामा कार्यक्रम में हो रही है सिर्फ और सिर्फ अनवर सागर साहब की बातें और उनके नगमे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अनवर सागर सिर्फ रोमांटिक गानों तक सीमित नहीं थे? उन्होंने देशभक्ति और संजीदा गानों में भी अपना हुनर दिखाया। फिल्म विजय पथ का नाम तो आपने सुना ही होगा। उस फिल्म में अजय देवगन और तब्बू की जोड़ी थी। वैसे तो उसके सारे गाने हिट थे, लेकिन अनवर साहब ने जो गाना लिखा था वो रूह को छू जाता है। इसके अलावा उन्होंने इप्टा और कई सांस्कृतिक मंचों से जुड़कर समाज को आईना दिखाने वाली शायरी भी की। वो हमेशा इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी के एक सक्रिय सदस्य रहे, जहां उन्होंने गीतकारों और संगीतकारों के हक के लिए हमेशा आवाज़ उठाई। आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म विजय पथ से साधना सरगम और कुमार सानू की आवाज़ में ये बेहद खूबसूरत गीत।

राह में उनसे मुलाकात हो गई। मुझे मेरे इस आवाज़ में सुर था या नहीं पता नहीं, लेकिन ये शब्द बड़े सादे हैं। इतनी सादगी से ये गीत लिखा गया है। वाह दोस्तों, अगर हम बात करें पुरस्कारों और सम्मान की, तो अनवर सागर साहब उस दौर के लेखक थे जो कमर्शियल अवार्ड्स की चकाचौंध के पीछे नहीं भागते थे। उन्हें सबसे बड़ा पुरस्कार जनता का प्यार मिला। उनके गाने हफ्तों तक बनाका गीतमाला और रेडियो चार्ट बस्टर्स पर टॉप पर रहते थे। इंडस्ट्री के लोग उन्हें एक संकट मोचक गीतकार मानते थे। जब भी कोई डायरेक्टर किसी सिचुएशन में फंसता था, तो अनवर साहब मिनटों में ऐसा मुखड़ा तैयार कर देते थे जो सीधे दर्शकों के दिलों पर राज करता था। स्क्रीन पर भले ही बड़े बड़े एक्टर्स चमके, लेकिन बैकग्राउंड में असली चमक अनवर साहब के शब्दों की थी।

चमक धमक से भरी इस फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो कामयाबी के शिखर पर होने के बावजूद अपनी सादगी नहीं छोड़ते। अनवर सागर साहब उन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। अगर उनकी निजी जिंदगी के पन्नों को पलटें तो मालूम होता है कि वो जितने बड़े गीतकार थे उतने ही सीधे और ज़मीन से जुड़े इंसान भी थे। कहा जाता है कि मुंबई जैसे बड़े शहर में जहाँ लोग नाम और शोहरत के पीछे भागते हैं, अनवर साहब को अपनी एक छोटी सी दुनिया में रहना पसंद था। उनका परिवार ही उनकी असली ताकत था। वो अक्सर अपनी डायरी और कलम के साथ अकेले वक्त बिताना पसंद करते थे, लेकिन जब भी परिवार या दोस्तों को उनकी ज़रूरत होती, वो हमेशा खड़े मिलते। उनके स्वभाव में एक खास बात थी, वो बहुत कम बोलते थे, लेकिन जब भी बोलते थे, उनकी बातों में गहरा अदब और तहजीब झलकती थी। उनकी सादगी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 90 के दशक में जब उनके लिखे गाने हर ऑटो, हर रेडियो स्टेशन और हर घर में गूंज रहे थे, तब भी वो किसी आम इंसान की तरह मुंबई की लोकल ट्रेनों या बसों में सफ़र करते हुए मिल जाते थे। वो मानते थे कि एक लेखक को अगर ज़मीन की हकीकत लिखनी है तो उसे लोगों के बीच रहना होगा। वाकई ऐसे साफ दिल और गंभीर इंसान आज के दौर में कम ही देखने को मिलते हैं।

दोस्तों, वक्त का पहिया कभी नहीं रुकता। 3 जून 2020 को मुंबई के कोकिला बेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में 70 वर्ष की उम्र में अनवर सागर साहब ने अपनी अंतिम सांसें ली। उनके जाने से बॉलीवुड के 90 के दशक के सुनहरे पन्नों का एक हिस्सा हमेशा के लिए खाली हो गया। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, कलाकार जिंदगी से विदा हो जाते हैं, कला हमेशा जिंदा रहती है। आज भी जब कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका से वफा का वादा करता है तो अनवर साहब का लिखा वादा रहा सनम ही गूंजता है। उनकी विरासत को संभालना और उनके गानों को सुनते रहना ही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। ये थी एक शाम शब्दों के जादूगर अनवर सागर जी के नाम। उम्मीद है लगातार संगीत के सफर ने आपकी पुरानी यादों को ताज़ा कर दिया होगा। अनवर सागर ने मुख्य रूप से 80 और 90 के दशक में सबसे ज़्यादा हिट गाने दिए। हालांकि उन्होंने 2000 के दशक की शुरुआत तक फिल्मों में सक्रिय रूप से काम किया। अब मैं आपकी दोस्त कीर्ति विदा लेती हूँ सुरों का सफरनामा कार्यक्रम से और छोड़े जा रही हूँ इस आखिरी गीत के साथ।

0: संगीत के साथ सुरों का सफरनामा कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। अपनी दोस्त कीर्ति को दीजिए इजाजत। श्रोताओं, रात्रि के 1 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में हिंदी व अंग्रेजी में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने कल व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
2: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
3: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे कल लागू किया गया। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में कल भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के संवाद के दूसरे संस्करण के दौरान दोनों देशों ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बावजूद सरकार ने नागरिकों को आश्वस्त किया है कि ईंधन, खाद्यान्न, उर्वरक और अन्य आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। इस बीच वित्तीय सेवा विभाग के संयुक्त सचिव मनोज मुत्तथिल अयप्पन ने बताया कि सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष से प्रभावित व्यवसायों को सहायता प्रदान करने के लिए आपातकालीन ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल ने नई दिल्ली में स्वच्छ गांव, सुरक्षित जलवायु अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य 1 अप्रैल 2026 से लागू हुए ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2026 के बारे में लोगों को जानकारी देना है। पश्चिम बंगाल में कल मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आर एन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल में शामिल हुए नए मंत्रियों को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बनी डबल इंजन सरकार में नई टीम पूर्ण समर्पण, प्रतिबद्धता और जनसेवा की भावना के साथ काम करेगी। उन्होंने कहा कि ये मंत्री सोनार बांग्ला के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निष्कासित कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल के एक हिस्से के ढहने की घटना की जांच के लिए 2 अलग अलग उच्च स्तरीय जांच समितियों का गठन किया है। इस हादसे में 6 श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी। हमीरपुर के जिलाधिकारी अभिषेक गोयल ने बताया कि जिला प्रशासन

आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एआर लाइव न्यूज 24x7 चैनल पर। मध्य रात्रि के 1:10 मैं हूं आपके साथ कीर्ति। कार्यक्रम गीत सुनहरे लेकर हाजिर हूं और इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं पुराने फिल्मी नगमे। जी हाँ, एवरग्रीन सॉन्ग्स गोल्डन एरा के। तो आपके लिए जो हमने गीतों की लिस्ट है वो तैयार कर ली है और आपके दिल तक ये गीत पहुंचाएंगे और पुरानी यादों में खो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं फिल्म यादों की बारात से ये गीत।

आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में आप सुन रहे थे ये गीत। अब आपको लेकर चलते हैं 1970 की उस फिल्म में जिसमें कुछ आपका दिल जो है वो ख्याल बयां कर रहा है। और इस गीत में आवाज़ आप सुनेंगे लता मंगेशकर और मुकेश की, फिल्म कभी कभी।

ये अगला गीत आपको सुनवाते हैं। फिल्म है मेरे जीवन साथी, बोल मजरू सुल्तानपुरी के हैं और संगीत दिया है आर डी बर्मन ने। गीत किशोर कुमार की आवाज़ में।

फिल्म ब्लैकमेल से आप ये गीत सुन रहे थे, और गीत सुनहरे कार्यक्रम में आपकी दोस्त कीर्ति आपके साथ है। इन गीतों को मैं स्टूडियो में गुनगुना रही हूँ, और आप अपने रेडियो सेट के माध्यम से या फिर जिस भी माध्यम से आप हमें सुन रहे हैं, आपके दिलों तक इन गीतों को पहुँचाना हमारा मकसद है। अगला गीत किशोर कुमार की आवाज़ में आ रहा है, आइए आनंद लेते हैं।

अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत। फिल्म है बालिका वधू। आवाज़ आप सुनेंगे अमित कुमार की और बोल आनंद बख्शी के हैं। संगीत से पिरोया है आर डी बर्मन ने।

आपने सुना ये सुंदर नगमा फिल्म कुदरत से और बेहतरीन आवाज़ परवीन सुल्ताना की, बोल लिखे थे मजरूस ने। अब अगली प्रस्तुति जगजीत सिंह और चित्रा सिंह के स्वर में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन ने कल व्यापार और आर्थिक रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने आपसी संपर्क के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे कल लागू किया गया। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में कल भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के संवाद के दूसरे संस्करण के दौरान दोनों देशों ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बावजूद सरकार ने नागरिकों को आश्वस्त किया है कि ईंधन, खाद्यान्न, उर्वरक और अन्य आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। इस बीच वित्तीय सेवा विभाग के संयुक्त सचिव मनोज मुत्तथिल अयप्पन ने बताया कि सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष से प्रभावित व्यवसायों को सहायता प्रदान करने के लिए आपातकालीन ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दे दी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने कल नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में पार्टी प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरा होने, संगठन के विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुँच बढ़ाने के लिए भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की गई। पश्चिम बंगाल में कल मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल में शामिल हुए नए मंत्रियों को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बनी डबल इंजन सरकार में नई टीम पूर्ण समर्पण, प्रतिबद्धता और जनसेवा की भावना के साथ काम करेगी। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निष्कासित कर दिया। महाराष्ट्र विधान परिषद की 17 सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया कल संपन्न हुई। सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने सभी 17 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी 11 सीटों पर, शिवसेना 4 सीटों पर और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। विपक्षी महाविकास अघाड़ी MVA ने कांग्रेस को 8 सीटें, शिवसेना UBT को 6 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार को 3 सीटें आवंटित की हैं। मतदान और मतगणना दोनों 22 जून को होंगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हिजबुल्ला के बीच संघर्ष को कम करने पर सहमति बन गई है। ये समझौता इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बातचीत और मध्यस्थियों के माध्यम से हिजबुल्ला से संपर्क के बाद सामने आया है। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज गरज के साथ तूफानी मौसम की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एआर लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी कीर्ति, आपके साथ रात्रि के 2:10 और इस रात के सफर में हम हैं आपके साथ। गीत बहार का कार्यक्रम लेकर आज हाजिर हूँ। और इस कार्यक्रम में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक हम सुनते हैं, आनंद लेते हैं और बहुत मज़ा आता है। और मुझे पता है आपको भी ये कार्यक्रम बहुत पसंद है, क्योंकि लगातार जब बेहद खूबसूरत गीत आपके दिल, आपके कानों तक पहुंचते हैं तो आप हमें ही ट्यून इन करके रखते हैं। तो चलिए, बैक टू बैक गीत आपको सुनवाते हैं।

0: आप सुन रहे थे नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक का कार्यक्रम गीत बहार, मेरे यानी अपनी दोस्त कीर्ति के साथ। और उम्मीद है आपने इस कार्यक्रम को अच्छे से एंजॉय किया होगा और इन गीतों को आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। और अब समय है इस कार्यक्रम को समाप्त करने का। अपनी दोस्त कीर्ति को दीजिए गीत बहार कार्यक्रम से इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए और सुनते रहिए हमें AIR लाइव न्यूज़ 24x7 पर।
1: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने कल व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने आपसी संपर्क के महत्व पर बल दिया।

0: नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता कल से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में कल भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के संवाद के दूसरे संस्करण के दौरान दोनों देशों ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बावजूद सरकार ने नागरिकों को आश्वस्त किया है कि ईंधन, खाद्यान्न, उर्वरक और अन्य आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। इस बीच वित्तीय सेवा विभाग के संयुक्त सचिव मनोज मुत्तथिल अयप्पन ने बताया कि सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष से प्रभावित व्यवसायों को सहायता प्रदान करने के लिए आपातकालीन ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दी है। पश्चिम बंगाल में कल मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आर एन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल में शामिल हुए नए मंत्रियों को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बनी डबल इंजन सरकार में नई टीम पूर्ण समर्पण, प्रतिबद्धता और जनसेवा की भावना के साथ काम करेगी। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निष्कासित कर दिया है। सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने महाराष्ट्र विधान परिषद की सभी 17 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी 11 सीटों पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने कांग्रेस को 8 सीटें, शिवसेना यूबीटी को 6 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार को 3 सीटें आवंटित की हैं। राज्य विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया कल संपन्न हुई। मतदान और मतगणना दोनों 22 जून को होंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल के एक हिस्से के ढहने की घटना की जांच के लिए 2 अलग-अलग उच्च स्तरीय जांच समितियों का गठन किया है। इस हादसे में 6 श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुंझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड और अनिल डी अंबानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें उन पर बैंक को 2,929 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हिजबुल्ला के बीच संघर्ष को कम करने पर सहमति बन गई है। यह समझौता इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बातचीत और मध्यस्थों के माध्यम से हिजबुल्ला से संपर्क के बाद सामने आया है। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज गरज के साथ तूफान की चेतावनी जारी की है। इन क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मध्य कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और करिकल में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar U Min Aung Hlaing held detailed talks on the entire gamut of bilateral issues in New Delhi yesterday. The discussions covered trade, defence, border management, culture, among other areas of interest. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said,

3:10 और ठीक ठीक 40 सेकंड हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत गजल। आज के इस कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आपके साथ मैं आपका अपना दोस्त मोहन। आज कुछ चुने हैं बेहद खूबसूरत, बेहद उम्दा कुछ चुनिंदा गीत। हर गीत आपको पसंद आएगा। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कामचोर फिल्म के इस गीत के साथ।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

0: अभी आप पारसाला बी पूर्णमल द्वारा प्रस्तुत श्री गुरुवायूर पुराईशा सुप्रभातम सुन रहे थे। इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब समाप्त होता है।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। आइए अब सुनते हैं नाद ब्रह्म कार्यक्रम तालवाद्य कचेरी, प्रस्तुति येल्ला वेंकटेश्वर राव की है और ताल आदि।

अभी आप सुन रहे थे नाद ब्रह्म कार्यक्रम, ताल वाद्य कचेरी, ताल आदि प्रस्तुति येल्ला वेंकटेश्वर राव की थी।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आज मंगलवार है, चक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 12वीं तिथि, तदनुसार 2 जून सन 2026। श्रोताओं, सुबह के 4:54.16 हुए हैं। इस मीटर पर हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं। हम अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करते हैं।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं, आपको प्रातःकालीन सेवा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। 6 बजकर माफ कीजिएगा, 6 बजे हिंदी समाचार के साथ हमारी प्रातःकालीन सेवा आरंभ होगी और 6 बजकर 5 मिनट पर आप सुन सकेंगे अंग्रेजी में समाचार।

6:10 का समय रहेगा वंदना कार्यक्रम का और 6:40 पर चिंतन आप सुन पाएंगे, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे गोपाल कृष्ण गोखले के विचार। 6:45 पर रामचरितमानस से पाठ होगा बाल कांड भाग 74। 6:55 पर संस्कृत समाचार प्रसारित किए जाएंगे और 7 बजे आप सुनेंगे हिंदी समाचार। 7:05 पर आप सुन सकते हैं अंग्रेजी में समाचार। सात बजकर दस मिनट का समय कार्यक्रम संगीतिका का रहेगा और 7:30 पर आप सुन सकते हैं गीतों भरी कार्यक्रम। 8 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार समाचार प्रभात में और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज़ प्रसारित की जाएंगी। 8:30 पर आप उर्दू समाचार सुन सकते हैं। स्वर गंगा कार्यक्रम का समय रहेगा 8:45। श्रोताओं, इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की ये थी संक्षिप्त जानकारी। कुछ ही पलों में यानी ठीक 5 बजे आप सुनेंगे हिंदी और हिंदी में समाचार और 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने कल व्यापार और आर्थिक रक्षा, सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने आपसी संपर्क के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे कल लागू किया गया। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में कल भारत ऑस्ट्रेलिया

0: मंत्रियों के संवाद के दूसरे संस्करण के दौरान दोनों देशों ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। पश्चिम बंगाल में कल मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आर एन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने दो विधायकों संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निष्कासित कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल के ढहने की जांच के लिए दो उच्च स्तरीय समितियों की गठन किया है। इस हादसे में 6 श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी। जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सेतु निगम द्वारा गठित समितियों ने जांच शुरू कर दी है। हमीरपुर के जिलाधिकारी अभिषेक गोयल ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा गठित 3 सदस्यीय जांच समिति की अध्यक्षता अपर जिलाधिकारी कर रहे हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ है। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरूभाई अंबानी के खिलाफ FIR दर्ज की थी। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कल नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। पार्टी सांसद और प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा ने पत्रकारों से बातचीत में पिछले 12 वर्ष के दौरान मोदी सरकार की सेवा, संगठनात्मक विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुँच बढ़ाने के प्रयासों पर हुए विचार विमर्श को का ब्यौरा साझा किया। ईरान ने चेतावनी दी है कि लेबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ इसराइल के हमलों से अमेरिका के साथ संघर्ष विराम पर असर पड़ सकता है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरीय इलाकों में हमले का आदेश दिया था। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा कि अमेरिका के साथ हुए समझौते में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम शामिल है। किसी एक स्थान पर संघर्ष विराम का उल्लंघन का असर सभी मोर्चों पर पड़ेगा। इससे पहले इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा था कि ईरान समर्थित हिजबुल्ला के मिसाइल और ड्रोन हमलों के जवाब में लेबनान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज गरज के साथ तूफान की चेतावनी जारी की है। विभाग ने इन क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों में भी आज गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar U Min Aung Hlaing held detailed talks on the entire gamut of bilateral issues in New Delhi yesterday. The discussions covered trade, defense, border management, culture, among other areas of interest. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said both sides expressed interest in forging closer cooperation, particularly in the areas of trade and investment, development cooperation, health, education and energy. Foreign Secretary said Prime Minister reaffirmed India's support for the sovereignty and territorial integrity of Myanmar, and both sides underscored the importance of preventing the misuse of territory for activities inimical to their security interests.
2: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by the President has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing partnership and to work together for mutual benefit, growth and prosperity in the region.
1: Mr. Misri said both sides underlined the importance of connectivity and agreed to work as quickly as possible towards the completion of Kaladan multimodal transit transport project. President Draupadi Murmu has said Myanmar is an important partner in India's Neighbourhood First Act, East and Mahasagar policies. Welcoming Myanmar President U Min Aung Hlaing at Rashtrapati Bhavan yesterday, President Murmu said,

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है कार्यक्रम आओ योग करें।

नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर हिमानी शौखन, मैं हूं आपकी योग विशेषज्ञ। आज हम चर्चा करेंगे गैस्ट्राइटिस, गलत खान पान, शारीरिक श्रम की कमी होना, तनाव आदि हमारे जीवन शैली में इस तरह घर कर गए हैं कि ये हमारे लिए तमाम तरह की बीमारियों की जड़ है। और गैस्ट्राइटिस भी ऐसी ही समस्या जो किसी भी उम्र के व्यक्ति के लिए परेशानी का सबब बन गई है। परंतु आप सेहतमंद डाइट और योगासनों को जीवन शैली का हिस्सा बनाएंगे तो आप गैस्ट्राइटिस की समस्या से

काफी हद तक निजात पा सकते हैं। इस कड़ी में मैं आपको आज पवन मुक्तासन के बारे में बताऊंगी, जो आपको काफी हद तक गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम से छुटकारा दिला सकता है। तो आइए सीखते हैं कि किस प्रकार आप पवन मुक्तासन करेंगे। पवन मुक्तासन के लिए सबसे पहले आप अपने आसन पर पीठ के बल लेट जाएं, दोनों घुटनों को मोड़े, श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटनों को अपने वक्ष स्थल के ऊपर लेकर आए, श्वास भरते हुए दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में इंटरलॉक करें, आपस में फंसाएं और अपने पैरों को पकड़ लें। अब श्वास बाहर छोड़ते हुए सिर को तब तक ऊपर की ओर उठाएं जब तक आपकी ठुड्डी घुटनों से ना लगे। कुछ समय तक इस स्थिति में बने रहें। यह अभ्यास पवन मुक्तासन के नाम से जाना जाता है। श्वास लेते समय सिर को वापस जमीन पर ले आए, श्वास बाहर छोड़ते समय पैरों को भी जमीन पर ले आए। अभ्यास के अंत में शव आसन में कुछ क्षण के लिए विश्राम जरूर करें। यह अभ्यास कम से कम 3 से 4 बार अवश्य दोहराएं, तभी आप इसका परिपूर्ण रूप से लाभ उठा पाएंगे। इस आसन में कुछ सावधानियों को ध्यान से करें, जैसे पैरों की गतिविधियों के अनुसार ही श्वास पर श्वास को एक लय में लाएं, घुटनों को नासिका से स्पर्श करते यानी घुटनों को नाक से स्पर्श करते हुए यह अनुभव करें कि कमर में आपके किस हिस्से में खिंचाव महसूस हो रहा है। यह आसन कब्ज की बीमारियों को दूर करने में सहायक है और हमारी पाचन क्रिया को भी बढ़ाता है। कुछ हद तक कमर की मांसपेशियां, कमर के लिगामेंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाता है। तो आज हमने सीखा कि गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम के लिए आप पवन मुक्तासन का अभ्यास किस प्रकार कर सकते हैं। प्रतिदिन करें योग, रहें निरोग। नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिमानी शौखन, आपकी योग विशेषज्ञ। आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण आसन बताऊंगी जिसका नाम है सेतुबंध आसन। सेतुबंध शब्द का अर्थ है सेतु का निर्माण। इस आसन में शरीर की आकृति बिल्कुल सेतु की अवस्था का रूप ले लेती है, इसीलिए इस आसन को सेतुबंध आसन के नाम से जाना जाता है। सेतुबंध आसन के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाए, दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए एड़ियों को नितंब के पास लाएं, जितना पॉसिबल हो सके अपने हिप जॉइंट्स के पास लेकर आए, यानी नितंब के पास लेकर आए। अब हाथों से पैर के टखनों को मजबूती से पकड़ें और घुटनों और पैरों को एक सीध में रखने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपने नितंब और धड़ को ऊपर की ओर उठाएं और एक पुलनुमा आकृति बनाएं, यानी एक ब्रिज बनाने का प्रयास करें। इस अवस्था में 10 से 30 सेकंड कम से कम रुकने का प्रयास करें। ध्यान रहे, इस अवस्था में आपका श्वास पर श्वास की क्रिया सामान्य बनी रहे, यानी आपको ब्रीदिंग को होल्ड नहीं करना है, सामान्य श्वास लेते रहना है। 10 से 30 सेकंड तक इस स्थिति में रुकने के बाद श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस अपनी स्थिति में आ जाए और शव आसन में लेटकर

शिथिल छोड़ दें। दोस्तों 10 से 30 सेकंड तक रुकना। इस आसन को करने के बाद जब आप शवासन में लेटे तो आंखें बंद करके अपने शरीर पर ध्यान दें और उसमें होने वाले बदलाव को भी महसूस करें। धीरे धीरे जब आप यह निरंतर यह अभ्यास करते हैं तो आप रुकने की जो टाइम पीरियड होता है यानी 10 से 30 सेकंड का जो समय है उस समय को भी आप बढ़ा सकते हैं, यानी एक मिनट तक भी आप उस स्थिति में रुक सकते हैं। इस आसन को आप कम से कम 3 से 4 बार अवश्य करें। सेतुबंध आसन की स्थिति में कम से कम 10 से 30 सेकंड रुकने का भी प्रयास जरूर करें। अगर आप 10 से 30 सेकंड इस स्थिति में आराम से बने रह सकते हैं तो आप अपने समय को बढ़ाकर 1 मिनट तक भी कर सकते हैं, यानी इस आसन को आप 1 मिनट तक भी होल्ड कर सकते हैं। ध्यान रहे यह आसन करते समय अंतिम अवस्था यानी फाइनल पोज में आपके कंधे, गर्दन और सिर जमीन से लगे होने चाहिए, और यदि जरूरत हो तो फाइनल पोज में आप अपने कमर पर हाथ रखकर भी अपने शरीर को ऊपर की ओर उठा सकते हैं। और यदि जरूरत हो तो फाइनल पोज में भी कई बार ऐसा होता है कि हम कमर ऊपर नहीं उठा पाते तो आप अपने हाथों का भी सहारा ले सकते हैं, अपने कमर पर हाथ रखकर भी अपने शरीर को ऊपर की ओर उठा सकते हैं। यह आसन न केवल कमर के निचले हिस्से की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है बल्कि चिंता को भी कम से कम करने में सहायक है। उदर यानी पेट के अंगों में भी कसावट लाता है और जिन लोगों को कब्ज की शिकायत रहती है उससे भी छुटकारा दिलाने में मदद करता है। इसी के साथ साथ मैं आपको कुछ सावधानियां भी बताती हूँ। यदि किसी व्यक्ति को हर्निया या कोई रिसेंटली पेट की सर्जरी हुई है तो इस आसन का अभ्यास ना करें। तो आज आपने सीखा कि किस प्रकार आप सेतुबंध आसन कर सकते हैं और किस प्रकार आप इस आसन का लाभ उठा सकते हैं, जैसे कमर की मांसपेशियों में मजबूती, कब्ज को कम करना, पेट के अंगों में भी मजबूती लाना, अपनी पाचन शक्ति को बढ़ाना और तनाव को भी ये काफी हद तक कम करता है। आखिर में आपसे मैं फिर कहूंगी, प्रतिदिन करें योग, रहे निरोग। धन्यवाद।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है देशभक्ति गीत।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

5:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वर रंजनी। गिटार पर आप सुनेंगे राग नट भैरव। प्रस्तुति नील रंजन मुखर्जी की है।